सुप्रभात श्रोताओं, मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की आठवीं तिथि, तदनुसार 29 मई सन 2026। प्रातः के 5:58:45 हो रहे हैं। हमारी प्रथम सभा के प्रसारण अब आरंभ हो रहे हैं।

0: मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। प्रातः के 6 बज रहे हैं, अब आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में जनजाति सुरक्षा मंच के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जनजातीय समुदाय के प्रति जनजातीय सुरक्षा मंच का समर्पण वास्तव में सराहनीय है। उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान जनजातीय समुदाय के विकास और सशक्तिकरण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वो आज बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के 45 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति दावणगेरे में यूनिवर्सिटी बीडीटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के प्लेटिनम जुबली समारोह में हिस्सा लेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। मॉस्को में आयोजित इस बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कल अहमदाबाद में कॉमनवेल्थ खेल और ओलंपिक की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार देश में विश्व स्तरीय खेल अवसंरचना और अत्याधुनिक प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार कर रही है। अहमदाबाद वर्ष 2030 के कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी करेगा। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कल प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे।
2: प्रधानमंत्री जी का संकल्प है हर गरीब को पक्का मकान मिले, पक्का आवास मिले, और उसके लिए 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए।
1: महिला सशक्तिकरण पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत लगभग 75% मकान या तो महिलाओं के नाम पर हैं या संयुक्त स्वामित्व में हैं। भारतीय जनता पार्टी ने केवल सिंह ढिल्लों को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। 76 वर्षीय केवल ढिल्लो पंजाब भाजपा के पहले जाट सिख अध्यक्ष होंगे। 2 बार कांग्रेस विधायक रह चुके केवल सिंह ढिल्लो वर्ष 2022 में भाजपा में शामिल हुए थे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कल त्रिशा शर्मा दहेज हत्या मामले में भोपाल से गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया है। गिरिबाला त्रिशा की सास और सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक दिन पहले उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। दिल्ली में वर्ष 2025-26 के दौरान 370 आयुष्मान आरोग्य मंदिर शुरू किए गए हैं। दिल्ली सरकार ने कहा है इन केंद्रों का विकास और संचालन केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों और तय वित्तीय मानकों के अनुसार किया गया है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने कहा कि राजधानी में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार पूरी पारदर्शिता के साथ किया जा रहा है। पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच एयर इंडिया ने जुलाई के अंत तक इसराइल के लिए अपनी उड़ानों की निलंबन सीमा को बढ़ा दिया है। इससे पहले एयरलाइन ने जून के अंत तक तेल अवीव दिल्ली हवाई मार्ग पर उड़ान परिचालनों को रद्द कर दिया था। एयर इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र में मौजूदा स्थिति को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने अमरीकी हवाई अड्डे पर हमला किया है। यह हमला उस समय हुआ जब अमरीका ने ईरानी ड्रोन मार गिराए और दक्षिणी ईरान के बंदर अब्बास में एक सैन्य ठिकाने पर हमला किया। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मुकाबला न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:05 हो रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना। श्रोताओं, कहते हैं कि जहां भक्ति होती है वहां शक्ति होती है, और

जहां संतोष होता है वहां खुशियां अपने आप चली आती हैं, और इसी संतोष की देवी माना जाता है मां संतोषी को, जिनकी आराधना से घर में सुख समृद्धि आती है और मन को शांति मिलती है। तो आइए कार्यक्रम वंदना का शुभारंभ करते हैं मां संतोषी के इस भजन से।

0: महेंद्र कपूर और साथियों के स्वर में भी आपने सुना माँ संतोषी का यह भजन। और भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। चलिए अब आपको सुनवाते हैं हरिओम शरण और नंदिनी शरण के युगल स्वर में ये भावपूर्ण भजन जो आपको भक्ति के सागर में डुबो देगा। श्रोताओं, जब दुनिया मतलबी लगने लगे तब याद आता है उस प्रभु का दर। इस भजन में एक भक्त की सच्ची पुकार है जो प्रभु राम से ही अपना नाता जोड़ता है, उन्हें ही अपना मीत मानता है। तो आइए सुनते हैं ये भक्ति रचना।
1: संसार के द्वार खुलते हैं, बंद हो जाते हैं, यहां से मिलने वाली दौलत नश्वर है। पावन द्वार तो एक ही है, हरि का द्वार, जिस द्वारे से सदैव दया कृपा प्रेम बरसता ही रहता है। यही है वो द्वार जहां से कोई कभी खाली नहीं लौटा, जो भी आया उसने पाया है

हरिओम शरण और नंदिनी शरण के स्वर में भी आपने सुनी ये भक्ति रचना। श्रोताओं, आइए अब आपको सुनवाते हैं ये रूहानी शब्द जो बाबा गुरु नानक के मोदी खाने और उनके 13-13 तोलने के प्रसंग पर आधारित है। सुल्तानपुर लोधी के मोदी खाने में बाबा नानक जब 13-13 तोल रहे थे तो वे अकाल पुरख की भक्ति में लीन थे। उसी वाक्य पर आधारित है ये शब्द रचना। स्वर दिए हैं करमजीत सिंह धुरी और स्वरूप सिंह स्वरूप ने।

करमजीत सिंह धुरी और स्वरूप सिंह स्वरूप के स्वर में भी आपने सुनी ये शब्द रचना। श्रोताओं, जब रसूल पाक की महफिल सस्ती है तो पूरी कायनात अदब से झुक जाती है। तो चलिए, दुनिया की तमाम फिक्रों को भूल जाइए, अपने दिल के दरवाजों को खोलिए और रूह को सुकून देने वाली इस खूबसूरत नात में खो जाइए।

हबीब कव्वाल निजामी के स्वर में भी आप सुन रहे थे ये नात। श्रोताओं, शेरों पर सवार होकर माँ अंबे आती है, अपने भक्तों के सारे दुख पल में मिटाती है। झुक जाता है सर श्रद्धा से उनके दरबार में, माँ खाली झोली को भी खुशियों से भर जाती है। तो आइए अब कार्यक्रम वंदना का समापन करते हैं माँ अंबे की इस आरती से।

मांबे की आरती के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। लीजिए अब सुनिए श्री रामचरित मानस गान। स्वर भूपेंद्र सिंह के हैं और संगीत है सतीश भाटिया का।

श्री राम के वनगमन पर अयोध्या वासियों का आर्तनाद सुना नहीं जाता। जब राजा दशरथ की मूर्छा दूर हुई तो उन्होंने मंत्री सुमंत्र को बुलाकर कहा, श्री राम वन जा रहे हैं किंतु अब भी मेरे प्राण शरीर नहीं छोड़ रहे। ना जाने किस सुख की आशा में ये अब भी इस शरीर में टिके हुए हैं। फिर कठिनाई के साथ मन में धीरज धारण कर उन्होंने सुमंत्र से अनुरोध किया कि वे दोनों सुकुमारों और सुकुमारी जानकी को रथ में बिठा वन दिखाकर 4 दिनों में वापस लौट आवे। यदि दृढ़ प्रतिज्ञ दोनों कुमार ना भी लौटें तो उनसे आग्रह करना कि वे सुकुमारी सीता को लौटा दें। यदि सीता वन देखकर डरें तो उनसे कहना कि सास ससुर का ऐसा संदेश है कि पुत्री तुम लौट आओ। यदि वो लौट आई तो मेरे प्राणों को थोड़ा सहारा मिल जाएगा। इतना कहकर राजा एक बार फिर मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े। राजा की आज्ञा के अनुसार सुमंत्र रथ लेकर श्री राम, सीता और लक्ष्मण के पास पहुंचे। हृदय में अयोध्या को सिर नवाकर सिया समेत दोनों भाई रथ पर चढ़कर वन की ओर चले। व्याकुल अयोध्यावासी उनके रथ के पीछे दौड़ते चले। श्री राम उन्हें वापस चले जाने को कहते हैं तो वो लौटने लगते हैं, किंतु प्रेमवश फिर रथ के पीछे दौड़ने लगते हैं। राम के विरह में शोकाकुल अयोध्यावासी चित्रलिखित से हो चले हैं।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान, गायन स्वर भूपेंद्र सिंह और संगीत सतीश भाटिया का था। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी।

0: का ये नजीबाबाद केंद्र है। लीजिए अब सुनिए आज का चिंतन।
1: परोपकार समाज की प्राचीन परंपरा है। प्रत्येक धर्म में इसके विभिन्न प्रकार बताए गए हैं। परोपकार सच में क्या है? उपकार में पर उपसर्ग जुड़कर परोपकार शब्द बना है। पर का अर्थ है स्व से पृथक, अर्थात अपना नहीं। उपकार पुनः उप तथा कार से मिलकर बना शब्द है। कार कार्य का उप अर्थात लघु या संयुक्त। हमारे मूल कार्यों के साथ अन्य कार्य जो स्वयं या स्वयं के लोगों को छोड़कर अन्यों के लिए किए जाएं, यह सामाजिक संरचना के सुदृढ़ीकरण के लिए सदैव अपेक्षित और आवश्यक रहा है। अपने नैतिक आत्मिक कल्याण के लिए व्यक्ति कुछ न कुछ ऐसा करता है जिससे समाज का वंचित वर्ग लाभान्वित होता है। इससे उभय पक्षीय आत्मिक सुख मिलता है। पुराने समय में दान की व्यवस्था प्रचलन में थी। वित्त से त्रयोगति कहकर भोग, दान और नाश तीन स्थितियों का वर्णन हमें मिलता है। यदि धन है तो उसका भोग करो, फिर दान करो, अन्यथा वह नष्ट हो जाएगा। अब दान की व्यवस्था समयानुसार बदल गई है। आयकर में छूट लेने के लिए दिया गया दान लाभ की श्रेणी में आ जाता है। इसके मूल में उपकार नहीं, लाभ ही है। दान लेने वाली संस्था जो मिला आयकर विभाग का टैन ही इसका कारण है, इसीलिए यह पर की श्रेणी में नहीं आता। परोपकार शब्द में स्वार्थ लाभादि की घुसपैठ आधुनिक समाज की देन कहा जा सकता है। निस्वार्थ भाव से अपनी सामर्थ्यानुसार किसी की आवश्यकता में सहायता करना परोपकार की श्रेणी में आता है। हिंदी में कवि कथन के रूप में परहित सरिस धर्म नहीं भाई और परोपकार शब्दों को हम एक ही अर्थ में ग्रहण कर सकते हैं।
0: ये था आज का चिंतन। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, किसी ने क्या खूब कहा है, समय के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको दोबारा समय दे सके। सोचिए, हम सब पैसे बहुत सोच समझकर खर्च करते हैं, लेकिन समय को हम ऐसे ही गंवा देते हैं। खोया हुआ पैसा तो शायद वापस आ जाए, लेकिन बीता हुआ एक सेकंड भी दुनिया की सारी दौलत देकर वापस नहीं लाया जा सकता। श्रोताओं, समय का चक्र बड़ा अजीब होता है। जब हम खुश होते हैं तो ये पंख लगाकर उड़ जाता है, और जब हम उदास होते हैं तो इसका एक एक पल काटना मुश्किल हो जाता है। लेकिन समय की सबसे अच्छी बात जानते हैं क्या है? ये चाहे कैसा भी हो, बदलता जरूर है। इसलिए जो समय बीत गया उसकी चिंता छोड़ दीजिए, जो आने वाला है उसकी प्लानिंग कीजिए, लेकिन सबसे जरूरी है आपका आज। इस आज को खुलकर जिए, अपनों के साथ जिए और कुछ अच्छा करने में बिताएं। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ पर। इस समय प्रातः के 6:45 हो रहे हैं। लीजिए अब सुनिए गांधी कथा।

मांसाहार काल के और उसके पहले के भी कुछ दोषों का वर्णन करना अभी बाकी है। वे विवाह पूर्व के या उसके कुछ ही बाद के हैं। अपने एक रिश्तेदार की सोबत में मुझे सिगरेट पीने का शौक हुआ। हमारे पास पैसे न थे। सिगरेट पीने में कोई फायदा या उसकी गंध में कोई मजा हो, ऐसा तो हम दोनों में से किसी को मालूम न था। पर हमें धुआं उड़ाने में ही कुछ मजा आता था। मेरे चाचा

को इसकी आदत थी। उन्हें और औरों को धुआं उड़ाते देखकर हमें भी कश खींचने का शौक लगा। पैसा पास न होने के कारण हमने चाचा के पीकर फेंके हुए सिगरेट के टुकड़े चुराना शुरू किया, पर टुकड़े हर वक्त तो न मिल सकते थे और उनसे धुआं भी ज्यादा न निकलता था। अतः नौकर की जेब में पड़े 2-4 पैसों में से हम बीच बीच में एक आध पैसा चुराने और उससे सिगरेट खरीदने लगे, पर उन्हें रखें कहां, यह समस्या सामने आई। ये भी समझता था कि बड़ों के सामने सिगरेट नहीं पीना चाहिए। ज्यों त्यों 2-4 ढेले पैसे चुराकर कुछ हफ्ते काम चलाया। इस बीच सुना कि एक पौधा जिसका नाम मुझे याद नहीं है होता है, जिसका डंठल सिगरेट की भांति जलता है और पिया जा सकता है। हमने उसे लाकर धुआं उड़ाना शुरू किया, पर हमें संतोष ना हुआ। अपनी पराधीनता हमें खलने लगी। बड़ों की आज्ञा बिना कुछ भी न हो सके, ये विशेषकर कष्टदायक हो गया। हम ऊब गए और आत्महत्या करने की ठान ली। पर आत्महत्या कैसे करें, जहर कहां से लाएं? हमने सुना कि धतूरे के बीज खाने से मृत्यु होती है। हम जंगल में जाकर बीज ले आए। खाने के लिए शाम का समय निकाला, केदार जी के मंदिर की दीप माला में घी चढ़ाया, दर्शन किए और फिर एकांत ढूंढा, पर जहर खाने की हिम्मत ना हुई। तत्काल मृत्यु न हो तो मरने से क्या लाभ होगा, पराधीनता भोग ही क्यों ना लें। फिर भी 2-4 बीज खाए, अधिक खाने की हिम्मत ही ना पड़ी। हम दोनों मृत्यु से डरे। निश्चय किया कि चलकर राम जी के मंदिर में दर्शन करें और चुपचाप बैठें, आत्महत्या की बात मन से निकाल दें। मैंने समझ लिया कि आत्मघात का विचार करना सहज है, आत्मघात करना सहज नहीं है। इससे जब कोई आत्महत्या करने की धमकी देता है तो उसका मुझ पर बहुत कम असर होता है, या कह सकता हूं कि बिल्कुल नहीं होता। इस आत्महत्या के निश्चय का एक परिणाम यह हुआ कि हम दोनों की जूठी सिगरेट चुराकर पीने और साथ ही नौकर के पैसे चुराने तथा उससे सिगरेट खरीद कर पीने की आदत जाती रही। बड़े होने पर मुझे कभी सिगरेट पीने की इच्छा ही नहीं हुई और सदैव मेरी यह धारणा रही कि यह आदत जंगली, गंदी और हानिकारक है। सिगरेट बीड़ी का इतना जबरदस्त शौक दुनिया में क्यों है, इसे मैं कभी समझ न सका। जिस रेल के डिब्बे में बीड़ी सिगरेट का अधिक धुआं उड़ता, वहां बैठना मेरे लिए कठिन हो जाता। उस धुएं से मेरा दम घुटने लगता। सिगरेट के टुकड़े और उसके लिए नौकर के पैसे चुराने की अपराध की अपेक्षा एक दूसरी चोरी का अपराध जो मेरे हाथों हुआ, उसे मैं ज्यादा बड़ा समझता हूं। सिगरेट के दोष के समय तो उम्र 12-13 की रही होगी, शायद इससे भी कम, पर दूसरी चोरी के समय 15 साल का रहा हूंगा। यह चोरी मेरे मांसाहार भाई ने सीने के कड़े की टुकड़े की। यह चोरी मेरे मांसाहारी भाई ने सोने के कड़े के टुकड़े की थी। उन्होंने छोटा सा कोई 25 रुपए का कर्ज कर लिया था। हम दोनों भाई इसे चुकाने के चक्कर में थे। भाई के हाथ में सोने का ठोस कड़ा था, उसमें से तोला भर सोना काट लेना कठिन न था। कड़ा कटा, कर्ज पट गया, पर मेरे लिए ये बात असह हो गई। इसके बाद मैंने कभी चोरी न करने का निश्चय किया। ये भी सोचा कि पिताजी के सामने इसे कबूल लेना चाहिए, पर जुबान न खुलती थी। पिताजी मुझे पीटेंगे, इसका डर तो नहीं था। उन्होंने किसी दिन हमसे किसी भी भाई को मारा हो, ये मुझे याद नहीं है, पर स्वयं कलेश करेंगे, कहीं अपना सिर पीट लें तो? पर मन ने कहा, यह खतरा लेकर भी दोष स्वीकार करना ही उचित है।

0: इसके बिना शुद्धि नहीं होने की। अंत में मैंने पत्र लिखकर दोष स्वीकार कर लेने और माफी मांगने का निश्चय किया। मैंने पत्र लिखकर अपने हाथ से उन्हें दिया। पत्र में सब दोष स्वीकार किया और उसका दंड मांगा। ये विनती भी की कि मेरे अपराध के लिए वे अपने को कष्ट में न डालें और प्रतिज्ञा की कि भविष्य में फिर ऐसा अपराध न करूंगा। मैंने कांपते हाथों से ये पत्र पिताजी के हाथों में दिया। मैं उनके तख्त के सामने बैठ गया। इन दिनों वो भगंदर रोग से पीड़ित थे, इससे बिस्तर पर ही पड़े रहते थे, खाट के बदले तख्त काम में लाते थे। उन्होंने पत्र पढ़ा, आंखों से मोती की बूंदें टपकी, पत्र भीग गया। उन्होंने क्षण भर आंखें मूंद ली, पत्र फाड़ डाला और खुद पढ़ने को बैठे हुए थे सो पुनः लेट गए। मैं भी रोया, पिताजी की पीड़ा का मैं अनुभव कर सका। मैं चित्रकार होता तो आज भी उस दृश्य की पूरी तस्वीर खींच सकता था। आज भी इस तरह वो मेरी आंखों के सामने नाच रहा है। इन मुक्ता बिंदुओं के प्रेम बाण ने मुझे बेध दिया, मैं शुद्ध हो गया। इस प्रेम को तो अनुभवी ही जान सकता है। मेरे लिए ये अहिंसा का पदार्थ पाठ था। उस समय तो मैं उसमें सिवा पितृ प्रेम के और कुछ न देख सका था, पर आज मेरे लिए ये अहिंसा का पदार्थ पाठ था। उस समय तो मैं उसमें सिवा पितृ प्रेम के और कुछ न देख सका था, पर आज मैं उसे शुद्ध अहिंसा का नाम दे सकता हूं। ऐसी अहिंसा के व्यापक रूप धारण कर लेने पर उसके स्पर्श से कौन अछूता रह सकता है? ऐसी व्यापक अहिंसा की शक्ति की नाप तोल करना अशक्य है। ऐसी शांत क्षमा पिताजी के स्वभाव के प्रतिकूल थी। मैंने सोचा था कि वो क्रुद्ध होंगे, खरी खोटी सुनाएंगे, शायद अपना सिर पीट लेंगे। मैं समझता हूं कि उनके ऐसी अपार शांति रख सकने का कारण मेरा दोष को स्पष्ट रूप से स्वीकार कर लेना था। अधिकारी के सामने जो आदमी स्वेच्छापूर्वक खुले दिल से और फिर कभी न करने की प्रतिज्ञा के साथ अपना दोष स्वीकार कर लेता है, वो शुद्धतम प्रायश्चित करता है। मैं जानता हूं कि मेरे कबूल कर लेने से पिताजी मेरे विषय में निर्भय हो गए और उनका महान प्रेम और बढ़ गया।
1: इसी के साथ गांधी कथा अब यहीं संपन्न होती है।

0: अभी आप सुन रहे थे गांधी कथा। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज पर। प्रातः के 6:55 होने को हैं। कुछ ही क्षणों में आप समाचार सुनेंगे।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः दिव्यानन्दझाः। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी गतदिने जनजातीय प्रतिनिधिभिः सह मिलितवान्। ह्यः नवदिल्ल्याम् आयोजितस्य जनजातीय सुरक्षा कल्याण मञ्चस्य विषये सामाजिक संचार माध्यमेन श्री मोदी उक्तवान् यत् आदिवासी समुदायं प्रति तस्य समर्पणं यथार्थतया प्रशंसनीयम्। केन्द्रीयः गृह सहकारिता मन्त्री अमित शाहः पुनरेकदा अवैध प्रवासिनाम् अभिज्ञानार्थं निर्वासनार्थं सीमा सुरक्षां च सुदृढीकर्तुं सर्वकारस्य प्रतिबद्धतां दृढतया प्रतिपादितवान्। गतवासरे गुजराते गांधीनगरे 44.3 कोटि रूप्यकाणां विकास परियोजनानां उद्घाटनस्य

0: समाप्या शिलान्यासस्य च अनन्तरं जनसभां सम्बोधयन् श्रीशाहः पश्चिम बंगाल सर्वकारस्य अपि प्रशंसाम् अकरोत् यतः शासनेन एक सप्ताहाभ्यन्तरे सीमा सुरक्षाबलाय 600 हेक्टर परिमिता भूमिः प्रदत्ता। वीर सावरकर महोदयस्य जन्मवार्षिक्याः अवसरे गृहमंत्री तस्य योगदानाय त्यागाय च तस्मै श्रद्धांजलिं प्रदत्तवान्। गुजरात राज्यस्य त्रिदिवसीय यात्रायां श्रीशाहः अनेकेषां सार्वजनिक सौकर्याणाम् उद्घाटनम् अकरोत्। अत्रान्तरे सः अहमदाबाद नगरे आगामिनि ओलंपिक क्रीडानां कॉमनवेल्थ क्रीडानां विश्वरक्षक क्रीडानां अग्निक्रीडानां च सज्जतायाः समीक्षाम् अकरोत्। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मूः आरक्षक बलाय बोधितवती यत् आरक्षकाः अधिकं नागरिकाभिमुखाः भवेयुः अपि च समाजस्य दुर्बलवर्गाणां विशेषतः महिलानां निर्धनानां बालकानां च विषये संवेदनशीलतां धारयेयुः। राष्ट्रपतिः गतवासरे गंगटोक नगरे आयोजिते अलंकरण संचलने सिक्किमारक्षक दलाय प्रतिष्ठितं राष्ट्रपति ध्वज सम्मानं प्रदाय एवं उक्तवती। तया राज्ये विधि व्यवस्थायाः पालने सहैव आपत प्रबंधने सिक्किमारक्षक दलस्य भूमिकायाः भूरिशः प्रशंसा कृता। उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन् अद्य आरभ्य अस्य मासस्य 31 दिनांक पर्यन्तं कर्णाटक गोवा केरल राज्यानां त्रिदिवसीय यात्रायां भविष्यति। अद्य सः कर्णाटके बेंगलुरु नगरे आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन इत्येतस्य संस्थानस्य 45 वर्षपूर्त्यवसरे आयोजिते वैश्विक समारोहे सहभागं करिष्यति। तदनन्तरं सः कर्णाटकस्य दावणगेरे स्थितस्य विश्वविद्यालय बीडीटी अभियांत्रिकी महाविद्यालयस्य प्लैटिनम जुबली इति महारजत जयंत्युत्सवे अपि सहभागं करिष्यति। कर्णाटकस्य मुख्यमंत्री सिद्धारमैया इत्यसौ गतवासरे लोकभवने राज्यपालस्य सचिवाय औपचारिकरूपेण स्वकीयं त्यागपत्रं समर्पितवान्। वार्ताहरान् सम्बोधयन् सः प्रमाणितवान् यत् त्यागपत्रं सचिवाय औपचारिकरूपेण प्रदत्तमिति। अत्रावसरे सः राज्यपालं नूतन मुख्यमन्त्रिणः पदभारग्रहणाय आमन्त्रयितुं साग्रहं निवेदितवान्। यतोहि विधानसभायां 33 विधायकानां समर्थनेन कांग्रेस दलस्य पूर्ण बहुमतं वर्तते। तेन सूचितं यत् कांग्रेस उच्चाधिकारिभिः तस्मै राज्यसभायाः सदस्यता प्रस्ताविता आसीत्, परञ्च सः राष्ट्रिय राजनीतौ स्वकीयाम् अरुचिं प्रकटयन् उक्तवान् यत् सम्प्रत्यसौ राज्यस्य जनानां कृते एव निरन्तरं कार्यं करिष्यति। भारतीय अर्थविभागेन अनुमितं यत् देशस्य उत्तर पश्चिमीय दिग्विभागस्य कतिपय क्षेत्रेषु अतिताप घटनायां अपचितिः भविष्यति। अन्ते क्रीडावार्तासु आईपीएल क्रिकेट स्पर्धा मालिकायां अद्य उपान्ति चक्रीये द्वन्द्वे गुजरात टाइटन्स दलं राजस्थान रॉयल्स दलेन समं स्पर्धिष्यते। स्पर्धा सायं 7:30 आरप्स्यते। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया। मॉस्को में आयोजित इस बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि वे आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कल प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध है कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे।
2: प्रधानमंत्री जी का संकल्प है हर गरीब को पक्का मकान मिले, पक्का आवास मिले, और उसके लिए 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से

0: हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए।
1: महिला सशक्तिकरण पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत लगभग 75% मकान या तो महिलाओं के नाम पर हैं या संयुक्त स्वामित्व में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में जनजाति सुरक्षा मंच के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जनजाति समुदाय के प्रति जनजातीय सुरक्षा मंच का समर्पण वास्तव में सराहनीय है। उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान जनजातीय समुदाय के विकास और सशक्तिकरण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर सार्थक चर्चा हुई। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वे आज बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के 45 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति दावणगेरे में यूनिवर्सिटी ऑफ बीडीटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के प्लेटिनम जुबली समारोह में भाग लेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में प्रस्तावित कॉमनवेल्थ गेम और ओलंपिक की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। श्री शाह ने कहा कि अहमदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप खेल सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। अहमदाबाद वर्ष 2030 के कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी करेगा। भारतीय जनता पार्टी ने केवल सिंह ढिल्लों को पंजाब का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। 76 वर्षीय केवल ढिल्लों पंजाब भाजपा के पहले जाट सिख अध्यक्ष होंगे। 2 बार कांग्रेस विधायक रह चुके केवल सिंह ढिल्लों वर्ष 2022 में भाजपा में शामिल हुए थे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कल त्रिशा शर्मा दहेज हत्या मामले में भोपाल से गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया है। गिरिबाला त्रिशा की सास और सेवानिवृत्त जिला और सत्र न्यायाधीश हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक दिन पहले उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। दिल्ली में वर्ष 2025-26 के दौरान 370 आयुष्मान आरोग्य मंदिर शुरू किए गए हैं। दिल्ली सरकार ने कहा है कि इन केंद्रों का विकास और संचालन केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों और तय वित्तीय मानकों के अनुसार किया गया है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने कहा कि राजधानी में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार पूरी पारदर्शिता के साथ किया जा रहा है। पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच एयर इंडिया ने जुलाई के अंत तक इसराइल के लिए अपनी उड़ानों की निलंबन सीमा बढ़ा दी है। इससे पहले एयरलाइन ने जून के अंत तक तेल अवीव दिल्ली हवाई मार्ग पर उड़ान परिचालनों को रद्द कर दिया था। एयर इंडिया के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र की मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने अमरीकी हवाई अड्डे पर हमला किया है। ये हमला उस समय हुआ जब अमरीका ने ईरानी ड्रोन मार गिराए और दक्षिणी ईरान के बंदर अब्बास में एक सैन्य ठिकाने पर हमला किया। पिछले 3 दिनों में यह दूसरी बार है जब अमरीका ने ईरान पर कार्रवाई की है। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। प्रातः के 7:05 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए स्वास्थ्य चर्चा।
3: हर व्यक्ति चाहता है कि उसके बाल सदा सर्वदा घने काले बने रहें। यहां तक कि प्रौढ़ावस्था में भी चाहत यही रहती है कि उसके बाल ना तो झड़े ना ही वे सफेद होने पाए। ये चाहत वास्तविक रूप तभी ले सकती है जब हम अपने सुंदर घने बालों की सही समय पर सही तरीके से देखभाल करें। बहुत से लोग कहते हैं कि वे यथासंभव बालों की देखभाल करते हैं, फिर भी न जाने क्यों बालों की समस्या उन्हें घेरे रहती है। वास्तव में ऐसे लोगों में से ज्यादातर को बालों की प्रकृति और प्रकृति अनुरूप देखभाल के बारे में जानकारी ही नहीं होती। ऐसी स्थिति में जो उपाय लाभ होगा सोचकर किए जाते हैं, वे बजाय फायदे के नुकसान भी पहुंचा देते हैं। हमें यदि अपने बालों के सौंदर्य को बरकरार रखना है तो अपने बालों की प्रकृति और उनके स्वास्थ्य की जानकारी रखनी होगी। हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे सिर के बाल केवल हमारा सौंदर्य ही नहीं बनाए रखते बल्कि हमें मानसिक रूप से भी स्वस्थ बनाए रखने में सहयोग करते हैं। उस समय बाल गिरने की समस्या

0: मानसिक रूप से परेशान कर देती है, साथ ही बालों की कई समस्याएं त्वचा संबंधित रोगों का कारण भी बन जाती है। बालों को साबुन या शैंपू से धोकर साफ किया जाता है। जिस तरह से दांतों की सफाई जरूरी होती है, शरीर की सफाई जरूरी होती है, उसी तरह बालों की सफाई आवश्यक है। जहां तक नहाने वाले साबुन से बाल धोने की बात है, तो साबुन से बाल उतनी अच्छी तरह साफ नहीं हो पाते जितने होने चाहिए। ये भी देखा गया है कि लंबे समय तक साबुन से बाल धोते रहने से वे रूखे और कड़े होने लगते हैं। नतीजतन कंघी करते समय आसानी से टूट जाते हैं। बालों को मुल्तानी मिट्टी से धोने की परंपरा हमारे यहाँ पुराने समय से है और ये ठीक भी है। प्राकृतिक होने से इसके नुकसान कहीं भी कुछ नहीं है, बल्कि लाभ ही लाभ है। मुल्तानी मिट्टी से बाल धोने से सिर को ठंडक मिलती रहती है, जो अंदर दिमाग तक को शीतलता प्रदान करती है। यदि बालों को शैंपू से धोया जाए तब बालों की सफाई ठीक तरह से हो जाती है, लेकिन बालों की प्रकृति अलग अलग होती है, अतः आपके बाल कैसे हैं पहले ये जानना जरूरी है, बाद में उस प्रकार के बालों के लिए उपयुक्त शैंपू का चयन करना चाहिए। हालांकि शुरू में ये कठिन अवश्य है, लेकिन स्वस्थ बाल बरकरार रहें इसलिए ये जरूरी भी है। शैंपू का कार्य एक तो बालों को साफ करना होता है, दूसरे सिर की त्वचा की शैंपू सफाई करता है। सप्ताह में यदि एक बार भी सिर की मालिश अच्छी तरह से हो जाए तो सिरदर्द जुकाम नहीं होता है, बाल काले व घने रहते हैं, साथ ही बुद्धि भी तेज होती है। सिर की मालिश इच्छा अनुसार तेल से की जा सकती है। आप जो भी तेल सिर पर लगाते हो उसी तेल से मालिश करें। सिर की मालिश चाहे कितनी ही देर करें, लेकिन आवश्यकता अनुसार हल्के हाथों से करें। सिर में मालिश करने से बालों की जड़ों को शक्ति मिलती है, जिससे वे झड़ते नहीं है। जिन लोगों को रात में नींद नहीं आती है वे सिर की मालिश करें, अच्छी नींद आएगी। तेल की मालिश करते रहने से मस्तिष्क क्रियाशील रहता है और स्मरण शक्ति तेज होती है। यदि रात को सिर की मालिश की जाए तो दिन भर की थकावट दूर हो जाती है।
1: अभी आप सुन रहे थे स्वास्थ्य चर्चा। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओं, किसी विद्वान ने बहुत ही गहरी बात कही है, जैसे हमारे विचार होते हैं वैसी ही हमारी दुनिया बन जाती है। अगर हम सुबह उठकर सिर्फ ये सोचें कि आज का दिन कितना खराब होने वाला है, तो यकीन मानिए पूरे दिन हमें सिर्फ परेशानियां ही दिखेंगी। लेकिन अगर हम एक छोटी सी मुस्कान के साथ ये सोचें कि आज का दिन कुछ नया और अच्छा लेकर आएगा, तो मुश्किल काम भी आसान लगने लगते हैं। विचारों का सीधा संबंध हमारे जीने के ढंग से है। अच्छे विचार हमारे मन में शांति का दीपक जलाते हैं, तो वहीं बुरे या नकारात्मक विचार हमारे बने बनाए काम को भी बिगाड़ देते हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय प्रातः के 7:10 हो रहे हैं। लीजिए अब सुनिए खेती की बातें।
2: किसान भाइयों नमस्कार, खेती की बातें कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और आज खेती की बातें कार्यक्रम में विषय है अमरूद के फूल और फल गिरने से बचाव। तो भैया, अमरूद भारत का एक अत्यंत लोकप्रिय पौष्टिक और लाभकारी फल है। इसे गरीबों का सेब भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें विटामिन सी, कैल्शियम, फॉस्फोरस और रेशा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। भारत में उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान जैसे राज्यों में अमरूद की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। अमरूद के अच्छे उत्पादन के लिए पौधों में पर्याप्त फूल आना और फलों का सुरक्षित बने रहना आवश्यक है। लेकिन अक्सर किसान भाई इस समस्या से परेशान रहते हैं कि अमरूद के पेड़ों में फूल आने के बाद वे झड़ जाते हैं या छोटे छोटे फल समय से पहले गिरने लगते हैं। इससे उत्पादन कम हो जाता है और किसानों को आर्थिक हानि उठानी पड़ती है। इसलिए फूल और फल गिरने के कारणों का समझना अति आवश्यक है। तो फूल और फल गिरने के मुख्य कारण है भैया पोषक तत्वों की कमी। यदि पौधों को संतुलित मात्रा में खाद और उर्वरक नहीं मिलते तो पौधे कमजोर हो जाते हैं, और विशेष रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, जिंक और बोरान की कमी से फूल और फल गिरते हैं।

0: तो इसके प्रभाव से फल सूखने लगते हैं, छोटे फल पीले होकर गिर जाते हैं और पेड़ों की वृद्धि रुक जाती है। इसके साथ साथ पानी की अनियमितता भी इसका कारण बनती है और अधिक सिंचाई या बहुत कम पानी दोनों ही हानिकारक होते हैं। फूल आने और फल बनने के समय यदि मिट्टी में नमी की कमी हो जाए तो फल गिरने लगते हैं और तापमान और मौसम का प्रभाव भी इसको प्रभावित करता है। अत्यधिक तेज गर्मी, तेज हवा, ओलावृष्टि, पाला या लगातार वर्षा से भी फूल और फल गिर सकते हैं। कीट और रोगों के प्रभाव से भी हमारे फूल और फल गिर सकते हैं। फल मक्की, तनाछेदक, मिलीबग और फफूंदी जनित रोग पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे कुछ रोग भी हो जाते हैं। विल्ट रोग होता है, पत्ती धब्बा रोग होता है। इसके कारण पौधे कमजोर होकर फूल और फल गिरा देते हैं। और भैया, यदि परागण की कमी भी होती है तो इसका कारण ये भी होता है कि जिन बागों में परागण की प्रक्रिया कम होती है वहां पर भी फूल और फल बनने की प्रक्रिया सुचारू रूप से नहीं होती, क्योंकि उचित निषेचन नहीं हो पाता। अत्यधिक फल भार भी एक कारण होता है। जब हमारे पेड़ पर ज्यादा फल होते हैं तो पौधा सभी फलों को पर्याप्त पोषण नहीं दे पाता और कुछ फल स्वतः ही गिर जाते हैं। तो इसकी उपाय ये होता है कि भैया हम संतुलित खाद और उर्वरकों का प्रबंध करें। गोबर की सड़ी हुई खाद, वर्मी कंपोस्ट, नीम की खली, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश की मात्रा का संतुलित मात्रा में प्रयोग करें और सूक्ष्म पोषक तत्वों में जिंक सल्फेट, बोरान और मैग्नीशियम का छिड़काव करके फूल और फल मजबूत बनते हैं। इसके साथ साथ ही हम सिंचाई की व्यवस्था देखें कि गर्मियों में नियमित सिंचाई करें और ज्यादा जल भराव न होने दें। ड्रिप सिंचाई का उपयोग करें तो बहुत अच्छा रहता है और यदि मल्चिंग का प्रयोग करें तो भी अच्छा रहता है। इससे तापमान मिट्टी का सही रहता है, खरपतवार भी कम उगते हैं और जड़ों का विकास भी अच्छा होता है। और कुछ पौधे वृद्धि नियंत्रकों का उपयोग भी हमें करना चाहिए, जैसे प्रमुख हार्मोन है NAA यानी नेफ्थलीन एसिटिक एसिड और जिब्रेलिक एसिड। इसका वैज्ञानिक सलाह के अनुसार ही प्रयोग करना चाहिए। कुछ कीट और रोगों का भी हमें नियंत्रण करना चाहिए, इससे भी हमारे फल और फूल प्रभावित होते हैं। जैसे नीम के तेल का छिड़काव हमें करना चाहिए, फेरोमोन ट्रैप का प्रयोग करना चाहिए और ट्राइकोडर्मा का उपयोग अपनी मिट्टी में करना चाहिए। और भैया, उचित छटाई और कटाई, जैसे सूखी रोगग्रस्त शाखाओं की हम कटाई छटाई करते हैं और नई शाखाओं पर अच्छे फूल इससे लगते हैं। परागण को हम बढ़ावा दें, फूलों वाले पौधे लगाएं, बगीचे में मधुमक्खी पालन करें और कीटनाशकों का अत्यधिक प्रयोग न करें। साथ में समय पर खरपतवार नियंत्रण रखें। और भैया, ड्रिप सिंचाई, जैविक खेती, हाई डेंसिटी प्लांटेशन और भैया मृदा परीक्षण अवश्य कराएं। समय समय पर मिट्टी की जांच कराएं। और भैया, इससे निष्कर्ष निकलता है कि फल और फूल गिरने की समस्या पोषक तत्वों की कमी, पानी की अनियमितता, कीट और रोग और मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियां ही इसके लिए जिम्मेदार होती हैं। तो वैज्ञानिक खेती अपनाकर किसान भाई अमरूद की अच्छी गुणवत्ता और अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं, जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी और देश की फल उत्पादन क्षमता भी मजबूत होगी।
1: ये थी खेती की बातें। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर। प्रातः के 7:15 हो रहे हैं। लीजिए अब सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। श्रोताओं की फोन कॉल्स पर आधारित कार्यक्रम हेलो नजीबाबाद का सजीव प्रसारण होगा 9:30 पर। इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए श्रोता हमें कॉल कर सकते हैं हमारे इन फोन नंबर्स पर 9457078288 और 01341230105 पर। व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित फिल्म संगीत के कार्यक्रम रात के हम सफर का सजीव प्रसारण किया जाएगा 10:30 पर। गीत संध्या शाम 8:00 और एक ही फिल्म से कार्यक्रम पेश किया जाएगा 8:30 पर। सुगम संगीत के अंतर्गत शाम 7:32 पर सुनिएगा विविध कलाकारों के स्वर में नाथ। कानूनी सलाह क्रम में शाम 6:45 पर आप सुनेंगे एडवोकेट सत्यवीर त्यागी से एसके नौटियाल की पूर्व प्रसारित भेंटवार्ता, जिसका विषय रहेगा खाद्य सुरक्षा।

0: teníamos. किसान भाइयों की खेती और पशुपालन संबंधी समस्याओं पर आधारित फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान की सजीव प्रस्तुति होगी कृषिगत कार्यक्रम में शाम 6:05 पर। युवा साथी सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी शाम 5:15 पर। आकाशवाणी के 90 वर्षों के उपलक्ष में आकाशवाणी नजीबाबाद के श्रोताओं के अनुभव पर आधारित कार्यक्रम रिश्ता ये खास है आप सुनेंगे शाम 5:00। फिल्मी कव्वालियों का आनंद आप उठा सकते हैं 2:30 पर। लोक संगीत के कार्यक्रम लोकधारा के अंतर्गत अपराह्न 1:45 पर आप सुनेंगे भानुराम सुकोटी के गाए कुमाऊनी लोकगीत। और लोक संगीत के ही एक अन्य कार्यक्रम धरती गाती है के अंतर्गत प्रातः 9:25 पर हम आपको सुनवाएंगे नरेंद्र की गाई रागिनी। घर संसार कार्यक्रम की प्रस्तुति होगी 1:15 पर जिसके अंतर्गत मनीषा शर्मा की वार्ता का विषय रहेगा ग्रामीण परिवेश में तंबाकू का सेवन एक गंभीर और जटिल सामाजिक स्वास्थ्य समस्या। शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत 12:15 पर आप सुनेंगे गोपाल कृष्ण का विचित्र वीणा वादन आप पेश करेंगे राग भीम पलासी। प्रायोजित कार्यक्रम उमंग पूर्वाहन 11:30 पर और 12:00 आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बेड़ियां। प्रातः 10:30 पर जागरूक श्रोता कार्यक्रम में श्रोताओं से बातचीत का हमारा विषय रहेगा तंबाकू विकास के लिए खतरा। भारत में रेडियो प्रसारण के 90 वर्षों के उपलक्ष में विशेष कार्यक्रम सुहाना सफर की सजीव प्रस्तुति होगी 10:00। बात आसपास की यह कार्यक्रम पेश किया जाएगा 9:50 पर। सहारनपुर और हापुड़ जिलों की हलचल आप सुनेंगे 9:15 पर जिसे हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। और सूरज के साथ साथ अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 7:31 पर। यह थी संक्षिप्त रूपरेखा हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: बलिदान जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
2: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
1: बढ़ते हुए यह धुएं से है सब परेशान शुद्ध वायु दुर्लभ खतरे में है मनुष्य की जान कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं प्रदूषण के कारण बन जाएं श्वास लेने में तकलीफ आए आरोग्य को हानि पहुंचाए।
3: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति असाना। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों की पहचान कर देश से निकालने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। कहा, घुसपैठिए को देश से बाहर निकालना सरकार का संकल्प है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2-दिवसीय राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का किया शुभारंभ। कहा, किसानों की आजीविका को बेहतर बनाना और देशवासियों को पोषण युक्त आहार उपलब्ध कराना है सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस प्रशिक्षण व्यवस्था की उच्च स्तरीय समीक्षा की। कहा, प्रशिक्षण व्यवस्था में सुनिश्चित की जाए गुणवत्ता एकरूपता और पारदर्शिता। और तेज आंधी और गरज चमक के साथ हुई बारिश से लोगों को मिली भीषण गर्मी से राहत। मौसम विभाग ने प्रदेश में 31 मई तक आंधी बारिश और तेज हवाओं को लेकर जारी की चेतावनी।

0: और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश से प्रत्येक घुसपैठियों की पहचान कर निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। गुजरात के गांधीनगर के एक कार्यक्रम में उन्होंने इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्णय के बारे में चर्चा की।
1: घुसपैठियों को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्या का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
0: केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल नई दिल्ली में दो दिवसीय राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत के मेहनती किसानों के अथक प्रयासों के कारण देश में पर्याप्त खाद्य भंडार मौजूद है। श्री चौहान ने कहा कि देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, किसानों की आजीविका को बेहतर बनाना और देशवासियों को पोषण युक्त आहार उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
2: देश के किसानों के परिश्रम से, भारत सरकार की योजना प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और नीतियों के कारण, हमारे वैज्ञानिकों ने जो नई नई किस्में बीजों की बनाई उनके कारण, राज्यों ने भी अपने अपने राज्यों में मेहनत की। इस बार सारे रिकॉर्ड उत्पादन के हमने तोड़े हैं इस वर्ष में। इस साल कुल मिलाकर जो खाद्यान्न उत्पादन के आंकड़े आ रहे हैं 3,765.63 टन अनुमानित है, जो पिछले साल से 188,00,000 टन अधिक है।
0: केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि भी जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे।
2: 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। अब तक इस योजना के अंतर्गत केवल ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए। शहरी आवास योजना के मकान अलग है, उनको मिला के तो 4 करोड़ बहुत पहले पूरे हो चुके हैं। तो राज्यों को मैंने अपील की है कि समय पर लक्ष्य पूरा करें और जिनके पास जमीन नहीं उनको जमीन उपलब्ध कराने का काम करें।
0: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल नई दिल्ली स्थित केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE मुख्यालय में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में बोर्ड की कक्षा 12वीं की परीक्षाओं के मूल्यांकन और परिणाम के बाद की प्रक्रियाओं से संबंधित विषयों की समीक्षा की गई। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों को छात्रों की समस्याओं का समय पर पारदर्शी और छात्र हितैषी तरीके से समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री प्रधान ने विद्यार्थियों को आश्वस्त किया कि CBSE द्वारा शुरू की गई नई ऑन स्क्रीन मार्किंग OSM प्रणाली अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक प्रगतिशील साधन है।
3: बच्चों को ट्रांसपेरेंटली अपने मार्क के बारे में जानकारी मिले, उनको ट्रांसपेरेंटली स्कैन कॉपी के माध्यम से उनकी आंसर शीट उनके हाथ में आए, ये OSM की व्यवस्था है। पहली बार देश में CBSE ने इसको प्रयोग किया, उसमें कुछ विसंगति ध्यान में आ रही है, इसको मैं दायित्व लेता हूँ उसको इसे ठीक करा जाए। हम एक भी विद्यार्थी की अनआंसर्ड क्वारी को असमाधित नहीं छोड़ेंगे।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में पुलिस प्रशिक्षण व्यवस्था और उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम के कार्यों की समीक्षा के दौरान कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। पुलिस प्रशिक्षण व्यवस्था की कल उच्च स्तरीय समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिसिंग केवल कानून व्यवस्था तक सीमित नहीं है। आधुनिक तकनीक, संवेदनशील व्यवहार, संवाद कौशल, साइबर अपराधों की समझ और फॉरेंसिक दक्षता प्रभावी पुलिसिंग की बुनियादी आवश्यकता बन चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रशिक्षण व्यवस्था में गुणवत्ता, एकरूपता और पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए। उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम के कार्यों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिसकर्मियों की

0: में आज श्री राम मंदिर परिसर के परकोटे में बने मां भगवती मंदिर के शिखर पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति और प्रमुख संत साध्वी रितंभरा ध्वज फहराएंगी। कार्यक्रम को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। एक रिपोर्ट।
1: पहली बार राम मंदिर परिसर में 3000 से अधिक मातृ शक्तियों का एक साथ समागम होने जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और दुर्गा वाहिनी से जुड़ी महिला कार्यकर्ताओं समेत बड़ी संख्या में महिला श्रद्धालु समारोह में शामिल होंगी। सभी आमंत्रित मेहमानों को QR कोड युक्त प्रवेश पत्र जारी किए गए हैं और स्कैनिंग के बाद ही मंदिर परिसर में प्रवेश मिलेगा। शाम 6 बजे माँ भगवती मंदिर के शिखर पर साध्वी रितंभरा और साध्वी निरंजन ज्योति ध्वजारोहण करेंगी। कार्यक्रम को लेकर रामनगरी में उत्साह का माहौल है। तन्मय सोनी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET UG 2026 की परीक्षा की संशोधित तिथियां और प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। NTA के अनुसार परीक्षाएं अब 31 मई, 6 और 7 जून को आयोजित की जाएंगी। NTA ने बताया कि रविवार को परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं और इन्हें NTA की आधिकारिक वेबसाइट cuet.nta.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। प्रदेश के कई जिलों में बीती रात तेज आंधी और गरज चमक के साथ शुरू हुई बारिश से लोगों को फिलहाल भीषण गर्मी से राहत मिली है। कुछ जिलों से ओले पड़ने के भी समाचार मिले हैं। गोरखपुर और इसके आसपास के पूर्वी जिलों में कहीं कहीं रुक रुक कर बारिश हो रही है तो कुछ स्थानों पर आसमान में बादल छाए हुए हैं। बदायूं और बिजनौर सहित कुछ अन्य जिलों में बारिश के साथ साथ ओले पड़ने की सूचना है। फर्रुखाबाद, गाजियाबाद, हमीरपुर, अम्बेडकर नगर और कौशाम्बी सहित कई अन्य जिलों में भी तेज हवाओं और गरज चमक के साथ हुई बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। इस बीच मौसम विभाग ने प्रदेश में कई स्थानों पर 31 मई तक आंधी, बारिश और तेज हवाओं को लेकर चेतावनी जारी की है। इससे तापमान में 8 से 10 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने का अनुमान है। विभाग के अनुसार 1 जून से मौसम के शुष्क होने के संकेत हैं। मौसम विभाग ने खराब मौसम के दौरान लोगों को खुले स्थानों, पेड़ों और बिजली के खंभों के नीचे खड़े होने से बचने की सलाह भी दी है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों की पहचान कर देश से निकालने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। कहा, घुसपैठिए को देश से बाहर निकालना सरकार का संकल्प है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2 दिवसीय राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का किया शुभारंभ। कहा, किसानों की आजीविका को बेहतर बनाना और देशवासियों को पोषण युक्त आहार उपलब्ध कराना है सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस प्रशिक्षण व्यवस्था की उच्च स्तरीय समीक्षा की। कहा, प्रशिक्षण व्यवस्था में सुनिश्चित की जाए गुणवत्ता, एकरूपता और पारदर्शिता। और तेज आंधी और गरज चमक के साथ हुई बारिश से लोगों को मिली भीषण गर्मी से राहत। मौसम विभाग ने प्रदेश में 31 मई तक आंधी, बारिश और तेज हवाओं को लेकर जारी की चेतावनी। इसके साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
1: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा तीन आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
2: मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। प्रातः के 7:32 होने को हैं।

0: नमस्कार श्रोताओं, इस खूबसूरत सुबह के खूबसूरत कार्यक्रम सूरज के साथ साथ में आपका हार्दिक स्वागत है और मैं हूं आपका रेडियो साथी राजवीर सिंह। आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत मैं करना चाहूंगा इन दो पंक्तियों से। जैसा होगा पेट का हाल, वैसा ही बीतेगा पूरा साल। स्वस्थ पेट सुखी जीवन, यही है आज का सच्चा संकल्प। जी हाँ श्रोताओं, आज है 29 मई और आज पूरा विश्व पाचन दिवस मना रहा है। आज का यह पूरा दिन समर्पित है हमारे शरीर के इंजन यानी हमारे पेट को। हम अक्सर अपने चेहरे की सुंदरता और बालों और कपड़ों पर तो बहुत विशेष ध्यान देते हैं, लेकिन क्या हम कभी सोचते हैं कि जो खाना हम खाते हैं उसका हमारे शरीर के अंदर क्या होता है? श्रोताओं, हमारा पाचन तंत्र हमारे शरीर का असली इंजन होता है और जब इंजन अच्छा होगा तभी गाड़ी भी लंबी दौड़ेगी और यही बात हमारे शरीर पर भी लागू होती है। श्रोताओं, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम कहीं ना कहीं एक बड़ी गलती कर रहे हैं, जैसे सुबह उठते ही चाय, दोपहर को काम के चक्कर में पिज्ज़ा बर्गर जैसे फास्ट फूड और रात को देर से भारी खाना। क्या ये सही है? मैं तो कहूँगा बिल्कुल नहीं। आज ज़्यादातर लोग गैस, एसिडिटी, कब्ज या पेट दर्द से परेशान हैं। हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, दवाइयाँ खाते हैं, लेकिन अपनी आदतों को नहीं बदलते। अगर हम अपनी आदतों को बदल दें और अपने भोजन को संतुलित कर लें तो डॉक्टर्स के चक्कर काटने से हम बच सकते हैं। श्रोताओं, मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है, क्या आप कभी डीजल की गाड़ी में पेट्रोल डलवाते हैं या फिर पेट्रोल की गाड़ी में डीजल या फिर कोई अन्य ईंधन? नहीं ना, क्यों नहीं? क्योंकि आप जानते हैं कि अगर ऐसा किया तो आपकी गाड़ी का इंजन खराब हो जाएगा। लेकिन ये तो हमारा शरीर है, अगर इसका इंजन यानी हमारा पाचन तंत्र ही खराब हो जाएगा तो फिर क्या होगा? इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने पेट का विशेष ध्यान रखें और इसके लिए ज़रूरी है उचित और संतुलित भोजन। वो क्या हो सकता है, चलिए आपको बताने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि पानी से दोस्ती कर लीजिए। पानी से दोस्ती का मेरा मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। पानी हमारे शरीर के कचरे को बाहर निकालता है। दूसरी बात यह है कि हरे रंग से प्यार कर लीजिए। यहाँ मेरा मतलब है कि हरी सब्जियाँ, ताज़े फल, ग्रीन सलाद जैसी चीज़ों को अपने भोजन का हिस्सा बनाएं। इनमें फाइबर की मात्रा ज़्यादा होती है जो पेट को दुरुस्त रखता है। एक और बात, हमारे बुजुर्ग हमेशा से कहते आए हैं कि भोजन को इतना चबाओ कि मुंह में वो पानी बन जाए, इससे पेट का काम आसान हो जाता है। मैदा और पैकेट वाली चीज़ों से कर लीजिए तौबा। चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स और ज़्यादा तली भुनी चीज़ें हमारे पाचन तंत्र की दुश्मन होती हैं, इनसे दूरी बनाकर रखें। और इन सब के साथ साथ एक बात और ध्यान रखें कि रात का खाना खाने के बाद तुरंत बेड पर ना जाएं, कम से कम 15 से 20 मिनट तो ज़रूर टहलें। आज विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस मनाने का उद्देश्य भी यही है कि हम अपने पेट, अपने पाचन तंत्र के प्रति जागरूक रहें और पौष्टिक आहार को अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं ताकि आप स्वस्थ जीवन जी सकें। श्रोताओं, बातें तो बहुत सारी आपसे करनी है, लेकिन यहाँ पर ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुँचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।
3: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण

0: एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: इस ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी श्रोताओं का कार्यक्रम सूरज के साथ साथ में। अमन की राह पर जो कदम बढ़ाते हैं वही नफरत के अंधेरों में दिए जलाते हैं। मिले सुकून हर एक दिल को इस जहां में, सच्चे इंसान तो बस यही चाहत दिल में बसाते हैं। जहां श्रोताओं, आज का दिन बहुत खास है। आज हम मना रहे हैं संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस। श्रोताओं, ये दिन उन वीर पुरुषों और महिलाओं को समर्पित होता है जो अपने घर और परिवार से दूर दुनिया के सबसे खतरनाक इलाकों में शांति बनाए रखने के लिए तैनात हैं। इन्हें हम ब्लू हेलमेट्स भी कहते हैं, क्योंकि ये सैनिक संयुक्त राष्ट्र का चमकीला नीला हेलमेट या फिर टोपी पहनते हैं जो कि शांति और सुरक्षा का प्रतीक है। पहला संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन साल 1948 में शुरू हुआ था और तब से लेकर आज तक इन सैनिकों ने लाखों लोगों की जान बचाई है, चाहे युद्ध क्षेत्र हो या फिर दंगों से प्रभावित इलाका। ये सैनिक वहाँ उम्मीद की किरण बनकर पहुँचते हैं। और श्रोताओं, भारत के लिए तो ये और भी गर्व की बात है। भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा शांति सैनिक भेजने वाले देशों में से एक है। हमारी सेना और पुलिस के जवानों ने दुनिया के कोने कोने में तिरंगे के साथ शांति का परचम भी लहराया है। इनमें हमारी महिला शांति सैनिकों की भूमिका भी बेमिसाल है। श्रोताओं, शांति की राह इतनी आसान भी नहीं होती। दूसरे देशों में अमन चैन बहाल करने की कोशिश में अब तक हजारों शांति सैनिकों ने अपनी जान गंवाई है। उनके इस जज्बे के लिए चंद लाइनें याद आ रही हैं। लहू देकर जिन्होंने अमन की जमी सजाई है, उन्होंने ही इस दुनिया में इंसानियत बचाई है। सलाम है उन वीरों की शहादत को हर पल, जिन्होंने नफरत की आग में शांति की अलख जगाई है। तो श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम उन सभी बहादुर सैनिकों को दिल से सैल्यूट करते हैं जो अपनी जान की परवाह किए बगैर दुनिया को एक बेहतर और सुरक्षित जगह बना रहे हैं। और हाँ श्रोताओं, याद रखिए, शांति की शुरुआत सदा खुद से होती है। तो आइए हम सब भी अपने आसपास प्यार और भाईचारे का माहौल बनाएं।
2: नफरत

0: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं?
1: तो इंतजार किस बात का,
0: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
1: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें।
0: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
1: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8865845809।
0: और हमारा ईमेल आईडी है
1: akashwaninajibabad@gmail.com।
0: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन
1: आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
2: कार्यक्रम सूरज के साथ साथ आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। श्रोताओं, आज 29 मई है और आज की तिथि को हम एक और महत्वपूर्ण दिवस के रूप में मनाते हैं और वो है इंटरनेशनल एवरेस्ट डे। हर साल 29 मई को दुनिया भर के ट्रैकर्स, पर्वतारोही और साहसी लोग अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस मनाते हैं। आज से ठीक 73 साल पहले एक कमाल हुआ था जब 1953 में दो जाबाज लोगों एडमंड हिलेरी और तेजनिंग नोर्गे ने पहली बार माउंट एवरेस्ट, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, उस पर कदम रखा था। इसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। यहाँ हवा में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है और ठंड इतनी कि खून भी नसों में जम जाए, लेकिन फिर भी हर साल सैकड़ों पर्वतारोही इसे फतेह करने जाते हैं। श्रोताओं, माउंट एवरेस्ट सिर्फ एक पहाड़ नहीं है बल्कि इंसानी जज्बे की एक परीक्षा भी है। जब एडमंड हिलेरी और तेजनिंग नॉर्वे ने पहली बार एवरेस्ट पर कदम रखा था तो उन्होंने ये साबित कर दिखाया था कि इंसान चाहे तो आसमान को भी छू सकता है। आज का दिन उनकी हिम्मत को सलाम करने का दिन है। भारत का नाम भी इस पहाड़ से गहराई से जुड़ा हुआ है। श्रोताओं, हमारे देश की पर्वतारोही बछेंद्री पाल ने साल 1984 में एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया था और वो ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला थी। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सपने देखना कभी बंद नहीं करना चाहिए। श्रोताओं, हम सबके जीवन में भी एक माउंट एवरेस्ट होता है, कोई बड़ी मुश्किल या कोई बड़ा सपना। आज का दिन हमें याद दिलाता है कि कोई भी पहाड़ इतना ऊंचा नहीं होता जिसे पार ना किया जा सके, बस जरूरत है तो थामने की, हिम्मत की और एक साहसी कदम की। तो श्रोताओं, आज के इस खास दिन से हमें ये भी सीख मिलती है कि जब मन में इच्छा शक्ति हो, दृढ़ संकल्प हो, हौसलों में साहस हो और दिल में जुनून हो,

0: तो दुनिया का कोई भी काम ऐसा नहीं जिसे पूरा ना किया जा सके। बातें भी कुछ और भी आपसे होंगी, लेकिन यहाँ पर ले लेते हैं ये एक कॉमर्शियल ब्रेक।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सूरज के साथ साथ आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। तो श्रोताओं, चलिए अब रुख करते हैं आज की तिथि विशेष की ओर और जानने का प्रयास करते हैं कि आज की तारीख क्यों है खास। आज की तिथि को सन 1953 में एडमंड हिलेरी और तेजनिंग नॉर्वे ने पहली बार एवरेस्ट की चोटी फतेह की थी। सन 1919 में आज की तिथि को मशहूर वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन का एक बड़ा सिद्धांत सच साबित हुआ था। एक सूर्य के दौरान उनकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को सही पाया गया था। इस घटना ने विज्ञान की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया था। सन 2004 में म्यांमार में चक्रवाती तूफान से 140 लोगों की जान चली गई थी और इसी दिन पाकिस्तान ने परमाणु वैज्ञानिक अब्दुल कादिर खान पर लगाए गए प्रतिबंधों में ढील दे दी थी। आज की तिथि को सन 2008 में नेपाली सरकार ने राजतंत्र का अंत कर गणतंत्र की घोषणा करते हुए शाही महलों सहित देश के सभी भागों से राजतंत्र के सभी चिन्ह हटाते हुए राष्ट्रध्वज को मान्यता दी थी। सन 2010 में भारत की तत्कालीन राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल ने हेनान प्रांत के लियोयांग में पहली सदी के प्राचीन श्वेताश व्हाइट हार्स मंदिर परिसर में भारतीय शैली से निर्मित एक बांध मंदिर का लोकार्पण किया था। भारत की ओर से बनाए गए इस मंदिर पर करीब 18 करोड़ रुपए की लागत आई थी और इसके निर्माण में 3 वर्ष लगे थे। चलिए बात करते हैं भारत के उन प्रसिद्ध लोगों के बारे में जिनकी आज जन्मतिथि है। रामानंद चटर्जी पत्रकारिता जगत के एक पुरोगामी शख्सियत थे। उनका जन्म आज की तिथि को सन 1865 में हुआ था। वे कलकत्ता से प्रकाशित पत्रिका मॉडर्न रिव्यू के संस्थापक, संपादक और मालिक थे। उन्हें भारतीय पत्रकारिता का जनक माना जाता है। किराना घराने की हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका हीराबाई बरोदेकर का जन्म भी 29 मई को ही सन 1905 में हुआ था। उन्हें कला के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा 1970 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। हिंदी के जाने माने निबंधकार कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का जन्म भी आज की तिथि को सन 1906 में हुआ था। राजनीतिक एवं सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने के कारण उन्हें कई बार जेल की यात्रा भी करनी पड़ी थी। भारत के प्रसिद्ध व्यंग्य कवि हुल्लड़ मुरादाबादी का जन्म भी आज की तिथि को सन 1942 में हुआ था। एक व्यंग्यकार के रूप में उन्होंने बहुत प्रसिद्धि पाई। और आज पुण्यतिथि है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री एवं किसानों के मसीहा कहे जाने वाले चौधरी चरण सिंह की। चौधरी चरण सिंह किसानों की आवाज़ बुलंद करने वाले प्रखर नेता माने जाते थे। इसके अलावा वे 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। और आज पुण्यतिथि है प्रसिद्ध भारतीय गीतकार और लेखक योगेश की। और आज पुण्यतिथि है पृथ्वीराज कपूर की, जिन्हें हिंदी फिल्म और रंगमंच अभिनय के इतिहास पुरुष के रूप में जाना जाता है। तो ये तो हुई बात तिथि विशेष की, और अब एक नज़र डाल लेते हैं आज के अखबारों की कुछ खास सुर्खियों पर भी। सबसे पहले ये खबर है हिंदुस्तान से। हिंदुस्तान लिखता है, सिद्धरमैया ने मुख्यमंत्री पद से दिया इस्तीफा, डीके शिवकुमार को कर्नाटक की कमान। हिंदुस्तान के हवाले से ही यह अगली सुर्खी है, अमेरिकी हमले का जवाब ईरान ने कुवैत पर ड्रोन दागे, डोनाल्ड ट्रंप ने ओमान को उड़ाने की दी धमकी। यह खबर भी हिंदुस्तान के हवाले से है, गांधीनगर में बोले गृहमंत्री, अपनी मर्जी से जाने पर कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, अवैध प्रवासी मर्जी से चले जाएं। दैनिक जागरण लिखता है, प्रधान ने ली सीबीआई ओएसएम मूल्यांकन गड़बड़ियों की जिम्मेदारी, शिक्षा मंत्री ने राहुल गांधी को दी नसीहत, छात्रों के हित में राजनीति करने से बाज आएं। जागरण के हवाले से ही अगली खबर है, चक्रवात ने रोकी मानसून की रफ्तार, अब 3 से 4 जून के बीच केरलम में दस्तक दे सकता है मानसून। पद्मश्री से सम्मानित शायर का निधन, यादों के उजाले छोड़ गए बशीर बद्र, ये खबर है अमर उजाला के हवाले से। नीट यूजी पर इस बार फौजी कवच, पेपर लीक से हुई किरकिरी के बाद प्रश्न पत्र की सुरक्षा कर सकती है सेना, रक्षा मंत्री राजनाथ के नेतृत्व में तैयार हो रहा विशेष तंत्र, पीएम मोदी कर रहे हैं निगरानी, ये खबर है अमर उजाला के हवाले से। और अमर उजाला लिखता है, यूपी समेत 15 राज्यों में आज से बारिश का अलर्ट, 3 दिन गर्मी से मिलेगी राहत, NCR में बदला मौसम, 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। और 2027 तक 13 मीटर नीचे जा सकता है भूजल, MNNIT के शोध में हुआ खुलासा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के यमुना कृष्णी दोआब क्षेत्र में तेजी से घट रहा है पानी। तो ये थी आज के अखबारों की कुछ खास सुर्खियां, और अब चलते चलते ये खूबसूरत सा गीत आप सभी के लिए।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सूरज के साथ साथ। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 8 बज रहे हैं, अब आप समाचार सुनेंगे।
1: छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, कृत्रिम जनसांख्यिकीय बदलावों पर केंद्र की उच्च स्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई का आह्वान किया, कहा आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं हो सकते। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और त्रिपुरा के लिए प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए। एयर इंडिया ने पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच इसराइल के लिए अपनी उड़ानें जुलाई के अंत तक स्थगित की। और आईपीएल क्रिकेट में आज न्यू चंडीगढ़ में दूसरे क्वालिफायर में राजस्थान रॉयल्स का सामना गुजरात टाइटंस से। और अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अवैध घुसपैठ और अन्य अस्वाभाविक कारणों से होने वाले कृत्रिम जनसांख्यिकीय बदलावों की जांच के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी। गांधीनगर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नावलेकर की अध्यक्षता वाली समिति एक वर्ष में अपनी रिपोर्ट देगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हर घुसपैठिए की पहचान कर उसे देश के बाहर निकालने के लिए प्रतिबद्ध है।
4: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारण और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
3: गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर तृणमूल कांग्रेस सरकार की आलोचना की और कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद स्थिति बदली है। उन्होंने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सराहना करते हुए कहा कि सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 7 दिनों में 600 हेक्टेयर जमीन बीएसएफ को सौंप दी गई।

0: ने डिटेंशन सेंटर बनाए हैं, मगर हम सब लोग चाहते हैं कि जो घुसपैठ कर अवैध तरीके से आए हैं वो अपने आप जहां से आए हैं वहां वापिस चले जाए। अगर वो अपने आप चले जाते हैं तो बंगाल सरकार भी उन पर कोई केस नहीं करेगी, जाने के लिए उनकी सहायता भी करेगी।
1: गृह मंत्री अमित शाह आज अपने गुजरात दौरे के दूसरे दिन कच्छ के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हरामी नाला और खाड़ी क्षेत्रों का दौरा करेंगे। ये क्षेत्र सामरिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील माना जाता है। इस दौरान गृह मंत्री सीमा सुरक्षा बल के सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा करेंगे और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सीमा सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। श्री शाह सीमा चौकी G7 का उद्घाटन करेंगे और BSF के जवानों से मुलाकात करेंगे। श्री अमित शाह का पिछले 6 महीनों में कच्छ का ये दूसरा दौरा है। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। मॉस्को में आयोजित बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि वे आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले लोगों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे।
2: आतंकवाद अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर खतरों में से एक है। राष्ट्रपति पुतिन ने हाल ही में इसे बहुत ही प्रभावशाली ढंग से रेखांकित किया है। उन्होंने महसूस किया है कि एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सभी अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञों को ध्यान देने की जरूरत है। ये मानवता के सभी मूल्यों पर प्रहार करता है। भारत खुद ही इस प्रायोजित आतंकवाद का शिकार रहा है। अप्रैल 2025 में पूरी दुनिया ने जम्मू कश्मीर में 26 निर्दोष नागरिकों की जघन्य हत्या देखी है।
1: श्री डोभाल ने पश्चिम एशिया की स्थिति का उल्लेख करते हुए होर्मुज जलडमरू मध्य और लाल सागर जैसे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों में व्यापार की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने पर भी बल दिया। इस दौरान उन्होंने रूस के सुरक्षा परिषद सचिव सर्गेई शोइगू से भी मुलाकात की। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और त्रिपुरा के लिए नए प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति की है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पूर्वी दिल्ली के सांसद और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा को पार्टी का दिल्ली इकाई अध्यक्ष नियुक्त किया है। डॉ अर्चना गुप्ता को हरियाणा भाजपा अध्यक्ष और श्री केवल सिंह ढिल्लो को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री अभिषेक देवराय को त्रिपुरा भाजपा अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इन नियुक्तियों के साथ ही श्री नवीन ने राज्यों और राष्ट्रीय स्तर पर नए पदाधिकारियों के चयन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केरलम में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हारलेकर आज विधानसभा को संबोधित करेंगे। ये 10 वर्षों बाद केरलम में नई यूडीएफ सरकार का पहला नीति संबोधन है। राज्यपाल के संबोधन के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी जाएगी। सदन राज्यपाल के संबोधन पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए 1 जून को एकत्रित होगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कल त्रिशा शर्मा हत्या मामले में भोपाल से गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया है। गिरिबाला त्रिशा की सास और सेवानिवृत्त जिला और सत्र न्यायाधीश हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: भोपाल में एक्ट्रेस त्रिशा शर्मा की मौत के मामले में सीबीआई ने कल रिटायर्ड जज और त्रिशा की सास गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया। करीब 7 घंटे की पूछताछ के बाद सीबीआई ने ये कार्रवाई की है। आज उन्हें सीबीआई कोर्ट में पेश किया जाएगा। गिरफ्तारी से एक

0: दिन पहले मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने गिरिवाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी थी। कोर्ट का कहना था कि मामले की गंभीरता और सबूतों को देखते हुए उन्हें राहत नहीं दी जा सकती। 12 मई की रात भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में त्रिशा की संदिग्ध हालत में मौत हुई थी। ससुराल पक्ष इसे आत्महत्या बता रहा है, जबकि मायके वालों ने पति और ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
1: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कल प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे।
2: प्रधानमंत्री जी का संकल्प है हर गरीब को पक्का मकान मिले, पक्का आवास मिले, और उसके लिए 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वे आज बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के 45 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति दावटगेरे में यूनिवर्सिटी बीडीटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के प्लेटिनम जुबली समारोह में भाग लेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। आज दौरे के दूसरे दिन वे विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। दौरे के पहले दिन देहरादून स्थित पार्टी कार्यालय में राज्य मंत्री समूह और कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष ने की। पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच एयर इंडिया ने जुलाई के अंत तक इसराइल के लिए अपनी उड़ानों की निलंबन सीमा को बढ़ा दिया है। इससे पहले एयरलाइन ने जून के अंत तक तेल अवीव दिल्ली हवाई मार्ग पर उड़ान परिचालनों को रद्द कर दिया था। एयर इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र की मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण एयरलाइंस को महंगे ईंधन और हवाई क्षेत्र प्रतिबंधों जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे परिचालन लागत बढ़ गई है। उधर उड़ानें बंद होने से इसराइल में रह रहे 40,000 से अधिक भारतीयों की चिंता बढ़ गई है। सीमित उड़ान विकल्पों के कारण यात्रा खर्च भी काफी बढ़ गया है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने अमरीकी हवाई अड्डे पर हमला किया है। ये हमला उस समय हुआ जब अमरीका ने ईरानी ड्रोन मार गिराए और दक्षिणी ईरान के बंदर अब्बास में एक सैन्य ठिकाने पर हमला किया। पिछले 3 दिनों में ये दूसरी बार है जब अमरीका ने ईरान पर कार्रवाई की है। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। विजेता टीम रविवार को अहमदाबाद में फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से मुकाबला खेलेगी। राजस्थान रॉयल्स ने एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद को हराकर दूसरे क्वालिफायर में जगह बनाई, जबकि गुजरात टाइटंस पहले क्वालिफायर मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से हार का सामना करना पड़ा। 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला में भारतीय महिला टीम ने 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। पहले मैच में भारत ने इंग्लैंड को 38 रन से हरा दिया। ये मुकाबला चेम्सफोर्ड स्थित काउंटी क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने चेतावनी दी है कि अगले 5 वर्षों में वैश्विक तापमान रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच सकता है। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों में बादल गरजने और बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। कल रात राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों में हुई बारिश ने उमस और भीषण गर्मी से राहत दिलाई। विभाग के अनुसार आज बिहार, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में तेज हवाएं चलने का अनुमान है। छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और कर्नाटक में भी इसी तरह का मौसम रहेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है नवीन सक्सेना।
3: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। हिंदुस्तान ने सीबीएसई प्रकरण में शिक्षा मंत्री के बयान को प्रमुखता दी है, समस्याओं का समाधान करेंगे, दोषियों को नहीं बख्शेंगे। राजस्थान पत्रिका ने 21 जून को होने वाली नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों पर लिखा है, सरकार सख्त, पहली बार सेना पहुंचाएगी नीट के पेपर, हालांकि अभी इस पर अंतिम फैसला होना बाकी है। अमर उजाला ने कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन को अहमियत दी है, सिद्धारमैया ने छोड़ी मुख्यमंत्री की कुर्सी, कर्नाटक में अब शिवकुमार का होगा राज। दैनिक ट्रिब्यून ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को प्रथम पृष्ठ पर दिया है, ट्रॉमा केयर का अधिकार जीवन के अधिकार का अभिन्न अंग। न्यायालय ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को 3 महीने के भीतर आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए हेल्पलाइन नंबर 112 पर शुरू करने और एक प्रभावी शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित करने का निर्देश दिया है। जनसत्ता ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर सीमा सुरक्षा का विश्लेषण किया है। पत्र लिखता है, आज भी सीमा पर भारत को अक्सर घुसपैठ और आतंकी हमलों का सामना करना पड़ता है। इसकी बड़ी वजह सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था के तार और निगरानी तंत्र का अपेक्षित स्तर पर मजबूत न होना माना जाता है। दैनिक जागरण ने मौसम में हुए बदलाव पर लिखा है, तेज हवा और वर्षा ने तोड़ा गर्मी का गुरूर। नवभारत टाइम्स ने पद्मश्री से सम्मानित मशहूर शायर बशीर बद्र के निधन की खबर प्रथम पृष्ठ पर दी है, और फिर जिंदगी की शाम हो गई, थम गया अल्फाज का जादू, अलविदा बशीर बद्र। दैनिक भास्कर ने हार्वर्ड के एक शोध को विशेष खबर बनाया है, जीन क्लॉक बताएगी किस उम्र में थमेगी जिंदगी।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, कृत्रिम जनसांख्यिकीय बदलावों पर केंद्र की उच्च स्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई का आह्वान किया, कहा आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं हो सकते। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और त्रिपुरा के लिए प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए। एयर इंडिया ने पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच इसराइल के लिए अपनी उड़ानें जुलाई के अंत तक स्थगित की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sunil Verma. The headlines. Home Minister Amit Shah says Center's high-level committee on artificial demographic changes to also assess requirement of law to tackle the issue. National Security Advisor Ajit Doval calls for decisive action against terrorism, says there cannot be double standards in fight against the menace. BJP appoints party presidents for Punjab, Haryana, Delhi and Tripura. Air India extends suspension of its flights to Israel till July end amid continued geopolitical uncertainties in West Asia. And in IPL cricket, Rajasthan Royals to take on Gujarat Titans in all-important qualifier 2 in New Chandigarh this evening. Union Home Minister Amit Shah has said that the Centre's high-level committee on artificial demographic changes due to illegal immigration and other unnatural causes will also assess whether a law is required to tackle the issue. Mr. Shah said the committee will examine the causes behind the artificial demographic shifts that have occurred across the nation. It will deliberate on the remedial measures required and should the enactment of any specific legislation be necessary. The Home Minister was addressing a function in Gandhinagar yesterday after inaugurating and laying foundation stone of development projects worth 340 crore rupees. He said the committee, headed by retired Supreme Court Judge Justice Prakash Prabhakar Naulekar, would submit its report within a year.
5: Removing infiltrators from the country is a commitment of our government. And for this, Prime Minister Narendra Modi has decided to form a demographic change committee. This high-powered committee will examine the reason behind the demographic changes that have taken place across the country and look into the possible solutions. It will also consider where there is a need to bring any new law regarding this issue.
4: Union Home Minister Amit Shah will visit the strategically significant and sensitive Harami Nala and Creek areas along the international border in Kutch on the second day of his Gujarat tour today. During the visit, he will review the security arrangements made by the Border Security Force and discuss border security challenges with senior officials. The Home Minister will inaugurate Border Outpost G7 and interact with BSF personnel. National Security Advisor Ajit Doval called for decisive action against terrorism and said they cannot be double standards.

0: Siddaramaiah as Karnataka Chief Minister is the top news in many dailies. Siddaramaiah makes way for D.K. Shivakumar in Karnataka leadership shift, headlines Hindustan Times. Amid suspense on whether Chinese President Xi Jinping will attend the BRICS summit in India in September, the two nations held constructive talks on the LSE and border row, writes the Asian Age. To ensure foolproof conduct of the NEET UG again, the government is mulling to seek logistical support from the Indian Air Force to transport examination material, reports the Tribune. In its editorial piece titled Death Blow to Online Gaming, the Asian Age welcomes the Supreme Court's decision upholding GST on the full amount deposited by online gaming participants, seeing it as a strong step to curb betting and its damaging social consequences. The paper argues that the distinction between skill-based and chance-based betting is too blurred to be meaningful in practice and says the ruling could severely hit the industry. At the same time, it notes that retrospective taxation, though legally upheld, creates uncertainty for business. Dailies have paid tributes to poet Bashir Badr, who died yesterday. Bashir Badr, master Urdu poet of love and melancholy, passes away, headlines the Times of India. In the next 5 years, the earth is likely to surge again and again past the international climate threshold set as safe, according to new United Nations climate projections, reports the Statesman. And finally, in a landmark development for wildlife conservation in Himachal Pradesh, forest officials in Chamba have captured the first ever video evidence of brown bear in Siabehi Wildlife Sanctuary, reports the Tribune. And with that, it's back to you, Sunil.
1: Thank you, Renu. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Home Minister Amit Shah says Centre's high-level committee on artificial demographic changes to also assess requirements of law to tackle the issue. National Security Advisor Ajit Doval calls for decisive action against terrorism, says there cannot be double standards in fight against the menace. BJP appoints party presidents of Punjab, Haryana, Delhi and Tripura. Air India extends suspension of its flights to Israel till July end. Amid continued geopolitical uncertainties in West Asia, and in IPL cricket, Rajasthan Royals to take on Gujarat Titans in all-important qualifier 2 in New Chandigarh this evening. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: Akashwani se pesh hai khabarnama. आदाब, खबरनामे के साथ मैं नीतिका त्यागी. पहले इस वक्त की खास खास खबरें. वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि मसनूई आबादियाती तब्दीलियों से मुतालिक मरकज की आला सतही कमेटी इस मामले से निमटने के लिए कानूनी जरूरत का भी जायजा लेगी. कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल ने दहशतगर्दी के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई पर जोर दिया है. उन्होंने कहा कि इस लानत से निमटने के सिलसिले में दोहरा मेयार नहीं हो सकता. बीजेपी ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और त्रिपुरा के लिए पार्टी के सदर मुकर्रर किए हैं. मगरबी एशिया में जारी जुग्राफियाई और सियासी गैर यकीनी सूरत हाल के दरमियान एयर इंडिया ने जुलाई के आखिर तक इसराइल के लिए अपनी परवाजें मुअत्तल रखने में तौसी की है. और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम न्यू चंडीगढ़ में क्वालिफायर 2 के अहम मैच में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा. अब खबरें तफसील से. मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि मरकज की आला सतही कमेटी गैर कानूनी तौर पर मुल्क में दाखिल होने और दीगर गैर फितरी वजूहात के सबब मसनूई आबादियाती तब्दीलियों के सिलसिले में इस बात का भी जायजा लेगी कि क्या इस मामले से निमटने के लिए कानून की जरूरत है या नहीं. जनाब शाह ने कहा कि ये कमेटी मुल्क भर में हो रही मसनूई आबादियाती तब्दीलियों की वजूहात का भी जायजा लेगी. उन्होंने कहा कि वो जरूरी इस्लाही इकदाम पर तबादला ख्याल करेगी और इस बात का पता लगाएगी कि क्या किसी मखसूस कानून की अमलदारी लाजिमी है.
3: उस पेटे को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफिक चेंज कमेटी बनाने का निर्णय किया है. ये हाई पावर कमेटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी.
2: वजीरे दाखिला कल गांधीनगर में 340 करोड़ रुपए मालियत के तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करने और संगे बुनियाद रखने के बाद एक तकरीब से खिताब कर रहे थे. जनाब शाह ने मगरबी बंगाल

0: ने तृणमूल कांग्रेस हुकूमत की बांग्लादेश से दरअंदाजी के लिए नुक्ताचीनी की और दावा किया कि रियासत में असेंबली इंतखाबात के बाद सूरत हाल तब्दील हुई है।
1: भाजपा बंगाल सरकार ने डिटेंशन सेंटर बनाए हैं, मगर हम सब लोग चाहते हैं कि जो घुसपैठ कर अवैध तरीके से आए हैं वो अपने आप जहां से आए हैं वहां वापिस चले जाए। अगर वो अपने आप चले जाते हैं तो बंगाल सरकार भी उन पर कोई केस नहीं करेगी, जाने के लिए उनकी सहायता भी करेगी।
0: मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज गुजरात के अपने दौरे के दूसरे दिन कच्छ में बैनुल अक्वामी सरहद से मुत्तसिल इंतहाई अहमियत के हामिल और हसास हरामी नाला और दीगर छोटे नालों के इलाकों का दौरा करेंगे। अपने दौरे के दौरान वो सरहदी हिफाजती फोर्स की जानिब से किए गए सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लेंगे और सीनियर अहदेदारान के साथ सरहद पर सिक्योरिटी चैलेंजों के सिलसिले में तबादला ख्याल करेंगे। वजीर दाखिला बॉर्डर आउटपोस्ट G7 का इफ्तिताह करेंगे और BSF एहलकारों के साथ बातचीत करेंगे। वो OP टावर 1170 पर कंट्रोल रूम भी जाएंगे और हरामी नाला खित्ते का कश्ती में जायजा लेंगे। बाद में दिन में जनाब शाह भुज में BSF सेक्टर हेडक्वार्टर्स में सरहद से मुतालिक मामलात पर एक आला सतही मीटिंग की सदारत करेंगे। जनाब शाह का 6 माह के अंदर ये कच्छ का दूसरा दौरा है। उन्होंने गुज़श्ता बरस नवंबर में BSF के कौमी योम तासीस की तकरीबात में शिरकत के लिए भुज का दौरा किया था। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल ने दहशतगर्दी के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई पर जोर दिया है और कहा है कि इससे निमटने के सिलसिले में दोहरा मेयार नहीं हो सकता। रूस में बैनुल अक्वामी सिक्योरिटी से मुतालिक एक फोरम से खिताब करते हुए जनाब डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार मुमालिक को अपने इंतखाब का जायजा लेना होगा और ये फैसला करना होगा कि क्या वो दहशतगर्दी को शह देने वालों की मदद फराहम करना चाहते हैं या उससे निमटने के लिए फैसला कुन कार्रवाई करना चाहते हैं। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में मॉस्को में भारतीय सिफारतखाने ने कहा है कि जनाब डोभाल ने मॉस्को में बैनुल अक्वामी सिक्योरिटी के पहले फोरम और सलामती से मुतालिक उमूर के लिए आला नुमाइंदों की 14वीं मीटिंग में शिरकत की। इस मीटिंग की मेजबानी रूसी फेडरेशन के सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी ने की थी और इसमें कसीर कुतबी दुनिया में बैनुल अक्वामी सिक्योरिटी को लाहिक चैलेंजों और खतरात पर तबादला ख्याल किया गया। BJP ने पंजाब हरियाणा दिल्ली और त्रिपुरा के लिए पार्टी के नए सदर मुकर्रर किए हैं। BJP के कौमी सदर नितिन नवीन ने मशरकी दिल्ली के रुकने पार्लियामेंट और मरकजी वजीर हर्ष मल्होत्रा को पार्टी की दिल्ली इकाई का सदर मुकर्रर किया। डॉक्टर अर्चना गुप्ता को हरियाणा BJP की सरबरा और केवल सिंह ढिल्लों को पंजाब BJP का नया सदर मुकर्रर किया गया है। अभिषेक देब्रोय त्रिपुरा के BJP सदर होंगे। इन तकर्रियों के साथ जनाब नबीन ने मुल्की सतह के साथ साथ रियासतों में जिम्मेदारी निभाने वालों की नई टीम के इंतखाब का अमल शुरू कर दिया है। BJP के कौमी सदर नितिन नबीन उत्तराखंड के 3 रोजा दौरे पर हैं। आज अपने दौरे के दूसरे दिन वो मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे। पहले दिन देहरादून में पार्टी दफ्तर में कौमी सदर की जेर सदारत रियासती वुजरा ग्रुप और कोर कमेटी की एक मीटिंग हुई। इस मीटिंग में तंजीम की सतह पर तौसी, बूथ को मजबूत करने, अवाम से राबता मुहिम और आइंदा प्रोग्रामों के खाके पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। BJP के रियासती सदर महेंद्र भट्ट ने कहा है कि पार्टी लीडर साबिका इंतखाबात में जहां पार्टी को कम वोट मिले उन बूथ पर जाएंगे।
2: माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कोर कमेटी वाला मार्ग किया, मुख्य रूप से 2027 चुनाव में बूथ प्रबंधन पे आपका मार्गदर्शन रहा। जो बूथ हम लोकसभा चुनाव में और उसके पहले विधानसभा चुनाव में जो बूथ हम जीत नहीं पाए थे उन बूथों के लिए हमने टीम बनानी है। कोर कमेटी के हमारे सभी सदस्य है, 2-2 दिन के प्रवास पर उस विधानसभाओं के अंदर रहेंगे जहाँ उस विधानसभा की कोर कमेटी के साथ बैठक करेंगे।
0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में कबायली सिक्योरिटी फोरम के नुमाइंदों से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि कबायली बिरादरी के तई मजकूरा नुमाइंदों का जज्बा काबिले सताइश है। उन्होंने बताया कि मीटिंग के दौरान कबायली बिरादरियों की तरक्की और उन्हें बाइख्तियार बनाए जाने से मुतालिक मुख्तलिफ मौजूआत पर बामानी तबादला ख्याल किया गया। नायब सदर जमहूरिया CP राधाकृष्णन आज से कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 रोजा दौरे पर रहेंगे। वो आज कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के 45 साल मुकम्मल होने की आलमी तकरीब में शिरकत करेंगे। बाद अज़ां दिन में जनाब राधाकृष्णन कर्नाटक के देवांगिरी में BDT यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग कॉलेज की प्लेटिनम जुबली तकरीबात में शिरकत करेंगे। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है।

0: सनराइजर्स हैदराबाद को हरा दिया था। जेम्सफोर्ड के काउंटी क्रिकेट ग्राउंड में तीन मैचों पर मुश्तमिल T20 बैनुल अक्वामी क्रिकेट सीरीज के पहले मुकाबले में भारत ने इंग्लैंड को बहुत आसानी से 38 रन से शिकस्त देकर 1-0 की सबकत हासिल कर ली है। इंग्लैंड ने टॉस जीता और भारत ने मुकर्रा 20 ओवर्स में 7 विकेट के नुकसान पर 188 रन बनाए। दूसरा T20 बैनुल अक्वामी मैच कल भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे ब्रिस्टल में खेला जाएगा। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं शगुफ्ता यास्मीन।
1: शुक्रिया नितिका। ईद उल अजहा की तातील के पेश नजर आज राजधानी दिल्ली से उर्दू अखबारात मंजरे आम पर नहीं आ सके, लिहाजा आज के अंग्रेजी अखबारात की कुछ अहम शह सुर्खियां इस तरह से हैं। कर्नाटक के वजीर आला की हैसियत से सिद्धरमैया के मुस्ताफी होने की खबर को आज के बेशतर अखबारात ने अपने सफाए अव्वल पर नुमाया हैसियत से जगह दी है। हिंदुस्तान टाइम्स की शह सुर्खी है, कर्नाटक में इकतदार की मुंतकली में सिद्धरमैया ने डीके शिवकुमार के लिए राह हमवार की। सितंबर में भारत में होने वाली ब्रिक्स सरबराह कॉन्फ्रेंस में चीन के सदर शी जिनपिंग की शमूलियत पर पसोपेश के दरमियान भारत और चीन ने LAC और सरहद से मुतालिक तनाजे पर तामीरी बातचीत की। इस खबर को द एशियन एज ने अहम खबर के तौर पर शाया किया है। साहित्य अकादमी अवार्ड याफ्ता नामवर उर्दू शायर बशीर बद्र की वफात की खबर भी बेशतर अखबारात की नुमाया खबर के तौर पर मौजूद है। द टाइम्स ऑफ इंडिया की शह सुर्खी है, इश्क रुमान के सरकर्दा शायर बशीर बद्र का इंतकाल।
0: और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि मस्नूई आबादियाती तब्दीलियों से मुतालिक मरकज की आला सतही कमेटी इस मामले से निपटने के लिए कानूनी जरूरत का भी जायजा लेगी। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल ने दहशतगर्दी के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि इस लानत से निपटने के सिलसिले में दोहरा मियार नहीं हो सकता। बीजेपी ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और त्रिपुरा के लिए पार्टी के सदर मुकर्रर किए हैं। मगरबी एशिया में जारी जुग्राफियाई और सियासी गैर यकीनी सूरत हाल के दरमियान एयर इंडिया ने जुलाई के आखिर तक इसराइल के लिए अपनी परवाजें मुअत्तल रखने में तौसी की है। और IPL क्रिकेट में आज शाम क्वालिफायर 2 के अहम मैच में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटन से होगा। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।

मीडियम वेव 314.4 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय प्रातः के 8:45 हो रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गोल्डन हिट्स। श्रोताओं, जिंदगी क्या है? क्या सिर्फ सांस लेना या फिर दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाना? महानायक राज कपूर साहब ने हमें जीना सिखाया। उनकी फिल्म अनाड़ी का एक गीत दिल को छू लेता है। इस गीत को मुकेश जी ने अपनी जादू भरी आवाज दी। शैलेंद्र जी के लिखे बोल आज भी सच लगते हैं। तो फिर अपने गमों को थोड़ा भूल जाइए और दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढिए और सुनिए यह खूबसूरत सा गीत फिल्म अनाड़ी से।

वाह क्या बात है। राज कपूर साहब का ये गाना हमें जिंदगी जीने का असली मतलब सिखाता है। श्रोताओं, जिंदगी वही है जो दूसरों के काम आए, और जब बात मोहब्बत और दोस्ती की हो तो दिल खोल कर जीना चाहिए। जिंदगी के सफर में हम सफर मिलते हैं, जिंदगी के सफर में हम सफर मिलते हैं, ख्वाबों के चमन में गुल खिलते हैं, पर जो छू जाए रूह को हमेशा के लिए, ऐसे हसीन पल जिंदगी में कम मिलते हैं। तो इसी हसीन पल को याद करते हैं किशोरदा की आवाज़ में हमारे अगले गाने के साथ।

अभी आपने सुना किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म ब्लैकमेल का ये गीत। गीत लिखा राजेंद्र कृष्ण ने और इस गीत को संगीतबद्ध किया था कल्याण जी आनंद जी ने। श्रोताओं, अगले गीत से पहले ये जरूरी संदेश।

0: विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: हमारी जनगणना हमारा विकास।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
3: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गोल्डन हिट्स आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। श्रोताओं, सुख दुख तो धूप छांव की तरह होते हैं, पर असली जिंदा दिली तो हर पल मुस्कुराने में है। शिकवे बहुत है मगर शिकायत नहीं कोई, शिकवे बहुत है मगर शिकायत नहीं कोई, इस जिंदगी से अब गिला नहीं कोई। जो मिला उसे गले से लगा लिया हमने, हंसकर जीने जैसा दूसरा हुनर नहीं कोई। जी हाँ, देवानंद साहब के अंदाज वाला मोहम्मद रफ़ी साहब का गाया और साहिर लुधियानवी जी का लिखा ये सदाबहार नगमा लेकर आए हैं आपके लिए। चलिए सारे गमों को उड़ाते हैं धुएं में।

0: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
1: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस, सब हो गया।
2: बन गया बजट?
1: हाँ,
2: 5,000 बच गए।
1: तो नई साड़ी ले ले।
2: ना,
1: पिछले महीने तो ली थी।
2: एक और नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
1: बढ़िया,
2: जाओ भाई।
3: आरबीआई कहता है,
4: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
5: आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गोल्डन हिट्स आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से, और लीजिए पेश है कार्यक्रम का अगला गीत, जिसको हमने लिया है फिल्म सौदागर से। किशोर कुमार की आवाज़ है, गीत और संगीत है रविंद्र जैन का। हुस्न की तारीफ में क्या कहें जनाब, हर नज़र में छुपा एक नया ख्वाब है। दिल को बहलाने का हुनर जानते हैं हम, क्योंकि हर हसीन चीज़ का मैं तलबगार हूँ।

अभी आपने सुना किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म सौदागर का ये गीत। श्रोताओं, चलिए अब आपको सुनवाते हैं हिंदी सिनेमा के सुनहरे दौर का एक ऐसा नगमा जो आज भी हर दिल की धड़कन में बसता है। देवानंद और हेमा मालिनी पर फिल्माया गया यह सदाबहार गाना किशोर कुमार और उषा खन्ना की आवाज़ में है। बोल इंदिवर के हैं और संगीत है कल्याण जी आनंद जी का। उम्र भर का साथ न सही एक लम्हे की वफा तो दो, उम्र भर का साथ न सही एक लम्हे की वफा तो दो, झूठा ही सही अपनी नज़रों से मोहब्बत का पता तो दो।

जॉनी मेरा नाम। इस फिल्म में भी आप सुन रहे थे किशोर कुमार और उषा खन्ना को। इंदिवर का ये गीत और संगीत कल्याण जी आनंद जी का था। श्रोताओं, लीजिए अब पेश है कार्यक्रम का ये अंतिम गीत जो हमने लिया है फिल्म शोले से। आवाजें हैं किशोर कुमार और मन्ना डे की, आनंद बख्शी का ये गीत है और संगीत है आर डी बर्मन का।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गोल्डन हिट्स। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। प्रातः के 9:15 होने को हैं। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे जिले की हलचल, जिसे हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे।
1: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले

0: हलचल आज सुनिए सहारनपुर और हापुड़ जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं सहारनपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है विजयंत सैनी का।
1: पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सहारनपुर जनपद इन दिनों भीषण गर्मी से तप रहा है। गर्मी ने बीते 15 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। प्रशासन एवं नगर निगम ने राहत के कार्य तेज किए हैं। जिले में जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत मकानों की सूचीकरण कार्य के लिए कुल 1383 परगणक और 223 पर्यवेक्षकों की तैनाती की गई है। यह अभियान 20 जून 2026 तक चलाया जाएगा। प्रशासन ने नागरिकों को स्वयं गणना की सुविधा भी दी, जिसमें 7 मई से 21 मई तक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से लोग स्वयं अपनी जानकारी दर्ज कर सके। शिक्षा के क्षेत्र में भी सहारनपुर को बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। नीति आयोग की शिक्षा गुणवत्ता संबंधी राष्ट्रीय रिपोर्ट में जिले के आंगनबाड़ी आधारित शिक्षा मॉडल को सक्सेस स्टोरी के रूप में स्थान दिया गया है। मुख्य विकास अधिकारी सुमित राजेश महाजन के निर्देशन में ITC मिशन सुनहरा कल प्रथम संस्था एवं IGD के सहयोग से संचालित इस कार्यक्रम के तहत 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के भाषा विकास, सीखने की अक्षमता और सामाजिक व्यवहार को बेहतर बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। नीति आयोग द्वारा मिली इस सराहना से सहारनपुर की पहचान राष्ट्रीय स्तर पर और भी मजबूत हुई है। शिक्षा के क्षेत्र में जिले की बेटियों ने भी शानदार प्रदर्शन कर गौरव बढ़ाया है। CBSE 12वीं परीक्षा परिणाम में देवबंद की छात्रा नंदिनी कुशवाहा ने 98.8% अंक प्राप्त कर जिला टॉपर बनने का गौरव हासिल किया। नैना स्वामी 98.4% अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रही, जबकि सीमर ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए दूसरा स्थान प्राप्त किया। हर्षिता कपूर और श्रेया संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रही। मेधावियों के सम्मान में आयोजित समारोह में राज्य मंत्री जसवंत सैनी ने मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित करते हुए उन्हें अनुशासन और लक्ष्य निर्धारण के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। दूसरी ओर शिक्षा विभाग में RTI फीस प्रतिपूर्ति घोटाले को लेकर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। जिलाधिकारी अरविंद कुमार चौहान के निर्देश पर BDM पब्लिक स्कूल शांति नगर और भगवती देवी मेमोरियल पब्लिक स्कूल लेबर कॉलोनी के प्रबंधकों एवं प्रध्यानाध्यापिकाओं के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। जांच में फर्जी दावों के आधार पर सरकारी धनराशि प्राप्त करने की पुष्टि होने के बाद 32.61 लाख रुपए की वसूली के आदेश जारी किए गए हैं। साथ ही दोनों विद्यालयों की मान्यता समाप्त करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। प्रशासन की इस कार्यवाही से शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा है। भ्रष्टाचार के खिलाफ बीते दिनों जिले में बड़ी कार्रवाई हुई। देवबंद में एंटी करप्शन विजिलेंस टीम ने बिजली विभाग के SDO दिनेश कुमार मौर्य और संविदा कर्मी मोहम्मद शाकिर को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। शिकायतकर्ता मोहम्मद एहरार ने आरोप लगाया था कि आटा चक्की के लिए बिजली कनेक्शन और सर्वे सही कराने के बदले रिश्वत मांगी गई थी। शिकायत मिलने के बाद विजिलेंस टीम ने जाल बिछाकर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। उधर सहारनपुर की उप श्रम आयुक्त वंदना को गंभीर अनियमितताओं के आरोप में निलंबित किया गया। उन पर एक निजी अस्पताल निर्माण मामले में नियम विरुद्ध 18 लाख रुपए की वसूली का नोटिस जारी करने और श्रम बोर्ड को वित्तीय नुकसान पहुंचाने के आरोप लगे हैं। IMA अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण शर्मा की शिकायत पर हुई जांच में आरोप सही पाए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर विभागीय जाँच शुरू कर दी गई है। सहारनपुर में ईद उल अजहा का पर्व पूरे धार्मिक उत्साह और भाईचारे के साथ मनाया गया। शहर में जिले भर की ईदगाहों व मस्जिदों में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने नमाज अदा कर देश में अमन चैन, खुशहाली और तरक्की की दुआएं मांगी। बकरीद को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क रहा। DIG अभिषेक सिंह, DM अरविंद कुमार चौहान और SSP अभिनंदन ने सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जिलाधिकारी अरविंद कुमार चौहान ने बताया,
2: बहुत ही सही तरीके से यहाँ पे नमाज जो संपन्न हुई है, सभी लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से जहाँ पे उनके डिजाइनेटेड प्लेसेस थे वहाँ पे नमाज अदा की है और इस अवसर पे मैं सभी जनपद वासियों को बहुत ही शुभकामनाएं देता हूँ।
1: सहारनपुर में कैराना से सपा सांसद इकरा हसन समेत 32 लोगों पर थाना सदर बाजार में FIR दर्ज हुई। उन पर DIG कार्यालय के बाहर प्रदर्शन के दौरान सरकारी कार्य में बाधा डालकर चक्का जाम करने का आरोप है। मामला मोनू कश्यप हत्याकांड में जांच की मांग को लेकर प्रदर्शन से जुड़ा है।
0: सहारनपुर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं हापुड़ जिले की हलचल। आलेख और स्वर है रविंद्र कुमार का।
3: जनपद हापुड़ की तीर्थ नगरी गढ़मुक्तेश्वर ज्येष्ठ गंगा दशहरा पर्व पर श्रद्धालुओं ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। ज्येष्ठ मास में गंगा दशहरा पर्व का गंगा स्नान का पौराणिक महत्व है। श्रद्धालुओं का काफी जनसैलाब उमड़ा गंगा

0: दशमी के ही दिन माँ गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान सहित यूपी के कई जनपदों से श्रद्धालु गंगा स्नान करने के लिए पहुँचे। गंगा स्नान को लेकर हापुड़ जिला प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था सुचारू रखने के पुख्ता इंतजाम किए। सुरक्षा की दृष्टि से काफी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए नाव और गोताखोर भी लगाए गए। वहीं महिलाओं के लिए अलग से चेंजिंग रूम बनाए गए। जनपद हापुड़ में भीषण गर्मी का प्रकोप अधिक बढ़ने से इसका असर लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। ऐसे में बाहर निकलना काफी मुश्किल भरा है। हीट वेव का असर लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। लोगों को स्वस्थ रखने के लिए जनपद हापुड़ का स्वास्थ्य विभाग और जिला आपदा प्रबंधन विभाग पूरी तरह से सक्रिय है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा सलाह दी गई है कि तेज धूप से बचें, हो सके तो छाते या कपड़े का प्रयोग करें, पानी नियमित रूप से पिएं, सुबह 10 से 4 बजे तक किसान खेतों में काम करने से बचें, ताजा खाना और फलों का सेवन करें। अधिक गर्मी से हीट वेव के चलते स्वास्थ्य विभाग और आपदा प्रबंधन विभाग ने एडवाइजरी जारी की है कि आम जनता गर्मी से बचाव करे ताकि स्वास्थ्य पर कुप्रभाव न पड़ सके। जनपद हापुड़ में जिला अस्पताल में पहुँचने वाले रोगियों के सभी वार्डों में एसी लगाए गए हैं। इसके अलावा बाहर जगह जगह कूलर लगाए गए हैं। वातानुकूलित इमरजेंसी वार्ड बनाया गया है ताकि आवश्यकता पड़ने पर रोगियों को भर्ती किया जा सके। जिला अस्पताल की मुख्य अधीक्षक ने रोगियों के लिए ओआरएस के घोल के कैंपर की व्यवस्था की है। वहीं अस्पताल में आने वाले रोगियों को ओआरएस के पैकेट भी प्रदान किए जा रहे हैं। लोगों को हीट वेव से बचाने के लिए विशेष सावधानी बरतने और खान पान में विशेष सावधानी बरतने की सलाह भी दी जा रही है। जनपद हापुड़ में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों की याद में एक माह तक चलने वाले शहीद मेले का आयोजन किया जा रहा है। मेले में शहीदों को समर्पित सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। जनपद हापुड़ खाद्य विभाग की टीम ने बड़ा खुलासा किया है। जिले में लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करने वाले गोदाम पर बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में मिलावटी माल को नष्ट कराया। जनपद में एक गोदाम में भारी मात्रा में लाल सॉस बनाई जा रही थी, जो मिलावटी सामान से बनाई जा रही थी। इसके साथ ही सॉस को गाढ़ा करने के लिए कई प्रकार के केमिकल सामान और अन्य रंग इस्तेमाल किया जा रहा था। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम ने चंडी रोड मेरठ गेट पुलिस चौकी के पास एक दुकान पर छापा मारा, जहां टीम ने 30 पेटी सॉस को सीज कर दिया। इसमें 360 बोतल पैक थी। इसकी अनुमानित कीमत 22,680 रुपए बताई जा रही है। इसके अलावा 335 किलो सॉस को नष्ट कराया गया। इसकी अनुमानित कीमत करीब 16,450 रुपए बताई जा रही है। सॉस के नमूने लेकर जाँच के लिए भेजे गए हैं और आगे की कार्रवाई की जा रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ऊर्जा बचत की अपील को साकार करने एवं एकल वाहनों के प्रयोग के स्थान पर सार्वजनिक वाहनों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार पीपीपी मॉडल पर आधारित गांव-गांव तक बस सेवा प्रदान कर रही है। जनपद हापुड़ में इस मॉडल के तहत एक बस का अनुबंध करके गाँव तक बस सेवा शुरू की गई है, जिसका शुभारंभ रोडवेज डिपो से भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अवनीश त्यागी एवं सदर विधायक विजयपाल आरती ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में कार्य कर रही योगी आदित्यनाथ की सरकार गांव-गांव तक सुविधा उपलब्ध करा रही है। अब ऐसे गाँव में भी बस पहुँचेगी जिन गाँवों में आने जाने की कोई साधन नहीं थे। जनता और छात्र छात्राओं को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। यह योजना ग्रामीणों के लिए काफी लाभकारी साबित होगी। जनपद हापुड़ में पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत कोविड-19 महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों को भारत सरकार द्वारा 10 लाख रुपए 23 वर्ष पूर्ण होने पर देने का प्रावधान के तहत जिला अधिकारी ने चेक प्रदान किया। जनपद हापुड़ में उक्त योजना के अंतर्गत 11 बच्चों को चिन्हित किया गया।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।

मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय प्रातः के 9:25 हुए हैं। लोक संगीत के कार्यक्रम धरती गाती है के अंतर्गत लीजिए अब सुनिए नरेंद्र की गाई रागिणी।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: लोक संगीत का कार्यक्रम धरती गाती है, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से, और इसके अंतर्गत हम आपको सुनवा रहे हैं नरेंद्र की

लोक संगीत का कार्यक्रम धरती गाती है, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से, और इसके अंतर्गत हम आपको सुनवा रहे हैं नरेंद्र की गाई रागिणी।

लोक संगीत के कार्यक्रम धरती गाती है के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे नरेंद्र की गाई रागिणी। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज़ पर। प्रातः के 9:50 हो रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम बात आसपास की। वाचन स्वर एवं संकलन है विपिन राजपूत का।

0: नमस्कार श्रोताओं, बात आसपास की कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के कार्यक्रम में मैं विपिन राजपूत आपके साथ हूं। धरती से सोना उगाने वाले अन्नदाता किसानों की मेहनत और पसीने का सम्मान करने के लिए शासन द्वारा आपके क्षेत्र में गेहूं क्रय केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। अब किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सीधे गेहूं की खरीद की जा रही है, ताकि किसानों को उसकी फसल का उचित दाम मिल सके, जिसके लिए सभी किसान भाइयों को गेहूं बेचने के लिए अपने नजदीकी क्रय केंद्र पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है। गेहूं क्रय केंद्र पर जाते समय किसान भाइयों को आधार कार्ड, बैंक पासबुक, खतौनी एवं पंजीकरण पर्ची साथ अवश्य लेकर जाएं। ध्यान रखें, गेहूं साफ, सूखा और निर्धारित गुणवत्ता के अनुरूप होना चाहिए, जिससे खरीद प्रक्रिया सरल और तेज हो सके। सरकार द्वारा गेहूं का भुगतान सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजा जा रहा है, इससे पूरी व्यवस्था पारदर्शी बनी रहती है और किसानों को अपनी फसल का सुरक्षित भुगतान प्राप्त हो जाता है। गेहूं क्रय केंद्रों पर किसानों की सुविधा के लिए छाया, पेयजल और बैठने की उचित व्यवस्था तथा आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। किसान भाइयों, आपकी मेहनत ही देश की समृद्धि का आधार है, इसलिए समय पर अपना पंजीकरण कराएं, निर्धारित तिथि पर क्रय केंद्र पहुंचें और अपनी उपज का उचित मूल्य प्राप्त करें।
1: नजीबाबाद मंडी समिति स्थित राजकीय गेहूं क्रय केंद्र इंचार्ज लालचंद सिंह जी से बातचीत।
2: इस वर्ष गेहूं खरीद कब से शुरू हुई?
3: इस वर्ष गेहूं खरीद 30 मार्च 2026 से शुरू होकर के और 15 जून 2026 तक चलेगी। शासनादेश के अनुसार गेहूं खरीद की प्रक्रिया चालू है और निरंतर चल रही है। 15 जून तक गेहूं खरीद चलता रहेगा।
2: किसानों को गेहूं बेचने के लिए क्या प्रक्रिया अपनानी पड़ती है?
3: किसानों को गेहूं बेचने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की वेबसाइट fcs.up.gov.in पर जाकर के पंजीकरण कराना होता है। किसान के ओटीपी मोबाइल पे ओटीपी आता है, ओटीपी आने के बाद उसका हो जाता है। हमारे विभाग के जो क्रय केंद्र है उनके पोर्टल पे भी रजिस्ट्रेशन करने की सुविधा दी गई है सरकार के द्वारा।
2: सरकार द्वारा इस वर्ष गेहूं का समर्थन मूल्य कितना निर्धारित किया गया है?
3: सरकार द्वारा इस वर्ष 2585 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं का समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है।
2: किसानों को भुगतान कितने समय में किया जाता है?
3: किसानों को उनके

0: विक्रय किए गए गेहूं का भुगतान उनके आधार लिंक खाते में PFMS के माध्यम से 48 घंटे के अंदर लगभग भुगतान किया जाता है।
1: क्या क्रय केंद्र पर किसानों को किसी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ रहा है?
0: किसानों को क्रय केंद्र पर किसी प्रकार की समस्या नहीं हो रही है। शुरुआत में लस्टर लास और श्रीवेल्ड में छूट न होने के कारण कुछ किसानों का गेहूं जो बरसात से गिर गया था तो उसको खरीदने में परेशानी हो रही थी, परंतु सरकार ने बड़ी तत्परता के साथ उसको लस्टर लास में छूट दे दिया और श्रीवेल्ड में भी अच्छी खासी छूट दे दिया। इससे अब इस समय किसानों को गेहूं बेचने में कोई असुविधा नहीं हो रही है। किसान रोज गेहूं ला रहे हैं, तुरंत तौल के जा रहे हैं।
1: क्रय केंद्रों पर किसी प्रकार के बारदाना बोरे की समस्या बन रही है ऐसा सुनने में आया है, इस बारे में आप क्या कहेंगे?
0: क्रय केंद्रों पर शुरुआत में बारदाने की समस्या पीपी बारदानों की, पीपी बोरे जो आते हैं वो जंग होने के कारण ईरान से जो प्लास्टिक का दाना है वो समय से नहीं आ सका, जिससे हमारी प्लास्टिक कंपनियां जो बोरा बनाती हैं वो समय से बोरा प्रदान नहीं कर पाई। इसलिए सरकार ने सलूशन निकाल लिया बोरे का कि कोटेदारों से बोरे लेकर के पिछले वर्ष के जो PDS के बोरे हैं उनसे खरीद की जाए, तो समस्या बोरे की हल हो गई है। बोरे की कोई समस्या इस समय नहीं है खरीद में।
1: प्रतिदिन लगभग कितना गेहूं खरीदा जा रहा है?
0: प्रतिदिन आवक के अनुसार 250 से लेकर 300 क्विंटल खरीद हो जाती है। किसी दिन आवक कम भी होती है तो कम खरीद होती है।
1: केंद्र पर गेहूं की गुणवत्ता जांच कैसे की जाती है?
0: केंद्र पर गेहूं आने के बाद उस टाली में से गेहूं कई जगह से लेकर के 1 किलो के लगभग सैंपल लेकर के उसका जो है मॉइस्चर नापा जाता है। पहले मॉइस्चर नापने के बाद उसमें श्रीवेल्ड और लस्टर लास देखा जाता है। इसके बाद अगर धूल मिट्टी है तो हमारे पास डस्टर है, डस्टर से उसको साफ करा के किसान का तौल लिया जाता है।
1: किसानों के लिए केंद्र पर क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं?
0: किसानों को केंद्र पर बैठने के लिए कुर्सियां हैं, तखत हैं, मॉइस्चर मीटर है, एनालिसिस किट है, ईपॉप मशीन है, पेयजल की सुविधा है। सारी सुविधाएं जो है मंडियों की तरफ से मंडी के क्रय केंद्रों पर उपलब्ध कराई जा रही है। इलेक्ट्रॉनिक कांटा है।
1: अब तक कितने किसानों से गेहूं की खरीद की जा चुकी है?
0: अब तक लगभग 180 किसानों से लगभग 11,500 से भी अधिक क्विंटल गेहूं खरीदा जा चुका है।
1: किसानों के लिए आपका क्या संदेश है?
0: किसानों के लिए संदेश यही है कि सरकार की ये महत्वपूर्ण गेहूं खरीद योजना का लाभ उठाएं और क्रय केंद्रों पर किसी बिचौलिए को गेहूं न बेचें, क्रय केंद्र पर गेहूं ले आकर के समर्थन मूल्य का पूरा लाभ उठाएं। सरकार ने इसीलिए सब किसानों के हित के लिए ही ये सब योजनाएं लागू की है। मेरा यही संदेश है, किसान मंडी पे गेहूं अपना लाएं और समर्थन मूल्य का पूरा लाभ उठाएं।
1: धन्यवाद सर। खेतों में महीनों की मेहनत के बाद अब किसान अपनी सुनहरी फसल लेकर गेहूं क्रय केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। यहां किसानों की चहल पहल, ट्रैक्टर ट्रालियों की आवाजाही और तौल केंद्रों पर चल रही गतिविधियां किसान की मेहनत और उम्मीदों को दर्शाती हैं। आज हम बात करेंगे किसान भाइयों से और जानेंगे इस बार की फसल कैसी रही, सरकारी खरीद व्यवस्था से उन्हें कितना लाभ मिल रहा है। राजकीय गेहूं क्रय केंद्र पर गेहूं बेचने आए किसान भाइयों से बातचीत। आपका क्या नाम है और आप किस गांव के हैं और यहाँ किस कार्य से आए हैं?
2: मेरा नाम अंकित कुमार है, मैं बिजोरी गांव का रहने वाला हूँ और मैं यहाँ मंडी समिति स्थित गेहूं क्रय केंद्र पर गेहूं बेचने आया हूँ।
1: इस बार आपने कितनी जमीन में गेहूं की खेती की थी?
2: इस बार हमने लगभग 12 बीघे जमीन में गेहूं की फसल बोई थी। इस बार मौसम थोड़ा सा खराब होने के कारण हमारी फसल अच्छी नहीं हुई है।
1: आज आप कितना गेहूं बेचने आए हैं?
2: मैं लगभग 1 ट्राली गेहूं लेकर आया हूँ, लगभग 35-36 क्विंटल, जिसकी खरीद यहाँ सरकारी समर्थन मूल्य पर हो रही है।
1: गेहूं क्रय केंद्र पर व्यवस्था कैसी मिल रही है?
2: क्रय केंद्र पर वैसे तो ठीक व्यवस्था है, लेकिन मंडी समिति में आवारा पशु, बंदर वगैरह, इन चीजों की काफी समस्या आ रही है, जिससे हमें काफी समस्या का सामना करना पड़ा है। और अधिक भीड़ हो जाती है तो काफी इंतजार भी करना पड़ता है, जिससे हमारा समय काफी खराब हो जाता है।
1: क्या गेहूं क्रय केंद्र पर बैठने और ठंडे पानी की व्यवस्था भी की गई है?
2: हाँ, क्रय केंद्र पर ठंडे पानी और बैठने की व्यवस्था तो ठीक है, मगर जब ज्यादा भीड़ हो जाती है तो काफी समस्या का सामना भी करना पड़ता है कभी कभी।
1: आपका नाम क्या है और आप कहाँ से आए हैं?
3: मेरा नाम सोमपाल है और मैं यहाँ मंडी समिति में गेहूं बेचने आया हूँ।
1: क्या आपको केंद्र पर किसी प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़ता है?
3: अभी तक तो कोई बड़ी परेशानी नहीं हुई थी, मगर बीच में केंद्र पर बोरों की कमी के कारण थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन अब वह परेशानी दूर कर दी गई है।
1: क्या केंद्र पर आपको कर्मचारियों का सहयोग मिल रहा है?
3: हाँ, कर्मचारी किसानों का पूरा सहयोग कर रहे थे, मगर कभी कभी अधिक भीड़ हो जाने के कारण किसानों को गेहूं तुलवाने में अधिक समय तक का इंतजार करना पड़ता था, जिससे हमें घंटों तक इंतजार करना पड़ता है।
1: आपकी नजर में सरकारी क्रय केंद्र का सबसे बड़ा फायदा क्या है?
3: सरकारी क्रय केंद्र का सबसे बड़ा लाभ तो यही है कि किसान बिचौलियों से बच जाते हैं, किसान अपने सीधे गेहूं सरकार को बेच पाते हैं, जिससे उचित मूल्य मिल पाता है।
1: धन्यवाद। अन्नदाता हमारे देश की रीढ़ है और उनकी मेहनत से ही हमारे घरों तक अन्न पहुंचता है। ऐसे में जरूरी है कि किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य, पारदर्शी खरीद व्यवस्था और सभी आवश्यक सुविधाएं समय पर मिले। गेहूं क्रय केंद्र केवल खरीद का स्थान नहीं बल्कि किसानों के विश्वास और उनकी मेहनत का सम्मान भी है। उम्मीद है कि आज के इस कार्यक्रम से आपको गेहूं खरीद व्यवस्था से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां मिली होंगी और किसानों की आवाज को करीब से सुनने का अवसर भी मिला होगा। तो यह था हमारा आज का कार्यक्रम बात आसपास की, जिसमें हम बात कर रहे थे गेहूं क्रय केंद्र के संबंध में। इसी के साथ बात आसपास की कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। कल नए अंक के साथ आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। आप विपिन राजपूत को अनुमति दीजिए। धन्यवाद।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बात आसपास की। वाचन स्वर एवं संकलन था विपिन राजपूत का। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर। इस समय प्रातः के 10 बज रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है भारत में रेडियो प्रसारण के 90 वर्षों के उपलक्ष्य में विशेष कार्यक्रम सुहाना सफ़र।

0: सफर लंबा है पर मंजिल सुहानी है, हर मोड़ पे यादों की एक नई कहानी है।
1: निकल पड़े हैं आज एक नई मंजिल की ओर, सुहाना है सफर और साथ है एक सुनहरी भोर।
0: रेडियो प्रसारण के 90 साल के उपलक्ष्य में कार्यक्रम सुहाना सफर के आज के इस अंक में हमारे सभी श्रोताओं का स्वागत है और आज हमारे साथ इस सफर को और भी खुशनुमा बनाने के लिए मेरे यानी राजवीर सिंह के साथ स्टूडियोज में उपस्थित हैं।
1: जी हाँ श्रोताओ, मैं हूँ रविकांत वर्मा।
0: तो आप सभी को हमारी ओर से प्यार भरा
1: नमस्कार। और राजवीर जी, इस कार्यक्रम में आज हम वर्ष 2022 से जुड़ी आकाशवाणी की उन यादों पर नजर डालेंगे जिन्होंने रेडियो प्रसारण के इस 90 सालों के सफर में आकाशवाणी का भरपूर साथ दिया और देश के कोने कोने में ज्ञान और मनोरंजन के साथ साथ जागरूकता भी फैलाई।
0: जी बिल्कुल सही कहा रविकांत तुमने। आकाशवाणी के इतने लंबे सफर में ये काफिला इतना बढ़ता गया, श्रोता जुड़ते गए और आकाशवाणी आज सर्वोच्च शिखर तक पहुंच गया है। क्यों?
1: बिल्कुल।
0: और इतने वर्षों से आकाशवाणी अनवरत प्रमाणित सूचनाएं, ज्ञान और मनोरंजन साझा करता आ रहा है कि अब ये जनमानस के जीवन का एक अभिन्न अंग सा बन गया है। क्यों रविकांत जी?
1: हाँ बिल्कुल सही कहा।
0: और हम अपने श्रोताओं को बता दें कि 13 फरवरी सन 2022 को 11वां विश्व रेडियो दिवस मनाया गया था और इस वर्ष यूनेस्को द्वारा इस अवसर पर थीम थी आकाशवाणी और विश्वास।
1: आकाशवाणी और विश्वास, वास्तव में राजवीर जी कितनी वास्तविक थीम है ना ये।
0: जी बिल्कुल।
1: वाकई आम जनमानस का जो विश्वास और जुड़ाव अब तक आकाशवाणी से रहा है, आगे भी ऐसा विश्वास बना रहेगा।
0: जी बिल्कुल।
1: और इसी विश्वास के साथ आकाशवाणी ने अपने गौरवशाली 90 वर्ष पूरे किए हैं।
0: जी हाँ बिल्कुल रविकांत। और हम अपने श्रोताओं को बता दें कि इसी वर्ष भारत में प्रसार भारती ने अपने डिजिटल रेडियो DRM नेटवर्क को मजबूत किया जिससे श्रोताओं को बेहतर आवाज और अधिक चैनल मिलने लगे थे।
1: और राजवीर, पॉडकास्ट और रेडियो की बात करें तो इसी वर्ष यानी पारंपरिक रेडियो आकाशवाणी स्टेशंस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म और पॉडकास्ट की ओर तेजी से रुख किया था जिससे आकाशवाणी की पहुंच युवाओं तक और बढ़ी थी।
0: और रविकांत, अब समय हो चला है कि हम अपने श्रोताओं का कुछ जो है मनोरंजन भी करवा दें।
1: हाँ बिल्कुल।

0: तो आइए सुनवाते हैं वर्ष 2022 में रिलीज हुई सुपरहिट फिल्म लाल सिंह चड्ढा का ये गीत, जिसमें आवाजें हैं
1: अरिजीत सिंह और शिल्पा राव की।
0: जी हाँ, तो श्रोताओं लीजिएगा आनंद साल 2022 की फिल्म लाल सिंह चड्ढा के इस गीत का।

0: भाई राजवीर जी, ये वाला गीत तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा।
1: जी हाँ बिल्कुल, और मुझे भी बहुत पसंद आया
0: हाँ,
1: रविकांत जी।
0: खैर कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और हम अपने श्रोताओं को एक बार फिर से बता दें कि आप सुन रहे हैं रेडियो प्रसारण के 90 साल के उपलक्ष्य में कार्यक्रम
1: सुहाना
0: सुहाना सफर
1: सफर
0: का, आज का 2022 का ये प्यारा सा सफर।
1: जी।
0: और श्रोताओं, आकाशवाणी की लोकप्रियता को एक बात और प्रमाणित करती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात ने अक्टूबर 2022 को अपने 95 एपिसोड पूरे कर एक कीर्तिमान स्थापित कर दिया था,
1: जी
0: जो
1: बिल्कुल
0: इसकी लोकप्रियता को दर्शाता है और साथ ही ये भी बताता है कि उस वर्ष आकाशवाणी लोगों के लिए कितना महत्वपूर्ण था।
1: जी हाँ रविकांत, दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी अच्छी पहुंच के लिए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने इस वर्ष नए कम्युनिटी आकाशवाणी स्टेशनों की भी स्थापना की थी। क्यों? ताकि आकाशवाणी सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में इसका और विस्तार हो सके और श्रोताओं, वर्ष 2022 में ही कोरोना महामारी और सोशल मीडिया पर फैली फर्जी और झूठी खबरों के बीच आकाशवाणी ही एक ऐसा विश्वसनीय माध्यम था जिसे लोगों ने दुनिया का सबसे भरोसेमंद और सुलभ माध्यम माना, जो बिना इंटरनेट के भी आपदाओं में काम आता रहा।
0: ये बात तो बिल्कुल सही है कि उस वर्ष जब कोरोना महामारी अपनी चरम सीमा पर थी, लोग मर रहे थे,
1: जी बिल्कुल,
0: तब आकाशवाणी द्वारा लगातार कोरोना महामारी से बचाव के निर्देश दिए जा रहे थे,
1: जी
0: जिससे लोग अपना निरंतर बचाव भी कर रहे थे। और रेडियो द्वारा ये भी जानकारी लगातार दी जा रही थी कि निरंतर बचाव निर्देश, सही दवाइयाँ और सहयोग से कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या में कितनी कमी आ रही थी, जिससे देश में उम्मीद जग रही थी और लोग राहत की सांस भी ले रहे थे।
1: जी बिल्कुल रविकांत जी, आप बात आपने बिल्कुल सही बताई, क्योंकि आकाशवाणी एक ऐसा विश्वसनीय माध्यम है संचार का जिस पर लोग पूरी तरह से भरोसा करते हैं, और जब रेडियो पर लोग सुनते थे कि हाँ अब कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या में कमी आ रही है, तो उनको वास्तव में ये भी एक लगता था कि हाँ अब जो है कोरोना कंट्रोल हो रहा है, धीरे धीरे ये सब चीज़ें जो है घट जाएंगी। श्रोताओं, अब बात अगर खेल जगत की करें तो वर्ष 2022 खेल जगत के लिए बेहद रोमांचक, ऐतिहासिक और यादगार सालों में से एक रहा। इस साल न केवल क्रिकेट का जुनून देखने को मिला, बल्कि फुटबॉल, बैडमिंटन और एथलीट्स में भी ऐसे कीर्तिमान स्थापित हुए जिन्होंने इतिहास रच दिया। भारत के लिए भी ये बड़े गौरव की बात रही और आकाशवाणी तो हमारा साथी बना ही हुआ था। क्यों रविकांत?
0: राजवीर, बिल्कुल राजवीर, मुझे याद है कि जब आकाशवाणी ने बताया था कि इंग्लैंड के बर्मिंघम में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने भी अपना शानदार प्रदर्शन किया था। इन खेलों में भारत ने कुल 61 पदक, जिसमें 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23
1: कांस्य पदक भी
0: शामिल
1: थे। जी बिल्कुल,
0: इन पदकों को जीतकर भारत ने इस सूची में चौथा स्थान प्राप्त किया था।
1: जी हाँ, और
0: ये
1: ये पूरे देश के लिए भी
0: बड़े
1: वाकई बड़े गर्व की बात थी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप,
0: जिसे साझा कर रहा था हमारा आकाशवाणी। और अब राजवीर जी, जैसा कि हमारे श्रोता इंतजार कर रहे होंगे गीत संगीत का, तो क्यों ना सुनवा दिया जाए वर्ष 2022 में ही आई फिल्म
1: ब्रह्मास्त्र का एक प्यारा सा गीत हम अपने श्रोताओं को यहाँ पर सुनवाने जा रहे हैं अरिजीत सिंह की आवाज में, क्योंकि श्रोता बहुत देर से इंतजार में होंगे कि अब जरूर मनोरंजन भी होना चाहिए। तो लीजिए, पेश है ये खूबसूरत सा गीत अरिजीत सिंह की आवाज में।

0: जी हाँ भाई रविकांत, बातें तो हमने बहुत सारी कर ली हैं कार्यक्रम में, और गीत संगीत का आनंद भी हमारे श्रोता ले ही रहे हैं,
1: हाँ
0: है
1: बिल्कुल,
0: ना?
1: क्यों नहीं,
0: तो क्यों ना अब इस वर्ष कुछ राजनीतिक हलचलों पर भी एक नजर डाल ली जाए।
1: बिल्कुल सही कहा, क्यों नहीं राजवीर जी।
0: तो रविकांत, इसी वर्ष द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी थी, और जगदीप धनखड़ को देश का नया उपराष्ट्रपति चुना गया था,
1: और
0: है ना?
1: राजवीर, साल के अंत में गुजरात ने बीजेपी के रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल
0: जी
1: की
0: हाँ
1: थी।
0: बिल्कुल।
1: वहीं हिमाचल प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ और कांग्रेस की सरकार बनी।
0: जी बिल्कुल रविकांत। और इन्हीं खबरों के बीच फरवरी 2022 में रूस द्वारा यूक्रेन पर किए गए आक्रमण ने पूरी दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था को झटका दे दिया था, है ना?
1: और राजवीर, उसी वर्ष गंभीर आर्थिक मंदी के चलते श्रीलंका ने भारी विरोध प्रदर्शन करते हुए, जिसके कारण वहां देश के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे को देश छोड़कर जाना पड़ा था।
0: और रविकांत, इन सभी घटनाओं का साक्षी कौन बना था भला?
1: और हमारा आकाशवाणी और
0: हमारा
1: कौन
0: आकाशवाणी, है ना? तो श्रोताओं, कोरोना महामारी के पश्चात उस वर्ष प्रकाशन

0: योग फिर से पूरी तरह सक्रिय हुआ और साहित्य तक बुक कैफे जैसे डिजिटल मंचों के माध्यम से नई किताबें तथा युवा लेखकों को बड़ी पहचान मिली थी।
1: और राजवीर, इस वर्ष साहित्यिक उत्सव के अंतर्गत देश की विभिन्न भाषाओं और आदिवासी लेखन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय संगोष्ठियों और कवि सम्मेलन भी आयोजित किए गए थे।
0: जी बिल्कुल। और यदि बात करें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की, तो भारतीय लेखिका गीतांजलि श्री के उपन्यास रेत समाधि के अंग्रेजी अनुवाद टॉम्ब ऑफ सैंड को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्यों?
1: हाँ बिल्कुल, जो साहित्य जगत के लिए एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित हुआ था।
0: जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। और श्रोताओं, वर्ष 2022 फिल्म जगत के लिए भी एक बड़ा बदलाव लेकर आया, जहां साउथ सिनेमा यानी पेन इंडिया फिल्मों का दबदबा रहा, RRR, RRR, KGF, Chapter 2, है ना।
1: हाँ।
0: और साउथ और कंटारा जैसी जो फिल्में हैं, उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर काफी धूम मचाई थी और बहुत सारे कमाई के रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। क्यों रविकांत?
1: बिल्कुल। और जबकि राजवीर, श्रोताओं, बॉलीवुड के द कश्मीर फाइल्स, भूल भुलैया 2, दृश्यम 2, ब्रह्मास्त्र जैसी फिल्मों के गीतों ने काफी धूम मचाई।
0: और रविकांत, इन फिल्मों को भी लोगों ने काफी सराहा था, द पुष्पा राइज। हालांकि ये फिल्म दिसंबर 2021 में आई थी, लेकिन जो इसका क्रेज था वो और अल्लू अर्जुन
1: था।
0: जी हाँ, वो अल्लू अर्जुन का जो डायलॉग है, झुकेगा नहीं स्टाइल, पूरे जो है 2022 में जो है वो छाया रहा था, है ना।
1: बिल्कुल। और साथ ही राजवीर, इस वर्ष यानी 2022 में आई कुछ फिल्में ऐसी थी जिनके आधुनिक संगीत ने युवाओं के दिलों की धड़कने बढ़ा दी।
0: जी हाँ, और आकाशवाणी से प्रसारित इन गीतों ने युवाओं को झूम उठने पर मजबूर कर दिया था, है ना। भला कौन कौन सी फिल्में हैं वो बताएंगे आप?
1: हाँ जी बिल्कुल, जैसे भूल भुलैया 2, दृश्यम 2, द कश्मीर फाइल्स, RRR, गंगूबाई
0: कठियावाड़ी,
1: ब्रह्मास्त्र, KGF चैप्टर 2 और कांटारा, कुछ ऐसी ही फिल्में थी।
0: जी हाँ। और
1: रविकांत
0: जी,
1: ये तो बताओ कि गीत कौन सी फिल्म का सुनवा रहे हो?
0: देखो, गीत हम अपने श्रोताओं को सुनवाएंगे, साल 2022 की ही एक फिल्म है, बहुत ही खूबसूरत गीत है उसका, फिल्म का नाम है बधाई हो, और गुरु रणधावा और नेहा कक्कड़ की आवाज़ में गीत है। और आपने भी बहुत सुना होगा, रेडियो क्या, डीजे क्या, शादी ब्याह में सबसे ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा आजकल होगी,
1: बहुत ही धूम मचाने वाला गीत
0: और खास 2022 में तो बहुत ज्यादा, नहीं आज भी उसका क्रेज कम नहीं है। चलिए अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं फिर वही वाला गीत।
1: जी।

0: के।
1: भाई राजवीर जी, इन गीतों ने तो आज भी धूम मचा रखी
2: जी,
1: है
2: वाकई बहुत धूम मचा रखी है और मजा आ गया इस गीत को
1: भाई।
2: सुनकर
1: मुझे
2: रविकांत
1: भी
2: जी।
1: ये गीत बहुत पसंद आया। तो वर्ष 2022 में इन गीतों ने आकाशवाणी के माध्यम से लोगों के दिलों पर कब्जा ही कर लिया होगा, है ना?
2: भाई कब्जा तो अब समय का भी होने वाला है रविकांत
1: हाँ
2: जी, क्योंकि
1: बिल्कुल।
2: अब
1: अरे
2: बहुत ज्यादा
1: रविकांत,
2: समय भी नहीं है और अभी एक और गीत हम अपने अपने
1: बिल्कुल
2: श्रोताओं को हमें सुनवाना है और कुछ
1: बिल्कुल,
2: बातें भी अभी
1: हाँ
2: करनी है।
1: बिल्कुल भी।
2: हाँ
1: घड़ी देखो, अब आकाशवाणी को आगे भी तो बढ़ाना है और अपने प्यारे श्रोताओं को वर्ष 2022 में कुछ ऐसी घटनाओं को भी बताना है।
2: कौन सी घटनाओं के बारे में बात कर रहे हैं? चलिए अंतरिक्ष जगत की कुछ बात कर लेते हैं
1: हाँ
2: ना।
1: बिल्कुल
2: अंतरिक्ष
1: बिल्कुल,
2: जगत में भी अपना कीर्तिमान स्थापित किया था 2022 में। श्रोताओं, ये वर्ष अंतरिक्ष विज्ञान और खगोल विज्ञान के इतिहास में बेहद रोमांचक और क्रांतिकारी साल रहा था।
1: इस वर्ष इंसानों ने न केवल सिर्फ ब्रह्मांड की ऊंचाइयों को न केवल नए नजरिए से देखा, बल्कि भविष्य में चंद्रमा पर दोबारा कदम रखने और पृथ्वी को क्षुद्र ग्रह के मलबे से बचाने की तकनीक का भी सफल परीक्षण किया था।
2: जी हाँ बिल्कुल रविकांत जी, और मैंने आकाशवाणी पर सुना था कि जुलाई 2022 में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जो कि रंगीन फोटो खींचने वाली टेलीस्कोप थी, जिसे वर्ष 2021 में लॉन्च किया गया था।
1: और
2: इस टेलीस्कोप ने ब्रह्मांड की पहली रंगीन और सबसे स्पष्ट तस्वीरें जारी की थी, है ना?
1: इस टेलीस्कोप ने कारिना नेबुला, स्टीफन क्वेनेंट और ब्रह्मांड की सबसे गहरी इंफ्रारेड तस्वीरें दिखाकर खगोलविदों को हैरान कर दिया था।
2: बिल्कुल सही कहा रविकांत तुमने। और इसी वर्ष यानी 26 सितंबर 2022 को नासा के डाल्ट यानी डबल एस्ट्रॉइड रिडायरेक्शन टेस्ट में स्पेसक्राफ्ट ने जानबूझकर डिमोफोर्स से भारी रफ्तार से टक्कर मारी थी, और ये प्रयोग पूरी तरह से सफल भी रहा था। और वैज्ञानिकों ने यह साबित कर दिया था कि भविष्य में पृथ्वी की तरफ आने वाले खतरनाक क्षुद्र ग्रह का रास्ता बदला जा सकता है ना?
1: और ये परीक्षण इस वर्ष का बहुत महत्वपूर्ण परीक्षण भी
2: जी
1: रहा
2: हाँ
1: था
2: बिल्कुल
1: राजवीर।
2: बिल्कुल। और रविकांत, यूं ही नहीं, आकाशवाणी हम सबका विश्वसनीय साथी कहलाता है, जो लगातार 90 वर्षों से हमारा साथ
1: हाँ
2: निभा रहा
1: बिल्कुल।
2: है।
1: लेकिन राजवीर, अब जरा घड़ी देखो
2: जी हाँ बिल्कुल
1: और
2: दिखाई दे रही है।
1: अब हमें और बातें करने की अनुमति नहीं देगी। क्यों ना अपने श्रोताओं को चलते चलते इस वर्ष आई फिल्म एक विलेन रिटर्न्स का ये खूबसूरता गीत सुनवा दिया जाए।
2: जी हाँ बिल्कुल, नेकी और पूछ पूछ, आइए सुनते हैं श्रेया घोषाल की आवाज में ये प्यारा सा गीत।

और श्रोताओं, आपसे कुछ ही देर बाद यानी 10:30 पर शुरू होने वाला है हमारा अगला कार्यक्रम, जो फोन इन कार्यक्रम है जागरूक श्रोता। तो आप हो जाइए तैयार उस कार्यक्रम में हमसे बात करने के लिए, जिसमें हमारा आज का विषय रहेगा तंबाकू विकास के लिए खतरा। तो फोन नंबर्स आपको हमारे पता ही हैं, 9457078288 और 01341230105।

0: और श्रोताओं, अब समय आ गया है कि आपसे विदा ली जाए इस कार्यक्रम में। तो अब मुझे यानी राजवीर
1: और मुझे यानी रविकांत वर्मा को
0: कार्यक्रम सुहाना सफर के आज के इस अंक को यहीं पर संपन्न करने की दीजिएगा अनुमति। नमस्कार, नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुहाना सफर। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज पर। प्रातः के 10:30 हो रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है हमारा फोन इन कार्यक्रम जागरूक श्रोता। नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में जिसका नाम है जागरूक श्रोता। और आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं,
1: मैं हूँ रविकांत वर्मा।
0: और आज के संक में हम अपने श्रोताओं से किस विषय पर बात करने वाले हैं रविकांत?
1: हाँ, हमारा विषय है तंबाकू विकास के लिए खतरा।
0: जी हाँ बिल्कुल श्रोताओं, आज आपसे बातचीत का जो हमारा विषय है वो है तंबाकू विकास के लिए खतरा, क्योंकि 31 मई आने वाली है। और 31 मई को हम कौन सा दिवस मनाते हैं रविकांत?
1: विकास के लिए खतरा यानी विश्व तंबाकू निषेध दिवस।
0: जी हाँ, 31 मई को हम मनाते हैं विश्व तंबाकू निषेध दिवस। तो इससे पहले अपने श्रोताओं को हम जागरूक करने के लिए कि तंबाकू हमारी सेहत, स्वास्थ्य और समाज के लिए और विकास के लिए किस तरह से खतरा है, इन्हीं सब विषयों पर आज हम आपसे यानी आप तमाम श्रोताओं से बात करेंगे। और आप हमें करेंगे कॉल हमारे फ़ोन नंबर,
1: हमारा फ़ोन नंबर है 9457078288 और हमारा दूसरा नंबर है 01341230105।
0: जी हाँ, तो श्रोताओं आजकल हम देख रहे हैं कि तंबाकू का जो चलन है वो बहुत ज्यादा हो गया है ना रविकांत?
1: हाँ बिल्कुल।
0: क्या बच्चे, क्या बूढ़े, युवा, जवान, सभी लोग किसी न किसी रूप में तंबाकू का सेवन जो है वो
1: और
0: कर रहे हैं।
1: एक लग रहा है कि इसका फैशन सा चल गया है ना, एक दूसरे को देख के या इसमें शान समझते हैं लोग।
0: जी हाँ बिल्कुल, एक फैशन के तौर पर भी कुछ लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। जब वो फैशन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और धीरे धीरे वो लत में आ जाता है और फिर कितनी हानि हो सकती है ये अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। और उधर हम बात कर रहे हैं, अपने फोन नंबर से अपने श्रोताओं को बताए हैं और रविकांत हम देख रहे हैं कि उधर हमारे श्रोताओं के फोन आने शुरू हो गए। तो देखिएगा किसका फोन आ रहा है, जरा पहले फोन को ले लीजिए।
1: हेलो जागरूक श्रोता।
2: हेलो जागरूक श्रोता।
1: हाँ हेलो जागरूक श्रोता, किन से हमारी बात हो रही है?
2: राजवीर
0: जी नमस्कार, हमारी ओर से प्यार भरा नमस्कार। अपना परिचय दीजिएगा।
2: जिला हरिद्वार उत्तराखंड से मदन गिरी बोल रहा हूँ।
1: अच्छा मदन गिरी जी, कार्यक्रम जागरूक श्रोता में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: हाँ,
1: कैसे हैं आप?
2: ठीक हूँ जी मैं, आप सुनाइए आप कैसे हैं?
1: हम भी बढ़िया हैं।
2: आकाशवाणी परिवार में सब कैसे हैं?
1: जी जी बिल्कुल बहुत बढ़िया है, आकाशवाणी परिवार में भी सब ठीक है। आप बताइए, जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं तंबाकू निषेध दिवस यानी 31 मई के संदर्भ में।
2: मैं सुन रहा हूँ।
1: हाँ बिल्कुल,
2: कल से ही सुन रहा हूँ।
1: हाँ बिल्कुल,
2: कार्यक्रम से।
1: जी हाँ, तभी तो हमारे कार्यक्रम का नाम है जागरूक श्रोता और हम हमारे जागरूक श्रोता है ना। तो बताइए मदन गिरी, क्या बताना चाहेंगे आप आज के इस दिवस के बारे में?
2: मैं बताना चाहूंगा कि जो है तंबाकू जो है हमारे देश के लिए क्या विश्व के लिए घातक बना हुआ है।
1: हाँ बिल्कुल, ये तो है,
2: गंभीर परिणाम निकल रहे हैं।
1: जी जी।
2: और मैं जरा सा उदाहरण देना चाहूंगा आपके सामने कि एक हमारे साथी थे श्याम सिंह कुंडीर जी।
1: जी जी।
2: और बहुत ही विनम्र स्वभाव के थे, बहुत ही अच्छे, लंबी लंबी मूछें और आवाज कड़कदार, लेकिन उनमें एक जरा सा ऐप था कि वो तम्बाकू का पान खाते थे।
1: तम्बाकू का पान खाते थे बिल्कुल
2: जी। और जो है उनकी जो है दोनों किडनी खराब हो गई।
1: जी जी।
2: और वो जो है डायलिसिस पर है, काफी इलाज करवा, लेकिन आखिर मृत्यु हो गई इनकी।

0: असामयिक निधन हुआ उनका।
1: देखिए तम्बाकू वाकई में स्वास्थ्य के लिए बहुत खतरनाक है। जी
0: जी, और जो है ये तम्बाकू जो है बहुत घातक है और हमारे देश के लिए विकास में बहुत ही घातक बना हुआ है।
2: जी मदन जी, हमारा
0: जब युवा जो है तम्बाकू का सेवन कर रहे हैं तो देश विकास के पथ पर कैसे जाएगा?
1: जी बिल्कुल सही है
2: जी, वही हमारा सवाल है आज मदनगिरी जी, वही हमारा सवाल है कि वो तंबाकू विकास के लिए खतरा, सेहत के लिए तंबाकू खतरा है, सब जानते हैं, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, सबको पता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसका सेवन कर रहे हैं, लेकिन विकास के लिए किस प्रकार से खतरा है, थोड़ा सा इस पर आप प्रकाश डालिएगा।
0: जी मैं यही डालना चाहूंगा कि जब विकास कैसे होगा जब हमारे युवा ही इस नशे के लत में पड़ जाएंगे, तो विकास कैसे होगा? विकास तो हो ही नहीं सकता देश का।
2: जी तो आज इस
0: असामयिक मृत्यु हो जाएगी और जो है हम कुछ कर नहीं पाएंगे देश के लिए, तो विकास तो होगा ही नहीं।
1: जी
2: जी मदनगिरी जी, आपकी आज के इस कार्यक्रम में पहली कॉल लगी है, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या संदेश आप हमारे श्रोताओं को देंगे आज इस तंबाकू से संबंधित?
0: मैं तो यही हाथ जोड़कर मेरी प्रार्थना है सभी श्रोताओं से निवेदन है कि वो तम्बाकू का सेवन बिल्कुल न करें, देश हित में देखें, देश हित में देखें, विकास के विकास को देखें देश के
2: जी,
0: और बिल्कुल भी तम्बाकू का सेवन न करें। जो कर रहे हैं, मैं दो तीन अपने साथियों का छुड़वाया है, मुझे बड़ी खुशी है।
1: बहुत अच्छा काम किया है तो आपने जी।
0: हाँ जी, मैं उन्होंने छोड़ दिया, बिल्कुल छोड़ दिया जी उन्होंने।
1: देखिए तम्बाकू सिगरेट
0: भी छुटवाई है कई साथियों की
1: जी, बिल्कुल
0: इस बात पर बड़ा गर्व है कि उन्होंने छोड़ दिया।
1: हाँ देखिए, आजकल यह है कि मुंह में तम्बाकू चबाने को लोग फैशन समझते हैं, भाई तम्बाकू के अतिरिक्त आप बहुत सारी चीजें हैं चबाने के लिए, है ना, जो स्वास्थ्य को नुकसान भी नहीं करती, जैसे आप सौंफ चबाइए, है ना, सौंफ स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी रहती है।
2: चलिए मदनगिरी जी, आपने इस कार्यक्रम में कॉल की और अपने बहुत अच्छे सुझाव हमारे साथ में साझा किए, हमारे तमाम श्रोताओं के साथ में साझा किए, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया
1: जी,
0: धन्यवाद
2: जी। रविकांत जी,
1: हाँ बिल्कुल,
2: एक और श्रोता लाइन पर है, जरा हेलो,
3: अच्छा
2: हेलो, जागरूक श्रोता,
3: हाँ नमस्कार साहब।
2: भाई साहब नमस्कार, कैसे हैं आप? अपना रेडियो या तो आवाज कम कर दीजिए, ऐसे दूर हो जाइएगा, आपकी जो आवाज आप रेडियो से थोड़ा हट जाइएगा या इसका वॉल्यूम कम कर
3: दीजिए।
2: जी हाँ, कौन बात कर रहे हैं?
3: मेरा नाम जगदीश चंद खजौनिया है।
2: जगदीश चंद जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
3: हिदायतपुर चौड़वाला गांव है, खालागढ़ अफजलगढ़ के पास।
2: अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए नजदीक से ही है। आप कैसे हैं, घर में सब बढ़िया?
3: जी
2: क्या करते हैं जगदीश चंद जी?
3: मैं तो आश्रम पर रहता हूँ।
2: आश्रम में रहते हैं
3: जी।
2: आज का हमारा विषय आपको मालूम है क्या है कार्यक्रम में?
3: हाँ तम्बाकू हुआ है
2: जी। हाँ, तम्बाकू विकास के लिए खतरा, क्योंकि हम 31 जो अभी मई आने वाली है, दो दिन बाद उसको हम विश्व तंबाकू दिवस के रूप में मनाते हैं, और उससे पहले हमारा एक कार्यक्रम है, तो आज हमने इसी थीम को यहाँ पर लिया है, इसी मुद्दे को लिया है कि तंबाकू किस तरह से हमारे विकास के लिए खतरा है, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप?
3: मैंने तो छोड़ दिया इसी वजह से।
2: अच्छा, तंबाकू का सेवन आप करते थे?
3: हाँ।
2: कितने समय हो चुका आपको छोड़े हुए?
3: मुझे हो गया 1.5 साल।
2: बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आपसे, आपने तंबाकू पहले प्रयोग किया है और अब छोड़ दिया है, तो बहुत सारे लोगों से जब हम बात करते हैं कि आप भाई तंबाकू क्यों खाते हो या इसको छोड़ नहीं सकते, वो कहते हैं कि इसकी आदत पड़ गई है, लत पड़ गई है, अगर हम छोड़ते हैं तो हमें भिन्न भिन्न प्रकार की परेशानियां वो बताने लगते हैं कि हमारा पेट साफ नहीं हो पाता है, हमें बेचैनी सी रहती है, पेट में खुश्की हो जाती है। तो आपने जब छोड़ा तो आपको किसी तरह की समस्या हुई क्या?
3: एकदम मन की बात है, कोई समस्या नहीं हुई, मैंने डायरेक्ट छोड़ दिया।
2: अच्छा, तो उसके बाद आपको कुछ तकलीफ हुई, आपको ऐसा लगा नहीं मुझे तंबाकू लेना ही है किसी भी कंडीशन में?
3: हाँ, मैं किसी पोजीशन में खाते नहीं अब इसी वजह से। हाँ। गया वो पिस्ता खा, मैं बीड़ी पिस्ता था।
2: जी जी। नहीं, अच्छा हुआ आपने समय रहते उस चीज का त्याग कर दिया, क्योंकि जैसे जैसे एज आगे बढ़ती जाती है वैसे वैसे जो हमारे शरीर के ऑर्गन्स हैं उन वो भी पुअर होते जाते हैं, और जो तंबाकू या इस तरह के नशीले पदार्थों का सेवन अगर कंटिन्यू रहेगा तो वो बहुत जल्द हमारे शरीर को हानि पहुंचाते चले जाते हैं।
1: अच्छा, एक सवाल आपसे पूछना चाहते हैं कि जैसे आपको लगा, कैसे लगा आपको कि मुझे तंबाकू अब छोड़ देना चाहिए, कहीं से प्रेरणा मिली आपको? अच्छा, आपको खांसी आने लगी थी इससे, है ना?
3: जी जी जी।
1: चलो, ये तो आपने बहुत ही अच्छी बात बताई हमें कि आपने समय रहते इसको छोड़ दिया, क्योंकि इसके नुकसान इतने हैं कि बस बता नहीं सकते। इस राह पे लोग चल तो पड़ते हैं लेकिन लौटना बहुत मुश्किल होता है ना।
3: और ये खाने वाले तंबाकू, इनको मुझे बहुत गुस्सा आता है, जहां खाते

0: भोग देते हैं।
1: हाँ, क्योंकि देखिए आप भुक्त भोगी हैं एक तरह से, है ना, आप झेल चुके हैं
0: हाँ
1: इसका जो नुकसान है। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने बताई।
0: ठीक है जगदीश चंद जी, बहुत बहुत
1: जी
0: शुक्रिया आपका इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए। और हमारे एक और श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं, रविकांत जी, उनकी कॉल लीजिएगा। हेलो जागरूक श्रोता।
2: हाँ था स्वाड़ी में उपस्थित विष्णु राजौरी को ग्राम दुझैला थाना शिवाला कला बिजनौर से राशिद अंसारी का नमस्कार।
0: जी
2: राशिद जी,
0: नमस्कार।
1: कार्यक्रम जागरूक श्रोता में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: शुक्रिया।
1: और कैसे हैं आप?
2: हम सब कुशल मंगल और उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग भी
1: हाँ
2: खैरियत से होंगे, आकाशवाणी परिवार के लोग।
1: बिल्कुल। सबसे पहले राशिद जी, अपना संक्षिप्त परिचय हमारे श्रोताओं को बता दीजिए। वैसे तो आपको श्रोता सब जानते ही हैं, लेकिन एक बार फिर से। हाँ
2: मैं ग्राम जिला थाना शिवाला कला बिजनौर से बोल रहा हूँ और
1: जी
2: मैं
1: जी
2: इंटर कॉलेज में लेक्चरर हूँ।
1: लेक्चर हैं आप? कौन से विषय से लेक्चरर हैं आप?
2: मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश है।
1: चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो नैतिक बातें भी आप अपने उन स्टूडेंट्स को बताते होंगे, है ना, अपने विषय से थोड़ा हटकर। तो कभी आपने जागरूक किया है इस तंबाकू विषय के बारे में अपने
2: जी,
1: विद्यार्थियों
2: बहुत
1: को?
2: बार जागरूक किया है।
1: जी
2: और एक छोटी सी घटना भी बताता हूँ। एक बार मैं कॉलेज जा रहा था सुबह सुबह,
1: जी जी बताइए।
2: तो कॉलेज से पहले एक छोटा सा मोड़ है,
1: हाँ
2: अब वहां पर एक बच्चा सिगरेट पी रहा था।
1: अच्छा।
2: अब उसने देखकर मुझे छिपाली, मैंने भी देख लिया ये सिगरेट पी रहा और उसने भी मुझे देख लिया।
1: जी
2: लेकिन मैंने उससे उस समय कुछ नहीं कहा कि मेरी इतनी शर्म कर ली कि उसने मुझे देखकर सिगरेट छिपा ली।
1: हाँ, लेकिन
2: और
1: आपको देखकर
2: उसकी
1: देखे छिपा तो ली, लेकिन वो जो उसका नुकसान है वो तो बराबर उसे बना रहा है ना
2: लेकिन
1: फिर।
2: सर मैं आगे यही बताना चाहता हूँ
1: हाँ
2: कि
1: बताइए।
2: मैंने उस दिन तो उसका कुछ नहीं कहा, लेकिन 2 दिन बाद, पहले तो प्रेयर में और
1: हाँ
2: बाद में क्लास में लेक्चरर दिया नशा मुक्ति पर, कि अपने जो इसका सेवन ना करें। इससे क्या क्या नुकसान है कि हमारे फेफड़ों को नुकसान है, हमारे
1: जी
2: गुर्दों को
1: जी
2: नुकसान है, हमारे हृदय को नुकसान है। जब हमारी उम्र कम होगी तो
1: जी
2: घर वालों को नुकसान होगा, देश को नुकसान होगा। हम देश के
1: बिल्कुल
2: जो
1: सही है।
2: विकास, जो हमारा युवा देश का विकास करेगा, जो वो युवा ही नहीं रहेगा तो देश का विकास भी रुक जाएगा।
1: हाँ
2: और
1: बिल्कुल
2: दूसरी बात, हमारी समाज में प्रतिष्ठा भी धूमिल होगी इससे।
1: जी। अच्छा, आपसे पूछना चाहेंगे राशिद जी, क्यों ऐसे लोग लत में फंस जाते हैं, क्या है इसका कारण? आप बता सकते हैं कि लोग तंबाकू का सेवन करने लगते हैं, जबकि पता है कि, सबको पता है कि तंबाकू जो है नुकसान देता है। आसपास हम अपने देखते हैं लोगों के गाल फूले रहते हैं, उसमें क्या इन्फेक्शन हो जाता है, एक तरह का कैंसर भी बन जाता है ना। तो आप बताना चाहेंगे कि क्यों इस
2: या
1: लत में?
2: आजकल ये लोग इधर उधर, जब हम भी अपने बच्चों को ध्यान नहीं देंगे तो इधर उधर घूमेगा।
1: जी
2: बुरे
1: जी
2: लोग, घूमने वाला तो बुरे लोगों की संगति में इधर उधर
1: हाँ
2: बैठेगा
1: बिल्कुल
2: तो
1: बिल्कुल
2: उसका असर पड़ता है। तो अपने बच्चों पे शुरू से ही ध्यान दे कि इधर उधर की बुरी संगति में ना घूमे।
0: चलिए ठीक है। राशिद अली जी, बहुत अच्छी बात आपने आज हमारे श्रोताओं के
1: हम्म,
0: साथ में साझा किया, आपने हमारे इस कार्यक्रम में कॉल किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत
1: बहुत बहुत
0: शुक्रिया।
1: धन्यवाद।
0: और एवकांत,
1: धन्यवाद।
0: एक और श्रोता हमसे जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। हेलो जागरूक श्रोता।
3: हेलो सर, नमस्कार।
0: जी नमस्कार।
3: शालीमार की छिवारा जिला बिजनौर से आशीष चौधरी बात कर रही हूँ सर।
0: जी जी जी चौधरी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। कैसे हैं आप?
3: मैं बहुत बढ़िया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग और आकाशवाणी नजीबाबाद में सब खैरियत से होंगे।
0: जी हम यहाँ पर अच्छे हैं, और हमारा विषय भी आज आपको पता ही होगा, आप कार्यक्रम तो हमारा सुन ही रहे हैं,
3: जी,
0: है ना, विषय है।
3: आपने सूरज के साथ साथ में भी आपने जिक्र करा था,
1: जी जी
0: मुझे याद है। जी हाँ, जी हाँ। तो तंबाकू हमारे विकास के लिए खतरा, तो ये हमारी
3: जी
0: थीम है आज की, आज का आपसे बातचीत करने का विषय है। तो सबसे पहले तो जानना चाहेंगे चौधरी साहब, क्या कभी या अभी आपने तंबाकू का सेवन किया है किसी भी रूप में?
3: सर, मैंने जिंदगी में आज तक तंबाकू नहीं खाया।
0: बहुत अच्छी
1: बहुत अच्छी बात
3: बीड़ी
1: है।
3: बीड़ियों सिगरेट जरूर पी है, लेकिन आपके माध्यम से आज से 4 साल पहले प्रोग्राम
0: हाँ। अच्छा,
3: हुआ था, तो उस जब से मैंने बीड़ी सिगरेट भी छोड़ दी।
0: बहुत
3: जरूर,
0: अच्छी बात
1: बहुत
0: है।
1: अच्छा किया है तो आपने।
0: अच्छा चौधरी साहब, आज का जो हमारा विषय है सीधे सीधे है कि तंबाकू विकास के लिए खतरा। हम सभी जानते हैं कि तंबाकू हमारी सेहत के लिए खतरनाक है, बहुत सारे नुकसान हमारी सेहत को इससे होते हैं, लेकिन विकास के लिए किस प्रकार तंबाकू से खतरा है, इस विषय पर आप संक्षिप्त में क्या कहना चाहेंगे?
3: सर, बस विकास के लिए तो यही खतरा है कि मतलब कहने का, जैसे कि तंबाकू खाते हैं साल कट जाता है, यहाँ तक के ऑपरेशन होने लगता है इसके लिए,
1: जी जी
3: और टेटनिस भी हो जाता है, और मतलब कहने का बहुत ही नुकसान होता है, जिसमें उसका तो नुकसान ही लेकिन परिवार का भी बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है।
1: हाँ बिल्कुल।
0: देखिएगा, सबसे जो महत्वपूर्ण बात वो है कि तंबाकू सबसे ज्यादा कैंसर बढ़ने का जो कारण है वो है तंबाकू। और
3: जी सर,
0: कैंसर एक ऐसी डिसीज है, एक ऐसी भयानक बीमारी है, दर्दनाक मौत इसमें होती है, बहुत मोटा खर्च इसमें जो है इलाज में इसके आता है, और कई
3: जी सर,
0: दफा पूरा परिवार जो है कर्ज में डूब जाता है और फिर भी अपने मरीज को

0: बचा नहीं पाते हैं। तो जो पैसा घर के विकास में, अपने बच्चों की पढ़ाई में या फिर अन्य चीज़ों में लगना चाहिए था, वो जब दवाइयों में चला जाता है तो कितनी बड़ी जो फिनेंशियल लॉस उस परिवार को होता है, और जब कोई परिवार उस लॉस से गुजरता है तो देश के सीधे सीधे विकास भी उससे इफेक्टिव होता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच कि आपने इस कार्यक्रम में चौहान साहब हमें कॉल किया और अपने विचारों से हमें और हमारे तमाम श्रोताओं को अवगत कराया। एक अन्य साथी हमारे जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं।
1: हेलो जागरूक श्रोता।
2: हेलो जागरूक श्रोता, सबसे पहले मैं नजीबाबाद के हेलो जागरूक श्रोताओं को मेरा बहुत प्यारा सा आदाब।
0: जी नमस्कार।
1: नमस्कार,
0: कौन बात कर रही है?
2: सर मैं स्वागत मुस्तैन से जीनत हमारी दृश्य आपसे बात कर रही हूँ।
1: जीनत जी कैसे हैं आप? हम भी बहुत अच्छे हैं, आप बताइए आप कैसे हैं?
2: सर मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बताइए।
1: जी बढ़िया है। जैसे कि आज आप हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, आज हमारा विषय क्या है बात का?
2: सर आज आपका विषय है वो तंबाकू से दूर रहना।
1: हाँ, तंबाकू से दूर रहना या तंबाकू विकास के लिए किस तरह से खतरा है, आप बताएंगे हमारे श्रोताओं को।
2: सर मैं कहना चाहूंगी आजकल के जो युवा है कहीं ना कहीं वो तंबाकू से ज्यादा जुड़ाव रखे हैं और तंबाकू का सेवन ज्यादा कर रहे हैं।
1: जी जी।
2: तो मैं यही कहना चाहूंगी, सबसे खास बात ये है कि पेरेंट्स को अपने बच्चों पे ध्यान देना है कि हमारा बच्चा किस संगत में बैठ रहा है,
1: बिल्कुल,
2: सबसे ज्यादा टाइम किसे दे रहा है।
1: अच्छा,
2: और क्या देंगे, जब संगत में बच्चा रहता है जिस लोगों के जैसे वो होते हैं वो ऐसे ही तो सीखेंगे।
1: बिल्कुल सही
2: तो
1: है।
2: जब तम्बाकू का सेवन करेंगे तो आपके बच्चे कैसे विकास करेंगे?
1: हाँ, बिल्कुल।
2: वो कारोबार काम पे भी ध्यान नहीं देंगे, किसी भी चीज पे ध्यान नहीं देंगे। तो पेरेंट्स सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है इनकी, ध्यान दे हमारे बच्चे किस संगत में ज्यादा बैठता है, और खुद पे भी ध्यान दें कहीं हमारी हम तो नहीं लेते हैं या हम तो तम्बाकू का सेवन तो नहीं करते।
1: बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर हम, हाँ बिल्कुल, अगर हम किसी चीज का सेवन करेंगे इस तरह के तो हम दूसरे को मना करने के हकदार भी नहीं होते हैं ना।
2: जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो मैं ये कहना चाहूंगी पेरेंट्स को भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी है वो समझाए अपने बच्चे को।
1: अच्छा जी नदी, एक बताइए, जैसे आसपास आपके कोई तंबाकू का सेवन करते हैं या आपकी फैमिली में कोई तंबाकू का सेवन करता है?
2: जी जी,
1: करते हैं कोई?
2: हमारे आसपास, हमारे घर पे तो नहीं करता, हमारे भाई कोई नहीं करता।
1: जी जी, बहुत अच्छी बात है।
2: तो हम उनसे मना करते हैं कि नहीं ये सही नहीं है, आज तक मिला क्या है आपको?
1: हाँ बिल्कुल,
2: कुछ नहीं मिला, आपकी लाइफ खराब कर देगा ये, आप बिजनेस नहीं करते कर सकते, कुछ नहीं करोगे आप, और अभी तक कुछ हासिल नहीं होने वाला इन चीजों से।
1: अच्छा, जैसे तंबाकू से विकास के लिए जो खतरा है, ये क्या प्रभाव पड़ता है हमारे विकास पर तंबाकू का?
2: सर देखिए, इससे प्रभाव ही पड़ता है, हम आगे विकास नहीं कर पाएंगे, मानसिक संतुलन खराब होगा आपका,
1: और ये है कि इससे नुकसान ही है ना।
2: ये नुकसान ही है, फायदा नहीं है ना इससे कुछ भी।
0: देखिएगा, विकास के लिए खतरे की अगर हम बात करते हैं तो जब तंबाकू से जो बीमारी आती है, वो सारी बीमारियां इस तरह की होती हैं जो जानलेवा भी होती हैं, बहुत ज़्यादा खतरनाक भी होती हैं, बहुत मोटा एक्सपेंसेस जो है उस पर होते हैं, बहुत ज़्यादा पैसे खर्चा दवाई होता है। अब अधिकतर हमने भी कई बार देखा है, अधिकतर जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, एम्स जैसे अस्पताल हैं या बड़े और भी मेडिकल कॉलेजेस हैं, वहाँ पर जो कैंसर जैसे मरीज वहाँ पर पड़े हुए होते हैं और उन पर जो इलाज होता है, सभी जानते हैं कि कैंसर का जो इलाज है बहुत महंगा होता है, तो महंगी दवाइयाँ, गवर्नमेंट को भी सरकार को भी बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है उन मरीजों के इलाज पर, जो पैसा देश के दूसरे विकास कार्यों में इस्तेमाल किया जा सकता था वो दवाइयों पर खर्च हो जाता है। तो सीधे सीधे इस तरह से देश के विकास में जो के लिए खतरा है, जो
2: रुकावट आ रही है।
0: हाँ जी, चलिए, खैर, बहुत बहुत धन्यवाद जीनत जी, आपने इस कार्यक्रम में हमें कॉल किया,
2: बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और सर आज ये प्रोग्राम जो रखते हैं आप युवाओं के लिए जागरूक करने के लिए, सर बहुत ही अच्छा लगता, बेस्ट प्रोग्राम।
0: चलिए, थैंक यू वेरी मच। जी हाँ, हेलो जागरूक श्रोता।
3: हेलो जागरूक श्रोता
0: जी,
3: नमस्ते भाई साहब। नमस्ते
0: जी, नमस्कार, कैसे हैं आप?
3: मैं तो बढ़िया हूँ भाई साहब, मैं तो आपको समस्त स्टाफ आकाशवाणी में सब बढ़िया।
0: जी हाँ, यहाँ सब बहुत अच्छे से हैं। आप अपना संक्षिप्त में एक बार परिचय हमारे श्रोताओं को दे दीजिएगा।
3: जी मैं उत्तराखंड का सेनिखाल सेनिगांव फैक्ट्री से प्रकाशन वो लॉन्ज में।
0: जी जी, प्रकाशन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, कैसे हैं आप?
3: धन्यवाद वैसा, मैं तो बढ़िया हूँ वैसा, आप बढ़िया?
0: जी हाँ, यहाँ भी सब बहुत बढ़िया है। अब हमारा विषय, आप कार्यक्रम तो सुन ही रहे होंगे।
3: हाँ जी, सुन रहा हूँ मैं।
0: हाँ, हमारा विषय है तंबाकू विकास के लिए खतरा, और अभी हम बहुत जल्द विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाने वाले हैं, तो वो कौन सी तिथि है, हमने कई बार जिक्र किया है, अगर आपने कार्यक्रम सुना है तो बताइएगा।
3: हाँ जी,
0: विश्व तंबाकू निषेध दिवस हम मनाने वाले हैं अभी हाल ही में, बहुत जल्द, तो वो कौन सी तारीख को हम मनाते हैं? खैर,
3: मुझे मालूम नहीं, सुना तो मैंने।
0: अभी हमने जिक्र भी किया था कि

0: मई को यानी परसों जो है विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाने वाले हैं, और इसी उपलक्ष्य में आज का जो हमारा विषय हमने रखा है तंबाकू विकास के लिए खतरा, तो आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले तो प्रकाश चंद जी, क्या आपने कभी तंबाकू का सेवन किया है या करते हैं?
1: नहीं भाई साहब, मैं तो तम्बाकू ने मैं तो कुछ चीज का सेवन भी नहीं करता। ये जो ऐसे नशीले पदार्थ होते हैं ना, कुछ
0: जी ये
1: चीजों का
0: बहुत
1: सेवन नहीं, मतलब
0: बहुत
1: करना भी नहीं चाहिए।
0: बहुत
1: बहुत
0: अच्छी
1: अच्छी
0: बात
1: बात
0: है।
1: है
0: अगर
1: जी।
0: देखिएगा आप जैसे लोग होंगे जो तंबाकू का सेवन नहीं करते हैं, तो घर का जो माहौल है उसमें जो बच्चे हमारे होंगे उन पर भी इस चीज़ का असर पड़ता है। वेल, तंबाकू विकास के लिए कैसे खतरा हो सकता है, इस बारे में आप क्या बताना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को?
1: ये तो विकास के लिए ये है कि इसे तो मतलब जो ये तम्बाकू खाने वाले का ही तो भाई साहब हमारी इधर मतलब 24-25 साल में ही गुजर चुके, क्योंकि तम्बाकू से इनसे कैंसर हुआ था। दो
0: जी
1: तीन
0: जी
1: केस इधर ऐसे आए थे
0: प्रकाशन जी,
1: और
0: सभी लोग
1: इसे तो
0: जानते हैं कि तंबाकू से कैंसर होता है, और जो वो तंबाकू के जो
1: जी
0: पैकेट होते हैं उन
1: उस
0: पर
1: पर भी लिखा होता
0: इतनी
1: है जी।
0: भयानक भयानक तस्वीरें बनी हुई होती हैं, तो उसको
1: लिखा
0: देखकर भी
1: रहता जी उसमें आपने।
0: है ना, फिर भी
1: हाँ
0: लोग
1: जी,
0: तंबाकू का सेवन करते हैं। तो कैसे छोड़ा जाए तंबाकू, क्या किस तरह से छोड़े वो
1: मतलब
0: तंबाकू,
1: ये
0: ऐसा क्या किया
1: तो
0: जाए?
1: आदत, मतलब ये तो जिसकी आदत होती है उसकी आदत
0: जी
1: तो नहीं।
0: चलिए, आप रेडियो के पास पहुंच गए, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद
1: नहीं, आज मैं दूर हो गया भाई
0: जी। हाँ, क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को आज इस विषय पर?
1: साहब, जो भी इस प्रोग्राम को सुन रहे हो, क्योंकि ये सभी के लिए बहुत लाभदायक है, और इस पे अगर ध्यान देंगे तो भाई साहब बहुत अच्छी शिक्षा मिलेगी, और ये तंबाकू का सेवन न करें।
0: जी
1: और जो जो श्रोता या कोई कोई भाई लोग इस तंबाकू का सेवन करते हो छोड़ दें, क्योंकि इसमें आगे की बहुत वो होगी, जिंदगी बहुत आगे बढ़ेगी।
0: जी हाँ, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने इस कार्यक्रम में हमारे साथ हमारे तमाम श्रोताओं के साथ में अपने विचार साझा किए। और एक और साथी हमारे जुड़ रहे हैं, हेलो जागरूक श्रोता।
2: हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम
0: वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं?
2: सर। मैं जिला रामपुर ग्राम मुरछैना से नासिर इदरीशी बात कर रही हूँ।
0: नासिर इदरीशी?
2: नहीं, नासिर इदरीशी
0: नासिर इदरीशी, अच्छा, कैसे हैं आप? सब बढ़िया
2: जी सर। अल्हम्दुलिल्लाह, हम ठीक है, आप कैसे हैं
0: जी? हाँ, यहाँ भी बहुत बढ़िया है। अभी इससे पहले जीनत इदरीशी का फोन आया था, कि आप ही की बहन है
2: जी? वो मेरी सिस्टर है
0: जी, तो आप अपने क्या विचार हमारे साथ में साझा करना चाहेंगे हमारे श्रोताओं के इस विषय पर?
2: जी सर। तंबाकू जो है हमारे देश के विकास में अवरोध पैदा करता है, वो हमारे मानसिक विकास में भी अवरोध पैदा करता है, शारीरिक विकास में भी अवरोध पैदा करता है। तो मैं चाहूंगी सभी श्रोताओं से और जितने भी युवा श्रोता हमारे रेडियो से जुड़े हुए हैं, उनसे अनुरोध करना चाहूंगी कि आप तंबाकू की लत से बचें। वो आपके कहीं ना कहीं इससे आपके परिवार को भी नुकसान पहुंचता है, आपको भी नुकसान पहुंचता है, ना ही तो आपकी किसी भी हद तक सोचने के काबिल रहते हैं, ना ही तो कुछ सही कर पाते हैं। अनेक तरीकों की बीमारियों से पीड़ित हो जाते हैं आप, तो तंबाकू जैसी खतरनाक पदार्थों से बचने की कोशिश करें।
0: जी नाजिया जी, बहुत ही खूबसूरत आपका संदेश हमारे तमाम श्रोताओं तक पहुंच चुका है, और आपने इस कार्यक्रम में अपने सुझाव अपने विचार देने के लिए कॉल किया, इसके लिए हम भी आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। कुछ और कहना चाहेंगी?
2: सर नजीबो, आपसे जागरूक श्रोता जो ये प्रोग्राम होता है, मैं सभी उद्घोषकों का इसके लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इतना प्यारा प्रोग्राम शुरू किया जिससे हमारे श्रोता और युवा जागरूक होते हैं।
0: जी बहुत अच्छी बात आपने कही। देखिएगा, हमारा जो कार्यक्रम है, आप सभी श्रोताओं से ही हमारे भी कार्यक्रम है, किसी भी बात को कहने का अर्थ तभी निकल करके आता है जब कोई सुनने वाला हो,
1: जी
0: और आप जैसे जब
1: बिल्कुल,
0: श्रोता हमारे साथ में जुड़े रहेंगे तो निस्संदेह हम एक से बेहतर एक कार्यक्रम आपके लिए प्रस्तुत करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद
1: धन्यवाद
0: आपका।
1: सर, थैंक यू सर।
0: हेलो जागरूक श्रोता,
1: हेलो
0: हेलो जागरूक श्रोता जी, कौन बात कर रहे हैं?
1: हाँ जी, नमस्कार दोनों भाइयों को। मैं ग्राम में राहुल से आचार्य सत्यवीर सिंह बात कर रहा था।
0: जी आचार्य जी,
1: नमस्कार जी।
0: नमस्कार, कैसे हैं आप?
1: हाँ जी साहब, बढ़िया है। आप दोनों भाई कैसे
0: हम भी बहुत अच्छे
1: हैं?
0: हैं। हम भी अच्छे हैं आचार्य जी। तो
1: जी,
0: आचार्य जी,
1: अब और विषय विषय आपने बड़ा अच्छा लिया साहब। आजकल तो लोगों ने स्टेटस बना लिया तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट,
0: जी जी बिल्कुल,
1: शराब
0: जी
1: जी
0: अपनी
1: जी
0: शान
1: जी
0: समझते हैं, फैशन है ये आजकल का, है ना?
1: जी, फैशन हो गया।
0: जी
1: लोग बात सोचते हैं हम इसका प्रयोग करेंगे तो हमारा मान सम्मान बहुत बढ़ेगा।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन वो ये नहीं जानते
1: और
0: कि
1: आप लोग देखते भी होंगे
0: जी,
1: कि जो जो लोग इन चीजों का सेवन नहीं करते उन्हें कोई पूछता भी नहीं समाज में।
0: हाँ बिल्कुल, एक स्टेटस
1: नहीं,
0: बन गया है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है
1: इज्जत
0: आचार्य
1: बन
0: जी, कि जो
1: गई
0: इनका सेवन नहीं करता उनको समाज में नहीं पूछता है,
1: जी।
0: ये शब्द आपके इनसे
1: लेकिन
0: हम
1: जब नुकसान होता है ना तब पता चलता है इसके बाद, है ना?
0: जी
1: ये बात समझ में

0: आती है जब सब कुछ मिल
1: हाँ
0: जाता है।
1: जी जी
0: अच्छा
1: जी तो उससे
0: अच्छा
1: पहले कुछ कुछ लूटे, क्योंकि जो सबसे बड़ी जो हमारी सेहत है वही हमारा सबसे बड़ा खजाना है, और उसी खजाने को
0: हाँ जी
1: हम
0: जी सही
1: लुटा
0: बात
1: रहे
0: है।
1: हैं ना, तंबाकू का सेवन
0: सही
1: करके।
0: बात है, जानबूझ के लुटा रहे हो, डिसीज
1: बिल्कुल, और
0: पे
1: नुकसान,
0: लिखा हुआ
1: जी
0: है
1: जी
0: कि
1: और नुकसान
0: टू
1: से
0: एको
1: पहले
0: के
1: जागरूक,
0: डिजीजेस टू
1: हाँ
0: हेल्थ
1: जी, नुकसान से पहले जागरूक
0: लिखा हुआ
1: करने के
0: होता है ना
1: लिए
0: ये।
1: हमने अपना
0: जी हाँ जी
1: कार्यक्रम
0: हाँ
1: शुरू
0: बिल्कुल
1: किया है, जस्ट
0: जी
1: फॉर
0: जी
1: हेल्थ। तो आचार्य जी, कभी कभी
0: एक
1: कभी ना कभी कभी ना कभी आपने क्या तंबाकू का सेवन किया है?
0: जी कैसी बात कर रहे हो जी, क्या नाम जी
1: एक बार जानना हम चाह रहे थे कि क्या
0: जी
1: कभी एक बार टेस्ट करके
0: जी
1: देखा हो।
0: नहीं साहब देखो जी, मैंने कभी किसी प्रकार का ना
1: बहुत अच्छी
0: अल्कोहल ना
1: बात है।
0: टोबैको कोई चीज की स्वाद कहीं नहीं पता है क्या होती क्या नहीं।
1: जी,
0: जी
1: तो आचार्य जी, जो विषय है हमारा वो है तंबाकू विकास के लिए खतरा।
0: जी
1: सभी
0: जी
1: जानते हैं सेहत के लिए नुकसानदायक है,
0: जी
1: और
0: जी सही
1: सामाजिक
0: बात
1: विकास में या देश के विकास में तंबाकू किस तरह से अड़चन बनता है, बन सकता है या बन रहा है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे हमारे श्रोताओं से?
0: ये। देखिए मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, अभी कुछ वर्ष पहले फिल्म आई थी उड़ता पंजाब,
1: जी
0: उसमें किस प्रकार दिखाया गया था कि युवा वहां का किस प्रकार नशे की हालत में पड़कर अपने आप को किस प्रकार बर्बाद कर लेता है। तो वही सब हमारे जेहन में चित्र उभर करके आते हैं कि जी नशा तो किसी भी प्रकार का हो,
1: नशा बुरा है।
0: और ये नशा तो बुरा है जी, और इसमें अपना स्वास्थ्य तो खराब होता, परिवार घर सब कुछ बेकार हो जाता, कोई किसी की मदद नहीं कर पाता। फिर जब आदमी लास्ट में हॉस्पिटल में जाता है, डॉक्टर कह देता भैया आप तो कोई इलाज नहीं, तब उसकी समझ में आता है कि यार मैंने क्या कर लिया।
1: जी बिल्कुल, देखिएगा दोनों तरह की
0: हाँ
1: हानि
0: हाँ
1: है, फिनेंशियल लॉस भी है और कहना चाहिए स्वास्थ्य की
0: जी।
1: तरफ से भी नुकसान है ना?
0: और राजवीर जी हमने तो देखा है इस चीज में बड़े बड़े लोगों को बर्बाद होते हुए देखा, हमने तो खूब देखा है सब,
1: जी,
0: और
1: देखिएगा
0: वो इस लत तक गिर जाते हैं, अगर समझाने की कोशिश की जाए तो उनको समझने का कोई असर नहीं होता।
1: जी बिल्कुल आचार्य जी, क्योंकि जब तक
0: हमारे हमारे
1: समझ आती
0: परिवेश
1: है।
0: में अभी भी कई व्यक्ति राजवीर जी, रविकांत जी को बता दूं, कई लड़के ऐसे हैं
1: जी
0: जो डॉक्टर ने ये कह दिया कि अल्कोहल छोड़ दो वरना तुम 2-4 दिन के मेहमानों चले जाओगे, लेकिन वो छोड़ने को तैयार
1: छोड़ने को
0: नहीं,
1: तैयार नहीं है। बिल्कुल, हाँ नहीं बिल्कुल, आप
0: क्योंकि वो
1: ठीक कह
0: लत
1: रहे
0: लग गई
1: हैं।
0: ना इस तरह की।
1: देखिए, कुछ लोगों की सोच होती है कि 4 दिन की अगर जिंदगी है तो क्यों ना इसे ऐसे मस्ती से जिया जाए, है ना? लेकिन
0: जी
1: ये
0: रवि जी
1: सोचना,
0: आप आपने बहुत
1: हाँ
0: बढ़िया कह दी
1: ये सोचना अपने स्वार्थी होने का प्रमाण देता है ना? ये सोचना
0: जी
1: चाहिए
0: जी
1: कि
0: बिल्कुल
1: हमारे
0: सही बात
1: पीछे भी
0: है।
1: तो हमारा परिवार है ना, अगर
0: हाँ
1: हमारे
0: जी हाँ हाँ
1: पत्नी या
0: सही
1: बच्चे
0: बात
1: नहीं है, कम से कम हमारे माँ बाप हैं जो हमसे आस लगाए
0: सही बात
1: बैठे हैं ना, तो ये वाला
0: अभी
1: जो
0: पत्नी
1: है
0: बच्चे हो गए और
1: जी,
0: समाज हो गया देश हो गया,
1: हाँ
0: उसमें भी तो हमने
1: बिल्कुल
0: कुछ आशा लगा रखी है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ये व्यक्ति नहीं सोचता, ये स्वार्थी व्यक्ति की पहचान होती है।
0: बिल्कुल ये सोचता जी सही बात है, उससे तो बस अपने एक दो थोड़ा नशा किया, 2-4 मिनट झूलेगा सोचेगा बस, पूरे तो स्वर्ग पा लिया।
1: तो
0: जी जी
1: अब आचार्य जी, दो लाइनों में हमारे श्रोताओं को कुछ संदेश आप देना चाहेंगे?
0: बस जी संदेश तो देखो ये है, जो समझने वाले हैं वो समझें इसके दुष्प्रयोग और इससे बचें, इसका प्रयोग खुद भी ना करें दूसरों को भी ना करें। मैं अगर हमारी वजह से कोई छोड़ दे, एक व्यक्ति को भी यदि हम सुधार दें तो हम समझें कि हमने बहुत बड़ा काम किया।
1: जी, बहुत
0: जी
1: अच्छी
0: ये
1: बात
0: बहुत
1: आपने
0: अच्छी
1: कह
0: बात
1: दी है कि
0: आपने
1: अगर
0: कह
1: हम
0: दी।
1: प्रयास करें, अगर हम स्वयं से तंबाकू का
0: जी
1: सेवन कर रहे हैं तो हम खुद तो छोड़ें, कम
0: जी
1: से कम एक व्यक्ति को और छोड़ने के लिए प्रेरित
0: जी
1: करें,
0: जी
1: उसका
0: सही
1: छुड़वाएं,
0: बात
1: और इसी तरह से ये कड़ी से कड़ी जुड़ती जाएगी तो हो सकता है कि धीरे धीरे जो ये तंबाकू का सेवन है लोग खुद ब खुद बंद कर दें या कम कर दें।
0: जी जी
1: बहुत बहुत
0: सही
1: धन्यवाद
0: बात
1: आचार्य जी इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए आपका, आपने हमें फ़ोन किया इसके
0: धन्यवाद
1: लिए आपका
0: नमस्कार।
1: तहे दिल से धन्यवाद। हेलो जागरूक श्रोता, हेलो जागरूक श्रोता
0: हेलो हाँ नमस्कार जी राजवीर जी, ये अनिल
1: जी,
0: बिनोचा बोल रहा हूँ नगीना से मैं।
1: जी, यानी विनोचा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, नमस्कार, ठीक हैं आप?
0: नमस्कार जी, हाँ ठीक है, आप सब ठीक हैं?
1: जी
0: हाँ
1: हाँ
0: जी हाँ, अभी
1: बिल्कुल,
0: सब
1: हम सब
0: ठीक हैं।
1: अच्छे हैं, और हम सोच ही रहे थे कि हमारे अनिल विनोचा जी की
0: मैं
1: कॉल नहीं आई अभी तक।
0: तो बहुत देर से लगा रहा हूँ जी, तुम पे 9:30 से।
1: जी, तो विनोचा साहब, आज का जो विषय है वो है तंबाकू विकास के लिए खतरा। आप कार्यक्रम सुन रहे हैं, आपको पता ही होगा 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाते हैं, इसी संदर्भ में आज हमने इस टॉपिक को लिया है। तो आप हमारे एक जागरूक श्रोता हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे कि विकास के लिए किस तरह से तंबाकू खतरा पैदा कर सकता है।
0: तंबाकू जो है जैसे बच्चों को भी शुरू से आदत लग जाती है, इवन मतलब 14 साल का या 16 साल के यंग भी हैं और भी हैं, जैसे आपने बात कही, तो
1: जी
0: इससे भारी नुकसान है। लेकिन ये उपलब्धता भी तो है ना इसमें, एक तो बात ये है ना कि जो लोग इसमें लगे हुए हैं, जैसे रोजगार है, 40% GST

0: ये भी एक तरह से नुकसान है, इसकी उपलब्धता ही नहीं होनी चाहिए जिससे नुकसान आदत ही नहीं पड़ेगी।
1: जी।
0: तो
1: अच्छा
0: ये तंबाकू जो है बहुत ही मतलब यूज तो बहुत हो रहा है, लोग स्टेमिनर बढ़ाने के लिए भी पीते हैं लेते हैं मतलब,
1: जी। क्या
0: और
1: इससे
0: भी
1: स्टेमिना बढ़ सकता है?
0: हाँ लोग लेते हैं मेंटली उसके लिए टेंशन के लिए भी ले लेते हैं लोग,
1: लेकिन उसे
0: तो
1: एक क्षणिक भर
0: इससे
1: का फायदा होता है ना।
0: फिर बैंड भी लगा था
1: जी।
0: तो जैसे गुटके वगैरह उसको फिर डबल उसमें पैकिंग कर दिया गया कि हम
1: देखिएगा विनोचा
0: बेचेंगे
1: साहब,
0: उसको।
1: हाँ बैन भी लगाए गए, अलग अलग पैकेजेस में दिया गया। अब इसको एक साथ गवर्नमेंट की तरफ से भी रोक पाना एकदम से संभव नहीं है, क्योंकि
0: हाँ
1: बहुत सारे
0: वो
1: लोग
0: उसमें
1: इससे जुड़े हुए हैं,
0: जुड़े
1: जीविका
0: हुए
1: भी
0: हैं,
1: जुड़ी हुई
0: रेवेन्यू
1: है,
0: भी
1: किसान है जो
0: है,
1: तंबाकू की
0: इससे
1: खेती
0: जीएसटी
1: करते
0: जो है
1: हैं।
0: इन्हीं चीजों पर होता है, हमारी
1: जी।
0: इनकम
1: तो गवर्नमेंट का
0: जीएसटी
1: जो
0: से
1: उद्देश्य
0: जाता
1: है
0: है।
1: इनको महंगा करना, इन पे ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगाना, वो इसीलिए है कि ताकि महंगा होगा तो लोग कम प्रयोग करें।
0: यानी कंज्यूमर कहता हमें तो चाहिए ना, बहुत से लोग होते हैं चाहे कितने का भी है ये
1: हाँ वही हम कह रहे हैं कि लेकिन जो
0: है।
1: कुछ तो फ़र्क पड़ता है, जब
0: जी
1: चीज़ें महंगी होती है तो उसकी बिक्री पे सीधा सीधा फ़र्क पड़ता है। खैर
0: ऐसा है ना, अगर आदमी अपने सेल्फ पर सोचेगा तो उसे बहुत भारी नुकसान
1: हाँ
0: लगेगा,
1: तो इसीलिए
0: ये है
1: तो
0: कि अपने आप को छोड़ना खुद छोड़ना चाहिए सेल्फ विल पावर से, तभी
1: विल
0: हो
1: पावर
0: सकता है।
1: से।
0: लेकिन देखिए आबकारी विभाग भी है और मद निदेश भी है, मद निषेध, तो दोनों डिपार्टमेंट काम करते हैं आप पे, तो
1: देखिएगा एक
0: ये
1: चीज़ और भी है,
0: है।
1: वैसे तो कार्यक्रम का जो समय है वो पूर्ण हो चुका है, लेकिन चलते चलते हम सिर्फ इतना सा कहना चाहेंगे, अगर इस पे आज पूरी तरह से गवर्नमेंट की ओर से प्रतिबंध लगा भी दिया जाए तो जिन लोगों को इन चीज़ों की आदत है वो उसका सेवन कभी छोड़ेंगे नहीं। अब वो जो है नंबर दो में, आप समझ सकते हैं कि किस तरह से गैर कानूनी तरीके से लोग उसका प्रयोग करेंगे, और जब गैर कानूनी
0: हाँ
1: तरीके से लोगों तक वो मादक पदार्थ पहुंचेंगे तो उनकी क्वालिटी क्या होगी, आप समझ सकते हैं, वो और भी ज़्यादा खतरा पैदा कर सकती है। जी
0: बिल्कुल
1: ठीक है विनोचा साहब,
0: बिल्कुल
1: कार्यक्रम का जो समय है वो पूर्ण हो चुका है, बहुत बहुत धन्यवाद आपने इस कार्यक्रम में शिरकत की, और इसी के साथ श्रोताओं आज का ये कार्यक्रम जागरूक श्रोता संपन्न करने की मुझे यानी राजवीर को और मुझे यानी रविकांत वर्मा को
0: दीजिएगा अनुमति। नमस्कार।
1: नमस्कार। अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे फोन कॉल्स पर आधारित सजीव फोन इन कार्यक्रम जागरूक श्रोता। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 11 बज चुके हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत।

0: कुरुक्षेत्र इस फिल्म में अभी आप सुन रहे थे कुमार शानू और अलका याग्निक को।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे?
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
1: ओ 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।
0: श्रोताओं आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रपट संगीत आकाशवाणी के नजीबाबाद

केंद्र से और आपके साथ हूं मैं रविकांत वर्मा। श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत हम अपने श्रोताओं को सुनवाना चाहते हैं उदित नारायण और अलका याग्निक के स्वर में। फिल्म का नाम है क्या दिल ने कहा। शब्द रचना संजय छैल की है और इस गीत के लिए संगीत दिया है हिमेश रेशमिया ने।

जी हाँ श्रोताओं, क्या दिल ने कहा, ये था फिल्म का नाम। अभी आप सुन रहे थे ये प्यारा सा गीत उदित नारायण और अलका याग्निक के युगर सुल में। संजय छैल के लिखे इस गीत को संगीत से सवारा था हिमेश रेशमिया ने। और बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की ओर, जिसे हमने लिया है फिल्म हाँ मैंने भी प्यार किया है। इस फिल्म से आवाजें हैं कुमार शानू और अलका याग्निक की, गीत लिखा है समीर ने और इस गीत के लिए संगीत दिया है नदीम श्रवण ने। तो आइए सुनते हैं कुमार सानू और अलका याग्निक के स्वर में ये प्यारा सा गीत।

हाँ, मैंने भी प्यार किया। इस फिल्म में अभी आप सुन रहे थे कुमार सानू और अलका याग्निक को। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रपट संगीत, और इस कार्यक्रम में हमने अगला गीत लिया है फिल्म अंदाज से। आवाज़ें हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की, शब्द रचना समीर की है, और इस गीत को संगीत से संवारा है नदीम श्रवण ने।

उदित नारायण और अलका याग्निक के युगल स्वर में अभी आप सुन रहे थे फिल्म अंदाज का ये गीत। और श्रोताओं, अब बढ़ते हैं कार्यक्रम के अंतिम गीत की ओर, जिसे हमने लिया है फिल्म दिल मांगे मोर से। आवाजें हैं सोनू निगम और अलका याग्निक। गीत लिखा है समीर ने और इस गीत के लिए धुन तैयार की है हिमेश रेशमिया ने।

सोनू निगम और अलका याग्निक के स्वर में अभी आप सुन रहे थे फिल्म दिल मांगे मोर का ये गीत। और श्रोताओं, इसी गीत के साथ ही कार्यक्रम चित्रपट संगीत अब यहीं पर संपन्न होता है। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 11:30 हो रहे हैं। प्रस्तुत है NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: दंग।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश। उमंग कार्यक्रम में आप सबका स्वागत करती हूं।
3: और मैं हूं अजीत। नमस्कार। आर्यनगर कोहका भिलाई छत्तीसगढ़ से उत्तम सिंह जंघेल जी ने सुविचार भेजते हुए लिखा है,
2: परीक्षा अक्सर अकेले की होती है लेकिन परिणाम सबके सामने आता है, इसलिए कोई भी काम करने से पहले हमें परिणाम का विचार जरूर करना चाहिए।
3: आपका बहुत बहुत आभार इतना सुंदर विचार भेजने के लिए। आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तहसील ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान,
2: ठाणे महाराष्ट्र से शोभा राणे जी,
3: जालंधर पंजाब से संदीप कौर, प्रभा कौर, राधिका कौर और प्रभा जटोलिया,
2: गांव ढाणे कुतुबपुर जिला हांसी हरियाणा से रामधारी गुर्जर, अवनी गुर्जर, प्रियांशी गुर्जर, रियांशी गुर्जर, ओजस गुर्जर, अनाया गुर्जर, गुरदीप गुर्जर और प्यारी बिटिया किरत,
3: और बोरसरा नैला छत्तीसगढ़ से प्रमोद कुमार साहू जी का। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं। संदेश भेजने के लिए निवेदन है, इसी प्रकार से जुड़े रहिए उमंग कार्यक्रम से। अब प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए। श्रोताओं, कल हमने चर्चा की थी रजनीगंधा के बारे में, जो बहुत ही सुगंधित फूल है, लेकिन हमारी चर्चा अधूरी ही रहेगी
2: यदि हम फूलों का राजा कहे जाने वाले गुलाब की चर्चा न करें।
3: जी, ये बात तो है।
2: श्रोताओं, इसे दुनिया का सबसे अधिक प्रिय फूल माना जाता है। गुलाब को इसकी सुंदरता और खुशबू के कारण विदेशी साहित्य में किंग ऑफ ऑल फ्लावर्स भी कहा जाता है। गुलाब फूल की दुनिया भर में लगभग 100 प्रजातियां पाई जाती हैं।
3: जी हाँ, जहाँ तक इसकी उत्पत्ति का प्रश्न है तो आपको बता दें कि गुलाब लगभग 4 करोड़ वर्ष पुराना फूल माना जाता है।
2: जी,
3: क्योंकि वैज्ञानिकों को इसके जीवाश्म भी मिले हैं जो करोड़ों वर्ष पुराने हैं। विमलेश जी, अब एक खास बात ये बताइए कि गुलाब फूल मूल रूप से किस देश का है?
2: अजीत जी, गुलाब फूल मूल रूप से किसी एक देश का नहीं है। वनस्पति वैज्ञानिकों के अनुसार गुलाब एक जंगली प्रजाति है जो मुख्य रूप से उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है, मुख्य रूप से चीन, भारत और मध्य एशिया में।
3: जी, एक रोचक तथ्य ये भी है कि लगभग 5000 वर्ष पहले चीन में गुलाब की खेती के प्रमाण मिलते हैं।
2: जी,
3: गुलाब की कई प्रजातियां चीन से ही विकसित हुई हैं और धीरे धीरे ये प्रजातियां पूरी दुनिया में फैल गई।
2: अजीत जी, अक्सर हम काले गुलाब के विषय में सुनते हैं।
3: काले गुलाब?
2: जी, जिसे ब्लैक रोज भी कहते हैं। क्या गुलाब काले रंग का भी होता है?
3: नहीं विमलेश जी, वैज्ञानिक तथ्य ये है कि जो गुलाब हमें काला दिखाई पड़ता है ना, वो दरअसल गहरे लाल या सुर्ख रंग का होता है।
2: जी,
3: जिसमें थोड़ा थोड़ा बैंगनी रंग भी मिला होता है, इसलिए यह काला दिखाई पड़ता है।
2: जी,
3: वास्तव में ये काला गुलाब है नहीं। वैसे मैंने कई बार विमलेश जी नीला गुलाब भी देखा है।
2: अजीत जी, वैज्ञानिक सत्य ये है कि प्राकृतिक रूप से नीला गुलाब होता ही नहीं है। वैज्ञानिकों ने जैव तकनीक की सहायता से नीला गुलाब विकसित किया है।
3: विमलेश जी, कल हमने रजनीगंधा फूल की चर्चा करते हुए बताया था कि इस फूल की खुशबू रात के समय सबसे अधिक होती है।
2: जी,
3: लेकिन एक बार श्रोताओं को बता दें कि गुलाब के फूलों के साथ ये बात बिल्कुल विपरीत। गुलाब के फूलों की खुशबू प्रातः काल सबसे तीव्र मानी जाती है, क्योंकि इस समय इसकी पंखुड़ियों में सुगंधित तेल सबसे अधिक सक्रिय होते हैं।
2: अजी जी, जब आपने सुगंध की बात की है तो एक बात और मुझे याद आ गई। वो ये

0: ही गुलाब के फूलों के इत्र दुनिया भर में बहुत लोकप्रिय हैं।
1: जी वो तो है।
0: सबको जानकर आश्चर्य होगा कि मात्र एक बूंद इत्र या परफ्यूम बनाने में हजारों गुलाब की पंखुड़ियां लगती हैं।
1: जी बिल्कुल सही आपने कहा विमलेश जी, यही कारण है कि गुलाब की पंखुड़ियों से निकला हुआ रोज ऑयल बहुत महंगा होता है।
0: जी
1: हम सब जानते हैं कि गुलाब खाने और पीने के काम भी आता है, गुलाब का शरबत, गुलकंद वगैरह कौन नहीं जानता।
0: बिल्कुल।
1: आइए अब बात करते हैं गुलाब के फूलों के रंगों की।
0: गुलाब कई रंगों के होते हैं और हर रंग की अपनी मानवीय भाषा होती है। जैसे लाल गुलाब प्रेम का, सफेद गुलाब शांति का,
1: जी
0: पीला गुलाब मित्रता का, और गुलाबी गुलाब सम्मान और प्रशंसा का। और आपको पता है मधुमक्खियों का भी सबसे प्रिय फूल है गुलाब।
1: जी विमलेश जी, कई ऐसे फूल हैं जिनमें कांटे नहीं होते,
0: जी
1: लेकिन प्रश्न मेरा ये है कि गुलाब के पौधे में कांटे क्यों होते हैं?
0: बड़ा मजेदार लेकिन विज्ञान सम्मत प्रश्न है। इसका जवाब है, गुलाब के पौधे में कांटे उसकी रक्षा के लिए होते हैं ताकि जानवरों से आसानी से न खा सकें।
1: जी तो श्रोताओ, ये थी जानकारी हमारे आपके सबके चहेते फूल गुलाब की। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से प्रश्न सुन लीजिए। हमारा प्रश्न है, गुलाब फूल की दुनिया भर में लगभग कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: गुलाब फूल की दुनिया भर में लगभग कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं?
1: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। आप हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भी अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
0: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIT NCERT को जरूर फॉलो करें। इससे आपको हमारी गतिविधियों की जानकारी मिलती रहेगी।
1: तो श्रोताओ, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं पहला कार्यक्रम। शीर्षक है खेल संध्या।
0: ये कार्यक्रम कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक सुंदर कविता का संगीत रूपांतरण है। कार्यक्रम में भारत के पारंपरिक खेलों का उल्लेख किया गया है।
1: खेल संध्या। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। संध्या को हम खेलने जाते,
2: संध्या को हम खेलने जाते,
1: मित्रों संग आनंद मनाते,
2: मित्रों संग आनंद मनाते,
1: कभी दौड़ना और उछलना,
2: कभी दौड़ना और उछलना,
1: कभी गेंद के खेल खेलना,
2: कभी गेंद के खेल खेलना,
1: कभी कबड्डी खो खो खेलें,
2: कभी कबड्डी खो खो खेलें,
1: गुट्टे आँख मिचौनी खेलें,
2: गुट्टे आँख मिचौनी खेलें,
1: गिल्ली डंडा सबको भाता,
2: गिल्ली डंडा सबको भाता,
1: सतोलिया भी मजा दिलाता,
2: सतोलिया भी मजा दिलाता,
1: या फिर पेड़ों पर जा चढ़ना,
2: या फिर पेड़ों पर जा चढ़ना,
1: या हंस हंस के बातें करना,
2: या हंस हंस के बातें करना,
1: जब अंधेरा होने लगता,
2: जब अंधेरा होने लगता,
1: सबको कुछ डर लगने लगता,
2: सबको कुछ डर लगने लगता,
1: तब हम घर को वापस आते,
2: तब हम घर को वापस आते,
1: कल खेलेंगे यह कह जाते,
2: कल खेलेंगे यह कह जाते।
1: अभी आपने सुना इस कविता का वाचन, आइए अब सुनते हैं इसी कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

0: तो बच्चों, अभी आपने सुना ये खेल गीत। अच्छा लगा ना? सच है, मित्रों के साथ खेलने कूदने में कितना मजा आता है ना? खेलने कूदने से व्यायाम तो होता ही है और शरीर में भी चुस्ती फुर्ती आ जाती है। लेकिन भाई, सभी बातों का एक समय होता है, खेलने का समय और खूब मन लगाकर पढ़ने का भी समय। तो समय से खेलिए और समय से पढ़िए। अब आपके लिए एक बड़ी रोचक जानकारी। इस गीत में आपने सुना था, गिल्ली डंडा सबको भाता, सतोलिया भी मजा दिलाता। गिल्ली डंडा तो सबको मालूम है, लेकिन सतोलिया क्या होता है? सतोलिया उत्तर भारत, मुख्यतः राजस्थान का एक पारंपरिक देसी खेल है, जो बच्चों में बहुत लोकप्रिय है। सतोलिया यानी सात। यह सात कंचों या सात गोल पत्थरों की डिस्क और गेंद से दो टीमों के बीच खेला जाता है। इसमें एक टीम द्वारा सात कंचे या पत्थर एक स्थान पर रखे जाते हैं और दूसरी टीम गेंद से उन्हें मारकर गिराने की कोशिश करती है। यदि कंचे या पत्थर गिर जाते हैं तो जीतने वाली टीम चिल्लाती है, सतोलिया। अब आपके लिए कुछ करने को। मालूम कीजिए कि हमारे देश में और कौन कौन से परंपरागत खेल हैं और उन्हें कैसे खेलते हैं। खेल संध्या, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वन्यांकन विकास सांगवान, कविता वाचन स्वर सोहम, वान्या और मनन, गायन स्वर एंजल और वान्या, निर्माण सहयोग जगबंधु जाना, संगीत तथा मार्गदर्शन अजीत होरो तथा निर्माण विमलेश चौधरी। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना ये संगीत में कार्यक्रम खेल संध्या, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम मनोज कुमार पांडे।
1: परमवीर चक्र विजेता मनोज कुमार पांडे की जीवन और भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उनके अपार शौर्य का वृत्तांत इस कार्यक्रम में दिया गया है।

0: यदि मौत मेरे खुद को साबित करने से पहले आती है तो मुझे सौगंध है कि मैं मौत को भी मात दे दूंगा।
1: ये शब्द हैं कारगिल युद्ध के महापराक्रमी योद्धा और परमवीर चक्र विजेता लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे के, जो उन्होंने अपनी डायरी में लिखे थे। निस्संदेह ये शब्द उनकी साहसिक प्रवृत्ति को अभिव्यक्त करने के लिए पर्याप्त हैं।
0: आज हम चर्चा करेंगे भारतीय सेना के जांबाज सैनिक लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे की, जिन्होंने कारगिल युद्ध में परमवीर चक्र प्राप्त किया। उन्हें बटालिक का हीरो भी कहा जाता है। बटालिक कारगिल युद्ध का एक महत्वपूर्ण सामरिक क्षेत्र है।
1: पच्चीस जून 1975 को उत्तर प्रदेश के एक छोटे शहर सीतापुर के निकट रुधा गांव में उनका जन्म हुआ था। वो श्री गोपी चंद्र पांडे और श्रीमती मोहिनी पांडे के सबसे बड़े पुत्र थे। सेना में जाना उनका सपना था। वो हमेशा ही सेना की प्रतिष्ठित वर्दी पहनकर अपने देश के शत्रुओं से लड़ने के सपने देखा करते थे।
0: उनकी प्रारंभिक शिक्षा उत्तर प्रदेश सैनिक विद्यालय लखनऊ में हुई। स्कूली जीवन में उन्हें अत्यंत प्रतिभाशाली छात्र माना जाता था। खेलों में उनकी गहरी रुचि थी। बॉक्सिंग, शारीरिक सौष्ठव और वॉलीबॉल में उन्हें महारत हासिल थी।
2: गोविंद, तू सर्विस कर, पीछे जा। हाँ, और सर्विस सीधा सेंटर में डालना। ओके।
0: उत्तर प्रदेश में वो राज्य स्तर पर नेशनल कैडेट कोर यानी एनसीसी के सर्वश्रेष्ठ कैडेट चुने गए।
3: श्री मनोज पांडे को उत्तर प्रदेश राज्य स्तर पर एनसीसी का सर्वश्रेष्ठ कैडेट घोषित किया जाता है।
1: प्रारंभिक शिक्षा के बाद उन्होंने सेना में जाने की अपनी अदम्य इच्छा को साकार करने के लिए राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी एनडीए में दाखिला लिया। उनके बारे में एक घटना बहुत ही रोचक और प्रेरक है। उस दिन राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में भर्ती होने वाले नौजवानों का साक्षात्कार चल रहा था।
4: तो मनोज पांडे जी, आप बहुत अच्छे अंकों से एनडीए की चयन परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं और इसलिए आपको इस साक्षात्कार में बुलाया गया है।
5: धन्यवाद श्रीमान।
4: तो आप ये बताइए कि आप भारतीय थल सेना में क्यों शामिल होना चाहते हैं?
5: श्रीमान, मैं परमवीर चक्र प्राप्त करना चाहता हूं।
4: वेरी एम्बिशियस। लेकिन क्या आपको लगता है कि परमवीर चक्र एक खिलौना है?
5: श्रीमान, मुझे निश्चय है कि अपने कार्यकाल में मैं अवश्य ही इस लक्ष्य को प्राप्त कर लूंगा।
4: बेस्ट ऑफ लक।
0: और उन्होंने ऐसा ही किया भी। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद उन्हें कमीशन मिला और वो लेफ्टिनेंट के पद पर 11 गोरखा राइफल्स में शामिल हो गए। सेना की ये इकाई अपनी वीरता और पराक्रम के लिए विख्यात है। सेना में कमीशन मिलने के बाद उनकी पहली नियुक्ति कश्मीर घाटी में हुई।
1: मई के महीने में कारगिल और आसपास के सामरिक महत्व के क्षेत्रों में पाकिस्तानी घुसपैठ की खबर दी गई थी। उन दिनों लेफ्टिनेंट मनोज पांडे की गोरखा राइफल्स रेजिमेंट ने सियाचिन में अपनी तैनाती के 1.5 वर्ष पूरे कर लिए थे और रेजिमेंट को शांति क्षेत्र पूना भेजा जा रहा था। लेकिन इस घुसपैठ का पता चलने के बाद लेफ्टिनेंट मनोज पांडे को उनके अद्भुत नेतृत्व कौशल के मद्देनजर सियाचिन के ही बटालिक सेक्टर जाने के निर्देश मिले।
0: युद्ध शुरू हो चुका था।

0: लेफ्टिनेंट मनोज पांडे को एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान का नेतृत्व सौंपा गया। अभियान था सियाचिन की सबसे ऊंची चोटियों में से एक जोबार टॉप पर कब्जा करना। भीषण युद्ध के बाद यह अभियान सफल रहा। अब उनकी टुकड़ी को जोबार टॉप के पास वाली एक और चौकी खालूबार पर कब्जा करना था। वो अपनी टुकड़ी के कमांडर थे।
1: 3 जुलाई 1999 को गोरखा रेजिमेंट के निडर लेफ्टिनेंट मनोज पांडे ने पूरी ताकत से अपनी टुकड़ी के साथ पाकिस्तानी चौकियों पर आक्रमण किया।
2: बहादुर साथियों, मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार

0: आप सबने जबार टॉप की लड़ाई में अपना युद्ध कौशल दिखाया है, उसी प्रकार खालूबार में भी दिखाएंगे।
1: जी,
2: हम तैयार हैं।
0: लेकिन साथियों, दुश्मन तक पहुंचना आसान नहीं है। वे ऊंची चोटियों पर पोजीशन लिए बैठे हैं और हमारी हर कार्यवाही पर नजर रख रहे हैं। उन तक पहुंचने के लिए हमें इस बार वो करना होगा जो कठिन तो है पर असंभव भी नहीं है।
3: वो क्या साहब?
0: इस मैप को देखिए, सीधी चढ़ाई करने में खतरा है, इसलिए हम यहां से पहाड़ के इन दुर्गम दर्रों को पार करते हुए उन तक पहुंचेंगे और फिर अचानक उन पर हमला करेंगे। ये देखिए, यहां दो दर्रे हैं जिनसे चोटी तक पहुंचा जा सकता है, यह नंबर वन और यह नंबर टू।
3: तो इसका मतलब है कि हम दो दिशाओं से उन तक पहुंचेंगे।
0: बिल्कुल सही। दुश्मन का ध्यान भटकाने के लिए हमने वायुसेना से अनुरोध किया है कि उनके विमान थोड़ी थोड़ी देर में खालूबार टॉप पर मंडराते रहे। दुश्मन का ध्यान विमानों की ओर रहेगा। इसी बीच आधी टुकड़ी पहाड़ के इस ओर से और आधी पहाड़ के उस ओर से पर्वत शिखर पर पहुंचेगी, और जब सब पहुंच जाएं तो मैं सबको संदेश भेजूंगा। कूट संदेश मिलने का इंतजार करना।
1: जी साहब।
0: संदेश मिलते ही सबको दुश्मन पर टूट पड़ना है। आक्रमण करने का संकेत होगा गोरखा राइफल्स का युद्ध घोष।
1: जय महाकाली। आयो गोरखाली। जय महाकाली। आयो गोरखाली।
0: तो शुरू करते हैं अभियान। सब तैयार हो जाओ, शाम होते ही हम सब मिशन पर निकल पड़ेंगे।
4: और फिर शुरू हुआ सैन्य अभियान। खालूबार टॉप पर समय समय पर वायुसेना के विमान मंडराते रहे और जो बंकर निशाने पर आए उन्हें उड़ाते रहे। इसी बीच लेफ्टिनेंट मनोज पांडे के नेतृत्व में रणबांकुरों की टुकड़ी खालूबार टॉप की ओर इंच इंच करके बढ़ रही थी।
5: मार्ग दुर्गम था, खून जमा देने वाली ठंड और अत्यधिक ऊंचाई के कारण ऑक्सीजन की मात्रा भी धीरे धीरे विरल होती जा रही थी। लेकिन इन सैनिकों के मनोबल और दृढ़ निश्चय के सामने वस्तु स्थिति भी परास्त होती दिखाई दे रही थी। 4 घंटों की दुर्गम चढ़ाई के बाद आखिरकार उनका लक्ष्य सामने आ गया था। दुश्मन इस बात से बेखबर था कि स्वयं महाकाल उनके सरों पर मंडरा रहा है।
4: आक्रमण हुआ
5: और लेफ्टिनेंट मनोज पांडे के नेतृत्व में वो पलक झपकते ही दुश्मनों पर टूट पड़े।

0: पाकिस्तानी सैनिकों के लिए यह हमला अप्रत्याशित था। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि हमला इस प्रकार होगा। दुश्मन के सैनिक इधर उधर भागने लगे, लेकिन भारतीय सैनिकों ने मशीन गन के प्रहार से उनका काम तमाम कर दिया।
1: लेफ्टिनेंट मनोज पांडे पूरी तत्परता और असीम शौर्य के साथ सैनिकों का नेतृत्व कर रहे थे। इस बीच दुश्मन भी संभल गया था और उनके बंकरों से भी भारी गोलीबारी होने लगी, जिसके कारण भारतीय सैनिक हताहत होने लगे।
2: जब तक दुश्मन की मशीन गनों को शांत नहीं किया जाता, तब तक हमारे जवान हताहत होते ही रहेंगे। मुझे हर कीमत पर उन बंकरों पर हमला करना होगा।
0: उन्होंने हथगोले लिए और गोलीबारी से स्वयं को बचाते हुए, सैनिकों का उत्साह बढ़ाते हुए स्वयं उनके बंकरों पर हमला कर दिया। देखते

0: ही देखते उन्होंने दुश्मन के दो बंकरों का सफाया कर दिया। उनकी इस कार्यवाही में दुश्मन के बहुत से सैनिक मारे गए। अब वो तीसरे बंकर की ओर बढ़ने लगे।
1: इसी बीच गोलियों की बौछार ने उनके कंधे और पैरों को बुरी तरह से जख्मी कर दिया। चोट बहुत गहरी थी और खून बहुत बह चुका था, लेकिन युद्ध के इस वीर नायक ने हार नहीं मानी। वो भारी गोलीबारी के बीच ऐसी घायल अवस्था में भी सैनिक साथियों को आक्रमण जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करते रहे।
0: इस बीच जो भी शत्रु सामने आया, लेफ्टिनेंट मनोज पांडे ने हथगोलों से उसे मौत की नींद सुला दिया और तीसरे बंकर में घुसकर उन पर हथगोलों से भीषण आक्रमण कर दिया। वो आमने सामने के युद्ध में दुश्मनों से भिड़ गए।
1: तीसरे बंकर को नष्ट करने के बाद वो शत्रु के चौथे बंकर की ओर बढ़ने लगे। वो चौथे बंकर के पास पहुंचे ही थे कि दुश्मनों की मीडियम मशीन गन की एक गोली उनके माथे के बीचों बीच जा लगी। गिरते गिरते भी उन्होंने हथगोलों के भीषण प्रहार से उस बंकर के भी कुछ और सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया।
0: बहुत अधिक मात्रा में खून बह जाने के कारण अब उनकी सांसें डूब रही थीं। उनके मुंह से नेपाली भाषा में ये शब्द निकले,
2: ना छोड़नु, ना छोड़नु।
0: जिसका अर्थ है उन्हें छोड़ना मत। इन अंतिम शब्दों के साथ वो चिर निद्रा में लीन हो गई।
1: लेफ्टिनेंट मनोज पांडे की इस अपूर्व वीरता के कारण ही भारतीय सेना सामरिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण चौकी खालुबार पर कब्जा कर सकी और इस प्रकार कारगिल क्षेत्र के बटालिक सेक्टर में भारत की विजय का मार्ग खुल गया।
0: एक महीने बाद 1999 के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इस शौर्य के लिए उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।
1: देश ने इस महावीर की स्मृति को विस्मृत होने नहीं दिया। द्रास कारगिल युद्ध संग्रहालय, राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी पुणे और देश में अन्य कई जगहों पर उनकी स्मृति में स्मारक बनाए और अपने भवनों का नाम रखा।
0: राष्ट्र श्रद्धा सहित इस असाधारण शौर्य के स्वामी और मूर्धन्य युद्ध नायक को नमन करता है।
3: अभी आप सुन रहे थे वीर गाथा श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल। कलाकार अश्विनी वालिया, बाबला कोचर, शिमाइला परवेज, परवेज गौहर और R.S. रघु। शोध व आलेख अजीत होरो। तकनीकी समन्वय बटी लैंग लिंगडो। ध्वन्यांकन मयंक कुमार और शानु मुक्सीम। निर्माण सहयोग तनु गुप्ता। निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी।

अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। श्रोताओं, आपको एक बार पुनः याद दिला दें, आज रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे अपना पसंदीदा फोन इन कार्यक्रम हेलो नजीबाबाद। और रात के हम सफर ये कार्यक्रम आधारित है व्हाट्सएप मैसेज पर। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे आज रात्रि 10:30 पर। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम हमारी बेड़ियां।

0: नमस्कार श्रोताओं, मैं राखी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे कार्यक्रम हमारी बेड़िया में। हमें बहुत खुशी होती है जब आप फोन व पत्र के माध्यम से हमें सुझाव भेजते हैं और हमें उत्साहित करते हैं। हमें आपके सवालों व सुझावों का बेसब्री से इंतजार रहता है। तो श्रोताओं, आज फिर हम आपके लिए एक और नई कहानी को साथ लेकर आए हैं। हमें आशा है आपको हमारी आज की कहानी जरूर पसंद आएगी। आज की कहानी को शुरू करने से पहले आप हमारा फोन नंबर नोट कर लीजिए। हमारा फोन नंबर है
1: 8527449955। जी हाँ, 8527449955।
0: दोस्तों, कहने को तो हम सब एक आजाद भारत में रहते हैं, पर आजादी हमें आज भी पूरी रीति से नहीं मिली है। आज भी हमारे देश में लड़कियां कई रूप से पाबंद हैं और उन्हें कई क्षेत्रों में अभी भी आजादी नहीं मिलती है। आज भी हमारे समाज में लड़कियों को पढ़ने की, नौकरी करने की, अपने सपने पूरे करने की आजादी नहीं है। परंतु वे आज भी बाल विवाह, दहेज प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या, शारीरिक शोषण, पुरुष प्रधानता, सती प्रथा जैसी प्रचलन में पाबंद है। आज हम हमारी कहानी के द्वारा बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे और सीखेंगे कि किसी की कही बात किसी के दिल में किस प्रकार घर कर जाती है, वह उनके जीने तक की इच्छा को खत्म कर देती है या फिर अंदर ही अंदर उन्हें तनाव में ले जाती है। आइए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर।
2: अरे ज्योति, कहाँ हो?
3: जी काकी, आइए आइए, अंदर आइए।
2: कैसे हो, आजकल दिखाई नहीं देते।
3: बस काकी, बढ़िया हूँ। अरे काकी, ये घर के कामों से फुर्सत कहाँ मिलती है? पहले तो पीयू काम में हाथ बटा देती थी, पर अब तो वो पढ़ाई में लगी हुई है। बस परमेश्वर करे बच्ची की मेहनत सफल हो जाए।
2: अरे ज्योति, तेरी क्या मत मारी गई है क्या, जो लड़की को घर के काम न सिखा कर पढ़ने में लगा दिया है?
3: अरे काकी, कैसी बातें कर रही हो आप, आजकल पढ़ाई के बगैर कुछ है क्या?
2: ज्योति, तू नहीं समझेगी, लड़की को फोन दे रखा है, अकेले बाहर आने जाने की अनुमति भी दे रखी है, यह सब तुझको आगे भारी पड़ेगा।
3: नहीं नहीं काकी, ऐसा कुछ नहीं है, हमारी पीहू ऐसी नहीं है।
2: हाँ, पर बाहर की हवा लगने में समय नहीं लगता, बाकी तो जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं तो बस समझा रही थी, उम्र में तजुर्बे से तुमसे बड़ी हूँ।
3: जी काकी, पर मेरी पीहू ऐसी नहीं है।
2: मैं जानती हूँ ज्योति, तभी तो कह रही हूँ, जिन संस्कारों में बच्ची पली बड़ी है उसे उसी में रहने दो, ये बाहर नौकरी के लिए जाना, ज्यादा पढ़ना, फिर बच्चे पूछते भी नहीं है माँ बाप को, तुम उन्हें जानती हो ना, मेरे राजसमंद वाले भाई को?
3: हाँ काकी।
2: उनके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था, इतनी अच्छी लड़की थी, समझदार, होशियार, बाहर सूरत पढ़ने गई और फिर लौट कर आई नहीं।
3: काकी, जितना मैं अपनी बच्ची को जानती हूँ ना, मेरी पीहू अपने माता पिता की बहुत कदर करती है, अगर हम उसे कहें ना

0: वो बिना कुछ कहे सब कुछ छोड़ देगी, पर हम चाहते हैं कि हमारी बच्ची खूब आगे बढ़े, अपना, अपने गांव का, अपने माता पिता का, सबका नाम रोशन करे।
1: हाँ चलो ऐसा ही हो, बस अब मैं चलती हूँ ज्योति। कभी समय निकाल कर घर पर आना और अपना, मोहन का और पीहू का भी ध्यान रखना।
0: जी काकी, आप भी अपना ध्यान रखिएगा।
2: पीहू बेटा।
3: जी माँ आई।
0: बेटा, आप क्या कर रहे थे? अरे
3: माँ मैं पढ़ रही थी, फिर पढ़ते पढ़ते मेरी आंख लग गई थी, आपने आवाज दी तो उठ कर गई।
0: बेटा, तुम सच में पढ़ती ही हो ना बस, या फोन में कुछ?
3: नहीं नहीं माँ, ये आप कैसी बात कर रहे हो? माँ सब ठीक है ना?
4: ज्योति, मैंने सुना है, ये क्या पूछ रही हो तुम पीहू से?
0: आप, आज वो पड़ोस वाली काकी आई थी, खूब सुना रही थी मुझे। सीधे सीधे तो कुछ बोल नहीं पाई, परंतु बहुत कुछ कह के गई है। मुझे बस मेरी बच्ची पीहू की चिंता हो रही है।
4: ज्योति, तुम अच्छे से जानती हो हमारी पीहू कैसी है, तुम उसकी माँ हो।
0: वो तो मैं जानती हूँ, पर आप भी तो जानते हो ना, हमारे यहाँ लड़कियों को ज्यादा पढ़ने की अनुमति नहीं है, बस वो घर संभालती हैं। आज तो बस काकी भूल कर गई है, पर कल कोई ऊंच नीच हो गई तो सारे गांव वाले हमें ही सुनाएंगे।
4: अरे, ये कैसी बातें कर रही हो? ऐसी बातों ना तो सोचो ना ही करो। हमारी पीहू बहुत होशियार है, अच्छे से पढ़कर कलेक्टर बनेगी और हमारे पूरे गांव का नाम रोशन करेगी हमारी बेटी।
0: हाँ आप सही कह रहे हैं।
4: और ज्योति, अब ना तुम कुछ ऐसा सोचोगी ना ही कोई ऐसी बात करोगी जिससे हमारी पीहू परेशान हो। उसे मन लगाकर पढ़ने दो, बस कुछ ही दिनों में उसकी परीक्षा है।
3: जी माँ आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी जिससे आपका या फिर पापा का नाम खराब हो। मैं बस आपका नाम रोशन करने का काम करूंगी।
4: शाबाश बेटा, चलो पीहू, अब तुम तुम्हारे कमरे में जाकर पढ़ाई करो। ज्योति, मैं जानता हूँ गांव में ज्यादा लोग पढ़ाई के महत्व को नहीं समझते, उनके लिए चूल्हा चौका एक लड़की की जगह और संस्कार है। घर, पति, बच्चे, यह सब संभालने के लिए बना है, पर सही उम्र में और पढ़ना या कुछ बनकर अपने गांव, शहर, अपने देश के लिए कुछ करना गलत नहीं है। हमारे पीहू के विचार बहुत अच्छे हैं, वो चाहती है कि वो हमारे और ऐसे कई गांव की परिस्थितियों को बदले और कुछ सहयोग कर सके।
0: जी आप सही कह रहे हैं, अब मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगी जिससे हमारी पीहू परेशान हो।
4: चलो अब सो जाते हैं।
1: पीहू बेटा कैसी हो?
3: मैं अच्छी हूँ काकी जी, आप कैसी हो?
1: मैं भी अच्छी हूँ पीहू बेटा। ये अचानक से तुम्हारा वजन कैसे बढ़ गया?
3: वो क्या है ना, सारा दिन बैठकर पढ़ती रहती हूँ ना, इसलिए बस अब कुछ दिन बाद परीक्षा है, उसके बाद सैर कसरत करके मैं पहली जैसी हो जाऊंगी।
1: हाँ बेटा सेहत पर भी ध्यान दो, मोटी लड़कियों को आजकल कोई पसंद नहीं करता।
0: काकी हमारी पीहू इतनी प्यारी है कि कोई भी उसे देखते ही पसंद कर लेगा।
1: अरे ज्योति बुरा मत मानो, मैं तो पीहू की भलाई के लिए ही बोल रही हूँ। अच्छा वैसे तुम्हें पता चला, पास के गांव की रेखा शहर गई थी पढ़ने के लिए, वहीं एक लड़के के साथ चक्कर चल गया।
0: अरे वो रेखा उर्मिला काकी की बेटी?
1: हाँ वही रेखा।
0: अरे उर्मिला काकी ने उसके लिए कितना किया था?
1: तभी तो तुम्हें समझाती हूँ ज्योति, समय रहते समझ जाओ, पर तुम तो कुछ सुनती समझती ही नहीं हो।
3: पर काकी सब एक जैसे तो नहीं होते हैं ना?
1: पीहू बेटा तुम अभी छोटी हो, तुम कुछ नहीं समझती। ज्योति पर तुम तो समझदार हो ना, कैसा जमाना है, तुम तो समझती हो ना कि लड़कियां सुरक्षित नहीं है।
0: जी काकी शायद आप सही बोल रहे हो, और पीहू बेटा आप छोटे हो, आप चुप रहो। चलो काकी मैं अभी घर चलती हूँ। पीहू बेटा मैं तुम्हें बाहर जाने नहीं दे सकती बेटा, तुम्हें जितना पढ़ना है यहीं पर पढ़ो और एक आम जिंदगी जियो जैसे सब जीते हैं। ठीक है बेटा, मैं जानती हूँ तुम्हारे सपने बड़े हैं, पर मैं नहीं चाहती हूँ कि कुछ ऐसा हो जिससे मैं अपनी बेटी को ही खो दूँ।
3: माँ वैसे तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, पर आप चिंता मत करो, मैं वही करूँगी।

0: जो आप कहोगे।
1: थैंक यू बेटा, मैं चाहती थी कि जो तुम चाहती हो वो बन जाओ, पर बेटा अब मुझे बहुत डर लग रहा है।
0: माँ आप डरिए मत, मैं यही हूँ आपके पास।
2: पीहू तुम किचन में?
0: अरे बाबा आप, वो मम्मी की ना तबीयत थोड़ी खराब है, इसलिए मैं खाना बना रही थी।
2: क्या हुआ ज्योति को?
0: कुछ नहीं, बस वो ऐसे ही, और वो कमरे में अभी आराम कर रही हैं।
1: अरे आप आ गए?
2: तुम ठीक हो ज्योति? क्या हुआ तुम्हें? पीहू बेटा तुम जाओ पढ़ाई करो, यह मैं देख लूँगा।
0: नहीं पापा, मैं बाद में पढ़ लूँगी, आप माँ के साथ बैठो।
2: ज्योति मुझे बताओगी क्या हुआ?
3: ज्योति पड़ोसियों की इधर उधर की और अपने दिल की चिंता, वह उसका निर्णय कि पीहू बाहर जाकर नहीं पढ़ेगी, वह समाज में चल रही हर एक बात मोहन को कह सुनाती है कि किस प्रकार वह अपने लोगों से लड़ते लड़ते थक चुकी है। देखते हैं अब मोहन किसका साथ देगा और किस प्रकार इस परिस्थिति को संभालेगा।
2: पीहू इधर आओ बेटा, मुझे आपसे और आपकी माँ से ये उम्मीद नहीं थी। अब बेटा तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, परीक्षा दो, मुझे तुम पर भरोसा है, मेरी बेटी अपना मुकाम हासिल कर लेगी, बस इतनी मेहनत करके पीछे मत हटना।
0: थैंक यू सो मच पापा, मुझ पर भरोसा करने के लिए।
2: जाओ अपने कमरे में जाओ बेटा। ज्योति मुझे गुस्सा तो बहुत आ रहा है तुम पर मैं तुम्हें प्यार से समझा रहा हूँ कि ऐसे ही किसी की बात सुनकर इतना नकारात्मक मत हो, अपनी बेटी पर भरोसा करो। अगर इस समय हमने उसका साथ नहीं दिया तो शायद जरूर हमारी बच्ची हमसे दूर हो जाएगी।
1: मुझे माफ कर दीजिए, मैं खुद ही अपनी बच्ची का जीवन खराब करने चली थी।
2: ज्योति लोगों का हम कुछ नहीं कर सकते, हम उनके मुंह भी नहीं बंद कर सकते। कोई मोटा हो तो भी उन्हें दिक्कत है, कोई पतला हो तो भी उन्हें दिक्कत है। हम सबको परमेश्वर ने उसकी स्वरूप और समानता में बनाया है, इस बात के लिए हमें उसका धन्यवाद करना चाहिए।
1: जी सही कहा आपने।
2: ज्योति याद रखना, वही बच्चे माँ बाप से दूर हो जाते हैं जिनके माँ बाप उन्हें समझते नहीं। अपनी बेटी का साथ दो, उस पर भरोसा करो और उसकी मेहनत की कद्र करो। प्रार्थना करो कि परमेश्वर से कि हमारी बच्ची सफल हो जाए और परमेश्वर उसे अच्छी बुद्धि दे। लोगों की बातों पर नहीं, परमेश्वर पर भरोसा रखो।
1: जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल ऐसे ही करूंगी, मैं अपनी बच्ची का साथ दूंगी।
2: और हाँ मैं खुद जाऊंगा अपनी बच्ची के साथ उसे परीक्षा दिलवाने।
1: पीहू आज तो तुम्हारा नतीजा आने वाला है ना परीक्षा का?
0: हाँ माँ।
1: बेटा आप इतने परेशान क्यों हो?
0: डर लग रहा है माँ मुझे।
1: अरे मेरी बेटी मुझे पता है नतीजा अच्छा ही आएगा, तो डर मत।
2: पीहू ज्योति जल्दी बाहर आओ, कहाँ हो? अरे पीहू बेटा तुमने परीक्षा पास कर ली है और तुम्हारा पहला पड़ाव भी कलेक्टर के लिए पास हो गया है।
0: आप सच बोल रहे हो ना?
2: हाँ बेटा हाँ, ज्योति मैंने कहा था ना कि पीहू कर लेगी। चलो मिठाई उठाओ, चलो मेरे साथ।
1: कहाँ?
2: काकी कैसी हो, ये लो मुंह मीठा करो।
4: अरे मिठाई किस खुशी में?
2: हमारी पीहू ने पहला पड़ाव पार कर लिया है।
4: अरे वाह, बहुत बहुत बधाई।
1: जी हाँ काकी, अब आप देखना जिस तरह हमारी पीहू ने परीक्षा अच्छे अंकों से पास करी है ना, वो आगे के भी सारे पड़ाव पार कर और जरूर अपने मुकाम पर पहुँच कर हमारे देश का नाम ऊंचा करेगी।
4: हाँ ज्योति, और तुम सब मुझे माफ कर देना, मैंने पीहू के लिए गलत बोला, पर अब मुझे विश्वास है हमारी पीहू सबसे अलग व समझदार है।
2: शुक्रिया काकी। और पीहू ही क्या, हमें किसी के लिए भी कुछ भी गलत बोलने का हक नहीं है बिना उसकी परिस्थिति जाने।
4: हाँ बेटा मुझे माफ कर देना।
2: नहीं नहीं काकी कोई बात नहीं, यह तो खुशी मनाने का समय है।
3: तो श्रोताओं जैसा कि हमने आज पीहू की कहानी से देखा कि किस प्रकार पीहू बहुत पढ़ने वे अपने परिवार गांव देश का नाम रोशन करने के सपने देखती थी, परंतु समाज की गलत व नकारात्मक सोच का असर उसके परिवार उसकी माँ के मन तक आ गया। परंतु मोहन की समझदारी की वजह से पीहू अपने सपने को पूरा कर पाई। कार्यक्रम से जुड़े विचार और सवाल आप हम तक शीघ्र से शीघ्र

जाए। हमारा नंबर है 8527449955। जी हाँ, 8527449955। हमारा पता है कार्यक्रम हमारी बेड़ियाँ, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1। इसी के साथ मैं राखी आपसे विदा लेना चाहूँगी। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बेड़ियाँ। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 12:15 हो रहे हैं। प्रस्तुत है आकाशवाणी के 90 वर्ष होने पर आकाशवाणी नजीबाबाद द्वारा आयोजित संगीत संध्या कार्यक्रम स्वरांजलि के संपादित अंश, जिसमें आज आप सुनेंगे राग यमन पर सुंदरलाल गंधर्व का बांसुरी वादन।

0: अलका याग्निक के स्वर में अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मिड डे मेलोडी का ये पहला गीत, जिसे हमने लिया था फिल्म राज से। शब्द रचना समीर की थी और इस गीत के लिए संगीत दिया था नदीम श्रवण ने। कार्यक्रम का अगला गीत सुनने से पहले आइए सुनते हैं कुछ जरूरी संदेश।
1: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग। और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
0: श्रोताओं, एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम मिड डे मेलोडी में, और कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म विजयपथ से। आवाज़ हैं साधना सरगम की। गीत लिखा है फैज अनवर ने और इस गीत के लिए धुन तैयार की है अन्नु मलिक ने। पलकों पर रुका है समंदर खुमार का, पलकों पर रुका है समंदर खुमार का, कितना अजब नशा है तेरे इंतज़ार का।

साधना सरगम के स्वर में अभी आप सुन रहे थे फिल्म विजयपथ का ये गीत। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म रंग से। आवाजें हैं अलका याग्निक और कुमार सानू की। समीर के लिखे इस गीत को संगीत से सवारा है नदीम श्रवण ने।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मिड-डे मेलोडी, और कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है कुमार सानू और अलका याग्निक के स्वर में। फिल्म का नाम है खुद्दार। गीत लिखा है राहत इंदौरी ने और इस गीत के लिए संगीत दिया है अन्नू मलिक ने।

तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है। ये प्यारा संगीत आप सुन रहे थे फिल्म खुद्दार से। आवाज़ ने थी कुमार शानू और अलका याग्निक की। और श्रोताओं, बढ़ते हैं कार्यक्रम के अंतिम गीत की ओर, जिसे हमने लिया है फिल्म जीत से। आवाज़ हैं कृष्णमूर्ति और कविता कृष्णमूर्ति और साथियों की। समीर के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है नदीम श्रवण ने। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अंतिम गीत,

0: कविता कृष्णमूर्ति और साथियों के स्वर में अभी आप सुन रहे थे फिल्म जीत का ये गीत। और श्रोताओं, इसी गीत के साथ ही कार्यक्रम मिड डे मेलोडी अब यहीं पर संपन्न होता है। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 1 बजने को हैं, आपसे कुछ ही पलों बाद आकाशवाणी दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत अब तक 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि ये योजना सिर्फ नवीकरणीय ऊर्जा की पहल नहीं है, बल्कि ये नागरिकों को बिजली उपभोक्ता से बिजली उत्पादक बना रही है। इस योजना से परिवारों को बिजली के खर्च में कमी लाने, सरकारी सब्सिडी का लाभ उठाने और शून्य बिजली बिल की ओर बढ़ने में मदद मिल रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज देश के सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर उसे सुनाने के निर्देश दिए हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि फैसलों में देरी से याचिकाकर्ताओं को अपूर्णीय क्षति हो सकती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की पीठ ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में त्वरित निर्णय की आवश्यकता पर बल दिया। पीठ ने कहा कि जमानत आवेदनों पर आदेश उसी दिन या अगले दिन सुनाया और अपलोड किया जाना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि जमानत या सजा निलंबन का आदेश सुनाए जाने के तुरंत बाद जेल अधिकारियों को सूचित करना अनिवार्य है। विचाराधीन कैदी को उसी दिन या अधिकतम अगले दिन रिहा किया जाना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सबस्ट्रेट निर्माण तकनीक को भारत में लाने के लिए ओडिशा सरकार, इंटेल और 3DGS को समझौता ज्ञापन पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री वैष्णव ने कहा कि इससे भारत में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को और बढ़ावा मिलेगा। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने आज बंगलुरु में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का इस्तीफा स्वीकार कर लिया। इसके साथ ही मंत्रिपरिषद को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया गया है। हालांकि श्री सिद्धारमैया को कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में वैकल्पिक व्यवस्था होने तक पद पर बने रहने के लिए कहा गया है। इस दौरान उन्हें कोई भी कार्यकारी निर्णय लेने से मना किया गया है। श्री सिद्धारमैया ने कल लोकभवन में अपना इस्तीफा सौंपा था। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। मॉस्को में आयोजित बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि वे आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे।
2: आतंकवाद अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर खतरों में से एक है। राष्ट्रपति पुतिन ने हाल ही में इसे बहुत ही प्रभावशाली ढंग से रेखांकित किया है। उन्होंने महसूस किया है कि

0: एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सभी अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञों को ध्यान देने की जरूरत है। ये मानवता के सभी मूल्यों पर प्रहार करता है। भारत खुद ही इस प्रायोजित आतंकवाद का शिकार रहा है। अप्रैल 2025 में पूरी दुनिया ने जम्मू कश्मीर में 26 निर्दोष नागरिकों की जघन्य हत्या देखी है।
1: भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA पर बातचीत इस वर्ष के अंत तक पूरी कर लेने की प्रतिबद्धता दोहराई है। व्यापार और निवेश मंच पर भारत कनाडा संयुक्त वक्तव्य में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू ने महत्वाकांक्षी और परस्पर लाभकारी CEPA समझौते के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। भारत के लिए पेट्रोलियम ला रहा एक टैंकर होर्मुज जलडमरू मध्य से सफलतापूर्वक निकल चुका है। ये जानकारी समुद्री यातायात पर नजर रखने वाली कई वेबसाइट से मिली है। टैंकर निसोस केरोस होर्मुज जलडमरू मध्य को पार कर विशाखापट्टनम की ओर बढ़ रहा है। इसके 3 जून को वहां पहुंचने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में कल देर रात आए तूफान में निर्माणाधीन पुल के ढहने से 6 मजदूरों की मौत हो गई। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और राज्य आपदा मोचन बल बचाव कार्य में लगे हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में दोपहर के कारोबार में गिरावट का रुख दर्ज किया गया। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 69 अंक गिरकर 75,799 पर था, जबकि निफ्टी 54 अंक की गिरावट के साथ 23,854 पर कारोबार कर रहा था। एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीटों ने ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धाओं में शानदार प्रदर्शन किया। महिला वर्ग में 100 मीटर दौड़ में निपम ने कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ धड़कन देश की। प्रस्तुत है खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं। रामशंकर ने खुशियालगंज थाना शिवगढ़ जनपद रायबरेली से सूचित किया है कि सरिता, जिनकी उम्र 19 वर्ष, कद 5.5 फीट, रंग गेहुआ, चेहरा गोल, इकहरा शरीर है, दिनांक 30 जनवरी 2026 से लापता है। घटना के समय इन्होंने काली हाफ टी शर्ट, सफेद धारीदार काली पैंट व सफेद चप्पल पहन रखी थी। इनके बारे में कोई भी सूचना आप इस मोबाइल नंबर पर दे सकते हैं 7317486242। नंबर एक बार पुनः सुन लें 7317486242। अशोक कुमार ने थाना सलून जनपद रायबरेली से सूचित किया है कि खुशबू, जिनकी उम्र 15 वर्ष, कद 5 फीट, रंग सांवला, चेहरा लंबा है, सुडौल शरीर है, ये दिनांक 10 मई 2026 से लापता है। घटना के समय इन्होंने काला सफेद सूट, गुलाबी सफेद दुपट्टा, कथई चप्पल पहन रखी थी। इनके बारे में कोई भी सूचना आप इस मोबाइल नंबर पर दे सकते हैं 9305519477। नंबर एक बार पुनः सुन लें 9305519477। विकास ने थाना नसीराबाद जनपद रायबरेली से सूचित किया है कि दीपाली, जिनकी उम्र 22 वर्ष, कद 4 फीट, रंग सांवला, चेहरा लंबा, इकहरा शरीर है, ये दिनांक 20 अप्रैल 2026 से लापता है। घटना के समय इन्होंने बैगनी साड़ी, पीला ब्लाउज, लाल चप्पल पहन रखी थी। इनके बारे में कोई भी सूचना आप इस मोबाइल नंबर पर दे सकते हैं 8354065235। नंबर एक बार पुनः सुन लें 8 समाप्त हुई।
1: सुनिए आकाशवाणी प्राइमरी चैनल का बेहतरीन प्रोग्राम।

0: खुद के लिए जरूरी जानकारी, सामयिक चर्चा, फील्ड से ओबी रिपोर्ट्स और गीत संगीत का परफेक्ट मिक्स, सब कुछ एक ही मंच पर। हर दिन शाम 5:45 पर रेडियो ऑन रखिए और जुड़िए नई उड़ान से।
1: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल आज के मेहमान, विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती, आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
2: 4%. He informed that during the season, rainfall is most likely to be normal over northeast India and below normal over central, southern peninsula and northwest India. He said El Nino conditions are very likely to develop during the monsoon season. Addressing the media, Director General of IMD, Dr. Mrityunjay Mohapatra, said the average rainfall of the country during the month of June is most likely to be below normal.
3: We are expecting that weak El Nino condition will develop in the month of June itself, and in July and August, weak to moderate El Nino condition will prevail, and September moderate to strong, then towards end of September it may be strong. Otherwise, the most part of the monsoon it will go as weak to moderate El Nino conditions, but post monsoon season will have the strong El Nino conditions.
2: Benchmark domestic equity indices were trading on a negative note in afternoon trade today. The Sensex lost 69 points to 75,799, while the Nifty 50 dipped 54 points to 23,854 when reports last came in. And with that, we end this news bulletin.
4: उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज मऊ जिले में 392 करोड़ की लागत वाले 114 प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखा। इन प्रोजेक्टों के तवस्सुत से सड़कों, खेल सहूलियात, तालीमी इदारों, शहरी बुनियादी ढांचों को मजबूती मिलेगी। इस मौके पर अपने खिताब में वजीर आला ने कहा,
5: जब अच्छी सरकार आती है, अच्छे लोग चुन करके जाते हैं, तो अच्छी सरकार आती है, और अच्छी सरकार आती है तो विकास लेकर के भी आती है। ये जो विकास है, ये आपके जीवन स्तर को उठाने का माध्यम है, बिना भेदभाव। ये सब तब होता है जब अच्छे लोग चुने जाते हैं और अच्छी सरकार बनती है, तब परिणाम आते।
4: ज़राअत, किसान बहबूद और देही तरक्यात के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने कल नई दिल्ली में 2 कौमी ज़राई इजलास की इफ्तिताही तकरीब को खिताब किया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के मेहनती किसानों की कोशिशों की वजह से मुल्क में वाफर गजाई जखीरा मौजूद है। जनाब चौहान ने कहा कि मुल्क के गजाई तहफ़ को यकीनी करना, किसानों की आमदनी को बेहतर बनाना और मुल्क की आवाम को तगज़िए से भरपूर खुराक मुहैया कराना हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है।
6: देश के किसानों के परिश्रम से, भारत सरकार की योजना, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और नीतियों के कारण, हमारे वैज्ञानिकों ने जो नई नई किस्में बीजों की बनाई उनके कारण, राज्य उत्पादन के हमने तोड़े हैं इस वर्ष में। इस साल कुल मिला के जो खाद्यान्न उत्पादन के आंकड़े आ रहे हैं, 3,765.63 टन अनुमानित है, जो पिछले साल से 188 लाख टन अधिक है।
4: मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तवस्सुत से वजीर आजम रिहायशी स्कीम देही के तहत 12 रियासतों को 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम भी जारी की। इस मौके पर जनाब चौहान ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी का अहादा है कि मुल्क में कोई भी गरीब कच्चे मकान में न रहे। हुकूमत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI सिलेबस में जामे इस्लाह के लिए इंडस्ट्री वर्ल्ड के साथ मिलकर काम कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स और इत्तला तकनीकी के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कल नई दिल्ली में AI सिलेबस अफरादी कुवत के साथ एक आला सतही मीटिंग की। मीटिंग में AI तालीम को मुस्तकबिल की तकनीकी जरूरियात के मुताबिक ढालने पर बातचीत हुई। मरकजी वजीर बराए तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने कल नई दिल्ली वाके CBSE सदर दफ्तर में एक आला सतही जायजा मीटिंग की। मीटिंग में बोर्ड के दर्जा 12वीं के इम्तिहानात की तशखीस और नतायज के बाद के अमल से मुतालिक मौजू का जायजा लिया गया। इस दौरान मरकजी वजीर ने अफसरान को तलबा की दिक्कतों का वक्त पर शफाफ तरीके से और तलबा के मफाद के तरीके से तस्फिया यकीनी करने के अहकाम दिए। साबिक वजीर आजम भारत रत्न चौधरी चरण सिंह की यौम वफात पर वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए खराज अकीदत पेश किया है। वजीर आला ने कहा कि उनकी सादा जिंदगी, किसानों के तई मानवन और अवामी बहबूदी सियासत सभी को हमेशा रागिब करती रहेगी। उनकी यादों को और उसूलों को बनाए रखने के लिए उत्तर प्रदेश हुकूमत कई अवामी बहबूदी स्कीमें चला रही है। दरियासना वजीर आला ने आज लखनऊ में साबिक वजीर आजम चौधरी चरण सिंह की यौम वफात के मौके पर उनके मुजस्मे पर गुल्हाए अकीदत पेश किए। जिला हमीरपुर में ललपुरा थाना हलके के मोरांग कादर गांव के नजदीक बेतवा नदी में जेर तामीर पुल का स्लैब गिरने से 6 मजदूर जां बहक हो गए हैं। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम और गांव के लोग राहत और रसानी के कामों में लगे हुए हैं। 2 लाशों को बरामद कर लिया गया है, बकिया 4 मजदूरों की लाशों की तलाश जारी है। जिला मजिस्ट्रेट अभिषेक गोयल ने बताया कि गुज़िश्ता देर रात 100 किलोमीटर की रफ्तार से आंधी तूफान के चलते ये जेर तामीर पुल की स्लैब गिर गई। बेतवा नदी में जेर तामीर पुल के से की जानकारी लेते हुए उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने मरने वालों के लवाहिकीन को 5-5 लाख रुपए और जख्मियों को 50-50 हजार की माली मदद और मुनासिब इलाज के अहकाम दिए हैं। अमेठी जिले के मुंशीगंज थाना हलके में कल देर रात पेश आए एक सड़क हादसे में 3 नौजवानों की मौत हो गई, जबकि एक शदीद तौर से जख्मी हो गया। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब प्यास से लदा एक तेज रफ्तार ट्रक बेकाबू हो गया और सड़क किनारे जा रही 2 बाइकों पर पलट गया, जिससे 3 नौजवानों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस फरार ड्राइवर की तलाश कर रही है। और रियासत के कई जिला में गुज़िश्ता शब और आज सुबह तेज आंधी और गरज चमक के साथ शुरू हुई बारिश से आवाम को फिलहाल शदीद गर्मी से राहत मिली है। संत कबीर नगर, बलिया, कौशाम्बी, कुशीनगर, अम्बेडकर नगर, पीलीभीत, अयोध्या, चंदौली, जौनपुर, हमीरपुर, गोरखपुर और दारुल हुकूमत लखनऊ समेत कुछ दीगर जिला में बारिश होने की खबर है। इसी दौरान महकमे मौसमियात ने रियासत में कई मकामात पर 31 मई तक आंधी बारिश और तेज हवाओं को लेकर अलर्ट जारी किया है। इससे दर्ज हरारत में 8 से 10 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने का इम्कान है। महकमे के मुताबिक 1 जून से मौसम खुश्क होने की उम्मीद है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।
7: मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 1:15 हो रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम घर संसार।

घर संसार कार्यक्रम सुनने वाली सभी बहनों को थारी बहन अंजना की राम राम और स्वागत तम सभी का। बहनों, हमेशा की तरह आज भी कार्यक्रम में बहुत कुछ लेके आ गए हैं थारे लिए। जैसे सबसे पहले थारे से चर्चा करेंगे आधुनिक मशीनों का उपयोग और खेती, साथ ही जानकारी रहेगी ग्रामीण परिवेश में तंबाकू का सेवन एक गंभीर और जटिल सामाजिक स्वास्थ्य समस्या, और मनोरंजन होगा लोकगीत के साथ। और कार्यक्रम के अंत में थारे से बात करेंगे खेतों में लू से बचाव विषय पर। लेकिन पहले सुन ले कुछ जरूरी संदेश।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
2: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया।
3: बन गया बजट?
2: हाँ,
3: 5,000 बच गए।
2: तो नई साड़ी ले ले।
3: ना,
2: पिछले महीने तो ली थी।
3: एक और
2: नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
3: बढ़िया, जाओ भाई।
4: आरबीआई कहता है,
5: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
6: संदेशों के बाद एक बार फिर स्वागत कार्यक्रम घर संसार में, और बात करते हैं अब आधुनिक मशीनों का उपयोग और खेती। इस विषय पर बहनों, देखा जावे तो आधुनिक मशीनों ने खेती को पूरी तरह बदल दिया है। पहले खेत तैयार करने, बीज बोने, सिंचाई करने और फसल काटने में बहुत समय और मेहनत लगे थी, पर अब मशीनों के कारण ये सब काम कम समय में हो जावे हैं। जहां पहले किसान बैलों और हाथों से खेती करे थे, अब वही खेती ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, स्प्रे मशीन, रोटावेटर, इन सभी आधुनिक यंत्रों से वो खेती करने लगा है, जिससे समय की बचत हुई है, मजदूरी का खर्च भी कम हुआ है और उत्पादन बढ़ा है, और सभी काम समय पर भी होने लगे हैं। और हाँ बहनों, आज मोबाइल एप्स के माध्यम से मौसम की जानकारी भी हमें खेती में काफी मदद करे है। हमारी फसलें बरसात, आंधी तूफान की सटीक जानकारी मिलने से सही समय पर हमारी फसल घर आ जावे है, यानी मशीनों का सही उपयोग किया जावे तो पर्यावरण के लिए भी लाभदायक है, और पानी की बचत, उर्वरकों का संतुलित उपयोग, ये सब कुछ संभव है। इसीलिए बहनों, आधुनिक यंत्रों का उपयोग कर आज हम अपनी खेती में अधिक लाभ ले सके हैं। और अब बात करते हैं एक ऐसे विषय पर जो हम सभी को अपनी गिरफ्त में ले रहा है। जी हाँ बहनों, तुम समझ रही हो, हम बात करने जा रहे हैं नशे के संदर्भ में, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में तंबाकू का सेवन एक गंभीर सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी समस्या बन चुका है। लोग बीड़ी, गुटखा, खैनी, जर्दा, सिगरेट, इन सभी उत्पादों का अधिक मात्रा में उपयोग केवल एक व्यक्ति तक ही सीमित ना है, बल्कि पूरे समाज को ये नशा प्रभावित कर रहा है। और इन नशीली चीजों का सेवन करने के अनेक कारण हो सके हैं। तो आइए इसी संदर्भ में थारे को सुनवाते हैं वार्ता। ग्रामीण परिवेश में तंबाकू का सेवन एक गंभीर और जटिल सामाजिक स्वास्थ्य समस्या। वार्ताकार है मनीषा शर्मा। जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां और आयुर्वेद, इस संदर्भ में आज हमने आमंत्रित किया डॉक्टर श्रुति को। आप हैं आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय भगवान। तो डॉक्टर, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में।
7: धन्यवाद
6: डॉक्टर। जैसा कि आज की दिनचर्या है भाग दौड़ की, तो ऐसे में बहुत अधिक दायित्व बन जाता है कि हम आयुर्वेद को भी अपनाएं। तो हम सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि यह आयुर्वेद चिकित्सा है क्या?
7: जैसे आप आयुर्वेद का शब्द जानते हैं कि दो शब्द से बना है, अगर इसका संधि विच्छेद किया जाए तो इसमें आयु प्लस वेद है। तो जो वेद जो आयु का ज्ञान करवाए उसे हम आयुर्वेद कहते हैं। तो इसमें बहुत तरीके से हम कैसे चिकित्सा करवाई जाती है, जिसमें आहार विहार के बारे में और दवाइयां देकर, जो दो प्रकार से चिकित्सा होती है, एक संशमन एक संशोधन चिकित्सा, उसके द्वारा हम व्यक्ति का चिकित्सा करते हैं।
6: अच्छा, ये जो
8: तंबाकू आज दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य समस्याओं में से एक है, लाखों लोग हर साल इसकी वजह से जान गंवा देते हैं। सबसे दुखद बात यह है कि लोग इसके नुकसान जानते हुए भी इसकी गिरफ्त में आते जा रहे हैं। कोई इसे तनाव कम करने का साधन समझता है, तो कोई फैशन, तो कोई आदत, लेकिन धीरे धीरे यही आदत एक लत बन जाती है, जो इंसान का शरीर, पैसा, परिवार, भविष्य सब कुछ खत्म कर देती है। आज का हमारा विषय केवल तंबाकू तक ही सीमित नहीं रहेगा। हम जानेंगे कि तंबाकू क्या है, ये शरीर पर क्या प्रभाव डालता है, आखिर इससे बचने का क्या रास्ता है। तंबाकू एक ऐसा पौधा है जिसकी पत्तियों में निकोटिन नाम का नशीला पदार्थ पाया जाता है। इसी निकोटिन की वजह से इंसान को इसकी लत लग जाती है। तंबाकू का उपयोग कई रूपों में किया जाता है, जैसे सिगरेट, बीड़ी, हुक्का, गुटखा, पान मसाला, खैनी और जर्दा। बहनों, कुछ लोग समझते हैं कि केवल सिगरेट ही नुकसान करती है, लेकिन सच्चाई यह है कि तंबाकू का हर रूप खतरनाक है, चाहे धुएं के रूप में लिया जाए या चबाकर, यह हर रूप में नुकसानदायक है। अब सवाल यह उठता है कि तंबाकू की आदत फैलती कैसे है। तंबाकू की लत लगने का सबसे बड़ा कारण गलत संगति है। अक्सर हमने देखा है कि युवा अपने दोस्तों को देखकर इसकी शुरुआत करते हैं। शुरुआत शौक से होती है और बाद में यह एक आदत बन जाती है। कुछ युवा इस लत को आधुनिकता और स्टाइल की निशानी समझने लगते हैं। तनाव और मानसिक दबाव के कारण भी कुछ लोग इसका सेवन करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि तंबाकू लेने से तनाव कम होता है, जबकि सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है। ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता की कमी भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। कई लोग इसकी गंभीर परिणामों को समझ ही

नहीं पाते। छोटे दुकानदार खुलेआम बच्चों तक को गुटखा सिगरेट बेच देते हैं, जिससे कम उम्र में ही बच्चे इसकी चपेट में आ जाते हैं। तंबाकू शरीर को धीरे धीरे अंदर से खत्म करता है। इसमें मौजूद निकोटिन व अन्य जहरीले रसायन शरीर के अंगों को नुकसान पहुंचाते हैं। तंबाकू के सेवन का सबसे ज्यादा असर फेफड़ों पर पड़ता है। धूम्रपान से कमजोर फेफड़े कमजोर होने लगते हैं। इसके अलावा यह मुंह, गले व खाने की नली के कैंसर का मुख्य कारण बनता है। तंबाकू के सेवन से हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। इतना ही नहीं, तंबाकू गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए भी बेहद खतरनाक है। गर्भावस्था के दौरान इसका सेवन बच्चों के विकास को प्रभावित कर सकता है। तंबाकू के सेवन से फेफड़ों का कैंसर, मुंह का कैंसर, टीवी, दमा और दिल की बीमारियां होती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में तंबाकू की लत के कारण लोग भोजन पर कम खर्च करते हैं, जिससे कुपोषण बढ़ता है। ग्रामीण महिलाओं में तंबाकू जो मुंह में चबाया जाता है, जिससे गर्भावस्था के दौरान गंभीर जटिलताएं और कम वजन वाले बच्चों का जन्म होता है। भारत दुनिया के उन देशों में शामिल है जहां तंबाकू का सेवन सबसे अधिक होता है। यहाँ करोड़ों लोग किसी न किसी रूप में तंबाकू का सेवन करते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर साल लाखों लोगों की मृत्यु तंबाकू से जुड़ी बीमारियों के कारण होती है। रिपोर्ट बताती है कि भारत में कम उम्र में ही युवा तंबाकू की लत का शिकार हो जाते हैं। भारत सरकार को भी तंबाकू से होने वाली बीमारियों पर भारी खर्च करना पड़ता है। अस्पतालों में कैंसर के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इससे देश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा तंबाकू का असर देश की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है। एक तरफ लोग अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा तंबाकू पर खर्च करते हैं, दूसरी तरफ बीमारी के कारण काम करने की क्षमता कम हो जाती है। इससे परिवार और देश दोनों के को आर्थिक नुकसान होता है। कई बार लोग सोचते हैं कि तंबाकू केवल लेने वाले व्यक्ति को ही नुकसान पहुंचाता है, लेकिन सच्चाई यह है कि इसका बड़ा असर परिवार पर पड़ता है। एक व्यक्ति जो रोज सिगरेट या गुटखा पर पैसा खर्च करता है, धीरे धीरे घर की आर्थिक स्थिति को कमजोर कर देता है, और फिर जब बीमारी आती है तो इलाज में लाखों रुपए खर्च होने लगते हैं। कई परिवार अपनी बचत खो देते हैं, बच्चों की पढ़ाई एक रुक जाती है, घर का माहौल तनावपूर्ण हो जाता है। एक पिता जो घर का मुखिया है, बच्चों का सहारा है, बीमारी के कारण कमजोर हो जाता है, काम पर जाने में असमर्थ हो जाता है। ऐसे में उस परिवार के भरण पोषण की विकट समस्या खड़ी हो जाती है। इस समस्या से निपटने के लिए सबसे जरूरी है जागरूकता। लोगों को समझना होगा कि तंबाकू कोई शौक नहीं है, बल्कि एक खतरनाक जहर है जो हमारे समाज को धीरे धीरे विषैला कर रहा है। माता पिता को बच्चों पर ध्यान देना चाहिए, स्कूल कॉलेजों में जागरूकता अभियान चलाने चाहिए, सरकार को भी तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर सख्ती करनी चाहिए, खासकर बच्चों के लिए। जो लोग इस लत से छुटकारा पाना चाहते हैं, उन्हें परिवार और समाज का सहयोग मिलना चाहिए। तंबाकू सेवन करने वाले लोगों का सामाजिक स्तर धीरे धीरे गिरता जाता है, हीन भावना से ग्रसित हो जाते हैं। वह सामाजिक रूप से सक्रिय नहीं रहते, जो कि सामाजिक अलगाव का एक बड़ा कारण बनता है। तंबाकू के सेवन से परिवारों का भोजन और शिक्षा जैसी बुनियादी जरूरतों पर भी होने वाला खर्च कम हो जाता है, जिससे गरीबी और भुखमरी बढ़ जाती है। योग, व्यायाम और सकारात्मक गतिविधियां इस आदत से बाहर आने में मदद कर सकती हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें अपने मनोबल को मजबूत करना होगा, तभी हम इस आदत से छुटकारा पा सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तंबाकू छोड़ना संभव है। शुरुआत में कठिनाई होगी, लेकिन मजबूत इच्छा शक्ति से ये आदत छोड़ी जा सकती है। बहनों, जैसे कि आप जानते हैं कि आज तंबाकू के गंभीर विषय पर बात हो रही है। बहनों, ये एक बेहद ही गंभीर और जटिल सामाजिक स्वास्थ्य समस्या है, जो हमारे ग्रामीण परिवेश में गहराई से असर डाल रही है। मेरे अपने एक मिलने वाले हैं, जो एक छोटे से गांव से हैं। उन्होंने तंबाकू का सेवन बचपन में ही करना शुरू कर दिया था, जब वो बहुत छोटे थे। उन्होंने किसी को तंबाकू का सेवन करते देखा, उन्होंने भी उन्हें देखकर बिना कुछ सोचे समझे लेना शुरू कर दिया।

वे फेफड़ों की गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं और वो अब बहुत पछताते हैं। बहनों, ये सिर्फ एक आदमी की बात नहीं है, तंबाकू तेजी से समाज में जहर की तरह फैल रहा है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। जो भी इसको लेने लगता है, शुरू में तो इसका पता नहीं चलता, पर धीरे धीरे आदमी को ये अपनी गिरफ्त में ले लेता है और धीमे जहर की तरह उसके शरीर को खोखला कर देता है। तंबाकू सिर्फ शरीर को खोखला नहीं करता, अपितु पूरे समाज पर इसका बुरा असर पड़ता है। इस सामाजिक समस्या से निपटने के लिए ग्रामीण स्तर पर जागरूकता, शिक्षा और परामर्श का प्रचार आवश्यक है। यदि आप या आपके परिचित तंबाकू की लत छोड़ना चाहते हैं, तो भारत सरकार का स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ग्रामीण स्तर पर तंबाकू नियंत्रण और परामर्श केंद्र संचालित करता है। इसके विषय में आप जानकारी ले सकते हैं। बहनों, इसके लिए सबसे जरूरी है जागरूकता और इंसान का अपना मनोबल। यदि इच्छा शक्ति अपनी मजबूत हो तो कोई भी व्यसन हमें नहीं लग सकता। हम हर बुरी संगति से दूर रह सकते हैं। तंबाकू छोड़ना संभव है यदि हम अपनी इच्छा शक्ति को इतना मजबूत कर लें कि हमें बुरी लत का शिकार नहीं होना, तो हम कभी भी इसका सेवन नहीं कर सकते हैं। अंत में बस इतना कहना चाहूंगी कि जीवन बहुत कीमती है, हमारे सपने, हमारा परिवार और हमारा भविष्य हमसे जुड़ा हुआ है। हमें किसी भी ऐसी चीज को हम पर हावी नहीं होने देना चाहिए जो हमें धीरे धीरे मौत की तरफ ले जाए। तंबाकू कभी दोस्त नहीं हो सकता, यह केवल बीमारी, दर्द और विनाश देता है। आइए हम आज ही संकल्प लेते हैं कि हम तंबाकू का

किया जा सके है, तो शायद हमारे गांव इस नशे की लत से छुटकारा पा सके। जैसे जागरूकता अभियान चला के स्कूलों में तंबाकू विरोधी कार्यक्रम का आयोजन करके, तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर सख्ती से नियंत्रण करके नशे से जरूर छुटकारा पाया जा सके। साथ ही यदि मनुष्य की इच्छा शक्ति मजबूत हो तो भी नशे से छुटकारा पा सके हैं। और आइए अब करवाते हैं थारा मनोरंजन और सुनते हैं प्यारा सा लोकगीत। लेकिन बहनों आप जानो ही हो कि लोकगीत भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर है। ये केवल मनोरंजन का साधन ना है बल्कि समाज की परंपराओं की भावनाओं और प्रकृति के प्रति प्रेम को भी व्यक्त करे हैं। खेती बाड़ी, वर्षा, फसल कटाई और त्योहारों के अवसर पर गाए जाने वाले गीत लोगों को पर्यावरण के महत्व को भी समझावे हैं। और आज के समय में बढ़ते प्रदूषण और पर्यावरण संकट को देखते हुए लोकगीतों की महत्ता और भी बढ़ जावे है। बहनों यदि हम सभी लोकगीतों की परंपरा को जीवित रखें तो समाज में पर्यावरण संरक्षण के प्रति हम जागरूकता को बढ़ा सके हैं। तो आइए कुछ ऐसा ही सुनते हैं ये पर्यावरण से संबंधी लोकगीत निर्देश त्यागी की आवाज में।

बरगद पूजन करने आऊं। जी हाँ बहनों, अभी आपने ये प्यारा सा लोकगीत निर्देश त्यागी की आवाज में सुना। सच बहनों, बरगद का पेड़ हो, पीपल का पेड़ हो या फिर अन्य कोई, हम पेड़ पौधों की पूजा इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि वो हमें ऑक्सीजन देवे हैं। जीवनदायिनी गैस जो है वो हमें अपने पेड़ पौधों से ही मिले हैं और पर्यावरण की सुरक्षा करना हम सभी का दायित्व बने हैं। इसीलिए हम पेड़ पौधों की समय समय पर या उनसे संबंधित त्योहारों पर उनकी हम पूजा अर्चना करें हैं और दीर्घायु होने का वरदान प्राप्त करें हैं। तो इसीलिए बहनों, अधिक से अधिक मात्रा में इस समय पेड़ पौधे लगावें जिससे हम अपने पर्यावरण को संरक्षित कर पाएं, क्योंकि ये पर्यावरण है तो हमारा जीवन है। और यदि हमारा पर्यावरण ही स्वच्छ ना रहेगा तो आप समझ सको हो कि हमारे जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। इसलिए पर्यावरण के प्रति जागरूक होना बहुत जरूरी है और समय समय पर हमारी भारतीय संस्कृति ये सब कुछ हमें सिखावे है। इसीलिए हमारे बुजुर्ग, हमारी जो बुजुर्ग महिलाएं हैं वो पूजा अर्चना करें हैं, चाहे वो नदी नालों की हो या फिर पेड़ पौधों की हो। नदी नालों की पूजा हम इसलिए करें कि हमें अपने

पानी की बचत करनी है पेड़ पौधे की। अर्चना हम इसलिए कर रहे हैं कि हमें पर्यावरण को सुरक्षित रखना है। तो बहनों, इस तरह हम समय समय पर लोकगीतों के माध्यम से, चर्चाओं के माध्यम से जागरूक करते रहे हैं, तो इस ओर ध्यान जरूर देना चाहिए। और देखो बहनों, इस समय गर्मी भी चरम सीमा पर है, और जो इस समय हवा जो चल रही है वो गर्म हवा चल रही है, और उसे ही हम लू कह रहे हैं। यदि कोई इस समय धूप और गर्म हवा में अधिक देर तक रह लेना बहनों, तो व्यक्ति बीमार पड़ सके है, और ये स्वास्थ्य के लिए बहुत अधिक नुकसान दे सके है। तो बहनों, हम तो थारे से ये कहेंगे कि अगर हमारी बहनें खेतों पर जा रही हैं, तो सुबह शाम में वो जावे, जिससे उनका काम भी निमट जाएगा और वो बीमार भी ना पड़ने की। क्योंकि यदि बहुत अधिक देर तक इस गर्म हवा में और धूप में रहेंगे, तो तेज बुखार हो सके है, सिर दर्द, चक्कर आना, बेहोशी होना, कमजोरी महसूस होना, अधिक प्यास लगना, या फिर उल्टी बेहोशी होना, ये सब लक्षण बहनों दिखाई देते हैं लू लगने पर। कि अगर आपको लू लग गई तो ये सब लक्षण दिखाई दे सके हैं, और इसका समाधान बहनों बस यही है कि धूप में जाने से बचें, और जो भी काम आपको करना है, बाजार हाट का करना है, खेतों का करना है, वो सुबह शाम में कर ले तो बेहतर होगा, क्योंकि इससे हम अपने आप को सुरक्षित रख सके हैं। और साथ में इससे बचने के लिए अधिक मात्रा में पानी पिए, और नींबू पानी है, छाछ है, या फिर ORS का घोल बना करके भी हमारी बहनें पी सके हैं। हल्के सूती कपड़े पहने, बाहर जाते समय सिर को ढक लें, या फिर छाते का प्रयोग करें, ताजा भोजन, मौसमी फल खाएं, और इस समय खीरा, ककड़ी, खरबूजा, तरबूज, इस समय खूब चले हैं। और ये फल देखो मौसम के हैं, और ये इसीलिए देखो ईश्वर ने भी इस समय इनको इसलिए बनाया है क्योंकि ये हमारे शरीर के अंदर पानी की पूर्ति करें, और ये हमारे लिए बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक हुए हैं, इसलिए हमें इनका सेवन करना चाहिए। और खीरा, ककड़ी, इनका अगर सलाद बना करके खाने से पहले सेवन किया जाए, तो ये बहुत अधिक हमारे स्वास्थ्य में वृद्धि करें हैं। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें, और अपने बुजुर्गों का, अपने बच्चों का भी विशेष ध्यान रखें, क्योंकि हमारे बुजुर्ग भी थोड़ा बच्चों के स्वभाव जैसे हो जावे हैं। साथ ही हमारे बच्चे तो कोमल स्वभाव के हैं ही, वो अपने हाथ, गंदे जो हाथ होते हैं वो मुंह में दिए रहते हैं, और उन्हीं हाथों से वो कुछ भी खा लेते हैं, इसलिए जल्दी से जल्दी बीमार पड़े हैं। तो उनका ध्यान रखना, साफ सफाई का ध्यान रखना है, और प्रतिदिन स्वच्छ और ठंडे पानी से स्नान करना है, अपने बच्चों को नहलाना है, तो हमारे बच्चे लू से बचे रहेंगे। और देखो बहनों, गांव में तो नीम भी बहुत अधिक मिला है, और गर्मी के कारण इस समय घमोरिया भी निकल आवे है, तो उस घमोरे से बचने के लिए भी नीम के पत्ते पानी में भिगो करके रख दें, और जब भी स्नान करें उसके बाद उसमें एक लोटा जो नीम का पानी है वो डाल लें, तो उससे घमोरिया से भी राहत मिलेगी। और जब भी बाहर निकले अपने साथ में प्याज को रखें, तो उससे भी लू का बचाव होगा। तो इस तरह से बहनों आप लू से बच सके हैं। और देखो, घड़ी की सुइयां कहें कि और बात ना, लेकिन चलने से पहले थारे को बताएंगे अपना पता, जिससे चिट्ठी पत्री हम तक पहुंच सके। लेकिन कंजूसी करो हो आप बहुत अधिक, तो ये हमारी शिकायत है आपसे, तो कंजूसी ना करनी है, और हमें चिट्ठी पत्री जरूर लिखनी है। तो पता नोट करें, कार्यक्रम घर संसार द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी निजीबाबाद, पिन 2467633। और अब अगले कार्यक्रम तक के लिए अपनी बहन अंजना को दे अनुमति। बहनों, राम राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम घर संसार, मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 1:45 हो रहे हैं। प्रस्तुत है लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा, जिसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं भानुराम सुकोटी के गाए कुमाऊनी लोकगीत।

श्रोताओं, आकाशवाणी नजीबाबाद से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लोकधारा, जिसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं भानुराम सुकोटी के गाए कुमाऊनी लोकगीत। तो लीजिए, पेश है कार्यक्रम का ये अगला कुमाऊनी लोकगीत।

0: event at the championships. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Supreme Court directs all high courts to pronounce judgment within 3 months of reserving order. Education Minister Dharmendra Pradhan assures strict action against examination mafias and protection for deserving students. PM Surya Ghar scheme achieves major milestone as 40 lakh households embrace rooftop solar. IMD predicts below normal monsoon rainfall in the country and above normal heatwave conditions in several states during June. And Indian sprinter Neepam wins bronze in women's 100 meter at under 20 Asian Athletics Championships in Hong Kong. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर उसे सुनाने का निर्देश दिया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का परीक्षा माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई और योग्य छात्रों के हितों की सुरक्षा का आश्वासन। पीएम सूर्य घर योजना को महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल, इसके अंतर्गत 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए गए। मौसम विभाग का जून में पूरे देश में सामान्य से कम वर्षा का अनुमान, कई राज्यों में लू की संभावना। हांगकांग में आयोजित अंडर 20 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीट निपम ने महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने आज देश के सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर उसे सुनाने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने कहा कि फैसलों में देरी से याचिकाकर्ताओं को अपूर्णीय क्षति हो सकती है। एक रिपोर्ट।
2: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि फैसलों में देरी से याचिकाकर्ताओं को अपूर्णीय क्षति हो सकती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की पीठ ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में त्वरित निर्णय की आवश्यकता पर बल दिया। पीठ ने कहा कि जमानत आवेदनों पर आदेश उसी दिन या अगले दिन सुनाया और अपलोड किया जाना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि जमानत या सजा निलंबन का आदेश सुनाए जाने के तुरंत बाद जेल अधिकारियों को सूचित करना अनिवार्य है। विचाराधीन कैदी को उसी दिन या अधिकतम अगले दिन रिहा किया जाना चाहिए। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि पेपर लीक की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। डीडी न्यूज को दिए एक विशेष साक्षात्कार में श्री प्रधान ने आश्वासन दिया कि पुनर्परीक्षा प्रक्रिया उचित और व्यवस्थित तरीके से बिना किसी त्रुटि के सम्पन्न की जाएगी।
3: जो घटना हुई है ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है, नहीं होनी चाहिए था। अभी दोबारा जब हम लोगों ने री नीट की घोषणा किया है और री नीट सुव्यवस्थित हो जाए, इसमें निर्भुलता के साथ हो, ये अभी हमारा दायित्व है। इस काम से सभी का सहयोग हम अपेक्षा रखते हैं।
1: छात्रों को संबोधित करते हुए श्री प्रधान ने उन्हें आश्वासन दिया कि सरकार उनकी चिंताओं को समझती है। उन्होंने स्वीकार किया कि छात्रों के विश्वास को ठेस पहुंची है। श्री प्रधान ने आश्वासन दिया कि परीक्षा प्रक्रिया को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच त्रुटि रहित परीक्षा आयोजित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।
3: छात्रों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो गलती हुई है, हमारी ट्रस्ट को ब्रिज किया गया है। जो रक्षक था वही भक्षक हुआ। जो शिक्षक को हमने जिम्मेवारी दिया था क्वेश्चन बनाने के लिए, उन्होंने ही कॉम्प्रोमाइज हुआ है। उन्हीं के कारण ये अव्यवस्था शुरू हुई है। हमने एक कठोर निर्णय किया कि हमने एक भी सही विद्यार्थी के हक को परीक्षा माफियाओं के हाथ में सौंपना नहीं चाहते थे। उनके षड्यंत्र के शिकार नहीं होना चाहते थे। हम बच्चों की मानसिक स्थिति को सम्मान करते हैं, उनको संभालना चाहते हैं और हमको एक एरर फ्री एग्जामिनेशन देने का पूरा हमारी प्रयास।
1: परीक्षा प्रक्रिया में भविष्य में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोकने के लिए उठाए जा रहे ठोस कदमों के बारे में श्री प्रधान ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सबस्ट्रेट निर्माण तकनीक को भारत में लाने के लिए समझौता करने पर ओडिशा सरकार, इंटेल और 3DGS को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री वैष्णव ने कहा कि इससे भारत में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को और बढ़ावा मिलेगा। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत मजबूत अर्थव्यवस्था

0: व्यवस्था के रूप में उभरा है और सुधारों तथा नीतिगत समर्थन के माध्यम से वस्त्र क्षेत्र में तेजी से वृद्धि हो रही है। आंध्र प्रदेश के दो दिन की यात्रा के दौरान आश्रय सिंह ने कृष्णा जिले के मल्लावल्ली औद्योगिक पार्क में स्थित मोहन स्पिनटेक्स कंपनी का दौरा किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में भारत के वस्त्र बाजार का कारोबार 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक है और सरकार वर्ष 2030 तक इसे बढ़ाकर 25 लाख करोड़ रुपए से अधिक करने पर काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे होने पर उन्होंने कहा कि भारत को वैश्विक स्तर पर अधिक पहचान मिली है।
1: 12 साल अगर कंपेयर करूं मैं तो एक ही चीज कहा, इकोनॉमी में, एक्सपोर्ट में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो जो बेसिक चीजें हैं, एजुकेशन में, आईआईटी, एम्स, मेडिकल कॉलेज, ये कई ऐसे सवाल हैं। मोदी ने बेसिक चीजों को 12 साल में ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया है।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत अब तक 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि ये योजना सिर्फ नवीकरणीय ऊर्जा की पहल नहीं है बल्कि नागरिकों को बिजली उपभोक्ता से बिजली उत्पादक बना रही है। इस योजना से परिवारों को बिजली के खर्च में कमी लाने, सरकारी सब्सिडी का लाभ उठाने और शून्य बिजली बिल की ओर बढ़ने में मदद मिल रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर एक अभूतपूर्व सफलता थी जिसमें भारत ने पाकिस्तान को 4 दिन में ही युद्ध विराम के लिए विवश कर दिया। ये भारत के अब तक के लड़े गए सभी युद्धों से अलग था। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर पर स्मृति प्रकाशन जारी करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि ये प्रकाशन केवल ऐतिहासिक विवरण तक ही सीमित नहीं है बल्कि इसमें वीर सैनिकों के व्यक्तिगत अनुभवों को भी समाहित किया गया है। श्री सिंह ने कहा कि ये आधुनिक युद्ध के मानवीय पहलू की भी झलक देता है जहां नेतृत्व, साहस, दबाव में निर्णय लेने की क्षमता और प्रतिबद्धता रणनीति को सफलता में बदल देती है। रक्षा मंत्री ने इस प्रकाशन से प्रेरणा लेने और देश की सुरक्षा तथा संप्रभुता को सुनिश्चित करने और बलिदान योग्य नागरिक बनने का आग्रह किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आंतरिक और वैश्विक शांति प्राप्त करने के लिए भक्ति और ध्यान को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया है। आज बंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन इंटरनेशनल सेंटर के 45वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भक्ति स्वयं, परिवार, समाज, राष्ट्र और मानवता के प्रति समर्पण का प्रतीक है। रिजर्व बैंक ने आज अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की है। इसमें कहा गया है कि ऊर्जा की ऊंची कीमतों, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और वैश्विक बाजार में अस्थिरता जैसी चुनौतियों के बाद भी मजबूत व्यापक आर्थिक बुनियादी कारक चालू वित्त वर्ष में भारत की विकास गति को बनाए रखेंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि कॉरपोरेट और बैंकिंग क्षेत्रों की स्वस्थ बैलेंस शीट, साथ ही पूंजीगत व्यय पर सरकार का निरंतर ध्यान आर्थिक विकास को मजबूती प्रदान करेगा। इसमें भू राजनीतिक संकट और पश्चिम एशिया संघर्ष वैश्विक विकास तथा मुद्रा स्फीति को प्रभावित करने वाली प्रमुख चिंताओं के रूप में उभरे हैं। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज संसद भवन परिसर में संसदीय कार्य मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मेघवाल ने कहा कि बैठक में सांसदों, विधायकों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सरकारी कार्यों में हिंदी के प्रभावी, सरल और व्यापक उपयोग पर सार्थक चर्चा हुई। श्री मेघवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार हिंदी भाषा को सुशासन, जनभागीदारी और लोकतांत्रिक संवाद का एक सशक्त माध्यम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने आज बंगलुरु में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का इस्तीफा स्वीकार कर लिया। इसके साथ ही मंत्रिपरिषद को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया गया है। हालांकि श्री सिद्धारमैया को कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में वैकल्पिक व्यवस्था होने तक पद पर बने रहने के लिए कहा गया है। इस दौरान उन्हें कोई भी कार्यकारी निर्णय लेने से मना किया गया है। श्री सिद्धारमैया ने कल लोकभवन में अपना इस्तीफा सौंपा था। भारत के लिए पेट्रोलियम ला रहा एक टैंकर होर्मुज जलडमरू मध्य से सफलतापूर्वक निकल चुका है।

0: ये जानकारी समुद्री यातायात पर नजर रखने वाली कई वेबसाइट से मिली है। टैंकर निसोस केरोस होर्मुस जलडमरू मध्य को पार कर विशाखापट्टनम की ओर बढ़ रहा है। इसके 3 जून को वहां पहुंचने की उम्मीद है। ईरान के सरकारी ईरान एजेंसी ने बताया है कि ईरान के प्रस्तावित पारगमन शुल्क को लेकर जारी तनाव के बीच इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने 24 घंटों में 23 वाणिज्यिक जहाजों को जलडमरू मध्य से गुजरने की अनुमति दी। भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA पर बातचीत इस वर्ष के अंत तक पूरी कर लेने की प्रतिबद्धता दोहराई है। व्यापार और निवेश मंच पर भारत कनाडा संयुक्त वक्तव्य में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू ने महत्वाकांक्षी और परस्पर लाभकारी CEPA समझौते के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। सशस्त्र सीमा बल ने 2 थाई महिला नागरिकों को भारत नेपाल सीमा के खारीबारी क्षेत्र से नेपाल में प्रवेश करने की कोशिश के दौरान गिरफ्तार कर लिया। ये महिलाएं फर्जी आवेदन मोहरों का इस्तेमाल कर नेपाल में प्रवेश करने की कोशिश कर रही थी। जांच जारी है। दिल्ली सरकार 21 जून को होने वाली नीट UG परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को दिल्ली परिवहन निगम की सभी बसों में मुफ्त यात्रा प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उम्मीदवार वैध प्रवेश पत्र दिखाकर मुफ्त यात्रा कर सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारत की पहली एकीकृत अगली पीढ़ी की विमानन मौसम और कोहरे की निगरानी प्रणाली स्काईकास्ट का उद्घाटन किया। यह उद्घाटन मिशन मौसम के अंतर्गत किया गया है। संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉ. सिंह ने कहा कि इस नई प्रणाली का उद्देश्य हवाई अड्डे पर मौसम की निगरानी और कोहरे के पूर्वानुमान को मजबूत करना है।
1: आज हम विमानन क्षेत्र के जरिए देश को एक इंटीग्रेटेड मौसम निगरानी सिस्टम समर्पित कर रहे हैं। यह सिस्टम हवाई यात्रियों, एयर क्रू और पायलटों को मौसम का सटीक अनुमान लगाने में सक्षम बनाएगा, खासकर उस समय जब कोहरे और धुंध वाले मौसम में प्रदूषण और हवा में मौजूद अन्य कणों के कारण दृश्यता काफी प्रभावित होती है। यह एक इंटीग्रेटेड उपकरण स्काईकास्ट के माध्यम से संभव होगा।
0: मौसम विभाग ने जून से सितंबर के बीच दक्षिण पश्चिम मानसून के मौसम में देश भर में सामान्य से कम वर्षा का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। मीडिया को संबोधित करते हुए विभाग के महानिदेशक डॉ. मृत्युंजय महापात्रा ने कहा कि जून माह में देश की औसत वर्षा सामान्य से कम रहने की सबसे अधिक संभावना है।
2: 2026 के जून से सितंबर के दौरान पूरे देश में सामान्य से कम बारिश होने का सबसे ज्यादा संभावना है। उत्तर पूर्व भारत में सामान्य वर्षा होने का संभावना है। अभी जून महीने के तापमान की बात करें तो हरियाणा, पंजाब, बिहार, ओडिशा, छत्तीसगढ़, गुजरात और आंध्र प्रदेश के कई हिस्सों में तथा महाराष्ट्र, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ क्षेत्र में सामान्य से अधिक हीट वेव कंडीशन डेवलप होने का उम्मीद किया जा रहा है। हालांकि राजस्थान और झारखंड में सामान्य से कम उष्ण लहर होने का संभावना है।
0: मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों के लिए तूफान और बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। तटीय आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिमी राजस्थान और विदर्भ के कुछ हिस्सों में आज भी लू चलने की आशंका है। रायलसीमा, तमिलनाडु, पुदुचेरी में गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीटों ने ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धाओं में शानदार प्रदर्शन किया। महिला वर्ग में 100 मीटर दौड़ में निपम ने कांस्य पदक जीता। इस स्पर्धा में पदक जीतने वाली वे पिछले 25 वर्ष में पहली भारतीय महिला बनी। वहीं महिला ट्रिपल जंप में साधना रवि ने रजत पदक जीता। नितिन गुप्ता ने पुरुष वर्ग में 5000 मीटर पैदल चाल का खिताब जीता। पुरुषों के अंडर 18 एशिया कप में भारत ने आज जापान के काका मिगाहरा में कजाकिस्तान पर 13-0 की शानदार जीत दर्ज की। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। आज पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने दिवंगत नेता की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।

अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर फैसला सुनाने का निर्देश दिया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का परीक्षा माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई और योग्य छात्रों के हितों की सुरक्षा का आश्वासन। पीएम सूर्य घर योजना को महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल। इसके अंतर्गत 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए गए। मौसम विभाग का जून में पूरे देश में सामान्य से कम वर्षा का अनुमान। कई राज्यों में लू की संभावना। और हांगकांग में आयोजित अंडर 20 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीट निपम ने महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार

0: श्रोताओं, अभी ये प्यारी सी कवाली आप सुन रहे थे वीर ज़ारा फिल्म से, अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन के स्वर में।
1: शास्त्रीय संगीत का अमृत कलश रागम, भारतीय शास्त्रीय संगीत को समर्पित आकाशवाणी का बेहतरीन चैनल रागम, DTH पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए इंटरनेट और आपके मोबाइल ऐप पर भी। रागम, आनंद की अटूट रसधार।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
0: सुनते हैं श्रोताओं कार्यक्रम की अगली कवाली। फिल्म का नाम है बरसात की रात। आवाजें हैं मन्ना डे, आशा भोसले और साथियों की।

0: विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
1: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें।
0: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
1: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8865845809।
0: और हमारा ईमेल आईडी है
1: akashwaninajibabad@gmail.com।
0: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन
1: आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
2: और श्रोताओं, जैसा कि आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्मी कव्वालियाँ, तो अगली कव्वाली हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म बजरंगी भाईजान से। आवाज़ है अदनाम सामी की। और श्रोताओं, ये कार्यक्रम की अंतिम कव्वाली रहेगी।

अभी आप सुन रहे थे अदनान सामी और साथियों के स्वर में ये कव्वाली, जिसे हमने लिया था फिल्म बजरंगी भाईजान से। इसी के साथ ही कार्यक्रम फिल्मी कव्वालियाँ अब यहीं पर संपन्न होता है। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 3 बज रहे हैं। हमारी इस सभा के प्रसारण अब यहीं पर संपन्न होते हैं। संध्या 5 बजे हमारी सांध्यकालीन सभा में आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए।

मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं, हमारी सांध्यकालीन सभा अब आरंभ होती है। प्रस्तुत है आकाशवाणी के 90 वर्षों के उपलक्ष में आकाशवाणी नजीबाबाद से जुड़े श्रोताओं के अनुभव पर आधारित कार्यक्रम रिश्ता ये खास है। स्वागत है सभी श्रोताओं का कार्यक्रम रिश्ता ये खास है में। हवा के झोंकों पर तैरते हुए जो ये शब्द हैं श्रोताओं, आकाशवाणी केवल एक घोषणा नहीं बल्कि हिंदुस्तान के करोड़ों दिलों की धड़कन है। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, भारतीय रेडियो प्रसारण अपने गौरवमयी 90 वर्ष पूरे कर रहा है। 9 दशकों का ये सफर भारत के

0: बदलने, बढ़ने और संवरने की एक अद्भुत दास्तान है। शुरुआत में इस जादुई डिब्बे ने जब भारतीय घरों में दस्तक दी तो ये सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं था, ये आजादी की लड़ाई का गवाह बना, बापू और नेताजी की आवाज को जन जन तक पहुंचाने का जरिया बना। साल 1936 में जब इसे ऑल इंडिया रेडियो का नाम मिला और बाद में महान कवि सुमित्रा नंदन पंत जी की सुझाव पर इसे आकाशवाणी कहा गया, तब से ये हर भारतीय के सुख दुख का सच्चा साथी बन गया। जरा सोचिए श्रोताओं, सुबह की शुरुआत इसी आकाशवाणी की बांसुरी की धुन से होती थी। खेती किसानी की जानकारी, सीमा पर तैनात जवानों के लिए जयमाला कार्यक्रम या फिर क्रिकेट की रोमांचक कमेंट्री, आकाशवाणी ने पूरे देश को एक धागे में पिरोया है। आपातकाल के दौर से लेकर प्राकृतिक आपदाओं तक जब सब कुछ थम गया, तब आकाशवाणी की विश्वसनीय आवाज ने हमेशा देश को ढांढस बंधाया। आज डिजिटल युग में भी बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के ध्येय वाक्य को जीते हुए इसने शिक्षा को दूर दराज के गाँव और पहाड़ों तक पहुंचाया है। श्रोताओं, जब बात चली है शिक्षा की तो इसी क्रम में आज हमारे साथ जुड़ी हैं आकाशवाणी नजीबाबाद की एक समर्पित श्रोता, राष्ट्र निर्माता, सरकारी सेवा में कार्यरत शिक्षिका श्रीमती आभा यादव जी। आभा जी न केवल खुद रेडियो की दीवानी हैं, बल्कि अपनी कक्षाओं में भी इसके ज्ञान का बखूबी उपयोग करती हैं। आइए सीधे रुख करते हैं आभा यादव जी की तरफ और मैं यानी शिवा शुक्ला उनसे बात करती हूँ और जानती हूँ कि रेडियो ने उनकी जीवन यात्रा और बच्चों को शिक्षित करने के सफर को कैसे संवारा। आकाशवाणी के 90 साल पूरे हो रहे हैं। जैसे आप एक शिक्षिका हैं तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि एक शिक्षिका के रूप में आपके लिए रेडियो के क्या मायने हैं।
1: मैं आभा यादव एक सरकारी विद्यालय की शिक्षिका हूँ। हम सभी रेडियो प्रेमी और देशवासियों के लिए यह बेहद गौरवशाली पल है। हमारे सुख दुख का साथी और सूचना का सबसे विश्वसनीय माध्यम आकाशवाणी आज अपने 90 वर्ष पूरे कर रहा है। 90 साल का यह सफर सिर्फ तकनीक का सफर नहीं, बल्कि यह आज़ाद भारत को गढ़ने की कहानी है। इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं आकाशवाणी के पूरे परिवार को और करोड़ों श्रोताओं को और अपने पूरे छात्र समुदाय की ओर से बधाई देती हूँ। मुझे याद है कि मैं जब छोटी थी तो मेरे पापा रेडियो लाए थे। रेडियो के प्रोग्राम सुनने के लिए कॉलोनी के सभी लोग ऑफिस के बाद शाम को हमारे घर इकट्ठा हुआ करते थे। रेडियो के माध्यम से वे लोग काफ़ी मनोरंजन करते थे। लेकिन जब मैं शिक्षिका बनी तब मुझे समझ आया कि रेडियो सिर्फ मनोरंजन का माध्यम नहीं, बल्कि ज्ञान का वह समंदर है जिसकी लहरें देश के आखिरी छोर पर बैठे बच्चे तक पहुँचती हैं।
0: सरकारी स्कूलों और ग्रामीण बच्चों के लिए रेडियो ने शिक्षा को कैसे आसान बनाया? मीना की दुनिया जैसे कार्यक्रमों का क्या असर रहा? आपके क्या विचार हैं?
1: एक शिक्षिका होने के नाते मैंने ये बहुत करीब से देखा है कि रेडियो ने हमारी शिक्षा व्यवस्था को कैसे सहारा दिया है। उन दिनों की कल्पना कीजिए जब दूर दराज गाँव में ना पक्की सड़कें थी, ना बिजली और ना ही आज की तरह इंटरनेट और स्मार्ट क्लासेस। उस दौर में भी रेडियो हर गाँव, हर झोपड़ी, हर सरकारी स्कूल की छत के नीचे मौजूद था। आकाशवाणी का शैक्षिक प्रसारण, जिसे हम स्कूल में बड़े चाव से सुनते सुनाते थे, उसने शिक्षा को चार दीवारी से बाहर निकाला है। जैसे आज मैं अपने स्कूल में मीना मंच की सुगम करता हूँ, उस नाते मुझे याद है कि मीना की दुनिया का कार्यक्रम, रेडियो पर आने वाली मीना की कहानियों ने हमारी बच्चियों को स्कूल आने के लिए प्रेरित किया। लड़कियों की शिक्षा, स्वच्छता और बाल अधिकारों जैसे गंभीर विषयों को रेडियो ने इतनी सहजता से बच्चों के दिल में उतारा कि वह आज हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा बन गया है। इसके अलावा ज्ञानवाणी और विभिन्न राज्यों के शैक्षिक रेडियो कार्यक्रमों ने सीधे क्लासरूम की कमी को पूरा किया है। रेडियो पर जब विशेषज्ञ शिक्षक अपने विषय की बात पढ़ाते हैं तो बच्चे मंत्रमुग्ध होकर सुनते हैं। वह ध्वनि का प्रभाव, वह नाटक के रूप में इतिहास की कहानियों को समझना, इसने पढ़ाई को बोझ नहीं बल्कि एक उत्सव बना दी।
0: कोरोना काल में जब स्कूल बंद थे तब रेडियो ने डिजिटल डिवाइड को पाटने में कैसे मदद की?
1: हाँ जी मैडम, ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है। रेडियो की असली ताकत तो देखो जब ही समझ आती है जब देश पर कोई संकट आता है। हम सब ने हाल में देखा ही है कोरोना महामारी का वह दौर जब अचानक स्कूल बंद हो गए तो शहर के बच्चों ने तो ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी, लेकिन मेरे सरकारी स्कूल के उन बच्चों का क्या जिनके माता पिता के पास स्मार्टफोन खरीदने तक के पैसे नहीं थे, जहाँ इंटरनेट का नेटवर्क नहीं आता था। उस समय एक बार फिर वही हमारा पुराना दोस्त आकाशवाणी काम आया। सरकार और आकाशवाणी के समन्वय ने रेडियो पाठशालाएं शुरू कर दी। हमने गांव में मुनादी करा दी थी कि बच्चे रेडियो के सामने बैठें। मैंने खुद देखा है मैम कि कैसे छोटे से ट्रांजिस्टर के बीच में रखकर सोशल डिस्टेंसिंग का मैंने खुद देखा है मैम कि कैसे एक छोटे से ट्रांजिस्टर को बीच में रखकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए गांव के बच्चे बड़े ध्यान से अपनी कक्षाएं ले रहे थे। आकाशवाणी ने साबित कर दिया कि तकनीकी चाहे कितनी भी बदल जाए, लेकिन जब देश के सबसे गरीब बच्चे तक शिक्षा पहुंचानी हो तो रेडियो कैसे सस्ता

में रखकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए गांव के बच्चे बड़े ध्यान से अपनी कक्षाएं ले रहे थे। आकाशवाणी ने साबित कर दिया कि तकनीकी चाहे कितनी भी बदल जाए, लेकिन जब देश के सबसे गरीब बच्चे तक शिक्षा पहुंचानी हो तो रेडियो कैसे सस्ता

0: लोक कलाओं के कार्यक्रम। इन सब ने सरकारी स्कूल के बच्चों को अपनी मिट्टी, अपनी संस्कृति और अपनी जड़ों से ये जोड़े रखा है। रेडियो ने बच्चों को अच्छा श्रोता बनाना सिखाया है, जो आज के समय में बहुत जरूरी गुण है।
1: आपको क्या लगता है कि आकाशवाणी के जो ये 90 सालों का सफर है, इसमें कुछ बदलाव भी आया है या नहीं?
0: आज हम डिजिटल युग में जी रहे हैं। पॉडकास्ट, FM और मोबाइल ऐप का जमाना है। मुझे यह देखकर बहुत खुशी हो रही है। आकाशवाणी ने खुद को समय के साथ बदला है। आज आकाशवाणी न्यूज़ ऑन AIR ऐप और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भी उपलब्ध है। यानी हमारा पुराना रेडियो अब नए रूप में बच्चों की जेब में है। 90 वर्ष का यह यात्रा इस बात का प्रमाण भी है कि जो माध्यम जनता के दिल से जुड़ता है, वह कभी पुराना नहीं होता। सरकारी स्कूलों के करोड़ों बच्चों के जीवन में उजाला फैलाने के लिए और शिक्षा को सुलभ बनाने के लिए हम आकाशवाणी नहीं है, दोबारा बोलना
1: और
0: पड़ेगा
1: हर
0: सारे।
1: शिक्षक का मार्गदर्शक बनने के लिए,
0: यहाँ से
1: मार्गदर्शक।
0: बढ़ूंगी दोबारा। 90 साल की यह यात्रा इस बात का प्रमाण है कि जो माध्यम जनता के दिल से जुड़ता है, वह कभी पुराना नहीं होता। सरकारी स्कूल के करोड़ों बच्चों के जीवन में उजाला फैलाने के लिए, शिक्षा को सुलभ बनाने के लिए और हम शिक्षक का मार्गदर्शक बनने के लिए हम आकाशवाणी के सदैव ऋणी रहेंगे। अंत में मैं आकाशवाणी के सुनहरे भविष्य की कामना करती हूँ और यही कहूँगी कि यह गूंज सदियों तक हमारे देश के कोने कोने में गूंजती रहे, बच्चों को सिखाती रहे और भारत को आगे बढ़ाती रहे। आकाशवाणी बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय। जय हिंद, जय भारत।
2: श्रोताओं, ये थी हमारी आज की खास श्रोता श्रीमती आभा यादव जी। और चलते चलते आकाशवाणी के इस 90 वर्षों के बेमिसाल सफर के नाम बस यही पंक्तियां कहना चाहूंगी कि हवा के परों पर सचकर हर दिल का पैगाम लाती है। हवा के परों पर सचकर हर दिल का पैगाम लाती है। वक्त बदला, दौर बदला, पर ये आवाज आज भी सुहानियत जगाती है। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के 90 वर्षों के उपलक्ष्य में आकाशवाणी नजीबाबाद से जुड़े श्रोताओं के अनुभव पर आधारित कार्यक्रम रिश्ता ये खास है। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है, लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष और कल की सभाओं के कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

आज शाम 6:45 पर कानूनी सलाह में आपको सुनवाएंगे एडवोकेट सत्यवीर त्यागी से एसके नौटियाल की बातचीत। विषय रहेगा खाद्य सुरक्षा अधिनियम। कृषि जगत कार्यक्रम में आज शाम 6:05 पर किसान भाई सुनेंगे खेती एवं पशुपालन संबंधी समस्याओं पर आधारित सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान। युवा श्रोता सुनेंगे दैनिक कार्यक्रम युवावाणी। शाम 5:15 पर आज क्रम रहेगा बूझो तो जाने कुछ खास है आज, और ये शाम गजलों के नाम। श्रोताओं, फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो नजीबाबाद का समय रहेगा 9:30 पर, और फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रात के हमसफर 10:30 पर।

रामेश्वर प्रसाद शर्मा की गाए भजन आपको सुनवाएंगे सुगम संगीत में शाम 7:32 पर और शाम 6:55 पर। विविधा में आप सुनेंगे डॉक्टर अपर्णा की वार्ता, जिसका विषय रहेगा बिना पंखों के भी उड़ता आशा का पक्षी।

श्रोताओं, कल शाम 6:05 पर कृषि जगत में चर्चा का विषय रहेगा सूक्ष्म पोषक तत्वों का महत्व। साथ ही आप सुनेंगे लोकगीतों व रागनियों का सजीव फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो लोक मंजरी। युवाणी कार्यक्रम में कल शाम 5:15 पर क्रम रहेगा कुछ खास है आज, गीत आपके नाम बात एक राज की, और साथ ही आप सुनेंगे रहस्य सीरीज खामोश घाटी का एपिसोड 5। श्रोताओं, ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की और कल की सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम युववाणी।

0: मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी।
1: विश यू अ वेरी गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपका इस खूबसूरत शाम में युवाणी प्रोग्राम में। आज की शाम प्रोग्राम में आपके साथ रहूंगी मैं आपकी दोस्त और आज की वन ऑफ द होस्ट रुमान परवीन।
0: नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ यूसुफ अजहरी और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम युवाणी।
1: अरे यूसुफा, एक बात पूछूं?
0: पूछो पूछो।
1: कुछ गुम सी लग रही हो आज को, मतलब कुछ सोच रही हो या कुछ हुआ है?
0: सही समझा तुमने बिल्कुल, वो एक सवाल है रुमान।
1: अरे कौन सा सवाल, चलो मुझसे और मेरे दोस्तों से शेयर तो कर लो जरा।
0: अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम्हारे फोन में भी वो अजीब सा अलार्म बज रहा है जिसे देखते ही सुनते ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या ही होने वाला है?
1: अरे अरे हाँ हाँ, वो अलार्म तो मुझे लगता है कि वेदर कंडीशन वाले अलार्म की बात कर रहे हो तुम, जो सबके पास में अलर्ट आ रहा है।
0: अच्छा वो सबके पास आ रहा है?
1: हाँ यूसुफा, उसमें क्या स्पेशल है, वो तो सबके पास आ रहा है अलर्ट।
0: मुझे लगा सिर्फ मेरे ही पास आ रहा है।
1: तो तुम्हें लगा कि तुम स्पेशल और सिर्फ तुम्हारे पास आ रहा है? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वो अलार्म सबके पास बज रहा है।
0: और क्या स्पेशल है?
1: स्पेशल स्पेशल तो आज बहुत कुछ है, लेकिन मैं दोस्तों को बता दूं कि आज प्रोग्राम में रहेगा हमारा स्पेशल सेगमेंट ये शाम गजलों के नाम।
0: मगर उससे पहले हमारे पास आपके लिए कुछ काम है, और काम तो आप जानते ही हैं, रोज का हमारा एक ही काम है कि आपसे हमें सवाल पूछना है और सेगमेंट बूझो तो जाने के अंतर्गत आपको उसका जवाब देना है।
1: बिल्कुल दोस्तों, तो आज का आपसे हमारा सवाल रहेगा, विधान परिषद वर्तमान में कितने राज्यों में है?
0: और इसका जवाब आपको देना है आकाशवाणी नजीबाबाद फेसबुक पेज जाकर कमेंट सेक्शन में। अब आपको हम सुनवाते हैं आज की शाम की ये पहली गजल, तो कान और दिल और दिमाग सारा सब कुछ रेडियो से लगा दीजिए।

0: जल्दी टिफिन पैक करो। राजू मोबाइल छोड़ो।
1: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया।
2: मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
0: बिना नंबर जांचे? अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
1: तो फिर सही नंबर,
0: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
2: आपने तो बचा लिया दीदी।
0: काम से नहीं।
3: आरबीआई कहता है,
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
5: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
6: हम हंसाएंगे, आप मुस्कुराएंगे,
7: हो जाओगे आसास कर लोट पोट,
6: क्योंकि यह है लाफ्टर का सॉलिड डोज।
8: और डोज में क्या है?
7: डोज में है मजा। जी हाँ, मजा आ गया।
9: ओए मीकू।
10: हाँ बोल।
9: एक बात बता, अगर तू किसी जंगल में हो और वहाँ शेर आ जाए तो तू क्या करेगा?
10: मैं तो झट से पेड़ पे चल जाऊंगा।
9: और अगर वो शेर पेड़ पर आ जाए तो क्या करेगा?
10: तो मैं फट से पानी में कूद जाऊंगा।
9: और अगर वो शेर पानी में भी आ जाए तो तू क्या करेगा?
10: तो पहले ये बता कि शेर के तेरा मौसेरा भाई है, तेरा रिश्तेदार है वो, जो तुझे उसकी हर साइड बताया कि वो क्या करेगा क्या नहीं, या शेर को तूने ही भेजा है?
9: अरे
7: हाँ, मजा आ गया।
9: दोस्तों अब बढ़ते हैं प्रोग्राम में आगे। कुछ खास है आज की ओर।
10: अब प्रोग्राम है युववाणी का, तो कुछ खास बात तो आपसे करनी बनती ही है।
9: तो फिर युसुफा तुम ही बताओ, आज दोस्तों से क्या खास बातें करें हम?
10: वैसे तो दोस्तों से की हुई हर बात खास है, फिर भी रुमान मेरे ख्याल से आज हम बात करेंगे फोमो से जोमो तक का सफर।
9: ओह, तो दोस्तों पहले हर नोटिफिकेशन पे दिल की धड़कन बढ़ा देती थी, ऐसा लगता था जैसे कुछ मिस ना हो जाए।
10: और कहे गए हैं कि क्या कर

0: में कहाँ घूम रहे हैं, हर पल खुद को कंपेयर करने की आदत बन गई थी। इसी डर का नाम है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट।
1: लेकिन फिर एक दिन एहसास हुआ, दुनिया की हर आवाज सुनते सुनते हम अपने अंदर की आवाज सुनना भूल ही गए हैं।
0: और वहीं से शुरू हुआ सफर जोमो की तरफ, यानी कि जॉय, मिसिंग आउट। अब हर पार्टी में जाना जरूरी नहीं लगता, हर ट्रेंड को फॉलो करना भी जरूरी नहीं लगता। बस एक तरफ कोने में बैठकर अपनी चाय के साथ अपनी पसंदीदा किताब पढ़ना, वो बेहद खूबसूरत लगता है।
1: बिल्कुल सुबह, बात तो तुमने बिल्कुल सही कही है। वैसे ये फोमो से जोमो तक का जो सफर है ना, वो हमने कितनी आसानी से, कितनी बखूबी निभा लिया है। तो हम कह सकते हैं कि फोमो हमें भीड़ में ले जाता है, वहीं जोमो हमें खुद से मिलवाता है।
0: तो जब खुद से खुला खुद की मुलाकात होती है तो फिर क्या होता है, फिर तो मजेदार शाम होती है, जैसे कि हमारी युवानी की ये शाम।
1: बिल्कुल यूसुफा, जहाँ हम अपने दोस्तों को अपने आप से मिलवाते हैं, वो हमसे जुड़ते भले ही हैं, लेकिन वो अपने आप से जुड़ जाते हैं, वो अपने लिए वक्त निकालते हैं और वो एंजॉय करते हैं पूरी शाम को।
0: तो दोस्तों, अगर आप भी भागते भागते थक गए हैं तो थोड़ा रुकिए, थोड़ा खुद के साथ बैठिए, क्योंकि जिंदगी हर जगह में नहीं है, बल्कि जहाँ है वहीं पूरे जीने में है।
1: बिल्कुल दोस्तों, जब आप खुलकर जीते हैं, अपने लिए जीते हैं, तो वक्त का पता नहीं चलता, सिर्फ जिंदगी खूबसूरत लगने लगती है। और फोमो से जोमो तक का ये जो सफर है, दरअसल ये दुनिया से नहीं, खुद से जुड़ने का सफर है।
0: अब आप जुड़े हैं हमसे, तो हम आपको सुनवाते हैं आज की शाम की ये खूबसूरत गजल, और इस गजल के साथ अपने दिल को जरा टटोलिए कि आपके अंदर क्या कसर बाकी रह गई है जो अभी आपने पूरी नहीं की।
1: क्या आप भी भीड़ का ही हिस्सा हैं, या फिर आप खुद से जुड़ चुके हैं और खुद को पहचान रहे हैं? तो चलिए सुनवाते हैं आपको ये खूबसूरत अगली गजल।

0: जानू
1: जानू आपके हीरे चुरा सकता है कोई? आप सोई नहीं अभी तक?
0: नींद नहीं आ रही जानू।
1: मैं गुली दे
0: दूँ। मैं एक नई गजल लिख रही थी, सुनिए ना।
1: सुनाइए।
2: तो दोस्तों, अब प्रोग्राम में वक्त हो चला है उसका जो कि आज खास जाने वाला है। जी हाँ, आज जाएगा आपका सितारा, जिसमें आप सुनेंगे शैली की बातचीत हिमानी चौधरी से। तो चलिए अब हम आपको सुनवाते हैं आज की शाम का ये आपका सितारा।
3: हर अल्फाज में महसूस होती है एक कहानी, हर लफ्ज में छुपा होता है एक एहसास, और जब जज्बात मिल जाते हैं आवाज से तो पैदा होता है एक सितारा जो चमकता है लफ्जों के आसमान पर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त शैली और आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट सेगमेंट आपका।

0: सितारा। ये वो मंच है जहाँ टैलेंट सिर्फ दिखाई नहीं देता, महसूस होता है। और आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं एक ऐसे कलम के जादूगर जिनके अल्फाज सीधा दिल पर दस्तक देते हैं। आज के हमारे सितारे अपनी शायरी से जज्बातों को रंग देते हैं, खामोशियों को आवाज देते हैं और लफ्जों को रूह तक पहुंचाते हैं। तो हम वेलकम करते हैं अपने आज के साथी का, जो कि हमारे एक बहुत ही प्यारे पोएट्री कंटेस्टेंट है। आपका नाम?
1: मेरा नाम हिमानी चौधरी।
0: अच्छा हिमानी, तो सबसे पहले हम आपको कंफर्टेबल करने के लिए एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन करते हैं कि कैसी हैं आप?
1: मस्त, जबरदस्त।
0: तो सबसे पहले हम पूछेंगे आपसे कि आपकी जो स्कूलिंग है वो कहाँ से हुई है हिमानी?
1: मेरी जो स्कूलिंग है, एकेडमिक है, वो DVK इंटर कॉलेज नगीना से हुई है।
0: अच्छा, और आपने ग्रेजुएशन में?
1: ग्रेजुएशन मेरा LRS नगीना से हुआ है।
0: ग्रेजुएशन कौन से सब्जेक्ट में की थी आपने?
1: मैंने ग्रेजुएशन किया है होम साइंस और इंग्लिश, BA किया है मैंने, उसके बाद मैंने BEd किया है और फिर MEd किया है RVD डिग्री कॉलेज बिजनौर से।
0: अच्छा, ये तो बहुत बढ़िया है कि आपने काफी सारी एजुकेशन कर रखी है हिमानी। हाँ। तो ये बताइए कि आपको ये जो पोएट्री का शौक है ये कहाँ से लगा?
1: दरअसल थी 2014-15 की, शायद कॉलेज में थी मैं, BA फर्स्ट ईयर था मेरा। हमारे कॉलेज में एक प्रोग्राम था ना चिल्ड्रंस डे पे, तो वहाँ पर प्रोग्राम देना था सभी को। मुझे तो सिंगिंग भी नहीं आती थी ना डांसिंग, और ना ही मुझे कुछ आता ही नहीं था, मतलब कभी स्टेज ही फेस नहीं किया था। तो सभी ले रहे थे, मेरा भी मन किया, मैंने भी फ्लो फ्लो में बोल दिया अपने टीचर से कि मैं खुद की पोएट्री लिखती हूँ।
0: मतलब आपने झूठ बोल दिया,
1: झूठ बोल दिया
0: कि सभी लोग कर रहे हैं, तो मैं भी बोल
1: दिया। अब झूठ बोल दिया, अब झूठ को सच भी करना था, क्योंकि टीचर से बोला था झूठ, तो झूठ को सच भी करना था। तो मेरे पास एक साइकिल हुआ करती थी, मैं अपने घर से जो कॉलेज जाती थी तो वहाँ का कम से कम 15-20 मिनट का रास्ता था, तो उस दिन वो रास्ता मैंने 1 घंटे में कंप्लीट किया। मतलब स्लो स्लो साइकिल चला के लेके गई, पहले अक्षर जोड़े कि क्या अक्षर है, अक्षर से शब्द और शब्द से लाइनें बनाई। पहले वन लाइनर थी, फिर थोड़ी सी लॉन्ग हुई, फिर पोइट्री हुई, फिर एक कहानी, पोइट्री कहानियों में बदल गई, कहानियां भी लिखती हूँ।
0: बहुत अच्छी शुरुआत है आपकी। अच्छा ये बताइए कि आपने पोइट्री शुरू की तो उसके बाद आपने जैसे किसी को देखा होगा कोई पोइट्री करते होंगे, तो आपके फेवरेट कोई ऐसे?
1: निधि नरवाल है, मुझे वो अच्छी लगती है, कुमार विश्वास भी है थोड़ी।
0: कि जैसे आप बहुत सारी पोइट्रीज लिखती होंगी, कुछ ऐसी पोइट्री जो आपने फर्स्ट टाइम कभी किसी स्टेज पर प्रेजेंट की हो?
1: फर्स्ट टाइम,
0: एक तो वो ही हो गई जो आपने स्कूल में प्रेजेंट की थी, है ना, झूठ बोल के झूठ से शुरुआत हुई थी। कोई ऐसी जो आपने अपने फेवरेट स्टेज पर या फिर जहाँ आपका सपना था प्रेजेंट करने का किसी पोएट्री को, वहाँ पे आपने प्रेजेंट की हो?
1: वो तो मैंने यही की थी, आकाशवाणी कला मंच पे।
0: ये तो बहुत बढ़िया है, तो एक बार फिर से सुना दीजिए अपनी वो पोएट्री जो आपने कला मंच में प्रेजेंट की थी।
1: वो ये तो मैंने बताया था उस दिन कि क्यों लिखी थी, किसके लिए लिखी थी। पोएट्री कुछ इस तरह कैसे है कि हाँ मुझे रात पसंद है, ढलती हर एक वो शाम पसंद है।
0: बहुत ही खूबसूरत है हिमानी, बहुत ही इमोशनल है ये। मतलब शायद जितना फील मैं कर पा रही हूँ उससे कहीं ज्यादा फील वो लोग कर पाएंगे जो इस लम्हे को जीते हैं, जिनके हस्बैंड्स मतलब आर्मी में या फिर किसी ऐसी जॉब में होते हैं जहाँ पर लिमिटेड छुट्टियां होती हैं और वाइफ जो है उनके साथ नहीं रहती, अलग रहती है, तो वो इसको काफी ज्यादा फील कर सकेंगी। और हिमानी, जैसे मैं देख रही हूँ कि आप मैरिड हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने एक पोएट्री एटलीस्ट अपने हस्बैंड के लिए लिखी जरूर होगी, तो लिखी है कभी आपने?
1: हाँ लिखी है, अभी लिखी थी, अभी हमारी एनिवर्सरी थी तब लिखी थी।
0: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, फिर वो तो हम जरूर ही सुनेंगे।
1: जी बिल्कुल,
0: सुनाइए।
1: आप सुनिए, हम सुनाए। कि मई से शुरू हुआ सिलसिला, जुलाई में बात बन गई, न जाने कब आया नवंबर और मेरे हाथों में तेरे

0: असर देर तक रहता है, आवाज चुप हो जाती है पर एहसास दिल में बस जाता है। दोस्तों, आज की महफिल सच में खास थी। हमारे आज के सितारे ने हमें याद दिलाया कि शायरी सिर्फ लफ्जों का जोड़ नहीं होती, ये दिल से निकली हुई वो रोशनी होती है जो दूसरों के दिल तक पहुंचती है। अब हिमानी, आप हमें ये बताइए, आप जो आप सारे लिसनर्स को आपने ये अपनी पोएट्री सुनाई, अपनी बातें बताई, और क्या कहना चाहेंगे उनसे?
1: मैं ये कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी एक ही बार मिली है, वो चीज़ जियो जो तुम जीना चाहते हो।
0: बिल्कुल सही बात है
1: क्योंकि
0: यार।
1: देखो, मन अच्छा भी चाहता है बुरा भी चाहता है ना। तो मैं तो लिसनर्स को यही बताना चाहूँगी कि दायरे में रहो अपने, और वो सारे काम करो
0: जो आपको
1: जो
0: खुशी देते
1: आपको
0: हैं।
1: खुशी देते हो, आपके माँ बाप को खुशी देते हो। सबसे पहली बात है कि माँ बाप, तुम्हारे माँ बाप का मतलब सर नहीं झुकना चाहिए, ठीक है? वो माँ बाप कितने परेशानियों से हमें यहाँ लाते हैं, फिर बड़ा करते हैं, फुल परवरिश करते हैं, अपने आप के सारे शौक मार कर तुम्हारे शौक पूरे करते हैं। तो बस तुम कुछ भी कर सकते हो, इंसान है, इंसान कुछ भी कर सकता है, लेकिन उसे अपना दायरा पता होना चाहिए।
0: बिल्कुल सही बात है आपकी। थैंक यू सो मच हिमानी, आप हमारे साथ जुड़ी। दोस्तों, आप सुन रहे थे सेगमेंट आपका सितारा, जहां हर टैलेंट को मिलता है एक मंच और हर सपने को मिलती है एक पहचान। हमारे पोएट्री कंटेस्टेंट का दिल से शुक्रिया, जिन्होंने अपने जज्बात हम सबके साथ बांटे। आप हमेशा यूं ही चमकते रहिए, क्योंकि असली सितारे वही होते हैं जो अंधेरों में भी रोशनी बन जाते हैं। मैं हूं शैली, अब आपसे इजाजत लेती हूं। मिलते हैं अगले आपका सितारा में एक नए हुनर, एक नए सितारे के साथ। तब तक याद रखिए, अपने ख्वाबों को छुपा कर मत रखिए, हो सकता है, क्या पता, अगले सितारे आप ही हों।

0: नए जमाने की नई तस्वीर। अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें। ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें है आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स। इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।
1: हम हंसाएंगे, आप मुस्कुराएंगे,
2: हो जाओगे आसास कर लोट पोट,
1: क्योंकि ये है लाफ्टर का सॉलिड डोज।
3: और डोज में क्या है?
2: डोज में है मजा।
4: जी हाँ, मजा आ गया।
3: अगर इतनी परवाह हो रही है तो इंसान थोड़ी प्यार से मरव से भी बात कर ले।
5: अच्छा अच्छा बताओ ना क्या हुआ।
3: बताऊँ मैं तुम्हें क्या हुआ है?
5: हाँ हाँ बताओ।
3: तुमने मेरा दिल तोड़ के ना चकना चूर कर दिया।
5: अच्छा कोई बात नहीं बाबू, मुझे भेज देना, मैं कबाड़ी वाले को भेज दूंगी।
3: हैं?
4: हाँ मजा आ गया।
3: मजा आ रहा है आपको प्रोग्राम में, है ना? हमें भी मजा आ रहा है। देखिए मजा उन्हीं को आता है जिनको उस चीज से मोहब्बत होती है। अब जैसे कि हमारा एक सेगमेंट है लव स्टोरी, जिसमें हम आपको सुनाते हैं मोहब्बत के अफसाने। अच्छा बाब ये बताइए कि मोहब्बत आपके लिए क्या चीज है? ये कि सिर्फ एक शख्स के पीछे पागल हो जाओ, या फिर ये कि किसी की मोहब्बत में अपने लिए सही रास्ता अख्तियार कर लो, यानी कि आप उस चीज़ तक पहुंच जाएं जो आपके लिए सही है और जो आपके लिए ज़रूरी भी है, वो मोहब्बत है। अब ये बात तो आप बताएंगे हमें कमेंट सेक्शन में ही, लेकिन उससे पहले हम आपको सुनाएंगे आज की लव स्टोरी का ये एपिसोड नंबर 5, जिसका टाइटल है परिणीता। तो क्या होता है आज? आज किसी को कोई रास्ता मिलता है या इश्क में यूं ही मुब्तला इंसान फिर हाथ मलते रह जाता है? ये तो आपको स्टोरी सुनने के बाद ही पता चलेगा। तो आनंद लीजिए इस खूबसूरत सी स्टोरी का।
6: नमस्कार, हेलो एंड गुड इवनिंग दोस्तों। आज है परिणीता का भाग 5। पिछले भाग में आपने सुना कैसे ग्रीन बाबू ने शेखर को सच बताया कि ललिता ने हमेशा उसी को अपना माना है। शेखर को अपनी गलतियों का एहसास होने लगा और पहली बार उसने महसूस किया कि वो ललिता के बिना कितना अधूरा है। लेकिन क्या अब भी वक्त बाकी था? क्या प्यार इतने दर्द के बाद भी अपना रास्ता बना पाएगा? उस रात शेखर बिल्कुल सो नहीं पाया। बार बार उसके कानों में ग्रीन बाबू की बातें गूंज रही थी। ललिता ने हमेशा आपको ही अपना माना। अब उसे अपनी हर गलती याद आने लगी थी। कैसे उसने अपने अहंकार में उस इंसान को सबसे ज़्यादा दर्द दिया जो उससे सबसे ज़्यादा प्यार करती थी। सुबह होते ही शेखर बिना देर किए ललिता के घर पहुँचा। घर के आंगन में हल्की धूप फैली हुई थी और ललिता चुपचाप खड़ी थी। शेखर कुछ पल बस उसे देखता रहा। शायद पहली बार वो उसे सिर्फ देख नहीं रहा था बल्कि महसूस कर रहा था। ललिता ने धीरे से पूछा, तुम यहाँ? शेखर की आवाज़ भर आई,

0: मुझे बहुत देर हो गई ललिता, लेकिन अब और नहीं। ललिता चुप रही। उसकी आंखों में सवाल भी थे और दर्द भी। शेखर ने धीरे से कहा, मैं हमेशा तुमसे प्यार करता था, लेकिन कभी समझ ही नहीं पाया। मैं तुम्हें खोने से डरता था, इसलिए तुम्हें खुद से दूर करता रहा। ये सुनते ही ललिता की आंखों से आंसू बहने लगे। सालों का इंतजार, अनकही बातें, दबी हुई भावनाएं, सब जैसे एक पल में बाहर आ गए। शेखर ने पहली बार उसका हाथ थामा और कहा, अगर आज भी तुम्हारे दिल में मेरे लिए जगह हो तो मुझे कभी खुद से दूर मत करना। ललिता हल्की सी मुस्कुराई, क्योंकि वो तो पहले ही मन से खुद को शेखर का मान चुकी थी। उस पल दोनों ने महसूस किया कि सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता, वो बस वक्त और हालात के पीछे छुप जाता है। और आखिरकार दो अधूरे दिल एक हो गए। दोस्तों, परिणीता सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है, ये उन एहसासों की कहानी है जो अक्सर हम अपने दिल में छुपा कर रखते हैं। कई बार हम किसी से बहुत प्यार करते हैं लेकिन उसे कह नहीं पाते। कभी अहंकार बीच में आता है तो कभी डर, और फिर वक्त धीरे धीरे रिश्तों के बीच दूरियां बना लेता है। शेखर और ललिता की कहानी भी शायद इसी सच को दिखाती है। तो दोस्तों, अगर आपकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसा इंसान है जो आपके दिल के बहुत करीब है, जिसकी मौजूदगी आपकी मुस्कान की वजह है, तो उसे यह एहसास ज़रूर कराइए, क्योंकि हर कहानी को दूसरा मौका नहीं मिलता। और कभी कभी एक छोटी सी खामोशी पूरी जिंदगी की दूरी बन जाती है। इसी खूबसूरत एहसास के साथ हम आपसे लेते हैं इजाजत। फिर मिलेंगे एक नई कहानी, नए जज्बात और नई मोहब्बत के साथ।
1: और जब कभी कोई जज्बात अगर अंदर ही रह जाता है तो फिर क्या होता है? फिर होता है रहस्य। जी हाँ, हम भी आपको एक ऐसी रहस्य सीजन 2 से रूबरू करा रहे हैं, और उसका एपिसोड नंबर 4 आपको आज सुनाएंगे, जिसका टाइटल है खामोश घाटी। और आलेख और प्रस्तुति और सहयोग है मोहम्मद आदिल सैफी का। तो आप क्या समझ रहे हैं कि क्या होगा आज रहस्य सीरीज में? क्या कोई किसी का पता लगा पाएगा, या हो जाएगा किसी का आज अंतिम दिन? ये तो सुनने के बाद ही पता चलेगा ना। रहस्य सीजन 2 का एपिसोड नंबर 4, खामोश घाटी।
2: हाय, मेरा नाम आदिल है, आदिल सैफी, और आप सभी लिसनर्स का स्वागत है हमारे रहस्य सीरीज के सीजन 2 में। इस कहानी का नाम है खामोश घाटी, और यह है रहस्य सीरीज की चौथी कड़ी, यानी एपिसोड नंबर 4।

अब जान लेते हैं अब तक की कहानी। कहानी शुरू होती है 5 अक्टूबर साल 1987 में। एडम और बाकी टीममेट्स ट्रैक पर निकलते हैं। उनकी डेस्टिनेशन थी साइलेंट वैली, और शाम तक एडम और उनकी टीम अपने मुकाम पर भी पहुंच जाते हैं। रास्ते में आई परेशानियों के बावजूद वो खुश थे, क्योंकि वो अपनी मंजिल पर पहुंच चुके थे और वहाँ का नज़ारा बहुत खूबसूरत था। अब थोड़ा टाइम उनका वहीं गुजरता है, लेकिन 6 अक्टूबर साल 1987 रात के तकरीबन 2 बजे के करीब डेनवर पुलिस हेडक्वार्टर में एक GPS सिग्नल आता हुआ दिखाई पड़ता है, जो कि आ रहा था साइलेंट वैली से। अगले दिन जब रेस्क्यू टीम उस GPS सिग्नल को ट्रेस करते हुए वहां उस लोकेशन पर पहुंचती है, तो उनको खाली टेंट्स मिलते हैं जो कि अंदर से बाहर की ओर फाड़े गए थे, लेकिन वहां पर एक भी टीम मेंबर का पता नहीं लग रहा था। किसी को समझ नहीं आ रहा था और सब ये सोच रहे थे कि आखिर 5 लोग हवा में कैसे गायब हो गए। अब ऐसा होते होते समय बीतता है और 3 दिन गुजर जाते हैं। उसके बाद सर्च टीम को कैंप से तकरीबन 3 किलोमीटर दूर जंगल में एडम और बेंजामिन की बॉडीज मिलती हैं, जो कि ऐसी हालत में मिली थी जिसने फॉरेंसिक साइंस के सारे रूल्स तोड़ दिए थे। सबके मन में बस एक ही सवाल था कि आखिर उस रात उनके साथ क्या हुआ होगा। रेस्क्यू टीम को सबसे ज्यादा ताज्जुब तब हुआ जब -30 डिग्री सेल्सियस की कपा देने वाली ठंड में भी एडम और बेंजामिन के शरीर पर सिर्फ अंडरगारमेंट्स थे। उन्होंने बूट्स, जैकेट्स, ग्लव्स, यहाँ तक कि अपने सारे कपड़े उतार दिए थे। ऐसा लग रहा था कि मौत से ठीक पहले उन्होंने खुद ने ही अपने सारे कपड़े उतार फेंके हों। साइंस में एक टर्म आती है हाइपोथर्मिया। इसमें अक्सर ऐसा होता है जिसे पैराडॉक्सिकल अनड्रेसिंग कहते हैं, जहाँ जमते हुए इंसान का दिमाग उसे सिग्नल देता है कि उसको बहुत गर्मी लग रही है। शायद एडम और बेंजामिन के साथ भी यही हुआ होगा। उसके बाद पुलिस उन दोनों बॉडीज को चॉपर की मदद से डेनवर सिटी में मौजूद फॉरेंसिक लैब में ले जाते हैं, ताकि उनकी डेथ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन उनको मिल सके। बाकी सर्च टीम और टीममेट्स की बॉडी की तलाश में लग रही थी, लेकिन ड्यू टू हैवी स्नोफॉल वो सब नामुमकिन सा लग रहा था। दिन 10 अक्टूबर साल 1987, सब कुछ शांत लग रहा था, एवरीथिंग वॉज नॉर्मल। फिर तभी फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट आती है, जिसको पढ़ने के बाद किसी भी इंसान की रूह कांप उठेगी। डॉक्टर एडवर्ड, जो कि एडम और बेंजामिन की बॉडीज की ऑटोप्सी कर रहे थे, उन्होंने अपनी रिपोर्ट्स में बताया कि एडम और बेंजामिन की बॉडी पर कोई खरोच या किसी जानवर के हमले के निशान नहीं थे, लेकिन अंदर से एडम की पसलियां ऐसी टूटी हुई थी जैसे एडम किसी तेज रफ्तार के ट्रक से टकराया हो। बेंजामिन की खोपड़ी के अंदर फ्रैक्चर था। बिना बाहरी चोट के इतना भयानक इंटरनल डैमेज कैसे हो सकता है? वहां कोई खून नहीं था, कोई बाहरी चोट नहीं थी, उनके फटे कपड़ों के छोटे छोटे टुकड़ों पर रेडिएशन भी पाया गया था। जितने भी लोग वहां मौजूद थे सबके मन में एक ही सवाल था कि आखिर उस रात यानी 6 अक्टूबर साल 1987 में रात के वक्त में उनके साथ ऐसा क्या हुआ होगा। शायद ये सवाल आप सभी लिसनर्स के मन में भी होगा। इन्हीं सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे आगे आने वाले रहस्य सीरीज के बाकी एपिसोड्स में। सो हमारे युवाणी प्रोग्राम को सुनना ना भूले।

0: दोस्तों, प्रोग्राम के स्टार्टिंग में हमने पूछा था आपसे एक सवाल। हमारा आपसे सवाल था, विधान परिषद वर्तमान में कितने राज्यों में है, जिसका सही जवाब है 6। अब जान लेते हैं सही जवाब देने वाले साथियों के नाम। सुदर्शन शाह, नाहा खन्ना, दिनेश वर्मा, हीरामानी वर्मा, नंद कुमार ठाकुर, जॉन डी कास्ट्रो, ताज अंसारी, धर्मेंद्र छिपा, नजमुल हुदा जावेद, भगवंत लाडला जी, जगदीश ढाकर, पुनाजी नहावकर, विठल सुरोशे, राघव बाघेल, रवि कुमार राहुल, देवशंकर तामुरिया, बी आई धाकर, दिग्दर्शन गौड़, शाहजी बोटके, निसार सलमानी, राधेश्याम पांडे, रोशन दीवानगन, बी कमल, मोहम्मद सईद अब्बासी, उदय भंगन पाल, जाकिर मंसूरी, सदाशिव थौरात, गुरमीत सिंह मीता, रामशरण।
1: फागुराम यादव, नवी हसन अब्बासी, बबलेश पनवार, राजप्रिय गजबीय, जयपाल यादव, परवीन चौहान, राजकुमार डूडी, गंगा सिंह रावत, धीरज भाई राबड़ी, सुरेश गंगनेजा, विजय सुलरकर, अल्ताफ हुजरे और नीतम डोम्यू, मोहम्मद जाहिद अली, संतोष और नितेश कुमार देवगन, आफ्ताब अंसारी, राजेश वर्मा, किल्लू परवेज, अरविंद कुमार, लाल मोहम्मद अंसारी, शाहनूर अंसारी, मोहम्मद दानिश सिद्दीकी, गजनन येले, शकील अहमद इदरीसी, मुकेश कश्यप, अनिल विनोचा और उसी के साथ है दुर्गा राम साहू।
0: और दोस्तों, अब हम आपको सुनवाते हैं प्रोग्राम की ये आखिरी गजल।

0: दोस्तों, ये तो था हमारा आज का कार्यक्रम। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। हमारे प्रोग्राम्स आपको कैसे लग रहे हैं, आप हमें खत के जरिए बता सकते हैं। खत के लिए हमारा पता है
1: कार्यक्रम युवारी अनुभाग द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी नजीबाबाद, पिन कोड है 246763।
0: और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9457078288। इसी के साथ दीजिए अनुमति मुझे रुमान
1: और यूसुफा जैदी को कार्यक्रम संपन्न करने की। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। शाम के 6 बजने को है। कुछ ही देर में दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमाओं को सुरक्षित करना और घुसपैठ पर अंकुश लगाना राष्ट्र की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर महत्वपूर्ण G7 और G13 सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार लीक प्रूफ सुरक्षा ग्रिड स्थापित करने के लिए ड्रोन, रडार और आधुनिक बाढ़ सहित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है। उन्होंने नई सुरक्षा ग्रिड के साथ सीमा प्रबंधन में संरचनात्मक परिवर्तन की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस मॉडल के तहत नागरिकों, प्रशासन, स्थानीय पुलिस और सीमा सुरक्षा बल तथा सेना के सहयोग से पूर्ण क्षेत्रीय सुरक्षा का प्रबंध किया जाएगा। सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस का पर्याप्त भंडार है और सभी शोधन संयंत्र अधिकतम स्तर पर काम कर रहे हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में सचिव सुजाता शर्मा ने नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में कहा कि देश में प्रतिदिन 92,000 मीट्रिक टन रसोई गैस का उत्पादन हो रहा है, जो अब तक का सर्वोच्च स्तर है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 2,70,000 मीट्रिक टन कच्चे तेल के साथ वाणिज्यिक पोत निसोस केरोस होरमूज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकल गया है और 3 जून तक इसके विशाखापट्टनम पहुँचने की

0: आशा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। न्यायालय की पीठ आज इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि पेपर लीक की घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। डीडी न्यूज को दिए साक्षात्कार में श्री प्रधान ने आश्वासन दिया कि पुनः परीक्षा प्रक्रिया उचित और व्यवस्थित तरीके से बिना किसी त्रुटि के संपन्न की जाएगी।
1: जो घटना हुई है ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है, नहीं होनी चाहिए था। अभी दोबारा जब हम लोगों ने री नीट की घोषणा किया है और री नीट सुव्यवस्थित हो जाए, इसमें निर्भुलता के साथ हो, ये अभी हमारा दायित्व है। इस काम से सभी का सहयोग हम अपेक्षा रखते हैं।
0: श्री प्रधान ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि सीबीआई इस मामले की पूरी जाँच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। दिल्ली में 21 जून को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट परीक्षार्थी डीटीसी की बसों में निशुल्क यात्रा कर सकेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस सुविधा का लाभ लेने के लिए परीक्षार्थियों को केवल अपना वैध नीट एडमिट कार्ड दिखाना होगा। केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी बघेल ने कहा है कि भारत को 2047 तक विश्व की महाशक्ति और अग्रणी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य प्रत्येक नागरिक को सशक्त किए बिना हासिल नहीं हो सकता। असम के गुवाहाटी में कार्यक्रम में उन्होंने राज्य और राष्ट्र की मजबूती के लिए ग्राम स्तर पर नागरिकों को सशक्त बनाए जाने पर बल दिया। भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC ने नई दिल्ली परिसर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट एकेडमी की शुरुआत की है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार ने कहा कि यह एकेडमी 5 मुख्य क्षेत्रों पर काम करेगी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य की घुसपैठ और इसके कारण जनसांख्यिकी बदलाव की आशंका व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार घुसपैठ मुद्दे पर कोई कार्रवाई करने में नाकाम रही। यही कारण था कि तृणमूल प्रशासन ने केंद्र से समय से निर्देश मिलने के बावजूद जनगणना कार्य की शुरुआत नहीं की। म्यांमा के राष्ट्रपति यू मिन आंग हिलाइंग कल से 3 जून तक भारत यात्रा पर आ रहे हैं। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति के बीच द्विपक्षीय वार्ता में आपसी संबंधों को प्रगाढ़ करने के तरीकों पर चर्चा होगी। IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटन्स का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को आपके भैया आलोक कुमार गंगाराम
1: और आपके भैया सुवेंद्र सिंह झुमरू की राम राम। तो भाई गंगाराम।
0: हाँ भैया झुमरू।
1: अरे कैसे हाल चाल है भाई, सब राज्य खुशी?
0: भाई देखो हाल चाल तो ठीक है, पर यो भैया मौसम थोड़ा सा करवट ले रहा भैया।
1: भाई देखो मौसम में तो कुछ ऐसा हो रहा है कि भैया आंधी और बाढ़ या भैया थोड़ी बहुत बारिश होने की संभावना बन रही। भाई
0: भाई देखो 3 दिन से लगातार पूर्वा हवा चल रही और भाई एकदम समझ लो 40 से पार रखे ने तो।
1: भैया देखो वो किसी ने कहते हमारे बड़े बुजुर्गों ना कि पूर्वा का पोस्ता खाली ना जाया करता।
0: तो भाई उम्मीद यो है कि कल तक थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो जाएगी।
1: हो गया भैया। और देखो इस टाइम पर जो अभी हमारी फसलें खड़ी हैं भाई, चाहे गन्ने की फसल हो, सब्जी हो, या भैया हमारी चारे वाली फसल हो,
0: बिल्कुल
1: भैया उनमें समय सिंचाई की आवश्यकता है।
0: बिल्कुल।
1: और अब तक हमारे किसान भाई जो है ट्यूबवेल का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन देखो बारिश की भी संभावना बन रही है, और अगर बारिश भी नहीं बन

0: यह तो भाई देखो, पूर्वी गंगा नहर में पानी भी छोड़ दिया गया।
1: बिल्कुल। तो देखिए भाई, बात यह है कि गर्मियों के मौसम में दो चीजें बहुत जरूरी हैं।
0: बिल्कुल।
1: एक तो भैया टाइम पे जो है फसल की सिंचाई हो जाए, और दूसरा भैया यो है कि उनमें सामायिक कार्य हो जाए, यानी कि निराई गुड़ाई का काम हो जाए। ये दोनों बहुत जरूरी हैं, चाहे भैया फसल गन्ने की हो या दूसरी हो।
0: अब देखो भैया, जो हमारी फसलें हैं, चाहे तो भैया गन्ने की हो या भैया हमारी दूसरी फसल हो, उनमें निकाय गुड़ाय काम तो हो भाई है,
1: हाँ
0: और हमारे भाई लगे हुए हैं।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन भैया जो हमारे बाग हैं, चाहे तो भैया आम के बाग हों, लीची के बाग हों,
1: ठीक।
0: या भैया अमरूद के बाग हों,
1: हाँ
0: भाई उनमें भी तो हमें देखभाल करनी।
1: बिल्कुल। बात देखो, आम से शुरू करते हैं। देखो आम ऐसे हैं भैया, हमारे बहुत किसान भाइयों ने जो है सैकड़ों सैकड़ों बीघे बाग लगा रखे हैं भैया।
0: भाई देखो गंगाराम, थारी बात रोको, एक बात कहनी पड़ रही
1: हाँ
0: भाई। आम के चक्कर में एक खास बात रह गई
1: वो क्या?
0: भाई, बात वो यो हो कि आज है इस मई महीने का पांचवा शुक्रवार,
1: बिल्कुल।
0: और भैया आज हम बहन भाइयों को लेकर आए हैं भैया हमारा सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान।
1: बिल्कुल, ये बात तो भूल ही गए थे।
0: तो भाई आप जल्दी से नंबर बता दो, जिससे हमारे किसान भाई हम सराय मसूरे के लिए भैया फोन कर सकें और भैया हम उनसे बातचीत कर सकें।
1: तो भाई किसान भाइयों को सलाह ये देनी है कि आपकी कोई खेती किसानी, पशुपालन या बागवानी से संबंधित कोई भी समस्या है,
0: हाँ,
1: तो अब से लेकर और 6:45 तक
0: बिल्कुल
1: हमारे किसान भाई भैया फोन करके हमसे किसी भी समस्या का निदान कर सकते हैं। और भैया उसके लिए हम बता देते हैं अपने फोन नंबर।
0: आप बताओ ये जल्दी से।
1: फोन नंबर भैया हमारा नोट कर लो, 9457-07-82-88। यो
0: हाँ
1: भैया फोन नंबर है नजीबाबाद का, और भैया एक लैंडलाइन नंबर भी है।
0: हाँ भैया
1: पहला भैया नजीबाबाद का एसटीडी कोड लगाओ, वो है भैया 01341।
0: ठीक।
1: और भैया एक फोन नंबर और लगा दो साथ में, वो है 230-105। तो इनमें से किसी भी एक नंबर पर आप फोन करके अपनी कोई भी खेती किसानी से संबंधित, पशुपालन से संबंधित, बागवानी से संबंधित समस्या है तो उसका निदान कर सकते हैं भैया।
0: अब देखो भैया, जो हमारा लैंडलाइन का नंबर है,
1: ठीक।
0: जिसमें भैया 01341 हमारा नजीबाबाद का एसटीडी कोड है और फोन नंबर 230-105,
1: ठीक।
0: यो हमारा बहुत ही पुराना नंबर है। और भाई जब ये फोन इन कार्यक्रम शुरू हुए थे तो भाई सबसे पहले इसी फोन पर शुरुआत हुई थी, और
1: भाई
0: भाई बाद में जो मोबाइल नंबर भी आ गया।
1: सही कह रहे हैं भैया, तो जो क्या पुराने कहावत है, ओल्ड इज गोल्ड। भैया सदाबहार चीज है।
0: बिल्कुल
1: तो भैया आप अपनी समस्या का निदान कर सकते हैं। और बात हम कर रहे थे बागों की, तो
0: बिल्कुल।
1: अब अपनी बात पलौटिया।
0: तो भाई देखो, हमने बाग लगा रखे हैं
1: ठीक।
0: और हमारे किसान भाई जो है भैया, देखो भैया देखते हैं कि भैया आम में बौर आ गया, और भैया आम भी छटनी शुरू हो गई, और या भैया आंधी आ गई तो उसके नीचे से आम भी चुगलाओ,
1: ठीक।
0: उसके अलावा कोई देखभाल करती नहीं भैया।
1: ना ना देखो, अब हर चीज एक बिजनेस हो गई, वैज्ञानिक तरीकों को अपनाने की जरूरत हो गई।
0: बिल्कुल
1: तो भैया वैज्ञानिक तरीके को अपना के कोई भी काम करोगे तो उसमें बहुत फायदा होगा। अब
0: हाँ
1: स्टेम की बात ले लो, तो भाई स्टेम का सबसे जरूरी काम यो है कि हम देख लें कि अगर आपकी कोई टहनी भैया वो सूख रही है,
0: जी
1: या उसके भैया लगातार आप देख रहे हैं कि वो पत्ते सूख रहे हैं या कुछ होते जा रहे हैं, तो उसे वहीं से जहां से आप देख रहे हैं कि यहां तक तो सूख गई और उसने चू गिल्ली हो, तो जहां से गिल्ली है थोड़ी सी गिल्ली समझ के वो काट दो आरी से,
0: बिल्कुल
1: और
0: बिल्कुल
1: वहां चौबटिया पेस्ट लगा दो, ताकि जो आपका पूरा पेड़ है वो सूखने से बच जाएगा।
0: बिल्कुल
1: एक काम तो यू कर सकते हैं भैया।
0: और भी दूसरा काम देखो यो कि देखो गर्मी का महीना, और गर्मी के इस महीने में देखो भैया जैसा हमें प्यास लगा वैसे भैया जंगली जानवरों को प्यास लगा है, हमारी जो फसलें भैया उन्हें भी पानी की आवश्यकता रहती है,
1: हाँ
0: और पेड़ पौधों को भी भैया पानी की आवश्यकता रहती है।
1: बिल्कुल।
0: तो भैया हम थालों की साफ सफाई करनी है, साथ ही भैया हम अपने थालों में नमी बनाकर रखनी, भाई यूं नहीं कि भैया पानी भर कर खड़ा कर दो।
1: ना ना ना
0: इस टाइम भाई देखो फलत आई हुई है,
1: हाँ
0: तो हम बाग में भैया पानी भर कर नहीं खड़ा करना,
1: ना ना
0: बस केवल जो हमारे थाले हैं
1: हाँ
0: पौधों के आसपास, पेड़ों के आसपास भैया उनमें नमी बनाकर रखनी है।
1: बिल्कुल। देखो भाई बात यू आ रही है, आपके दिमाग में आओगा ना भैया कौन कौन रोज रोज पानी देवे, भैया पानी क्यों नहीं भरना। देखो
0: ना
1: पानी की खास बात यू होती है, आजकल दिन में हो रही बहुत ज्यादा गर्मी, और पानी की विशेषता ये हो कि वो जल्दी से तो गर्म नहीं होता
0: बिल्कुल
1: और जल्दी से ठंडा भी नहीं
0: ठंडा भी
1: होता,
0: नहीं
1: तो
0: होता।
1: वो बहुत देर तक गर्म रहेगा। अगर गर्म एक बार हो गया तो वो आपके जो नस्से हैं उन्हें नुकसान पहुंचाएगा, और भैया नुकसान तो कोई भी हो नुकसान ही है। तो
0: बिल्कुल
1: इसलिए जो है पानी भर कर नहीं छोड़ना, बल्कि जिससे वो पूरी जमीन सोख ले और नमी बन जा, ऐसा पानी देना।
0: और भाई जब हम पानी दें तो भाई उस टाइम भी हमें ध्यान ये रखना कि भाई ऐसा नहीं जैसा मान लो हमने पूरे बाग में पानी भर दिया लबालब, ऐसा नहीं भरना भैया,
1: ना ना
0: क्योंकि हमारे किसान भाई ऐसा काम करते हैं कि भैया थाले से थाले भैया वो नाली बनाकर रखते हैं, और जैसा भैया हमने पानी छोड़ा वो पहले थाले में पहुंचा, उसके बाद में भैया फिर वो नाली के माध्यम से दूसरे

0: थाले में पहुंचेगा और फिर ऐसे ही नाली टू नाली होता होता भैया वो पूरे बाग में पूरे पेड़ पौधों में पहुंच जाएगा और भैया बाग हमारा सूखा रहेगा।
1: बिल्कुल सही बात है। तो देखो जो सही तरीका है उसे अपनाना चाहिए। और भाई अब बात यह है, काफी बात हो गई और हमने जैसे बात करी थी कि आज माह का पांचवा शुक्रवार है।
0: बिल्कुल।
1: और आज हमारे किसान भाइयों का पसंदीदा कार्यक्रम होता है हेलो किसान।
0: तो भैया कार्यक्रम शुरू करते हैं लेकिन पहले सुनते हैं ये कुछ जरूरी संदेश।
1: ठीक है भैया।

0: AIR at 90.
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने

0: यूरिया और डीएपी का संतुलित उपयोग,
1: खुशहाली का नया प्रयोग।
2: किसान भाई अंधाधुंध उर्वरकों के प्रयोग से बचें और खेती की लागत कम करके प्राकृतिक संसाधनों को बचाएं। भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान मोतीपुरम मेरठ और आकाशवाणी नजीबाबाद द्वारा जनहित में जारी।
3: तो भाई देखो, संदेश तो हमने सुन लिया गंगाराम।
4: बिल्कुल।
3: और देखो, अब भाइयों के फोन भी आने शुरू हो रहे हैं सहज सहज। तो भैया, अब शुरू करते हैं अपना सजीव फोन इन कार्यक्रम, जिसका नाम है
5: हेलो किसान।

0: तो स्वागत है हमारे सभी बहन भाइयों का आज के प्रायोजित इस कार्यक्रम सजीव फोन इन कार्यक्रम में, जिसका नाम है हेलो किसान। और इस कार्यक्रम के साथ मैं हूं आपका भैया सुवेंद्र सिंह झुमरू,
1: और मैं हूं आपका भैया आलोक कुमार गंगाराम। तो भैया शुरू करते हैं आज का हेलो किसान।
0: तो भैया यदि आप भी इस कार्यक्रम में सहभागिता करना चाहते हैं, हमसे बातचीत करना चाहते हैं और खेती बाड़ी में पशुपालन के संबंध में कोई राय मशवरा लेना चाहते हैं, तो आप अब से लेकर और 6:45 तक सीधे स्टूडियो में फोन कर सकते हैं। और फोन करने के लिए भैया हमारे फोन नंबर है
1: 94-57-07-82-88, और भैया एक हमारा लैंडलाइन नंबर भी है 013-41-230-105। किसी एक नंबर पर भैया फोन करके सीधे जुड़ सकते हैं। और भैया एक किसान का फोन आ गया, भैया देखते कौन है।
0: हेलो।
2: हेलो।
0: हाँ जी, हेलो किसान।
2: नमस्कार जी।
1: नमस्कार।
2: जिला मुरादाबाद से सर रेणु चौधरी बात कर रहे हैं
0: जी। रेणु जी बताइए, कैसे हैं आप?
2: बढ़िया है जी, आप सुनाओ सुरेंद्र भाई।
0: बिल्कुल जी, खेती बाड़ी कैसे चल रही है आपकी?
2: बस ठीक चल रही है, बस परेशानी है, वो टॉप बॉलर सा आ गया ऊपर पेटी में, मतलब उसकी वो खेचे हैं, वो तो काली काली भीतर से निकला है, खेती आवा है वो।
0: अच्छा, टॉप बॉलर आपकी उसमें आ रहा है
1: गन्ने में? गन्ने में
2: और वैसे भी
0: जी
2: पत्ती हिल रही है नौलख में।
0: अच्छा, ये जो आपने ब्लैक ब्लैक सा बताया, ऐसा हो रहा है या ऊपर से गोप सूख रही है, बताइए आप।
2: वो जैसे ऊपर से खर्चे है ना, वो तो काला काला निकल रहा पाउडर सा,
0: नीचे से काला काला निकलता है।
2: हाँ,
0: तो ऊपर से तो जो हमारी पौधे की जो गोफ है वो तो आपको सफेद दिखाई देती होगी, जैसे सूख गई है।
2: हाँ ऐसा लग रहा है ऊपर से।
0: हाँ, तो देखिए आपकी फसल में टॉप बोरर का प्रकोप हो गया है, ये तना छेदक कीट हमारे गन्ने की फसल में काफी नुकसान पहुंचाता है। और देखिए जहां तक इसकी रोकथाम की बात है, तो इसकी 4-5 पीढ़ियां अटैक करती हैं, ये बहुत ही गन्ने का जो है मुख्य कीट है और काफी नुकसान पहुंचाता है, और इसकी वजह से हमारा उत्पादन भी काफी प्रभावित होता है। तो देखिए अब जहां तक रोकथाम की बात है, तो इसमें आपको किसी भी कीटनाशक का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है जी।
2: अच्छा,
0: इसमें आप साइपरमेथ्रिन या प्रोफेनोफास का इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप इसका छिड़काव कीजिए।
2: अच्छा।
0: हाँ, और इसके बारे में हम आपको बता दें कि जब इसका शुरुआत होती है तो सबसे पहले हमें एक जो पत्तियां होती है उसमें तितली सी बैठी दिखाई देती है।
2: अच्छा।
0: हाँ, तो अगर हमें खेत में पत्तियों पर जब हम खेत में जाएं और वो तितली सी बैठी दिखाई दे, हल्के गुलाबी रंग की तितली होती है, वो तितली क्या काम करती है? तितली कोई नुकसान नहीं पहुंचाती, तितली केवल इतना काम करती है वो अंडे देती है, अंडे से लार्वा निकलता है और वो सूंडी बनती है, और वो सूंडी हमारी गोफ में घुस जाती है जो काट देती है अंदर से, ठीक है जी।
2: अब दिक्कत ही हो है सुवेंद्र भाई, मैं प्रोग्राम आपका काफी टाइम से सुनता हूँ, मुझे जो है आंखों से तो दिक्कत नहीं, पर वो जो कोई बता दे ना भाई, वो रोग आ गया अपना, वो ही छिड़काव कराना पड़ा है।
0: हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो आप
2: बहुत परेशान है, क्या करें यार, दवाइयाँ इतनी महंगी हो गई और मजदूर लेबर मिल नहीं पाती।
0: नहीं देखिए, अगर आप रसायन का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो इसके अलावा कुछ जैविक नियंत्रण है, जैविक उपाय है, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आप आजमा सकते हैं।
2: बताओ।
0: हाँ देखिए, सबसे पहला उपाय तो यह है कि देखिए हम अपने खेत में लाइट ट्रैप लगा सकते हैं, प्रकाश प्रपंच।
2: अच्छा।
0: प्रकाश प्रपंच का मतलब यह है कि सुनने में थोड़ा ऐसा लगता है टेक्निकल नाम, लेकिन अगर हम इसको जान लें तो देखिए, अगर हम अपने खेत में लाइट की व्यवस्था कर लें रात्रि के समय, और उसमें नीचे कोई पानी का ड्रम रख लें, ऊपर उसको बल्ब लटका लें, तो आपने देखा होगा कि जो कीट पतंगे होते हैं वो प्रकाश पर आकर्षित होते हैं, है ना। तो जो तितली है वो प्रकाश पर आएगी, लाइट पर आएगी, और भुनभुनाते भुनभुनाते वो जो है आखिरकार उस जो हमारा पानी का ड्रम है उसमें गिर जाएगी, ठीक है जी। और इसके अलावा एक फेरोमोन ट्रैप लगाया जाता है जिसमें कि मादा कीट की गंध होती है, तो जितने भी हमारे नर कीट होते हैं वो फेरोमोन ट्रैप में फंस जाते हैं। फेरोमोन ट्रैप का मतलब जाल होता है, ठीक है जी।
2: अच्छा।
0: जिसमें फेरोमोन रसायन की गंध लगाई जाती है, और जो हमारे नर कीट होते हैं वो उसको ऐसा लगता है कि आसपास कहीं मादा कीट है, तो वो आकर्षित होते हैं और वो जाल में फंस जाते हैं। तो इस तरीके से जब हमारी सूंडी नियंत्रित हो जाती है, तो फिर ना तो जो हमारी तितली है वो नियंत्रित हो जाती है, तो ना तो वो अंडे देगी ना फिर आगे हमारी समस्या आएगी।
2: हाँ ये तो है। और ये नीम के तेल से जो छिड़काव करते हैं?
0: हाँ, नीम के तेल का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको देखिए स्प्रे तो करना ही पड़ेगा, खेत में इस्तेमाल तो करना ही पड़ेगा।
2: स्प्रे तो करना ही पड़ेगा
0: जी जी। और इसके अलावा एक ट्राइकोग्रामा कार्ड आता है।
2: अच्छा, अच्छा।
0: जी जैसे पोस्ट कार्ड होता है ना हमारा चिट्ठी वाला, इसी साइज का एक पोस्ट कार्ड के आकार का हमारा ट्राइकोग्रामा कार्ड होता है, उसमें टिकट जैसे डाक टिकट होता है उसी आकार के अंडे चिपके होते हैं।
2: अच्छा।
0: हाँ, और जब हम उसका इस्तेमाल अपने खेत में करते हैं, हमें करना क्या होता है कि उस पोस्ट कार्ड को हम ले जाते हैं और जैसे वो टिकट हमारे चिपके होते हैं, तो एक टिकट को लगभग मतलब उन अंडों को हम अलग अलग स्थानों पर लगाते हैं स्टेपलर के माध्यम से, पत्ती के नीचे हम उसको चिपका देते हैं। शाम के समय हम ये काम करते हैं, तो फिर होता यह है कि उन अंडों से कीट निकलते हैं, छोटे ततैये जैसे पीले रंग के, और वो ततैये क्या काम करते हैं, जो टॉप बोरर की अंडे होते हैं उसके संपर्क में आते हैं और वो उनको अपने जैसा कर देते हैं, मतलब उन अंडों में से भी फिर टॉप बोरर की सूंडी ना निकल कर उस जैसे ही ततैये निकलते हैं। तो इस तरीके से भी हम जो है टॉप बोरर जो हमारा कीट लगता है इसको हम नियंत्रित कर सकते हैं जैविक उपायों के माध्यम से। ठीक है जी।
2: हाँ सुमित्र भाई, एक समस्या और है अपने यहाँ से नदीमाबाद में, मतलब जो है प्रोग्राम बहुत जल्दी जल्दी गायब हो जाते हैं, मतलब तन तन देर में बिजली बहुत बचती है, बहुत भारी समस्या।
0: नहीं देखिए, बिजली तो अब नहीं जाती है, वो तो बहुत पहली
2: पता
0: समस्या
2: नहीं
0: थी।
2: तन तन देर में प्रोग्राम गायब हो जाते, 10-15 मिनट कुछ ऐसा समाचार चल रहे हैं या कुछ है, क्या करें बताओ।
0: देखिए 200 किलोवाट का ट्रांसमीटर है और जनरेटर की भी व्यवस्था है। पहले तो ऐसा होता था जब केवल 100 किलोवाट का हमारा ट्रांसमीटर था, और अब देखिए जनरेटर की व्यवस्था है, अब ऐसी समस्या नहीं आती। अगर होता भी है तो केवल बहुत थोड़े टाइम के लिए होता है, जैसे कि लाइट गई है।
2: दिन में कई कई बार हो जाता है, मैं तो सुनता रहूं ना कई कई बार,
1: हाँ देखिए, ये
2: तो
1: तो
2: क्या
1: आंधी
2: होगा।
1: तूफान की वजह से मौसम भी थोड़ा गड़बड़ा रहा है, इसकी वजह से बिजली बार बार जा रही है, तो कई बार हो भी
2: तो
1: सकती है,
2: जगह
1: लेकिन हम सुधार की कोशिश करेंगे।
0: बिल्कुल, तो उम्मीद है कि इनकी समस्याओं का समाधान हो गया होगा।
1: हाँ एक और फोन आ रहा, देखते हैं कौन भैया है।
0: हेलो,
3: हेलो।
1: हाँ जी हेलो, किसान
3: हाँ जी, गंगाराम जी को, ढिंगू जी को मेरी राम राम।
0: राम
3: राम
0: राम
3: राम
0: जी,
3: साहब,
0: राम राम।
3: हेलो।
1: हाँ जी,
0: हाँ
1: आवाज आ रही है हमें, आप बताइए, अपना नाम बता दीजिए।
3: मैं ग्राम का धरना, जिला हरिद्वार, उत्तराखंड से मदन गिरी बोल रहा हूँ
1: जी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में।
3: जी। और
0: आपकी आवाज थोड़ी
3: वो
0: हल्की आ रही है, थोड़ा जोर से बोलेंगे तो अच्छा रहेगा मदन जी।
3: कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम हो गई, बोल तो रहा जोर से जी मैं। आ भाई,
0: अच्छा
1: जी जी
0: अच्छा
1: आ रही,
0: जी, ठीक है
3: आ रही
0: ठीक
3: है
0: है।
3: जी। अब जा
1: जी जी आ रही।
0: और बताइए खेती बाड़ी कैसे चल रही है आपकी?
3: खेती बाड़ी ठीक चल रही है जी, गन्ना ठीक कटा है, और एक समस्या जरा सी बागवानी से है जी।
0: हाँ
1: हाँ
0: जी
1: बताओ
3: वो ऐसा है जी, वो अमरूद का पेड़ है पेड़
0: जी
3: में, उस पर फूल आते हैं, झड़ जाते हैं,
0: जी जी
3: और अमरूद तो आते हैं लेकिन इतने नहीं आते जितना फूल आता है जी।
0: अच्छा,
3: हाँ जी। और एक समस्या एक जो है जी, एक पूछना यह है कि हमने जो है एक अच्छे जो है नींबू के पेड़ के बीज बोए थे और वो जम गए हैं, तो उन्हें किस टाइम पे लगाए, कब को लगाए उन्हें पेड़ को,
0: बिल्कुल ठीक,
3: दो
0: अच्छी बात है।
3: बातें
0: देखिए
3: हैं मेरी
0: आपने अमरूद के पौधे लगा रखे हैं, बहुत ही अच्छी बात है, और उन
3: जी।
0: पर फूल आते हैं और वो फूल झड़ जाते हैं। और
3: जी
0: तो देखिए सबसे पहली बात तो ये कि जितने मात्रा में फूल आते हैं उतने फल नहीं बनते हैं
3: इतने फल नहीं मिलते
0: उस
3: जी
0: हिसाब से। और
3: जी
0: अगर ये समस्या भी हमारे सामने दिखाई देती है कि मतलब जितने फल बनने चाहिए उतने भी नहीं बन पा रहे हैं, तो इसका जो मुख्य कारण होता है वो होता है संतुलित मात्रा में पौधे को पोषक तत्वों का ना मिलना। इस वजह
3: अच्छा
0: से ये
3: जी
0: समस्या हमारे सामने आती है, और खास करके
3: अच्छा
0: जो
3: जी
0: हमारे जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं उसमें कई
3: जी
0: सूक्ष्म पोषक तत्व ऐसे हैं जो कि इसके लिए उत्तरदायी होते हैं, और अगर वे हमारे पौधे को नहीं मिल पाते हैं तो उस वजह से फूल तो आते हैं लेकिन फल नहीं बन पाते हैं। तो अगर हम सूक्ष्म पोषक तत्व अपने पौधे को उपलब्ध करवा देते हैं, थाले में डालते हैं, तो फिर ये समस्या हमारे सामने नहीं आती है। तो अगर आप इस तरीके से करेंगे तो हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा और आपको अमरूद खाने को मिलेंगे। और देखिए जहाँ तक नींबू की बात है, नींबू के पौधे लगाने की बात है, तो पौधा चाहे कोई भी हो, देखिए बरसात का मौसम तो सबके लिए अच्छा होता है।
1: बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए हल्की हल्की बारिश पड़ती हुई हो या थोड़ा सा अच्छा मौसम हो तो उस समय अगर कोई भी पौध लगाएं तो वो अच्छी रहती है, और मैं समझता हूँ नींबू तो ऐसी पौधे कि वो जल्दी

0: जो है पनप जाती है।
1: बिल्कुल। एक और भाई हमारे लाइन पर। हेलो, हाँ जी, हेलो किसान।
2: हेलो हेलो,
1: नमस्कार जी, नमस्कार
2: नमस्कार जी। हाँ जी, हेलो, किसान में लगाया था फोन
0: जी।
2: आपको। और भाई साहब ठीक ठाक हो?
1: हाँ जी, बढ़िया। आप बताइए, आप कैसे हैं?
2: हाँ जी, मैं तो बहुत अच्छी हूँ, और अल्लाह ताला सबको अच्छा रखे, और
0: जी
2: हमारा सलाम सारे हमारे नजरबाद वालों को, हमारे श्रोताओं को, सबको हमारा सलाम।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये बताइए, कैसे लगते हैं आपको हमारे कार्यक्रम नजीबाबाद के?
2: हाँ जी, हम ये तो कार्यक्रम बस मेरी समझ लो जान है।
0: जी
2: इतना अच्छा लगता है, मैं कहीं से भी कार्यक्रम सुनने चले आती हूँ, किसी जगह कार्यक्रम का मेरा बहुत दिल से सुनती हूँ,
1: जी
2: बहुत दिल
1: ठीक
2: से।
1: ठीक है जी। तो इसी तरीके से कार्यक्रम
2: हाँ
1: सुनते
2: जी,
1: रहिए। फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई देखिए, आप भी हमसे जुड़ सकते हैं और हमारे स्टूडियो में सीधे फोन कर सकते हैं। और गंगाराम भैया, अच्छा रहेगा एक बार फिर आप फोन नंबर बता दो भैया।
0: बिल्कुल। देखिए फोन नंबर मैं बता रहा हूँ, और किसान भाई हमारा नंबर नोट कर लें, 9457-07-82-88। तो भैया ये हमारा फोन नंबर है, इसके अलावा एक लैंडलाइन नंबर भी है, 0-13-41-230-105।
1: हेलो,
3: हेलो किसान।
1: हाँ
3: हाँ
1: जी,
3: जी, हेलो
1: हेलो
3: किसान,
1: किसान।
3: नमस्ते भाई साहब, नमस्ते
0: नमस्ते साहब, कौन भैया बोल रहे हैं, अपना नाम बता दीजिए।
3: जी। मैं उत्तराखंड सैनिखाल सैनिकाओं फैक्ट्री से प्रकाश चंद बोल रहा हूँ जी। मैं
1: जी
3: जी
1: प्रकाश
3: प्रकाश जी,
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हेलो किसान कार्यक्रम में। बताइए कैसे हैं आप?
3: धन्यवाद भाई साहब। भाई साहब मैं तो बढ़िया हूँ, आप लोग सब बढ़िया, और आकाशवाणी में समस्त स्टाफ सब बढ़िया।
1: जी बिल्कुल, आकाशवाणी परिवार बहुत कुशल मंगल है।
0: पहाड़ पे मौसम कैसा है प्रकाश जी?
3: भाई साहब मौसम तो कल भी बारिश हो रहा, वो मतलब काफी बारिश हो गई थी, और आज भी बारिश होने की संभावना है। इधर तो मौसम बहुत बढ़िया हो गया।
1: अच्छा
0: अच्छा, आंधी तो नहीं आई थी वहां पे?
3: है जी,
0: आंधी तो नहीं आई थी? आंधी
3: भाई साहब आंधी तो आई थी, खैर इधर तो लाइट भी नहीं है, मतलब सब खंभे खुम्भे तार तो टूट गए, लाइट लुइट नहीं है, इधर तो बहुत तूफान आया।
0: अच्छा, चलिए
3: भाई साहब
0: और
3: मैं मैदानी क्षेत्रों में।
0: जी।
1: हाँ देखिए, यहाँ भी आंधी आई थी लेकिन अभी बारिश नहीं हुई है। अब देखते हैं कि
3: हाँ
1: आगे
3: हाँ
1: क्या होता है, 1-2 दिन ऐसा ही मौसम रहने की संभावना है।
3: ज्यादा ठंड हो गई होगी थोड़ा, मतलब राहत मिल गई होगी गर्मी से।
1: लेकिन ठंड तो अभी नहीं हुई है, यहाँ तो भीषण गर्मी अभी पड़ रही है।
3: नहीं थोड़ा, मतलब थोड़ा ठंडक तो हुई होगी।
1: हाँ, 1-2 डिग्री तापमान में थोड़ी गिरावट आई है अभी।
3: हाँ जी, हाँ
0: आज गढ़वाली गीत नहीं सुना रहे कोई?
3: भाषा गढ़वाली की सुना
0: जी
3: दो।

0: या हेलो
1: हाँ हेलो, और बताइए खेती बाड़ी कैसे चल रही है आपकी प्रकाश जी।
0: भाई साहब, खेती बाड़ी भाई साहब, भिंडी लगाई थी मैंने और उसमें कीड़े लग रहे हैं भाई साहब। इसमें क्या बात हुई, उसमें कीड़े बहुत ज्यादा कीड़े लग रहे हैं उधर भिंडियों में।
1: अच्छा, तो भिंडी में आपके कीट लग रहे हैं।
0: हाँ जी हाँ,
1: हाँ देखिए, फल मक्खी कीट भी इसमें काफी नुकसान पहुंचाता है और हमारे फल में घुस जाता है। ठीक है जी।
0: हाँ जी हाँ,
1: हाँ तो देखिए, एक तो सबसे पहला काम हमें ये करना है कि जो हमारे प्रभावित फल हैं यानी कि जिनमें कीट लग गया है उनको आप तोड़कर अलग कर दीजिए।
0: भाषा किसको?
1: जो हमारे प्रभावित फल हैं जिन पर कीट लगा है उनको आप तोड़ दीजिए।
0: हाँ मतलब भिंडी तोड़ देनी है ना, जिन पे कीट की ओर लगा है, कीट
1: हाँ
0: लगा
1: हाँ
0: है।
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
0: अच्छा, उनको तोड़ देंगे। अच्छा जी, अच्छा हाँ
1: हाँ जी बिल्कुल। और सबसे पहला काम तो हम यही करना है कि जो कीट से प्रभावित फल है हमारे उनको आप तोड़कर अलग कर दें और उनको नष्ट कर दें। साथ ही देखिए, किसी भी रसायन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
0: हाँ जी
1: जी बिल्कुल, जैसे साइपरमेथ्रिन है या थायोमैक्साम है, इनका आप अपने उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं।
0: हाँ जी
1: जी बिल्कुल, संतुलित मात्रा में इसका इस्तेमाल कीजिए तो जो कीट नियंत्रण आपकी फसल में हो जाएगा।
0: भाई साहब, बड़ी खुशी मिली मुझे, कम से कम मेरी भिंडी तो बच जाएगी। खैर, मुझे बड़ी जानकारी मिलती है भाई साहब आकाशवाणी केंद्र की जगह
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका फोन
0: से।
1: करने के लिए। जी बिल्कुल। तो देखिए, लगातार हमारे किसान भाई हमसे बातचीत कर रहे हैं। और गंगाराम भाई,
2: जी, एक किसान भाई का और फोन है, पहले ये ले लेते हैं।
1: हेलो,
3: हेलो,
2: अपने रेडियो सेट से थोड़ा दूर हो जाइए,
3: हाँ जी,
2: रेडियो सेट से थोड़ा दूर हो जाइए या रेडियो की आवाज कम कर लीजिए।
1: हाँ थोड़ा दूर हो जाइए रेडियो से।
3: ये

0: हाँ जी नामदेव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरिद्वार।
1: धन्यवाद धन्यवाद। और सुनाओ?
2: बढ़िया है साहब, थोड़ा रेडियो से दूर हो जाइए आपके।
1: बस ठीक है, मैं कार्यक्रम सुन रहा हूँ, काफी अच्छा लग रहा सुनने में।
2: जी जी बहुत अच्छी बात है। और क्या,
1: और मुझे बहुत अच्छी अच्छी जानकारी मिली, खूब बड़ा मजा आ रहा।
0: अच्छा जी,
1: धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद जी। अच्छा जी नमस्कार
0: नमस्कार नमस्कार। और देखिए गंगाराम जी, ये हमारे रमेश चंद नामदेव जी जो हैं, बहुत ही हमारे नियमित श्रोता हैं, पुराने श्रोता हैं, और लगातार ये चिट्ठी लिखते रहते हैं। और देखो भैया, भाइयों के फोन आ रहे हैं लगातार है। और भाई कुछ गीत संगीत अगर हो जाए तो कैसा रहेगा भैया?
2: बिल्कुल, तो आपको सुनवाते हैं भैया ये लोकगीत।
0: ठीक है भाई।

0: मेरा नौ डांडी का बीजना। तो भाई ने सुना ये हरियाणवी लोकगीत, और भी देखो गर्मी का मौसम है, और गर्मी के मौसम में भैया अगर ठंडी ठंडी हवा मिल जा और ऐसे नौ डांडी जो हाथ वाले बीजने होते थे भैया, उनकी तो बात ही कुछ और
1: भाई देखो, पुरानी बातें तो बस अब कुछ थोड़ा देखने में ही रह गई,
0: है।
1: लेकिन ये बात ये है कि ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी थी। उस ज़माने में भले सी सुख सुविधाएं कम थीं, लेकिन भैया एक तरह से जो है बहुत सारे एक्सरसाइज भी होती उससे।
0: बिल्कुल, हाथ की एक्सरसाइज होती थी भैया।
1: हाँ
0: और भैया हमें गर्मी को सहने की आदत थी, है ना भैया।
1: बिल्कुल
0: और अब तो अगर एक रात अगर लाइट ना आए, बिजली ना आए, तो बड़ी दिक्कत हो जाती है।
1: भाई देखो, अगर किसी की शादी हुआ थी ना, तो महीनों से ही पहले वो लड़की जो है बेचारी अपना वो बीजना तैयार करती थी और जितना बढ़िया शीशे उससे लगा ले तो और खुशी
0: बिल्कुल।
1: महसूस होती।
0: और भाई रंग बिरंगी उस पर लेस लगाई जाती थी
1: हाँ
0: बीजने
1: हाँ
0: पे, और
1: हाँ
0: वो दूर से दिखाई देता था कि भैया इस घर में नई शादी हुई है, अगर नया बीज ना आए तो।
1: भाई पूरी कलाई की एक्सरसाइज होती थी उससे, पूरे हाथ की एक्सरसाइज होती, तो हाथ संबंधी को रोग हो ही नहीं था।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन अब तो सब पता है तुम्हें कि जमाना बदल गया।
0: और
1: खैर
0: देखो इस टाइम हमारा चल रहा है सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान, और अपने भाइयों को एक बार फिर से हम फोन नंबर बता देते हैं जिससे कि हमारे भाई हमसे जुड़ सके।
1: बिल्कुल, तो भैया देखिए, आपकी कोई खेती किसानी संबंधी समस्या है तो भैया आपसे लेकर और भैया 6:45 तक आप फोन कर सकते हैं। फोन नंबर हमारे हैं 94-57-07-82-88। एक और फोन नंबर भैया हमारा 0-13-41 लैंडलाइन नंबर है, और 230-105 फोन नंबर है भैया। तो एक फोन आ गया, देखते हैं किस भैया का।
0: हेलो।
2: हेलो, नमस्कार जी।
0: हाँ नमस्कार जी।
2: हो
0: हाँ जी बताइए, अपना नाम बता दीजिए, कहाँ से बोल रहे हैं
2: मेरा नाम मोहम्मद हनीफ है, मैं मुरादाबाद जिले से बोल रहा हूँ। पास
0: जी, हनीफ जी बताइए।
2: हाँ ये है, मालूम करना चाह रहा हूँ, हमारे उसमें पोपलो के पेड़ है खेत में,
0: हाँ जी,
2: तो उसमें हम क्या चीज लगा सकते हैं, और बाग है बढ़िया है, उसमें कोई चीज बोलना चाहते हैं हम।
0: पॉपुलर में आप लगाना चाह रहे हैं।
2: जी, हाँ,
0: अच्छा, लंबाई कितनी है उनकी हो गई है।
2: लंबाई तो करीब वो काफी बड़े वैसे।
0: तो छाया तो उसकी रहती होगी,
2: हाँ,
0: पेड़ों की छाया तो रहती होगी ना खेत में।
2: जी हाँ, छाती तो है।
0: हाँ देखिए, जब छाया खेत में रहती है तो उसमें आप केवल बाजरा लगा सकते हैं, मतलब हरे चारे वाली फसल बोकर देख सकते हैं, जिसमें कि लागत बहुत कम आती है। ठीक है जी, क्योंकि जब हमारे पेड़ों की छाया हो जाती है तो फिर दूसरी फसल उसमें नहीं हो पाती है, क्योंकि सूर्य का,
2: अच्छा, दूसरे जो है वो 1 साल के हमारे अभी दूसरे खेत में।
0: जी क्योंकि देखिए सूर्य का प्रकाश जो हमारी फसल होती है उसके पौधों को मिलना बहुत ही जरूरी है, तो अगर सूर्य का प्रकाश पूरा नहीं मिलेगा तो फसल हमारी बढ़वार नहीं करेगी और हमें उत्पादन फसल से नहीं मिल पाएगा।
2: अच्छा, दूसरे खेत जो है उसमें जो है अभी पतले हैं, पिछले साल भी 1 साल के लगे हैं,
0: हाँ,
2: तो उसमें क्या बोल सकते हैं हम।
0: देखिए अगर उसमें आप लगाना चाह रहे हैं तो देखिए इस समय या तो आप जो हरे चारे वाली हमारी फसलें हैं वो आप लगा सकते हैं, या साथ में खरीफ मौसम में जो उड़द मूंग हम लगाते हैं वो आप लगा सकते हैं जी। धान आप उसमें नहीं लगाइए, क्योंकि धान अगर हम लगाएंगे तो ज़्यादा पानी भरना पड़ेगा और ज़्यादा पानी हमारे पेड़ों के लिए नुकसानदेह होता है। ठीक है जी, हाँ, तो या तो आप जो हरे चारे वाली फसलें हैं, बाजरा है, मक्का, वो लगा सकते हैं, या फिर आप उड़द मूंग की उसमें फसल लगा सकते हैं। ठीक है जी, तो हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बिल्कुल, देखिए ये आमतौर पर आजकल भैया यूकेलिप्टिस और पॉपुलर लगाया भी जा रहा है। तो भाई बात ये है कि पहले तो हमारे किसान भाई गेहूं बो देते हैं,
0: बिल्कुल
1: वो अच्छी बात है, कुछ हमारे किसान भाई धान भी बोने का प्रयास करते हैं, लेकिन अच्छी उसमें रिजल्ट उसके आते नहीं है। एक
0: बिल्कुल।
1: और फोन नंबर है, देखते कौन भैया है।
0: हेलो।
3: हेलो जी, नमस्कार जी।
0: हाँ नमस्कार
1: नमस्कार,
0: जी।
3: मैं साहब रामदपुर राहुल से आचार्य सत्यवीर सिंह बोल रहा था।
0: सत्यवीर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे हेलो किसान कार्यक्रम में। बताइए खेती बाड़ी कैसे चल रही है आपकी।
3: ठीक है जी, सब बढ़िया है। थोड़ी सी समस्या है कि पशुओं का दूध जो कम होता जा रहा है,
0: अच्छा
3: तो क्या कुछ करा जाए। रातक भी दे रहे हैं, चारा वारा भी ठीक ही चल रहा, लेकिन वो दूध में उतार आ रहा जी।
0: हाँ देखिए, पशुओं का दूध जो कम होता चला जा रहा है, देखिए सबसे पहली बात तो ये कि मौसम का प्रभाव पड़ता है, और मौसम का प्रभाव जब हमारे दुधारू पशु पर पड़ता है तो उसका असर सीधे सीधे हमारे दूध

0: आता है।
1: जी
0: ये देखा जाता है कि देखिए जो 4-5 लीटर हमारी भैंस दूध देती थी या गाय देती थी, तो वो 2-3 लीटर पर ही आ जाती है, घट जाता
1: हाँ
0: है।
1: जी हाँ यही हो रहा है
0: हाँ
1: जी
0: हाँ क्योंकि तो सबसे उसका जो वो होता है कि हमारे चारे में बदलाव होता है, और हमारे पशु वैज्ञानिक ये कहते हैं कि अचानक से अगर चारे का मैटर चेंज हो रहा है, चारे में बदलाव हो रहा है, तो उसका असर दूध पर जरूर आएगा, पशु के शरीर पर जरूर आएगा।
1: हाँ जी ये तो है सर
0: जी, और हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश में अक्सर यही होता है कि हमारा चारा एकदम से बदलता है। अभी तो बहुत मात्रा में हरा बरसीम चल रहा है, गन्ने का अगोला चल रहा है, और फिर एकदम से बरसीम भी चला जाएगा, गन्ने का अगोला चला जाएगा, और पशु को मिलेगा केवल सूखा भूसा।
1: हाँ इनमें तो सूखा भूसा आया कोई हरा बाजरा चल पड़ा वैसे वो लान वाला
0: हाँ, तो देखिए जैसे
1: जी
0: ही उनको भरपूर मात्रा में हरा चारा मिलने लगेगा, हरा चारा भरपूर मात्रा में आने लगेगा, तो दूध की मात्रा भी बढ़ेगी। और देखिए एक असर यह भी होता है कि पशु का ब्यांत जैसे जैसे लंबा चला जाता है, तो दूध की मात्रा उसमें भी घटने लग जाती है।
1: जी
0: हाँ, तो यही कारण हो सकते हैं। आप संतुलित मात्रा में रात मिश्रण दीजिए, दाना मिश्रण दीजिए।
1: अच्छा ये चौधरी साहब एक थनैला हो गया था वो तो दूध से बिल्कुल उतरेगी आ सके उसमें दोबारा नहीं
0: थनैला के लिए देखिए आपको जो हमारे पशु चिकित्सक हैं उनको दिखाना पड़ेगा, उनसे पर जो बिल्कुल सही मात्रा में आपको इलाज करवाना है प्रॉपर तरीके से, तभी कुछ हो सकता है।
1: हाँ वो चल तो रहा ट्रीटमेंट उसका
0: हाँ
1: उसका
0: बिल्कुल, आप ट्रीटमेंट कराइएगा, उसमें हम जो है इंजेक्शन के माध्यम से दवाई भी लगाते हैं, ट्यूब के माध्यम
1: जी
0: से भी लगाते हैं, और अगर बिल्कुल प्रॉपर तरीके से इलाज होगा जो हमारे पशु चिकित्सक हैं, तो बिल्कुल सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं
1: जी
0: आएगी।
1: जी ठीक
0: ठीक है जी,
1: है जी नमस्कार
0: हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और गंगाराम भाई,
2: हाँ भाई
0: भाई देखो जो हमारे पशु होते हैं, हमने भैया एक बात इस टाइम के मामले में नोट करी है,
2: वो क्या
0: वो ये है कि भैया हमारे भाई ने भी नोट करी होगी कि जब हमारे पशुओं को भैया अच्छा चारा मिलता,
2: हाँ
0: हरा चारा मिलता,
2: ठीक
0: तो आपने देखा होगा गोबर भी ज्यादा होता
2: हाँ
0: है ना
2: बिल्कुल
0: भैया,
2: सही बात है
0: और जब पशुओं को चारा सही नहीं मिलता तो आपने देखा गोबर भी जरा सा हो।
2: भाई बिल्कुल ये हो जितना खिलाओगे उतना ही तो ऊपर बनेगा। तो
0: हाँ
2: भैया हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हरे चारे का चक्र बना के रखें। और भैया ऐसी स्थिति अगर आ रही है कि भाई आप हरे चारे का चक्र बना कर नहीं रख पा रहे
0: जी
2: तो ध्यान ये रखना चाहिए कि भाई अगर हमें सूखा मतलब चारा देना पड़ जाए या भूसा वगैरह तो रातिम मिश्रण की जो मात्रा है वो बढ़ा दी जाए।
0: बिल्कुल, और
2: और
0: देखिए हरा चारा मिलना बहुत ही जरूरी है,
2: हाँ
0: और जो हम सूखा चारा खिलाते हैं, भूसा खिलाते हैं, या हमारे भाई जो पुराल होती है उसकी कुट्टी काट लेते हैं, उसका चारा भी देते हैं अपने पशुओं को,
2: हाँ
0: तो देखिए जो हमारे पशु वैज्ञानिक हैं
2: हाँ
0: वो ये बताते हैं कि सूखे चारे और हरे चारे की मात्रा अगर हमें अपने पशुओं को देनी है
2: हाँ
0: तो वो 40 और 60 के अनुपात में देनी चाहिए,
2: बिल्कुल
0: यानी कि 60% सूखा चारा और 40% उसमें हरा चारा अगर हम मिला दें तो वो एक संतुलित चारा हो जाएगा।
2: बिल्कुल बिल्कुल तो इस तरह से अगर हम चारा देंगे तो एक अच्छा रहेगा। और इस बीच में एक फोन आ रहा है
0: हेलो, हाँ जी हेलो किसान,
2: शायद इनसे बात नहीं हो रही है। और भाई देखो समय जो है ज़्यादा बातें करने की इजाज़त नहीं दे रहा तो चलते चलते मौसम की जानकारी अपने किसान भाइयों को देना बहुत ज़रूरी भैया।
0: बिल्कुल देखिए मौसम की जानकारी हम देंगे,
2: हाँ
0: और भैया देखो मौसम की चिट्ठी आपके हाथ में, भाई जल्दी से बता दो।
2: भाई देखो ये जानकारी हमें प्राप्त हुई है ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत मौसम विज्ञान विभाग सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मोदीपुरम मेरठ से।
0: अच्छा
2: इनके अनुसार भैया कल और परसों 2 दिन के मौसम की जानकारी है कि भाई किसी किसी स्थान पर भैया बारिश और ओलावृष्टि होने की संभावना है साथ साथ तेज हवाएं चलने का इन्होंने अंदेशा जारी किया है।
0: बिल्कुल,
2: तो भैया ऐसे मौसम को ध्यान में रखते हुए अपने खेती किसानी के काम ध्यान में रखें।
0: तो भाई देखो ये तो होगी मौसम की चिट्ठी, और मौसम के हिसाब से भैया हम अपने खेती बाड़ी में काम करने,
2: हाँ
0: और भैया आप चलने से पहले भाइयों को बता देते हैं कि भैया जो हमारा सजीव फोन इन कार्यक्रम है हेलो किसान,
2: हाँ
0: ये भैया अगले माह यानी कि भैया जून महीने में होगा, 5 जून 2026 को।
2: बिल्कुल। तो भैया आपकी कोई भी खेती किसानी की अगर समस्या है तो 5 जून को आप फोन कर सकते हैं 6:05 से 6:45 के बीच में। फोन नंबर हमारे रहेंगे भैया 94-57-07-82-88 और लैंडलाइन नंबर रहेगा 0-13-41-230-105।
0: तो भाई देखो ये हमारे फोन नंबर है, और भैया हर माह के पहले और 5वें शुक्रवार को सुनते रहिए हमारा ये सजीव फोन इन कार्यक्रम जिसका नाम है
2: हेलो
0: हेलो किसान।
2: किसान।

0: अभी हमारे किसान भाई सुन रहे थे हमारा सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान। और गंगाराम भाई,
1: हाँ जुमरू भाई,
0: भाई किसान भाइयों को हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है, वो इसमें क्या सुनना चाहते हैं भाई, उनकी क्या राय है, तो भैया इसके लिए हमारे किसान भाई चिट्ठी लिखा हुआ।
1: बिल्कुल। तो भैया किसान भाई को बता दें कि चिट्ठी लिखने के लिए हमारा पता है कार्यक्रम कृषि जगत द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी नजीबाबाद पिन कोड 2467-63। और इसके अलावा भैया हमें आप फेसबुक पेज पर भी पसंद कर सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं,
0: हाँ
1: इंस्टाग्राम पर भी सुन सकते हैं, यूट्यूब पर भी हम हैं आकाशवाणी नजीबाबाद के नाम से। तो भैया आप किसी भी माध्यम से करें, ये आप ऐप के माध्यम से भी हमें सुन सकते हैं। तो भाई किसी भी स्थान से आप सुनना चाहें तो आप हमें सुनें और अपनी समस्या को दबा कर न रखें, हम तक चिट्ठी जरूर लिख देंगे।
0: बिल्कुल। और इसके अलावा हमारे किसान भाई जो हमारा मोबाइल का नंबर है 9457-07-82-88, इस पर भैया वो अपने व्हाट्सएप मैसेज भी हम तक भेज सकते हैं।
1: बिल्कुल। तो भाई देखो, अब ज़्यादा समय बातें करने का नहीं रहा, तो अब इसी के साथ आज का कृषि जगत कार्यक्रम संपन्न करने की अपने भैया आलोक कुमार गंगाराम,
0: और अपने भैया सुवेंद्र सिंह झुमरू को अनुमति दीजिए।
1: किसान भाइयों
0: राम
1: राम
0: राम।
1: राम।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। कानूनी सलाह में लीजिए सुनिए एडवोकेट सत्यवीर त्यागी से एसके नौटियाल की बातचीत। बातचीत का विषय है खाद्य सुरक्षा अधिनियम।
1: कानूनी सलाह कानूनी सलाह कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत अभिनंदन। एक बार फिर आपके साथ एक नए विषय के साथ एसके नोटियाल। आज इस कार्यक्रम में हम उपस्थित हुए हैं। आज का हमारा बातचीत का विषय है खाद्य सुरक्षा अधिनियम, और इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं एडवोकेट सत्यवीर त्यागी। वकील साहब, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: खाद्य सुरक्षा अधिनियम हमारे देश में लागू है
2: जी,
1: और खाद्य सुरक्षा का जो अधिनियम बना हुआ है इसके क्या लाभ हैं, क्या नुकसान हैं, और इस अधिनियम में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं? यदि इस अधिनियम को कोई नहीं मानता है, कानून को नहीं मानता है, तो दंड की प्रक्रिया क्या है, दंड का विधान क्या किया गया है? बहुत सारी बातें हैं, लेकिन सबसे पहले वकील साहब सवाल यह है कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम क्या है?
2: जी देखिए, पहले फूड एडल्ट्रेशन के नाम से एक्ट लागू था
1: जी,
2: जिसमें फूड इंस्पेक्टर का पदनाम होता था। अब ये 2006 में नया कानून बना।
1: अच्छा।
2: इसका नाम है खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम। खाद्य से संबंधित वस्तुओं से मानव को सुरक्षित रखना और उनका पदार्थों का, खाद्य पदार्थों का मानक क्या होना चाहिए,
1: क्या होना
2: मानक भी तय करता है ये अधिनियम
1: जी।
2: तो ये सारी तमाम विधियां थी पहले अलग अलग, भ्रम होता था व्यापारियों को भी, उन पे चेक करने वालों को भी, आम पब्लिक को भी पता नहीं चलता था
1: जी।
2: तो जैसे खाद्य से संबंधित मानक नियतिकरण परिवर्तन अभिकरण को बहुलता, जो कि उपभोक्ताओं, व्यापारियों, निर्माताओं और निवेशकों आदि को मस्तिष्क में भ्रम उत्पन्न करते थे
1: जी।
2: इसके साथ ही खाद्य अपमिश्रण से संबंधित पूर्व अधिनियम जितने चलते थे, जैसे खाद्य अपमिश्रण अधिनियम, फल उत्पादन आदेश 1955, मांस उत्पादन आदेश 1973, वनस्पति तेल उत्पादन नियंत्रण आदेश 1947, खाद्य तेल पैकेजिंग आदेश 1998, दुग्ध उत्पादन आदेश 1992, और आवश्यक वस्तु अधिनियम के अधीन जो खाद्य से संबंधित कोई और आदेश है, ये सारे के सारे इस एक्ट के बाद निरस्त हो गए,
1: खत्म हो गए
2: सारे
1: जी।
2: अब ये सारी व्यवस्था इस एक एक्ट में समाहित कर दी गई। अलग अलग समझने में पहले दिक्कत होती थी, और इस विभाग का नाम बदल के अब खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग कर दिया गया।
1: अच्छा।
2: तथा जो इसका विभाग अध्यक्ष है उसका नाम बदल के खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन आयुक्त कर दिया गया, और जिला स्तर पर इसमें जिला अधिकारी के नियंत्रण में एक अभिहित अधिकारी बनाया गया।
1: अच्छा।
2: वो जिला अधिकारी के नियंत्रण में काम करता है, और जो पहले खाद्य निरीक्षक थे ना, फूड इंस्पेक्टर जिन्हें हम कहते थे
1: जी जी,
2: उनका पदनाम हो गया खाद्य सुरक्षा अधिकारी कर दिया गया। इस अधिनियम के अधीन जो सरलीकरण किया गया, इन अधिकारियों की नियुक्ति की शर्तें क्या होनी चाहिए, इसके लिए इसकी नियमावली बनाई गई, वो खाद्य सुरक्षा और मानक नियमावली 2011 कहलाएगी, जो 5 अगस्त 2011 से प्रभावी है।
1: अच्छा।
2: तो अब खाद्य से संबंधित सारी चीज, मानक से संबंधित सारी, केवल इसी एक्ट से लागू होती
1: है। बिल्कुल वकील साहब, आपने सही कहा है, क्योंकि जितनी भी सामग्री है, खाद्य सामग्री है, वो इस अधिनियम के तहत गवर्न होती है।
2: ये अभी अधिकारी वो देखेगा कि जो प्रतिबंधित वस्तुएं हैं उनका विक्रय ना हो, उन्हें प्रतिबंधित करेगा, कारोबारियों के लिए लाइसेंस जारी करेगा
1: जी।
2: और जो खाद्य सुरक्षा अधिकारी है, खाद्य पदार्थों के नमूने लेने का काम वो करेगा, वो अपनी रिपोर्ट इस अभिहित अधिकारी को देगा।
1: अच्छा।
2: और ये अभिहित अधिकारी अगर देखता है एक्ट के अंतर्गत ये मामले दंड से, आर्थिक दंड से है, तो वो एडीएम के यहाँ भेजेगा, इसकी अभियोजन की स्वीकृति देगा
1: जी।
2: और जो सजा के हैं उन्हें ये अपने आयुक्त को भेजेगा।
1: अच्छा।
2: ये काम इनका है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी किसी खाद्य पदार्थ का नमूना ले सकेगा जो मानव उपयोग के लिए, विक्रय के लिए आशित प्रतीत होता है या विक्रय किया गया है, किसी परिसर की तलाशी ले सकता है।
1: अच्छा।
2: कोई खाद्य पदार्थ का कहीं निर्माण हो रहा है किसी परिसर में, तो उसमें परिसर की तलाशी ले सकता है, और या भंडारण किया गया है उसमें, तो उसमें प्रवेश करने का इसे अधिकार है।
1: अच्छा।
2: और ये उसमें नमूना लेगा, नमूना लेते समय दो आदमियों के उस पर गवाही कराएगा, और फिर उसे प्रयोगशाला को
1: भेज देगा,
2: लेबोरेटरी को भेजेगा कि ये मिलावटी है या नहीं है, फिर उसके बाद जो भी रिजल्ट होगा वो अपने अधिकारी को भेजेगा, फिर वो उसे निर्णय लेगा।
1: जी बिल्कुल वकील साहब, क्योंकि बहुत से खाद्य पदार्थ हैं अवैध रूप से उनका निर्माण भी होता है और अवैध रूप से उनकी बिक्री भी होती है, इन सबको रोकने के लिए कोई ना कोई नियम बना होता है और उस नियम के पालन में जो कर्मचारी अधिकारी काम करते हैं ये उनकी देखरेख करने का काम किया जाता है।
2: इस एक्ट के लागू होने के बाद खाद्य पदार्थों का कोई भी व्यापार, कोई भी बिक्री आदमी नहीं करेगा।
1: अच्छा,
2: जिस कारोबारी का 12 लाख का प्रति वर्ष का टर्नओवर है उसे विभाग से लाइसेंस लेना पड़ेगा।
1: अच्छा,
2: बिना उसके वो कोई बिक्री नहीं कर सकता।
1: अच्छा अच्छा,
2: जो उससे कम के व्यापारी हैं, इवन हाकर हैं, ठेली लगाते हैं, चलते फिरते कोई खाद्य पदार्थ बेचते हैं, मतलब 12 लाख से कम टर्नओवर के,
1: अच्छा,
2: उन लोगों विभाग में पंजीकरण उन्हें भी कराना पड़ेगा। पहले एक्ट में लाइसेंस 1 साल के लिए जारी होता था, नवीनीकरण करना पड़ता था 1 साल के बाद, इस एक्ट के लागू होने से वो 5 साल तक का एक बार में लाइसेंस उसका बन जाएगा।
1: अच्छा,
2: उसके बाद वो नवीनीकरण उसे कराना पड़ेगा, उसकी शर्तों का उल्लंघन करता है तो उसे 1 लाख रुपए तक का जुर्माना
1: देना पड़ेगा,
2: उसे देना पड़ेगा।
1: वकील साहब, जैसे सामान बेचने की बात करते हैं या खरीदने की बात करते हैं, और खरीदना और बेचना एक मार्केटिंग होती है।
2: जी जी,
1: मार्केटिंग में बहुत सी गतिविधियां हैं, वो होती रहती
2: जी
1: है, लेकिन जब पंजीकरण की बात होती है तो ये पंजीकरण कहाँ कराया जाएगा?
2: ये जो पंजीकरण है, जो जिले में हमारा इसका कार्यालय है विभाग का, ये अभिहित अधिकारी के यहाँ पंजीकरण होगा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी की उस पर रिपोर्ट लगेगी और ये अधिकारी के यहाँ ही उनका लाइसेंस बनेगा।
1: वहीं से जारी होगा।
2: जो भी शर्तें हैं, अगर शर्तों का उल्लंघन करते के पकड़े गए तो उसका यथा जैसे प्रोवाइडेड है
1: जी जी
2: जुर्माना होगा फिर।
1: लेकिन वकील साहब, एक बात और भी यहाँ आती है कि जब हम किसी काम के लिए कहीं जाते हैं, किसी अधिकारी के पास जाते हैं, वहाँ अप्लाई करते हैं यानी प्रार्थना पत्र देते हैं, तो इसकी क्या जो रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस की जो कोई फीस भी है या नहीं?
2: हाँ जी जी, इसमें एक्ट में जो निर्धारित फीस है, अलग अलग काम की अलग अलग फीस निर्धारित है।
1: अच्छा,
2: जो जैसा काम करेगा
1: वैसी उसकी
2: तो वो सब उसका जो नियम है उसका पालन करना पड़ेगा, तभी रजिस्ट्रेशन होगा।
1: वकील साहब, अब जानकारी मैं आपसे ये चाहूंगा कि जब हमारे व्यापारी मार्केट में काम करते हैं और बिना व्यापार के कहीं भी किसी भी देश में कोई भी काम नहीं हो सकता, यदि किसी का लाइसेंस बना हुआ है, कोई व्यापार कर रहा है, कोई काम कर रहा है, उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद की व्यवस्था क्या है?
2: मृत्यु के बाद वो लाइसेंस उसके परिवार के या उसके वारिस के लिए जारी रहेगा।
1: अच्छा, जारी रहेगा।
2: हाँ, लेकिन वो 3 महीने तक जारी रहेगा, उसके बाद उसे
1: ट्रांसफर कर सकते हैं।
2: ट्रांसफर करने के उसी लाइसेंस पर काम करेगा वो,
1: 3 महीने के बाद फिर की व्यवस्था,
2: फिर वो अपना नाम से नहीं विभाग में अपना नाम दर्ज करा लेगा।
1: अच्छा, उसके बाद वो फिर अपने नाम से लाइसेंस ले सकता है?
2: हाँ, उसके बाद वो अपना ले सकता है,
1: अपना ले सकता है। इन नियमों का यदि कोई उल्लंघन करता है तो उसके लिए हमारे जो इस अधिनियम में क्या कार्रवाई हो सकती है?
2: जो अपराध करता है मतलब या मिलावट करता है, ये कहना चाह रहे ना
1: जी,
2: तो इस अधिनियम में दंड की जो व्यवस्था है इसकी धारा 50 ये कहती है कि जो इसके आपकी लाइसेंस की शर्तें

0: हो गई, उसका आप अनुपालन नहीं कर रहे और उसके उल्लंघन में आप विक्रय करते हैं, है जी, या जो खरीदार ने आपसे कोई सामान खरीदा नोटियाल साहब
1: जी जी जी
0: वो मानक के अनुरूप नहीं है, उस क्वालिटी का नहीं है, तो ऐसी स्थिति में 5 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है।
1: अच्छा,
0: और जो अभी आपने लाइसेंस की बात पूछी थी, जो आदमी लाइसेंस के बिना कारोबार करता है उस पर 25,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
1: अच्छा,
0: जो मानक दिया हुआ है, मैं ये कहना चाह रहा, किसी वस्तु के पैकेजिंग पे आपने लिख रखा इसमें ये चीज होनी चाहिए
1: जी,
0: और अगर वो वास्तव में नहीं है, मानक के अनुसार नहीं है, अब मानक के लिए है, तो उसमें 5 लाख रुपए तक का अर्थदंड हो सकता है।
1: अच्छा,
0: और मिथ्या छाप के लिए आपने ऊपर छाप दिया उसमें कि ये सामान है, और उसमें वो सामान उस क्वालिटी का, उस मात्रा का वो चीज नहीं है,
1: अच्छा नहीं मिलती है,
0: वो नहीं मिलती है, तो 3 लाख तक का
1: जुर्माना,
0: उसमें जुर्माना है।
1: अच्छा,
0: मिथ्या विज्ञापन को भी कवर किया है इसमें।
1: अच्छा,
0: आपने विज्ञापन दे दिया कि इस वस्तु में ये चीज होंगी
1: प्रचार
0: और
1: का,
0: पता चला कि वो चीज नहीं है,
1: अच्छा
0: तो ऐसी स्थिति में 10 लाख रुपए तक का जुर्माना
1: लगाया गया है।
0: लगाया जाएगा। और खाद्य सुरक्षा अधिकारी के निर्देशों का आप उल्लंघन कर रहे हैं, कोई निर्देश दिया तो 2 लाख तक का उसमें है।
1: अच्छा,
0: अस्वास्थ्य कर निर्माण किया आपने के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो उसमें 1 लाख रुपए तक का जुर्माना है। एक और बात है इसमें, कोई आपने ऐसा उल्लंघन करा जिसकी कोई सजा का प्रावधान ही एक्ट में नहीं है, कि आपने काम तो करा लेकिन इसमें तो कहीं कवर नहीं हो रहा वो,
1: अच्छा,
0: तो उस स्थिति में भी 2 लाख रुपए तक का दंड हो सकता है आपसे।
1: अच्छा,
0: और जहां कोई क्षति नहीं पहुंची, आपने खाद्य पदार्थ बिक्री कर दिया, आदमी को नुकसान दिया, तो उसमें 6 माह का कारावास, 1 लाख रुपए जुर्माना है।
1: अच्छा,
0: और अगर मामूली क्षति हुई आपकी शारीरिक, तो उसमें 1 वर्ष का कारावास, 5 लाख रुपए का जुर्माना है। और जो ग्रीवियस हर्ट आई, घोर क्षति पहुंची, तो वहां 6 वर्ष का कारावास, 5 लाख रुपए तक का जुर्माना है।
1: अच्छा,
0: और मान लीजिए आपने ऐसा खाद्य पदार्थ बना दिया कि उसका खा के किसी की मृत्यु होगी, तो ऐसी स्थिति में आपको 7 वर्ष से कम की सजा नहीं होगी, मिनिमम 7 वर्ष और अधिकतम आजीवन कारावास।
1: अच्छा,
0: हो जाएगी, और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा। और ये जो आपसे जुर्माना होगा, इसे आप उनके वारिसों को 6 महीने के अंदर अंदर, 30 दिन में अंतरिम और 3 महीने में पूरा आपके वारिसों को
1: देना होगा,
0: उसका भुगतान किया जाएगा, नहीं होने का तो राजस्व की तरह से उसकी वसूली
1: की जाएगी,
0: उससे हो जाएगी, हो की जा सकती है।
1: छोटे व्यापारी, फेरी वाले, स्टॉल वाले, उनके लिए इस अधिनियम में क्या व्यवस्था है?
0: ये जो छोटा व्यापारी हैं, इन्हें पंजीकरण कराना पड़ेगा।
1: अच्छा,
0: बिना पंजीकरण के ये बिक्री नहीं कर सकते।
1: अच्छा, अच्छा, कई बार क्या होता है कि जब नमूने लेने वाली बात होती है, तो नमूने लेने के लिए या परीक्षण के लिए उसकी क्या कोई सीमा अवधि है?
0: उसमें भी है जी, इसमें कोई आपको गलत ना फंसा दे, आपसे नमूना लिया जाएगा।
1: अच्छा,
0: 4 सैंपल बनेंगे उसके, अब नई व्यवस्था में 4, 2 सैंपल अभी अधिकार भेजेंगे, और आपके वहाँ 2 साक्षी होंगे, आपके वहाँ सिग्नेचर कराए जाएंगे, उस पर आपके सामने जो नमूना लिया जाएगा, और जितनी मात्रा में नमूना लिया जाएगा उसका जो भी मार्केट रेट है उसकी आपको वो कीमत भी अदा करेगा।
1: अच्छा,
0: कि हमने 10 ग्राम आपसे 100 ग्राम ये लिया, इतने का सामान है ये, तो उसका वो भी उसका दिया जाएगा। और उसके बाद अब इसमें 40 दिन की परीक्षण की अवधि थी पहले प्रयोगशाला में।
1: अच्छा,
0: पहले कानून में, अब इसमें 14 दिन कर दी गई है।
1: अच्छा, कम कर दिया गया,
0: कम कर दिया गया, 14 दिन के अंदर परीक्षण की रिपोर्ट आएगी।
1: अच्छा,
0: और अपराध घटित होने के 1 साल के अंदर वो मामला परिवाद दायर हो जाना चाहिए।
1: अच्छा,
0: जैसे ADM का है ना, फाइन वालों में, बाकी में न्यायिक अधिकारी का जिसमें ऊपर सजा का है
1: जी,
0: तो उसकी मियाद 1 साल है, 1 साल के बाद आप करोगे तो फिर वो टाइम बार्ड हो जाएगा, कोई कार्रवाई
1: नहीं होगी,
0: नहीं होगी।
1: अच्छा,
0: ये है, मान लीजिए आप उससे संतुष्ट नहीं है प्रयोगशाला की रिपोर्ट।
1: अच्छा,
0: तो आपको 10 दिन के अंदर वो नोटिस देगा, परीक्षण की रिपोर्ट आई तो 10 दिन में उसकी सूचना देगा कि भाई आपका नमूना फेल हो गया।
1: अच्छा,
0: या 10 दिन के अंदर देना पड़ेगा जरूरी, तो आप उसमें केंद्रीय प्रयोगशाला को लियो, डिमांड कर सकते हो कि ये नमूना जो है वो रखें, 2 रिजर्व में है, कि इसका वहां से परीक्षण करा लिया जाए।
1: अच्छा, करा लिया जाए,
0: तो ये भी इसमें
1: प्रावधान
0: किया गया।
1: बिल्कुल, और अधिनियम बनते हैं, कानून बनते हैं, सरकार लागू करती है, और सरकार का काम है कि अच्छी तरह से लागू करे, उनका पालन जनता करे, और जनता जब कभी कभी पालन नहीं करती है या व्यापारी पालन नहीं करते हैं तो उनको नुकसान भी उठाना पड़ता है, दंड भी हो सकता है।
0: जी।
1: अच्छा, मैं ये
0: रोक लगा दी जाएगी,
1: बिल्कुल बिल्कुल, अब क्योंकि सवाल ये उठता है कि कोई आदमी यदि करता है, चोरी छिपे काम करता है या करने की कोशिश करता है, तो उसकी शिकायत कहाँ कर सकते हैं?
0: शिकायत विभाग में करेंगे ना आप, खाद्य सुरक्षा अधिकारी को करेंगे, या तो फिर दूसरे ढंग से कह सकते हैं कि सरकार को चाहिए कि ऐसा थोड़ा पब्लिसिटी करें, प्रचार करें,
1: जागरूकता की,
0: जागरूकता के लिए जागरूकता का अभियान चलाया जाना भी इस मामले में अंकुश लगाए जाने के लिए जरूरी है। जो मैं बिना पढ़ा लिखा आदमी हूँ कि भाई मैं मिलावटी मामला मैं किससे शिकायत करूँ,
1: किससे शिकायत करें
0: पता ही नहीं ना मुझे,
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो उसके लिए तो हमारी सरकारी स्तर पर इतनी जागरूकता के अभियान चलाने चाहिए, जिला प्रशासन को चलाने चाहिए, इवन इन खाद्य विभाग के अधिकारियों को भी चलाने चाहिए, अपने नंबर इन्हें पब्लिक में जारी करने चाहिए, कहीं बात हो तो हमें इस नंबर पर आप शिकायत करें,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: जिसका शायद वर्तमान में अभाव है, इसलिए बहुत आदमी शिकायत नहीं कर पाते,
1: नहीं कर पाते।
0: और इसमें मैं एक बात और कहना चाहूंगा आपसे, आपकी किसी से रंजिश होगी व्यापारी से, किसे पैसे मंथली तय कर दिया अधिकारी ने, कुछ करा उसकी मंशा पूरी नहीं हुई,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: और जबरदस्ती उन्हें किसी को तंग करने के लिए उस पर मुकदमा बना दिया,
1: अच्छा
0: फर्जी काम कर दिया, उसका प्राविधान भी इसमें किया गया इस एक्ट में,
1: अच्छा
0: हाँ, यदि नियमों का उल्लंघन कोई तंग करने के लिए कोई अधिकारी के विरुद्ध कोई झूठी कार्रवाई करता है बिना किसी रीजनेबल कारण के करता है तो उस आदमी को भी दंडित किया जा सकता है,
1: अच्छा
0: उस आदमी पे ₹1,00,000 का जुर्माना हो सकता है उस अधिकारी पे,
1: क्योंकि
0: अगर कोई झूठा सैंपल भर रहा तो,
1: अच्छा
0: लेकिन यदि कोई झूठी शिकायत कर रहा है तो फिर ₹50,000 जुर्माना उस पर भी होगा,
1: ये प्रावधान इसमें किया गया है, इसलिए कोई झूठी शिकायत ना करे और
0: ना करे,
1: अधिकारियों को भी सावधान रहने की आवश्यकता है कि वो भ्रष्टाचार से दूर रहें,
0: दूर रहें,
1: उन पर भी कार्रवाई हो सकती है। वकील साहब जो हमारे अधिकारी हैं, कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि नौकरी तक भी चली जाती है,
0: हाँ जी जी,
1: और उसमें बहुत बड़ा नुकसान भी आपको उठाना पड़ सकता है, इसलिए सावधान रहें और नियम का पालन करें। बहुत सी बातें आपने हमारे श्रोताओं को बता दी, जागरूकता की जहां तक बात है, हमारा प्रोग्राम भी जागरूकता का ही काम करता है, क्योंकि हम आम आदमी को यानी कि हमारे जितने भी नागरिक हैं देश के रहने वाले, गाँव के हों चाहे शहर के हों, उनमें एक जागरूकता पैदा हो, क्योंकि हर आदमी को हर कानून उपलब्ध नहीं होता है पढ़ने के लिए, जानकारी के लिए, तो वो जरूरी है कि उनको जागरूक होने की आवश्यकता है। अब हमारे जितने भी श्रोता हैं, क्या उनको मैसेज देंगे ताकि वो लोग हमेशा सावधान रहें?
0: हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ नोटियाल साहब
1: जी
0: कि ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, आपके जीवन से जुड़ा हुआ है, स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है
1: जी,
0: आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ है, आपको कोई भी क्षति हो सकती है मिलावटी पदार्थ खाने से,
1: बिल्कुल,
0: तो ये सबसे इससे महत्वपूर्ण कोई चीज आपके उपभोग के लिए मेरे विचार में हो नहीं सकती, तो हमें स्वयं भी जागरूक होना पड़ेगा। जैसे आज के जमाने में आप देखे खाद्य पदार्थ में कोई चीज भी बिना मिलावट के नहीं मिल रही, सब चीज में मिलावट है
1: जी,
0: तो हमें जागरूक होना चाहिए, जो हम खरीदते रसीद लेनी चाहिए, विभाग की भी हमें जानकारी होना चाहिए, उसकी शिकायत करने से हमें डरना नहीं चाहिए,
1: अच्छा,
0: और जितना भी हम प्रिकॉशन बरत सकते हैं, बच्चों को भी हम थोड़ा सा गाइड करें कि बच्चे बहुत लाड़ प्यार में हम दे देते हैं तमाम केमिकल युक्त सामान खा रहे हैं,
1: बिल्कुल, बिल्कुल,
0: तो हमें अपने बच्चों को भी ये शिक्षित करना चाहिए कि भैया स्वास्थ्य के लिए खराब है, बच्चे आजकल नहीं मानते, तमाम आइसक्रीम बिक रही है, कुछ और बिक रही है ठेलों पे कहीं पे, गंदगी है, कोई समाज सफाई नहीं है, तो ये हमें अपने स्वास्थ्य के प्रति खुद भी जागरूक होना पड़ेगा और हमें समाज में भी और अपने परिवार में भी सब कुछ जागरूक करना पड़ेगा, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है
1: जी।
0: अगर हम खुद ही जागरूक नहीं है तो फिर हमारे तो बहुत नुकसान उठा जाएंगे,
1: बिल्कुल बिल्कुल, और परिवार का जो अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं है, हम स्वस्थ नहीं है, हमारा शरीर स्वस्थ नहीं है,
0: तो फिर लाइफ बेकार हो गई,
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
0: पूरा जीवन ही हमारा बर्बाद हो,
1: पूरा जीवन बेकार हो जाएगा। वकील साहब आपने बहुत अच्छी बातें हमारे श्रोताओं को बताई कि हमें कितना जागरूक होने की आवश्यकता है, कितना सावधान रहने की आवश्यकता है। हमारे इस कार्यक्रम में आप आए, हमारे श्रोताओं को जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद,
0: बहुत बहुत धन्यवाद नोटियाल जी।
1: खाद्य सुरक्षा अधिनियम इस विषय पर हम बात कर रहे थे और आज हमारे साथ थे एडवोकेट सत्यवीर त्यागी। अगले शुक्रवार को आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए अनुमति दीजिए इसके नोटियाल को, नमस्कार।
2: कानूनी सलाह, कानूनी सलाह।
3: कानूनी सलाह में अभी आप सुन रहे थे एडवोकेट सत्यवीर त्यागी से एसके नौटियाल की बातचीत। बातचीत का विषय था खाद्य सुरक्षा अधिनियम। ये आकाशवाणी का नजीब बात केंद्र है, प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम छाया गीत।

अभी आपने सुना फिल्म घर से ये गीत, गाया कलाकार थे किशोर कुमार और लता मंगेशकर, बोल थे गुलजार के और संगीत आरडी बर्मन का। छाया गीत कार्यक्रम में श्रोताओं आपको सुनवाते हैं ये अगला गीत फिल्म इजाजत से, आशा भोसले की आवाज में।

इसी गीत के साथ श्रोताओं फिल्म संगीत का कार्यक्रम छाया गीत यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं।

हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष और कल की सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। अब से कुछ ही देर बाद यानी 7:32 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में श्रोताओं आज हम आपको सुनवाएंगे विविध कलाकारों की गाई नात। फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत संध्या का समय रहेगा रात्रि 8 बजे और एक ही फिल्म से गीतों का आनंद लेंगे आप रात्रि 8:30 पर। श्रोताओं फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम फोन इन कार्यक्रम हेलो नजीबाबाद प्रसारित किया जाएगा रात्रि 9:30 पर, जिस कार्यक्रम में आप कॉल करके सुन सकते हैं अपनी पसंद के गीत और बात कर सकते हैं हमसे। कॉल करने के लिए श्रोताओं नंबर है 9457078288 और फिल्म संगीत का कार्यक्रम रात के हम सफर का समय रहेगा रात्रि 10:30 पर।

कल सुबह 7:31 पर कार्यक्रम रहेगा सूरज के साथ साथ, जिसके अंतर्गत श्रोताओं आपको जानकारी दी जाएगी विश्व मल्टीपल स्क्लेरोसिस दिवस के बारे में और साथ ही हिंदी पत्रकारिता दिवस के बारे में। धरती गाती है लोक संगीत के इस कार्यक्रम में प्रातः 9:25 पर श्रोताओं सुनेंगे राव कुमार राठौड़ की गाई आल्हा, और कार्यक्रम बात आसपास की का समय रहेगा प्रातः 9:50 पर। भारत में रेडियो प्रसारण के 90 साल के उपलक्ष्य में विशेष कार्यक्रम सुहाना सफर का समय रहेगा प्रातः 10:00 और पत्र और व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित फिल्मी गीतों के फरमाइशी कार्यक्रम गीत तुम्हारे का आनंद लेंगे श्रोताओं आप प्रातः 10:30 पर।

बहनें सुनेंगी कार्यक्रम महिला जगत कल दिन में 1:15 पर, जिस कार्यक्रम में चर्चा का विषय रहेगा विविधता में एकता हमारी संस्कृति, और साथ ही आप सुनेंगे आधी आबादी क्रम में मेरी पाकशाला इंदु आर्या से सुनीति आर्या की बातचीत, और लोक संगीत के कार्यक्रम लोकधारा में दिन में 1:45 पर श्रोताओं हम आपको सुनवाएंगे अमरदीप सिंह नेगी के गाए गढ़वाली लोकगीत। एक ही गीतकार में कल दोपहर 2:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम है ये योगेश के गीत। ये थी जानकारी श्रोताओं हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। शाम के 7:18 होने को हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
2: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मऊ में 392 करोड़ रुपए से अधिक की 114 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में बदली है भारत की तस्वीर। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर आदेश सुनाने का दिया निर्देश। हमीरपुर में बेतवा नदी पर निर्माणाधीन पुल का हिस्सा गिरने से 6 मजदूरों की मौत। मुख्यमंत्री ने हादसे में मारे गए श्रमिकों के आश्रितों को 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि देने के दिए निर्देश। और प्रदेश में बीती देर रात आए आंधी तूफान से जनजीवन प्रभावित। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश और बिजली गिरने की जारी की चेतावनी। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मऊ में 392 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 114 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अच्छी सरकार विकास लेकर आती है। ये विकास बिना भेदभाव नागरिकों के जीवन स्तर को उठाने का माध्यम होता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 में जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में देश की बागडोर सौंपी तो सभी ने 12 वर्ष में बदलते भारत को देखा। श्री योगी ने बताया कि आज प्रदेश में 10 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत व मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मऊ से विभिन्न शहरों की कनेक्टिविटी बेहतर हो गई है।
3: मऊ जनपद आज फिर से एक नई विकास की यात्रा में आगे बढ़ा है। इस विकास यात्रा के 100 यात्री आपके सामने हैं। कोई सोचता था कि गोरखपुर से वाराणसी का मार्ग 4 लेन का होगा? कोई सोचता था कि मऊ से लखनऊ की दूरी अब मात्र 3 घंटे की हो जाएगी? तो यहाँ आपके लिए प्रदेश की राजधानी इतनी नजदीक हो गई, गोरखपुर नजदीक हो गया, काशी नजदीक हो गया, प्रयागराज की दूरी घट गई, इतनी अच्छी कनेक्टिविटी।
2: मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को चेक, चाबी, लैपटॉप, स्वीकृति पत्र आदि देकर सम्मानित किया। इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने मऊ के ताजोपुर में ग्रामीण सैनिक हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान दिए गए पंच प्रण का भी उल्लेख किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का सपना गांव के विकास से ही साकार होगा।
3: गांव स्वावलंबी होंगे तो आत्मनिर्भरता की इकाई हम गठित कर पाएंगे। ग्रामीण आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को आगे बढ़ने के समय एक प्रयास है, और यही तो प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों के सामने कहा था, विकसित भारत की संकल्पना। भारत विकसित होगा तब जब प्रदेश

0: विकसित होगा, प्रदेश विकसित होगा तब जब जनपद विकसित होगा, और जनपद विकसित तब होगा जब ताजोपुर जैसे गांव विकसित होंगे।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत माँ का महान सपूत और किसानों का मसीहा बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में कृषि राजस्व के क्षेत्र में तमाम रिफॉर्म का श्रेय उन्हें जाता है। उनका स्पष्ट मत था कि देश के विकास का रास्ता गांव खेत व खलिहानों से होकर जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान विकास के एजेंडे और सरकार की प्राथमिकता का हिस्सा होना चाहिए। शासन की योजनाएं किसानों को ध्यान में रखकर तैयार की जानी चाहिए।
2: वे देश के किसानों के मसीहा थे और उनका स्पष्ट कहना था कि देश के विकास का रास्ता गांव के खेत और खलिहानों से होकर के जाता है, और इसलिए विकास के एजेंडे में किसान होना चाहिए, किसान सरकार की प्राथमिकता का हिस्सा होना चाहिए, उन्हें ध्यान में रख करके शासन की योजनाएं तैयार होनी चाहिए।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने आज देश के सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर उसे सुनाने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने कहा कि फैसलों में देरी से याचिकाकर्ताओं को अपूर्णीय क्षति हो सकती है। पेश है एक रिपोर्ट।
3: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि फैसलों में देरी से याचिकाकर्ताओं को अपूर्णीय क्षति हो सकती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की पीठ ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में त्वरित निर्णय की आवश्यकता पर बल दिया। पीठ ने कहा कि जमानत आवेदनों पर आदेश उसी दिन या अगले दिन सुनाया और अपलोड किया जाना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि जमानत या सजा निलंबन का आदेश सुनाए जाने के तुरंत बाद जेल अधिकारियों को सूचित करना अनिवार्य है। विचाराधीन कैदी को उसी दिन या अधिकतम अगले दिन रिहा किया जाना चाहिए। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि पेपर लीक की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। डीडी न्यूज को दिए एक विशेष साक्षात्कार में श्री प्रधान ने आश्वासन दिया कि पुनर्परीक्षा प्रक्रिया उचित और व्यवस्थित तरीके से बिना किसी त्रुटि के सम्पन्न की जाएगी।
4: जो घटना हुई है ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है, नहीं होनी चाहिए था। अभी दोबारा जब हम लोगों ने री नीट की घोषणा किया है, वो री नीट सुव्यवस्थित हो जाए, इसमें निर्भुलता के साथ हो, ये अभी हमारा दायित्व है। इस काम पे सभी का सहयोग हम अपेक्षा रखते हैं।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आज जनभवन में स्थापित हाइड्रोपोनिक चारा उत्पादन इकाई का उद्घाटन और अवलोकन किया। ये इकाई जनभवन गौशाला में गौवंशों को वर्ष भर मानक के अनुरूप पर्याप्त पौष्टिक और रसायन मुक्त हरा चारा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्थापित की गई है। यह हाइड्रोपोनिक चारा उत्पादन इकाई प्रतिदिन लगभग 100 किलोग्राम हरा चारा उत्पादन करने में सक्षम है। निपुण भारत मिशन के तहत राज्य स्तर पर कार्यरत मिशन के जिला समन्वयक और जिला समन्वयक प्रशिक्षण के लिए 1 और 2 जून को राज्य स्तरीय विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद SCERT लखनऊ में आयोजित होने वाले इस प्रशिक्षण में प्रदेश के सभी 75 जनपदों के जिला समन्वयक प्रतिभाग करेंगे। प्रदेश के विशिष्ट शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार बुनियादी शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए लगातार कार्य कर रही है। निपुण भारत मिशन के माध्यम से बच्चों में आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान विकसित करने के साथ साथ विद्यालयों में सीखने के परिणामों को बेहतर बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जनपद हमीरपुर के ललपुरा थाना क्षेत्र के मुरान कादर गांव के पास बीती रात बेतवा नदी में निर्माणाधीन पुल का हिस्सा गिरने से 6 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि कुछ लोग घायल हो गए। SDRF की टीम बचाव कार्य में लगी हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुर्घटना में श्रमिकों की मौत पर गहरा शोक प्रकट किया है। श्री योगी ने मृतकों के आश्रितों को 5-5 लाख रुपए तथा घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में बीती देर रात आए तेज आंधी तूफान, बारिश व आकाशीय बिजली से कई जिलों में भारी नुकसान और जनजीवन प्रभावित हुआ है। सहारनपुर के सिद्धपीठ माता शाकंभरी देवी क्षेत्र में शिवालिक पहाड़ियों में हुई तेज बारिश के बाद अचानक आए पानी के बहाव से कई वाहन बह गए। हादसे में दो महिलाओं की मौत हो गई। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई हिस्सों में अगले 24 घंटे में भारी बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलाधिकारियों को तत्काल फील्ड में जाकर सर्वे कर नुकसान का आकलन करने और राहत राशि शीघ्र जारी करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राहत और बचाव कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग की जाए और हर 3 घंटे में स्थिति की अद्यतन रिपोर्ट शासन को उपलब्ध कराई जाए। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने, अनावश्यक यात्रा से बचने और प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। अयोध्या स्थित श्री राम मंदिर परिसर में बने मां भगवती के मंदिर के शिखर पर आज ध्वजारोहण किया गया। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति और साध्वी रितंभरा ने ध्वज को शिखर पर स्थापित किया। वित्तीय वर्ष 2026-27 में संस्कृति विभाग द्वारा संग्रहालयों की स्थापना, विकास एवं क्यूरेशन कार्य की 17 नवीन परियोजनाएं प्रस्तावित की गई हैं। इन परियोजनाओं के तहत संग्रहालयों की स्थापना, उच्चीकरण, नवीनीकरण, क्यूरेशन आदि के कार्य कराए जाएंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मऊ में 392 करोड़ रूपए से अधिक की 114 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में बदली है भारत की तस्वीर। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीनों के भीतर आदेश सुनाने का दिया निर्देश। हमीरपुर में बेतवा नदी पर निर्माणाधीन पुल का हिस्सा गिरने से 6 मजदूरों की मौत। मुख्यमंत्री ने हादसे में मारे गए श्रमिकों के आश्रितों को 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि देने के दिए निर्देश। और प्रदेश में बीती देर रात आए आंधी तूफान से जनजीवन प्रभावित। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश और बिजली गिरने की जारी की चेतावनी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
5: डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, किसी भी समाज की उन्नति का पैमाना मैं इस बात को मानता हूँ कि उस समाज में स्त्री ने कितना विकास किया है।
6: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सुगम संगीत के कार्यक्रम में लीजिए सुनिए विविध कलाकारों की गाई नाथ।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में श्रोताओं इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से विविध कलाकारों की गाई नाथ।

दी आए शम में रिसालत नजर में बस जाती, तजल्लियों की हकीकत नजर में बस जाती, कमाले हुस्न की जन्नत नजर में बस जाती, तो नबी की चांद सी, नबी की चांद सी सूरत नजर

सुगम संगीत के कार्यक्रम में इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से विविध कलाकारों की गाई नाद।

विविध कलाकारों की गाई नात। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत संध्या। सुनवाते हैं आपको इस कार्यक्रम का ये पहला गीत। फिल्म है दिल अपना और प्रीत पराई। गायक कलाकार हैं लता मंगेशकर, गीतकार हैं शैलेंद्र और संगीतकार शंकर जयकिशन। तो आइए सुनते हैं फिल्म दिल अपना और प्रीत पराई का ये प्यारा सा गीत।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से गीत संध्या कार्यक्रम। श्रोताओं, अगला गीत हम लेकर आए हैं फिल्म यादों की बारात से। गायक कलाकार है मोहम्मद रफी और आशा भोसले। गीत के बोल लिखे हैं मजरूह सुल्तानपुरी ने और धुन बनाई है आरडी परमन ने।

0: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं?
1: तो इंतजार किस बात का,
0: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
1: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें।
0: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
1: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8865845809।
0: और हमारा ईमेल आईडी है
1: akashwaninajibabad@gmail.com।
0: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन
1: आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।

वो कौन थी? इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना श्रोताओं, लता मंगेशकर की आवाज में। इस गीत के बोल लिखे थे राजा मेहंदी अली खान ने और धुन बनाई थी मदन मोहन ने। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत संध्या। आइए सुनवाते हैं आपको ये अगली पेशकश फिल्म ब्लैकमेल से किशोर कुमार की आवाज में।

तुमको देखा तो ये ख्याल आया। जगजीत सिंह के सुर में आपने सुना ये प्यारा सा गीत फिल्म खामोशी से। और अब श्रोताओं आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम की ये अंतिम पेशकश जो हमने ली है फिल्म प्रेम गीत से। गायक कलाकार हैं जगजीत सिंह, शब्द रचना है इंदिवर की और संगीत दिया है जगजीत सिंह ने।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत संध्या। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक ही फिल्म से। श्रोताओं, आज की फिल्म एक ही फिल्म से कार्यक्रम में जो हमने आज की फिल्म ली है वो है गाइड। आइए सुनवाते हैं आपको गाइड फिल्म का ये पहला गीत मोहम्मद रफी के स्वर में। गीतकार हैं शैलेंद्र और संगीतकार एसडी बर्मन। श्रोताओं, जब शाम ढलती है और रात अपनी चादर फैलाती है तो कभी कभी दिल किसी की याद में बेकरार हो उठता है। ऐसा ही कुछ ये गीत है जो मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में है। इस ढलती हुई रात के माहौल को ये और भी गहरा कर देगा। तो आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

सूचना ज्ञान एवं मनोरंजन से भरपूर प्रसारण के 90 वर्षों से हम हैं आपके साथ, क्योंकि हम हैं आकाशवाणी।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं एक ही फिल्म से कार्यक्रम में फिल्म गाइड के गीत और उदासी के साए को थोड़ी से रोमांस और जिंदा दिली में बदलते हैं। श्रोताओं, जब हम सफर साथ हो तो जिंदगी का हर पल एक तराना बन जाता है। किशोरदा और लता मंगेशकर की आवाज में घुला ये वो नगमा है जो हर दिल को झूमने पर मजबूर कर देता है। तो आइए सुनते हैं ये प्यारा सा नगमा।

और श्रोताओं, अब इस महफिल को एक शास्त्रीय और खूबसूरत मोड़ देते हैं। जब दिल में पहली बार प्यार का रंग चढ़ता है तो आंखों से सब बयां हो जाता है। लता मंगेशकर जी की आवाज का वो जादू जिसने इस गाने को अमर बना दिया। आइए सुरीली शाम को और यादगार बनाते हैं इस क्लासिक गीत के साथ।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत एक ही फिल्म से। आज की फिल्म थी गाइड। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि

0: हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
1: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसानों को पर्याप्त बीज उपलब्ध कराने के लिए 1,74,000 क्विंटल का राष्ट्रीय बीज भंडार स्थापित किया गया है। नई दिल्ली में कार्यक्रम में उन्होंने उर्वरक वितरण में पारदर्शिता, कालाबाजारी की रोकथाम तथा किसानों को उचित आपूर्ति सुनिश्चित करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि सरकार नकली कीटनाशकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है।
2: सबने मिलकर यह तय किया है कि जो घटिया पेस्टिसाइड है वो एक बड़ी समस्या है। बीज भी गुणवत्तापूर्ण मिले और घटिया पेस्टिसाइड, उस पर जितने सैंपल उठाना चाहिए उतने सैंपल उठाएं। लैब्स कई राज्यों में है लेकिन उनको परफेक्ट करने का काम करें। NABL प्रमाणित लैब वहाँ उन राज्यों में हो, इस पर भी व्यापक पैमाने पर चर्चा हुई है। हम लोग इस पर भी नकली के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, व्यापक अभियान चलाया जाए।
1: कृषि मंत्री ने बताया कि देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 376 करोड़ टन से अधिक हो गया है। सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस का पर्याप्त भंडार है और सभी शोधन संयंत्र अधिकतम स्तर पर काम कर रहे हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में कहा कि देश में प्रतिदिन 92,000 मीट्रिक टन रसोई गैस का उत्पादन हो रहा है जो अब तक का सर्वोच्च स्तर है। उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और ऊर्जा बचाने की अपील की।
3: सरकार सभी घरों तक LPG सिलेंडर्स की उपलब्धता और डिलीवरी सुनिश्चित कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसके साथ सरकार सभी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयासरत है। इसलिए अफवाहों पर ध्यान न दें और अपने दैनिक उपयोग में ऊर्जा को बचाने का हर संभव प्रयत्न करें। बल्क और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स से अपील है कि वो ऑथराइज्ड प्रोक्योरमेंट चैनल से ही डीजल की खरीद करें।
1: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 2,70,000 मीट्रिक टन कच्चे तेल के साथ वाणिज्यिक पोत निसोस केरोस ओरमूज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकल गया है और 3 जून तक इसके विशाखापट्टनम पहुंचने की आशा है। म्यांमा के राष्ट्रपति यू मिन आंग लाइंग कल 5 दिन की भारत यात्रा पर आ रहे हैं। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के

वक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति के बीच द्विपक्षीय वार्ता में आपसी संबंधों को प्रगाढ़ करने पर चर्चा होगी। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता पर उन्होंने बताया कि अगले सप्ताह अमेरिका के व्यापारिक दल के भारत आने की उम्मीद है। भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए गठित कार्य समिति की हाल की बैठक पर श्री जायसवाल ने कहा कि चर्चा रचनात्मक रही। दोनों पक्षों ने परिसीमन, सीमा प्रबंधन, कार्य तंत्र निर्माण और सीमा सहयोग से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। बांग्लादेशी घुसपैठियों पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत में रह रहे सभी अवैध नागरिकों पर कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट पेपर लीक मामले में परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। DD न्यूज को दिए साक्षात्कार में श्री प्रधान ने योग्य विद्यार्थियों की सुरक्षा का आश्वासन दिया।
3: छात्रों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो गलती हुई है हमारी ट्रस्ट को ब्रिज किया गया है, जो रक्षक था वही भक्षक हुआ, जो शिक्षक को हमने जिम्मेवारी दिया था क्वेश्चन बनाने के लिए उन्होंने ही कॉम्प्रोमाइज हुआ है, उन्हीं के कारण ये अव्यवस्था शुरू हुई है। हमने एक कठोर निर्णय किया कि हमने एक भी सही विद्यार्थी के हक को परीक्षा माफियाओं के हाथ में सौंपना नहीं चाहते थे, उनके षड्यंत्र की शिकार नहीं होना चाहते थे। हम बच्चों की मानसिक स्थिति को सम्मान करते हैं, उनको संभालना चाहते हैं और हमको एक एरर फ्री एग्जामिनेशन देने का पूरा हमारा प्रयास।
2: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। न्यायालय की पीठ आज इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। दिल्ली में 21 जून को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट के लिए परीक्षार्थी DTC की बसों में निशुल्क यात्रा कर सकेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस सुविधा का लाभ लेने के लिए परीक्षार्थियों को केवल अपना वैध नीट प्रवेश पत्र दिखाना होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से शुरू हो जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनः मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। छठे राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में बताया गया है कि भारत ने मातृ और शिशु स्वास्थ्य, पोषण तथा वित्तीय सुरक्षा क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। 95.9% गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व देखभाल मिली है। गर्भावस्था की पहली तिमाही में जांच कराने वाली महिलाओं की संख्या 70% से बढ़कर 76.2% हो गई है। भारत की कुल प्रजनन दर 2 बनी हुई है। 12 से 23 माह के 96% से अधिक बच्चों को जरूरी टीके लगाए गए हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में

घुसपैठ और इसके कारण जनसांख्यिकी बदलाव की आशंका व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार घुसपैठ के मुद्दे पर कोई कार्रवाई करने में नाकाम रही। यही कारण था कि तृणमूल प्रशासन ने केंद्र से समय से निर्देश मिलने के बावजूद जनगणना कार्य की शुरुआत नहीं की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC ने आज नई दिल्ली परिसर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट एकेडमी की शुरुआत की। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार ने कहा कि इस अकादमी की शुरुआत से संस्थान पारंपरिक मीडिया शिक्षा से आगे बढ़कर भविष्य की मीडिया तकनीकों पर काम कर सकेगा। उन्होंने कहा कि AI की जानकारी केवल बड़े शहरों के न्यूज रूम तक सीमित नहीं रहनी चाहिए बल्कि पूरे भारत के मीडिया क्षेत्र तक पहुँचनी चाहिए। वाइस एडमिरल अजय कोचर ने आज 48वें नौसेना उप प्रमुख के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। पुणे में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र वाइस एडमिरल अजय कोचर ने जुलाई 1988 में भारतीय नौसेना में कमीशन प्राप्त किया था। रिजर्व बैंक की बैलेंस शीट इस वर्ष मार्च के अंत तक 20.6% की वृद्धि के साथ 91,97,000 करोड़ रुपए हो गई। रिजर्व बैंक की आज जारी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार ये बढ़ोतरी घरेलू निवेश तथा स्वर्ण और विदेशी निवेश में वृद्धि के कारण हुई है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है अमित गोयल।
2: घरेलू शेयर सूचकांकों में आज लगभग 1.5% की गिरावट दर्ज हुई। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 1092 अंक के नुकसान से 74,776 के स्तर पर रहा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 359 अंक की गिरावट से 23,548 के स्तर पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया आज 70 पैसे की मजबूती से 95 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ।
1: मौसम विभाग ने कहा है कि देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में भीषण गर्मी में कमी आई है और कल से मध्य भारत के अधिकांश हिस्सों में भी गर्मी कम होने की संभावना है। आज से 31 मई तक देश के उत्तर पश्चिमी, मध्य और पूर्वी हिस्सों में गरज के साथ आंधी वर्षा का अनुमान है। मध्य महाराष्ट्र और गुजरात में तेज हवाओं के साथ वर्षा हो सकती है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में ओलावृष्टि और आंधी तूफान की संभावना है। राजस्थान में भी धूल भरी आंधी की आशंका है। पाकिस्तान अपने मानवाधिकार रिकॉर्ड को लेकर लगातार आलोचना का सामना कर रहा है। मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल ने खैबर पख्तूनख्वा सूबे की राजधानी पेशावर से पश्तून तहफूज मूवमेंट PTM के कार्यकर्ता फरीदुल्ला अफरीदी को कथित रूप से जबरन अगवा किए जाने पर गहरी चिंता व्यक्त की है। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी ने पुरुष डबल्स तथा ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो ने मिक्स डबल्स के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में सात्विक और चिराग ने मलेशिया के कांग खई शिंग और आरोन ताई को हराया। न्यू चंडीगढ़ में IPL क्रिकेट के दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक राजस्थान ने 15वें ओवर में 5 विकेट पर 137 रन बना लिए हैं। मैच की विजेता टीम रविवार को अहमदाबाद में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से खेलेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रौद्योगिकी और नागरिक भागीदारी सहित 4 स्तरीय सुरक्षा उपायों के साथ सीमा प्रबंधन में बड़े बदलाव की घोषणा की। कहा, अवैध प्रवासन पर अंकुश देश की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण। सरकार ने किसानों को बीज उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 1,74,000 क्विंटल का राष्ट्रीय बीज भंडार स्थापित किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और योग्य विद्यार्थियों की सुरक्षा का आश्वासन दिया। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन में सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पुरुष डबल्स तथा ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो मिक्स डबल्स सेमीफाइनल में और IPL क्रिकेट में दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस तथा राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashwani. I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Home Minister Amit Shah announces major shift in border management leveraging technology and four-layered security involving citizens, says eradicating illegal immigration is vital to protect nation's demography. Government establishes national seed reserve of 1,74,000 quintals to ensure seed availability to farmers. Education Minister Dharmendra Pradhan assures strict action against examination mafias and protection for deserving students. Indian shuttlers Satvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty enter men's doubles semi-final of Singapore Open Badminton. Mixed doubles duo Dhruv Kapila and Tanisha Krasto also advance to semi-final. And in IPL cricket, crucial qualifier 2 match underway between Gujarat Titans and Rajasthan Royals in New Chandigarh. And now the news in detail. Union Home Minister Amit Shah has announced a major structural shift in border management with the introduction of a new quadripartite security grid. He said, securing our borders and eradicating illegal immigration is vital to protecting the nation's demography. He was addressing the troops and public gathering after inaugurating the strategically crucial G7 and G13 border outposts along the India-Pakistan border in Bhuj, Gujarat today.
4: We have decided to completely transform the concept of the BSF's border security. In the coming days, we will create a security grid based on a four-dimensional concept. And instead of focusing solely on border security, we will introduce a new concept of territorial security. Under the Smart Border Security Project, we are working to strengthen the security grid along the entire border with Bangladesh and Pakistan.
3: The minister said central government is leveraging cutting-edge technology, including drones, radars and modern fencing, to establish an unbreachable leak-proof security grid. Moving beyond traditional border security, this model introduces the concept of complete territorial security by actively integrating citizens, civil administration, the local police and the military alongside the BSF. Referring to international borders, Mr. Shah added that with the formation of the new government in West Bengal, the long-standing deadlock has ended and the state government has provided land for border fencing within a single week. Union Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan today said that a national seed reserve of 1,74,000 quintals has been established to ensure seed availability to farmers. Addressing media on the second day of National Conference on Agriculture for Kharif Campaign 2026 in New Delhi, Mr. Chauhan said that 9,76,000 farmer IDs have been created so far. He said that the farmers will no longer need separate documents to access different schemes. Mr. Chauhan stressed the need for transparency in fertilizer distribution, prevention of black marketing and ensuring proper supply to genuine farmers.
5: Save the farm campaign, Khet Bachao Abhiyan, this cannot run without you. From June 1st to June 30th, all of you will also have to step out. I will also step out. You should also step out and tell the rest of the ministers, central ministers, public representatives and MLAs that they should also step out. Everyone will have to go. Let the public representatives lead this. How much fertilizer, which pesticide, whatever the requirement for pesticides is, we will reduce it and eliminate it.
6: Kisan Samman Nidhi mein koi reh gaya hai aupcharikta puri karke uska labh hum de de.
3: The government has said that there is sufficient stock of petrol, diesel and LPG in the country and all the refineries are operating at the optimum level. Addressing an inter-ministerial media briefing in New Delhi, Joint Secretary in the Ministry of Petroleum and Natural Gas, Sujata Sharma said that LPG production is at all-time high, which is around 92,000 metric tons per day.
7: LPG का प्रोडक्शन

0: On the occasion, Secretary, Ministry of Information and Broadcasting, Chanchal Kumar said the Academy will function on five key pillars, which include capacity building, research, innovation and incubation, responsible AI and policy development, and industry-academia collaboration. Gujarat Forest and Environment Minister Arjun Mudwadia has assured that the situation in the Gir Forest and its surrounding revenue areas is completely under control following the suspected deaths of 8 lion cubs over the past week. Briefing the media in Gandhinagar today, the minister stated that no new casualties have been reported in the last 2 days and that the state government is taking prompt preventive measures to protect the Asiatic lions. Mr. Mudwadia noted, preliminary assessments suggest the deaths may have been caused by a disease called babesiosis, which is transmitted by ticks. Indirect diplomatic negotiations between the United States and Iran have advanced significantly as both sides review a tentative 60-day memorandum of understanding to extend the current ceasefire and reopen the Strait of Hormuz. United States Vice President J.D. Vance confirmed that negotiators are very close to an initial agreement, though final endorsement from President Donald Trump is still pending. Meanwhile, Iranian state media reports that no agreement has been finalized yet, emphasizing that Tehran requires concrete actions rather than words. The diplomatic push is being heavily supported by regional mediation, including recent direct consultations between the United States and Qatar. More from our West Asia correspondent.
1: Against this backdrop, Gulf Cooperation Council nations are moving with urgency. For these capitals, a collapse of the ceasefire is not a diplomatic setback. It's an existential one. Their critical infrastructure, desalination plants and shipping lines remain directly exposed. Qatar has deployed specialized mediation teams to Tehran to resolve the final sticking points over maritime rules in the Strait of Hormuz. Doha is also working to establish a structured escrow mechanism to channel any released Iranian funds strictly toward humanitarian goods, an arrangement designed to reassure the skeptical Washington while giving Tehran the economic relief it's demanding upfront. A further complication lies in the Lebanese dimension. Tehran has pushed for the MOU to cover all regional fronts, but Israel's continued military operations and displacement orders in southern Lebanon create a significant disconnect. The MOU, as currently drafted, effectively leaves the situation in Lebanon unchanged, meaning a flare-up involving a third party could unravel the entire framework at any moment. This is Vinod Kumar for Akashvani News from Dubai.
0: Benchmark domestic equity indices shed around
2: today after sell-off across most sectors intensified in the final hour of the trade. We have a report.
3: The BSE Sensex plunged 1,092 points to close at 74,776. The NSE Nifty fell 359 points to settle at 23,548. The broader market at the National Stock Exchange mirrored the fall in the frontline indices. The Mid-Cap 100 Index lost over 1.3% and Small-Cap 100 Index dropped more than 0.8%. In the Forex market today, the rupee strengthened by 70 paise to close at 95 rupees against the US dollar. Lalema Aneja Dang for Akashvani News.
0: And now on to sports. In IPL cricket, Rajasthan Royals were 171 for 5 in 17 overs against Gujarat Titans in the Qualifier 2 match in New Chandigarh when reports last came in. Earlier, Rajasthan Royals won the toss and opted to bat. The winner will take on Royal Challengers Bengaluru in the final on Sunday in Ahmedabad. India's men's doubles pair, Satwik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty, advanced to the semi-finals of the Singapore Open Badminton Tournament today. In the mixed doubles, Dhruv Kapila and Tanisha Krasso also managed to enter the semi-finals after their Malaysian opponent, Toh A. Wei, sustained an injury to her knee and had to retire. The IMD has said that the prevailing heat wave have abated from most parts of northwestern parts of the country and it is likely to abate from most parts of the central India from tomorrow. It forecasts thunderstorm activity accompanied by squally winds over northwest, central and east part of the country. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Home Minister Amit Shah announces major shift in border management leveraging technology and four-layered security involving citizens, says eradicating illegal immigration is vital to protect nation's demography. Government establishes national seed reserve of 1,74,000 quintals to ensure seed availability to farmers. Education Minister Dharmendra Pradhan assures strict action against examination mafias and protection for deserving students. Indian shuttlers Satwik Sairaj, Ranki Reddy and Chirag Shetty enter men's doubles semi-final of Singapore Open Badminton. Mixed doubles duo Dhruv Kapila and Tanisha Krasso also advance to semi-final. That is all in the news at 9. Good night.
4: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अब्दुल वाहिद। वजीर दाखिला अमित शाह ने टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और शहरियों को शामिल करते हुए चार सतही सिक्योरिटी के साथ सरहदी इंतजामिया में बड़ी तब्दीली का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि मुल्क की आबादी को तहफ्फुज फराहम करने में गैर कानूनी इमिग्रेशन को जड़ से खत्म करना जरूरी है। हुकूमत ने किसानों को बीज की दस्तियाबी को यकीनी बनाने की गरज से 1,74,000 क्विंटल का बीज का जखीरा कायम किया है। वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने इम्तिहान माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई और अहल तालिब इल्मों के लिए तहफ्फुज फराहम करने की यकीन दहानी कराई है। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी सात्विक साईराज, रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन के मर्दों के डबल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। मिक्स्ड डबल खिलाड़ी ध्रुव कपिला और तनिषा क्रिस्टो की जोड़ी भी सेमीफाइनल में पहुंच गई है। और आईपीएल क्रिकेट में अहम क्वालिफायर 2 का मैच नए चंडीगढ़ में गुजरात टाइटन्स और राजस्थान रॉयल्स के दरमियान जारी है। अब खबरें तफसील से। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि अपनी सरहदों की हिफाजत करना और गैर कानूनी इमिग्रेशन को जड़ से खत्म करना मुल्क की आबादी को तहफ्फुज फराहम करने के लिए इंतहाई अहम है। वो आज गुजरात के शहर भुज में भारत पाकिस्तान सरहद पर G7 और G13 की अहम सरहदी चौकियों का इफ्तिताह करने के बाद फौजियों और अवामी इज्तिमा से खिताब कर रहे थे। वजीर मौसूफ ने कहा कि मरकज ड्रोन्स रडार समेत जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है ताकि एक नाकाबिले दरअंदाजी और खामियों से पाक सिक्योरिटी ग्रिड कायम की जा सके। वजीर दाखिला ने एक नए क्वाड्रीपार्टाइट सिक्योरिटी ग्रिड को मुतारिफ कराने के साथ सरहदी इंतजामिया में एक बड़ी ढांचा जाती तब्दीली का ऐलान किया।
5: बीएसएफ की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है कि चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और बीएसएफ के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहेगी। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान एक सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट
4: मगरबी बंगाल में वजीर आला शुभेंदु अधिकारी ने रियासत में दरअंदाजी पर तशवीश जाहिर की है जो आबादियाती तब्दीलियों का बाइस बन रही है। नबन्ना में रियासती सेक्रेटरिएट में मर्दमशुमारी के प्रिंसिपल अफसरान की कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करते हुए उन्होंने कहा कि साबिका सरकार दरअंदाजी के मामले पर कार्रवाई करने में नाकाम रही है। उन्होंने वाजे किया कि पहले के टीएमसी इंतजामिया ने मरकज की जानिब से बरवक्त खतूत मौसूल होने के बावजूद मर्दमशुमारी की कार्रवाइयों का आगाज नहीं किया था। वजीर आला ने आबादियाती मुंतकली को सरहदों पर बेकायदा ताड़बाड़ करार दिया। उन्होंने उजागर किया कि सरहदी अजला सबसे ज्यादा मुतासिर हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि मर्दमशुमारी की कार्रवाइयों के जरिए जमा किए गए आदाद और शुमार को पॉलिसी साजी और बहबूद की मुख्तलिफ स्कीमें तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। म्यांमार के सदर यू मिन हांग वांग कल से 3 जून तक भारत के सरकारी दौरे पर रहेंगे। आज दोपहर में नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए वजारत खारजा के तर्जमान रणधीर जायसवाल ने बताया कि दो तरफा बातचीत के दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी और म्यांमार के सदर दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने पर तबादले ख्याल करेंगे। भारत चीन सरहदी मामलों पर मुशावरत और तालमेल के लिए मुनक़दा मीटिंग के बारे में जनाब जायसवाल ने कहा कि मुज़ाकरात तामीरी और मुस्बत थे। बांग्लादेश के गैर कानूनी माइग्रेंट से मुतल्लिक एक सवाल के जवाब में जनाब जायसवाल ने कहा कि तमाम गैर कानूनी माइग्रेंट्स के मामले में कानून के मुताबिक ही कार्रवाई की जाएगी। भारत और अमरीका के दरमियान तजारती मुजाकरात पर तर्जमान ने कहा कि भारतीय तजारती टीम ने अप्रैल में अमरीका का दौरा किया था।
6: उन्होंने कहा कि अगले हफ्ते अमरीका से एक टीम की भारत आमद मतवक्का है, जिसमें तजारती उमूर पर मजीद बातचीत की जाएगी।

0: हुकूमत ने कहा है कि मुल्क में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का स्टॉक इत्मीनान बख्श है और तमाम रिफाइनरीज पूरी सलाहियत के साथ काम कर रही हैं। नई दिल्ली में बैन वजारती मीडिया ब्रीफिंग से खिताब करते हुए पेट्रोलियम और कुदरती गैस की वजारत में ज्वाइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने कहा कि एलपीजी की पैदावार अब तक की सबसे ज्यादा है, जो कि तकरीबन 92,000 मेट्रिक टन योमिया है।
1: हमारे यहाँ पर पेट्रोल और डीजल और एलपीजी के सफिशिएंट स्टॉक है, नेचुरल गैस और क्रूड की सफिशिएंट इन्वेंट्रीज टाइड अप है। हमारी सारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम लेवल पर ऑपरेट कर रही हैं और एलपीजी प्रोडक्शन ऑल टाइम हाई है, लगभग 92 TMT पर डे। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है।
0: मोहतरमा शर्मा ने यह भी बताया कि किसी भी एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशनशिप से किसी तरह की किल्लत की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। खुर्दा आउटलेट्स के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि 150 अजला ने पेट्रोलियम में 30% इजाफे की रिपोर्ट दी है, जबकि 156 अजला ने 30% से ज्यादा इजाफे की रिपोर्ट दी है। उन्होंने कहा कि हुकूमत सूरत हाल का जायजा ले रही है। आज सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क की तमाम हाई कोर्ट्स को हिदायत दी है कि अपने फैसले को महफूज करने के 3 महीने के अंदर अंदर फैसला सुनाएं। अदालत उज़्मा ने यह भी वाज़े किया कि फैसला सुनाने में ताखीर से मुकदमे के फरीकैन को नाकाबिले तलाफी नुकसान हो सकता है। इस बात पर जोर देते हुए कि ज़ाती आज़ादी के मुकदमों में तेज तर फैसलों की जरूरत है, चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला बागची पर मुश्तमिल एक बेंच ने कहा कि जमानत की उज़्रदारियों पर ऑर्डर उसी रोज सुनाया जाना चाहिए, नहीं अगर उन्हें मखसूस रखा जाता है तो अगले रोज उनका फैसला सुनाया या अपडेट किया जाना चाहिए। बड़ी तादाद में हिदायत जारी करते हुए अदालत उज़्मा ने कहा कि जमानत या सजा को मुअत्तल करने के ऑर्डर को फैसला सुनाने के बाद जल्द अज जल्द जेल हुकाम को इरसाल किया जाना चाहिए, क्योंकि फैसला सुनाया जा चुका है और ज़ेरे समात मुलजमान को तरजीही तौर पर उसी रोज या ज्यादा से ज्यादा अगले रोज रिहा किया जाना चाहिए। मरकजी वजीर ज़राअत शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि हुकूमत ने किसानों को बीज की दस्तियाबी को यकीनी बनाने के लिए 1,74,000 क्विंटल का कौमी बीज का जखीरा कायम किया है। नई दिल्ली में ज़राअत बराए खरीफ मुहिम 2026 पर कौमी कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन मीडिया से खिताब करते हुए जनाब चौहान ने कहा कि अब तक 9,76,000 किसान शनाख्ती कार्ड बनाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को मुख्तलिफ स्कीमों तक रसाई के लिए अलहदा दस्तावेजात की जरूरत नहीं होगी। जनाब चौहान ने मजीद कहा कि हुकूमत किसानों के मफादात के तहफ्फुज और इस बात को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है कि खादों का इस्तेमाल सिर्फ ज़र्रई मकासद के लिए किया जाए।
2: प्रधानमंत्री जी का संकल्प है हर गरीब को पक्का मकान मिले, पक्का आवास मिले, और उसके लिए 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए।
0: तालीम के मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने आज कहा है कि पेपर अफशां होने का वाकया इंतहाई अफसोसनाक था, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। डीडी न्यूज के साथ एक खुसूसी इंटरव्यू में जनाब प्रधान ने कहा कि दोबारा इम्तिहान का इनेकाद बगैर किसी खामी के मुनज्जम और मुनासिब ढंग से किया जाएगा। उन्होंने इस काम को पूरा करने में हर किसी से ताउन की अपील की।
3: जो घटना हुई है ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है, नहीं होनी चाहिए था। अभी दोबारा जब हम लोगों ने री नीट की घोषणा किया है और री नीट सुव्यवस्थित हो जाए, इसमें निर्भुलता के साथ हो, ये अभी हमारा दायित्व है। इस काम पे सभी का सहयोग हम अपेक्षा रखते हैं।
0: तलबा से खिताब करते हुए जनाब प्रधान ने उन्हें यकीन दिलाया कि हुकूमत उनकी तशवीश को समझती है। उन्होंने इस बात को तस्लीम किया कि उनके एतमाद को ठेस पहुंची है। उन्होंने कहा कि हुक्काम ने सख्त फैसला किया है, क्योंकि वो ये नहीं चाहते कि किसी भी अहल तालिब इल्म का मुस्तकबिल इम्तिहान माफिया के हाथों में न पड़े या बेजाब्तगियों का शिकार न होने पाए। सुप्रीम कोर्ट ने आज नीट पेपर लीक मामले में होने वाली खामियों के लिए जवाबदेही पर जोर दिया। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और आलोक अरादे की बेंच इस मामले पर दरखास्तों की समाअत कर रही थी, जिसमें नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA को एक मजबूत और खुद मुख्तार इदारे में तब्दील करने या मेडिकल दाखिले के इम्तिहान के इनेकाद के लिए उसकी तंजीम नौ करने की हिदायत की दरख्वास्त शामिल थी। बेंच ने मरकजी हुकूमत से इस मामले में हलफनामा दाखिल करने को कहा और इसकी समाअत जुलाई के दूसरे हफ्ते में करने का हुक्म दिया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बेंच को बताया कि हुकूमत नौजवानों के बारे में फिक्रमंद है और इस बात को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है कि इस मामले में कोई कोताही न हो। उन्होंने बेंच को यह भी बताया कि 21 जून को होने वाले नीट UG के दोबारा होने वाले इम्तिहान के लिए कुछ नए मैकेनिज्म

0: बनाए गए हैं। दिल्ली हुकूमत ने ऐलान किया है कि नीट यूजी 2026 इम्तिहान के उम्मीदवारों को दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन डीटीसी की बसों में मुफ्त सफर की सहूलत फराहम की जाएगी। ये इम्तिहान अगले महीने की 21 तारीख को मुनक़िद होंगे। दिल्ली की वज़ीर आला रेखा गुप्ता ने कहा है कि उम्मीदवार अपना एडमिट कार्ड दिखाकर डीटीसी बसों में मुफ्त सफर कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस दिन तलबा को किसी किस्म की दुश्वारी का सामना नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये दिन उनके मुस्तकबिल के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। कर्नाटक के गवर्नर थावर चंद गहलोत ने आज बंगलुरु में वजीर आला सिद्धारमैया का इस्तीफा मंजूर कर लिया और वजरा की काउंसिल को फौरी असर से तहलील कर दिया। ताहम उन्होंने मुतबादिल इंतजाम न होने तक सिद्धारमैया से निगरान वजीर आला के तौर पर खिदमात अंजाम देने को कहा। वाइस एडमिरल अजय कोचर ने आज भारतीय बहरिया के 48वें नायब सरबराह का ओहदा संभाल लिया। ओहदा संभालने पर फ्लैग ऑफिसर ने नई दिल्ली में कौमी जंगी यादगार पर गुलहाय अकीदत नजर करके मुल्क की खिदमत में अजीम कुर्बानी देने वाले बहादुरों को खिराज अकीदत पेश किया। पुणे की बावकार नेशनल डिफेंस अकेडमी के साबिक तालिब इल्म रहे वाइस एडमिरल अजय कोचर को जुलाई 1988 में भारतीय बहरिया में कमीशन किया गया था। मिसाइल और गन सिस्टम के माहिर अजय कोचर ने अपने 37 साल से ज्यादा अरसे पर मुहित करियर के दौरान कमांड ऑपरेशनल और स्टाफ असाइनमेंट की वसी तर जिम्मेदारी संभाली है। अमरीका और ईरान के दरमियान बिलवास्ता सिफारती मुजाकरात में पेशरफ्त हुई है, क्योंकि दोनों फरीक मौजूदा जंगबंदी की मुद्दत को 6 दिन तक बढ़ाने और आबनाए हुरमुज को दोबारा खोलने के मफाहमतनामे का जायजा ले रहे हैं। अमरीका के नायब सदर जेटी वेंस ने तस्दीक की है कि मुजाकरात शुरुआती समझौते तक पहुंचने के बेहद करीब हैं। हालांकि सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से आखिरी मंजूरी अभी ज़ेरे इल्तवा है। इस दौरान ईरान के सरकारी मीडिया ने खबर दी है कि अब तक कोई समझौता नहीं हुआ है और तेहरान लफ्जों के बजाय ठोस कार्रवाई का मुतालिबा करता है। तफसील हमारे नामा निगार से।
1: मलिक तावन काउंसिल GCC ममालिक इस मामले में हंगामी बुनियादों पर आगे बढ़ रहे हैं। कतर ने अबनाए हुरमुज में बहरी कवानीन से मुतालिक हतमी नुकात तय करने के लिए तेहरान में अपनी खसूसी सालिसी टीमें तैनात की हैं। दोहा भी जारी किए गए ईरानी फंड्स के सख्ती से इंसानी बेहतरी के इस्तेमाल को मुमकिन बनाने के लिए तीसरे फरीक पर मबनी मुनज्जम मैकेनिज्म के कयाम पर काम कर रहा है। मजीद पेचीदगी लेबनानी नुक्ता नजर से भी है। तेहरान सभी इलाकाई महाजों का अहाता करते हुए बाहमी मफाहमतनामे पर जोर दे रहा है, लेकिन जनूबी लेबनान में इसराइल की जारी फौजी कार्रवाइयां और नकले मकानी अहकाम इस मामले में रुकावट बन रहे हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए जमीर रजवी।
0: पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा सूबे की राजधानी पेशावर से पश्तून तहफ्फुज़ मूवमेंट PTM कारकुन फरीदुल्ला अफरीदी की मुबैना जबरी गुमशुदगी से मुतल्लिक एमनेस्टी इंटरनेशनल की जानिब से संगीन तशवीश का इजहार किए जाने के बाद पाकिस्तान को इंसानी हकूक से मुतल्लिक अपने रिकॉर्ड के ज़िम्न में ताज़ा तनकीद का सामना है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा है कि अफरीदी को पेशावर से 18 मई की शाम को अगवा किया गया था। उनके कुनबे की जानिब से बार बार अपील किए जाने के बावजूद मकामी पुलिस ने FIR दर्ज करने से इनकार कर दिया। उन्होंने उनकी गुमशदगी के बारे में किसी बाकायदा कार्रवाई का आगाज भी नहीं किया है। सात्विक साईराज, रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पर मुश्तमिल भारत की मर्दों की डबल जोड़ी आज सिंगापुर ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। रिंकी रेड्डी और चिराग ने अरुण ताई और कांग हाईजेन की मलेशियाई जोड़ी को 19-21, 21-17 और 21-13 से शिकस्त दी। IPL क्रिकेट के चंडीगढ़ में जारी दूसरे क्वालिफायर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने गुजरात टाइटंस के सामने जीत के लिए 215 रन का निशाना रखा है। इससे पहले राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। दूसरे क्वालिफायर के आज हो रहे मैच की फातिह टीम का मुकाबला इतवार के रोज फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। आखिर में खास खबरें एक मरतबा फिर। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और शहरियों को शामिल करते हुए 4 सतही सिक्योरिटी के साथ सरहदी इंतजामिया में बड़ी तब्दीली का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि मुल्क की आबादी को तहफ्फुज़ फराहम करने में गैर कानूनी इमिग्रेशन को जड़ से खत्म करना जरूरी है। हुकूमत ने किसानों को बीज की दस्तियाबी को यकीनी बनाने की गरज से 1,74,000 क्विंटल का बीज का जखीरा कायम किया है। वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने इम्तिहान माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई और अहल तालिब इल्मों के लिए तहफ्फुज़ फराहम करने की यकीन दहानी कराई है। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी सात्विक साईराज, रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी

0: सिंगापुर ओपन बैडमिंटन के मर्दों के डबल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं और आईपीएल क्रिकेट में अहम क्वालिफायर 2 का मैच नए चंडीगढ़ में गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के दरमियान जारी है। इसी के साथ खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।
1: हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम हेलो नजीबाबाद।

0: है तो उठाइए अपना फोन, मिलाइए हमारे स्टूडियो का नंबर और सीधे जुड़ जाइए मेरे साथ। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो का नंबर है 9457078288 और दूसरा नंबर है 01341230105। तो आइए देखते हैं आज की रात हेलो नजीबाबाद कहकर हमारे साथ जुड़ने वाले पहले कॉलर कौन है और उनकी पसंद का कौन सा नगमा आज की महफिल की शुरुआत करता है। तो चलिए लेते हैं आज की ये पहली कॉल। हेलो,
1: हेलो नजीबाबाद
0: जी। हेलो नजीबाबाद, स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
1: जी शुक्रिया। मैं शाही मार्केट सिवहारा जिला बिजनौर से आसिफ चौधरी बात कर रही हूँ। मैडम जी नमस्ते।
0: नमस्ते आसिफ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। और पहले कॉलर बने हैं आप
1: जी।
0: जी बताइए कौन सा गीत सुनना चाहते हैं आज के इस कार्यक्रम में, और साथ ही बताइए आपके माहौल कैसा है, मौसम कैसा है आज का?
1: बस आज का रात से सही मौसम हो रहा है क्योंकि हवा चल रही बराबर। वैसे तो ना गर्मी बहुत हो रही थी।
0: जी जी, गर्मी तो बहुत थी लेकिन हवा चली और कुछ क्षेत्रों में बारिश भी हुई है। तो
1: जी हल्की हल्की बारिश हुई थी, कोई खास नहीं हुई थी। हाँ मिलता
0: जी, तो मौसम में थोड़ा सा बदलाव आया। और जी आसिफ जी, तो किस फिल्म का गीत आप सुनना चाहते हैं आज इस कार्यक्रम में?
1: फिल्म का नाम है वक्त, आशा भोसले जी की आवाज में है। चेहरे पे खुशी छा जाती है, आंखों में सुरूर आ जाता है।
0: जी
1: तो कुछ नाम थे अगर आप इजाजत हो तो।
0: जी बिल्कुल, ले लीजिए आप अपने सदस्यों की।
1: हैं सतवीर जी, मास्टर सतवीर जी हैं, और जी मदन गिरी जी हैं हरिद्वार से, और मकसूद हुसैन है बीबीपुर से, और नदीम बाकी जी हैं, वकार फरीदी जी हैं, रऊफ जी हैं, मकसूद हुसैन जी हैं, रऊफ जी हैं, और निजामुद्दीन जी हैं, मुकेश कश्यप जी हैं, और राशिद अंसारी जी, पच्चीस नाम है।
0: जी आसिफ जी, आइए तो सुनवाते हैं आपकी पसंद का गीत आपको और आपके सभी साथियों को फिल्म वक्त से। जी फिल्म वक्त से आइए श्रोताओं सुनते हैं आसिफ चौधरी जी की पसंद पर ये गीत आशा भोसले के स्वर में। गीत के बोल हैं साहिर लुधियानवी के और धुन बनाई है रवि ने।

0: श्रोता आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद से इस वक्त सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो नजीबाबाद। इस कार्यक्रम में जुड़कर श्रोताओं आप सुन सकते हैं अपनी पसंद के गीत और बन सकते हैं इस कार्यक्रम का हिस्सा। तो हम अपने जुड़ने वाले नए श्रोताओं को बता दें कि इस कार्यक्रम में कॉल करने के लिए आप हमारा नंबर नोट कीजिएगा। नंबर है 9457078288 और दूसरा नंबर है 01341230105। और देखते हैं अगले कॉलर हमारे साथ कौन जुड़े हैं। हेलो।
1: सुकून मिलता है जब उनसे बात होती है, सुकून मिलता है जब उनसे बात होती है, हजार रातों में वो एक रात होती है, नजर उठाकर देखते हैं जब वो मेरी तरफ, वही मेरे लिए सारी कायनात होती है।
0: अब बहुत खूब। तो कौन हमारे साथ जुड़े हैं इस कार्यक्रम के दूसरे कॉलर के रूप में।
1: जिला मुरादाबाद ग्राम बीबीपुर से मकसूद हुसैन बात कर रहा हूँ मैम। नमस्कार जी।
0: जी नमस्कार मकसूद हुसैन जी। तो कार्यक्रम में आपकी कॉल लगी, तो कितने समय के बाद आप इस कार्यक्रम से आज जुड़े हैं? जैसे तो आप नियमित श्रोता हैं, हम सुनते हैं।
1: ये बस दूरभाष की बात है और किस्मत की भी बात है, अगर इसमें लगे तो हर सप्ताह लग जाए, अन्य तो 6-6 महीने हो जाते हैं मैम।
0: जी जी
1: हाँ, पिछली कॉल काफी दिनों में लगी थी, अब तो 22 दिन में लग गई मैम।
0: तो बहुत अच्छी बात है। और आप लगातार हमारे आकाशवाणी केंद्र से जुड़े रहते हैं, कार्यक्रम आपको पसंद आते हैं हमारे केंद्र से जो भी कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं?
1: मैम सुबह से लगाकर और रात के 11:10 तक आपकी आकाशवाणी सुनता हूँ, और नई नई देश विदेशों में भी सुनते हैं, पूरे भारत में लोकप्रिय स्टेशन है ये।
0: जी जी जी बहुत।
1: आज से नहीं मैम, करीबन 45-40 साल से मैं सुनता हूँ, 58-59 साल की उम्र है मेरी मैम।
0: जी तो सभी कार्यक्रम ज्ञानवर्धक होते हैं आकाशवाणी के, आप जब इतने समय से जुड़े हैं तो बहुत अच्छा लगा हमें आपसे बात करके। तो इस कार्यक्रम में आज कौन सा गीत आप सुनना चाहते हैं मकसूद हुसैन जी?
1: मैम एक

0: फिल्म है क्रांति, उसमें बहुत ही लता जी का नितिन मुकेश है, मुकेश साहब के लड़के हैं वो नितिन मुकेश और साथी हैं, तो बहुत ही प्यारा गीत है, उई समासा उई उई समासा ले जा प्यार जरा सा।
1: ठीक है मुकेश जी, ठीक है मकसूद जी, आप सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये।
0: मैं सुनने वालों के साथ में भी तो हूँ मैं।
1: अच्छा, और भी नाम आप लेना चाहते हैं? जी ले लीजिए।
0: मोहम्मद दानिश सिद्दीकी, राजा हुसैन है, गफ्फार हाजी जी हैं, इशरत भाई हैं, मुकेश भाई हैं, मोहम्मद बख्तार फरीदीन, निजामुद्दीन भाई, रऊफ भाई, आसिफ अली चौधरी जी, राशिद अली अंसारी जी, सभी लोग सुनने वाले में साथ में आते रहेंगे।
1: ठीक है ठीक है, आप सभी की पसंद पर सुनवाते हैं आपको फिल्म क्रांति का ये गीत।
0: धन्यवाद।

0: आइए लेते हैं हमारे अगले कॉलर को। हेलो हेलो
1: हेलो,
0: नजीबाबाद
1: नमस्कार मैडम।
0: जी, नमस्कार।
1: मैं ग्राम बिहला थाना शिवाना कला बिजनौर से राशिद अंसारी बोल रहा हूँ।
0: जी राशिद अंसारी जी, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में।
1: थैंक यू मैडम।
0: जी, किस फिल्म का गीत सुनना चाहते हैं आप?
1: मैडम अनमोल मोती फिल्म का ये जाने चमन तेरा गोरा बदन जैसे खिलता हुआ गुलाब।
0: जी बिल्कुल सुनवाएंगे, लेकिन ये गीत किसके लिए सुनना चाहते हैं आप, हम जानना चाहते हैं, हमारे श्रोता भी
1: नहीं
0: ये
1: मैडम ऐसा तो कुछ नहीं, लेकिन
0: कुछ
1: ऐसा तो
0: खास।
1: कुछ नहीं, बस महेंद्र कपूर की आवाज में है तो इसलिए अच्छा लगता।
0: अच्छा, महेंद्र कपूर की आवाज आपको पसंद है, तो ठीक
1: कुछ
0: है
1: श्रोताओं के नाम लेना चाहता हूँ मैडम।
0: जी, ले लीजिए।
1: मकसूदपुर बीबीपुर से मकसूद हुसैन, रजा हुसैन, आसिफ चौधरी, नदीम बाकी, बकार फरीदी, रऊ भाई, निजामुद्दीन भाई, मुकेश कश्यप, मोहम्मद फरमान, महबूब दुकानदार, आचार्य सत्यवीर सिंह, और नेटवर्क से हैं बबीता रानी, प्रिंसिपल बीबीआईसी नेटवर्क बिजनौर, और एक नाम और है नजीमबाग से राजेंद्र सिंह पकौड़ी वाले। जी
0: पकौड़ी वाले, पकौड़ी की शॉप चलाते हैं क्या ये?
1: जी हाँ
0: और
1: मैडम,
0: सभी
1: मीना चौक
0: आपके,
1: बाजार में ही है।
0: जी सभी आपके मित्र हैं, और अपने साथ साथ आप उनकी पसंद भी आप इसमें शामिल
1: और
0: है।
1: मैडम आपके लिए भी गाना आपके देश की करते हैं।
0: जी, शुक्रिया। तो आइए सुनते हैं आपकी पसंद।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हेलो नजीबाबाद, जो कि एक सजीव फोन इन कार्यक्रम है। और इस कार्यक्रम में लगातार हमें कॉल्स आ रही हैं, हम ले रहे हैं अपने श्रोताओं की कॉल और सुनवा रहे हैं उनकी पसंद के गीत। तो आइए लेते हैं अगली कॉल। हेलो हेलो नजीबाबाद।
1: हेलो नजीबाबाद
0: जी, स्वागत है कार्यक्रम। जी बताइए, कौन कौन जुड़े हैं हमारे साथ?
1: जी, दास पश्चिम बंगाल से।
0: जी, गणेश दास जी।
1: जी
0: जी, तो पश्चिम बंगाल से आप हमारे साथ जुड़े, काफी दूर से हमारे श्रोता हमें सुन रहे हैं, और हमारे ये बड़ी अच्छी बात है कि आपकी कॉल भी लगी है। तो पूछना चाहूंगी मैं कुछ खास आपके एनवायरनमेंट के बारे में, आसपास का, वहाँ का कैसा वेदर है?
1: जी, आसपास से बिल्कुल ठीक है, और यहाँ पे जो है जैसे मक्का काट करके जो किसान भाई फ्री हुए हैं कुछ दिनों के लिए, उसके बाद जो फिर व्यस्त हो जाएंगे जैसे कि धान रोपाई में।
0: जी, और कुछ क्या खास पकवान है वहाँ का? जैसे हमने सुना है कि पश्चिम बंगाल के रसगुल्ला फेमस है, मिठाई, उसके अलावा ऐसी कौन सी डिश है जो आपको लगता है कि जो भी वहाँ जाए तो उसे जरूर खानी चाहिए?
1: जी, पश्चिम बंगाल दो ही चीज फेमस है, कहते हैं रसगुल्ला तो है ही, उसके बाद कहते हैं कि पश्चिम बंगाल में जैसे माछ और भात,
0: जी
1: ये दो मतलब फेमस है। एक कहते हैं ना नारे की बात में ये बसूरी, जैसे बात का भी यहाँ पे फेमस है, हमारे यहाँ बहुत ज्यादा मतलब कहा जाता है बहुत ज्यादा ये फेमस है। उसके बाद जो खास करके हमारे डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे जो मक्का का उपजाव बहुत ज्यादा होता है,
0: तो उसी की डिशेस ज्यादा बनाई जाती हैं।
1: हाँ जी, हाँ जी।
0: और ये जानना चाहते हैं हम अपने श्रोताओं के लिए भी कि जैसे घूमने की जगह की हम बात करें, हम यहाँ के नजीबाबाद के रहने वाले हैं, नजीबाबाद के लोग अगर उधर की साइड आएं तो पहले कौन सी ऐसी जगह है जो जहाँ सबसे पहले वे घूमने का अपना चूज करें कि कौन सी जगह?
1: घूमने का अगर है तो कोलकाता के आसपास जो चिड़ियाघर है वो तो दक्षिण एरिया हो गया, और उत्तर एरिया अगर आएंगे तो ये हो गया सिलीगुड़ी, बागडोगरा, जो यहाँ पे थोड़ा सा दूर है 200 किलोमीटर, ये यहाँ घूमने का जगह। या फिर आप चलेंगे खास उत्तरी तो है सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक, वो घूमने फिरने का जगह अच्छा है।
0: जी, और मौसम कौन सा चूज करें, मतलब कौन सा मौसम सही रहता है सर घूमने के?
1: मौसम पहले तो घूमने के समय जैसे कि जनवरी के आसपास ठंडी के समय वो मतलब गैंगटॉक अच्छे रहते हैं, सिक्किम की राजधानी,
0: जी जी
1: वो मतलब अच्छा रहता है। जी,
0: तो जनवरी
1: कभी
0: फरवरी,
1: आइए।
0: जी आएंगे, जरूर
1: अच्छा,
0: आएंगे। और बहुत अच्छा लगता है कि जब दूर दूर से श्रोता हमें कॉल करते हैं और हमारे आकाशवाणी नजीबाबाद केंद्र से जुड़ते हैं तो बहुत अच्छा लगता है हमें। और गणेश जी, आप कौन सी फिल्म का गीत सुनना चाहते हैं आज?
1: इस फिल्म का नाम है साजन की सहेली, गाने का बोल है जिसके लिए सब कुछ छोड़ा उसी ने मेरे दिल को तोड़ा।
0: तो ऐसा तो कुछ नहीं है कि किसी ने आपके दिल को तोड़ा है या केवल?
1: ऐसा हो सकता नहीं, ऐसा है ना कि देखिए जब गाना जो बनाते हैं ना, हर गाने में मतलब हर गाना जो हर किसी के लिए गाना बनता है तो कुछ ना कुछ तो मतलब बात
0: कुछ
1: होती
0: ना
1: है,
0: कुछ
1: मन में
0: भावनाएं जुड़ती हैं। तो
1: जी,
0: जी बिल्कुल गणेश दास जी, और सुनवाते हैं आपकी पसंद का गीत। आप हमारे कार्यक्रम में जुड़े, हमसे ढेर सारी बातें की आपने, तो हमें बहुत अच्छा लगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद आपका भी।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से फोन इन कार्यक्रम हेलो नजीबाबाद। और इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए श्रोताओं, आप कर सकते हैं हमें कॉल और सुन सकते हैं अपनी पसंद का गीत इस नंबर पर 9457078288 और दूसरा नंबर है 01341230105। तो आइए लेते हैं इस कार्यक्रम में अगले कॉलर को। हेलो नजीबाबाद।
1: हेलो नजीबाबाद मैम, नमस्कार।
0: जी नमस्कार।
1: मोहल्ला हलवाईयान शेरकोर जिला बिजनौर से मोहम्मद वकार फरीदी बात कर रहा हूँ।
0: जी वकार जी, कैसे हैं आप?
1: जी मैम, मैं बहुत अच्छा हूँ और आपका भी स्वागत करना चाहूँगा मैम हेलो नजीबाबाद में।
0: जी धन्यवाद। तो आज के इस कार्यक्रम में जुड़े हैं आप, तो कौन सा गीत सुनना चाहते हैं वकार जी आप?
1: मैम फिल्म का नाम है दिल का क्या कसूर,
0: जी
1: कुमार शानू और उनका याग्निक की आवाजों में है।
0: खता
1: तो जब हो के हम हाले दिल किसी से कहे, इस गाने को बोल रहे हैं।
0: ये गाना आपको क्यों पसंद है, क्या कुछ खास बात इससे जुड़ी हुई है?
1: मूवी मैंने देखी है, बहुत ही अच्छी फिल्म है और काफी अच्छी स्टोरी लगी थी मुझे। सारे गाने अच्छे हैं इस मूवी।
0: जी तो सुनवाएंगे आपको आपकी पसंद का गीत और कुछ
1: मैं
0: संदेश
1: आपको
0: देना
1: तो एक
0: चाहते हैं हमारे
1: संदेश
0: अनुष।
1: भी देना चाहता हूँ। हाँ मैम बिल्कुल। सबसे पहले तो मैम, जैसे कि गर्मियाँ पड़ रही हैं, काफी गर्मी इस समय हो रही है
0: जी काफी
1: और बच्चों
0: टेम्परेचर
1: के स्कूल की
0: ऊपर है।
1: छुट्टियां भी शुरू हो गई है, तो बस यही कहना चाहूंगा कि बच्चे घर पर ही रहें और उनके पेरेंट्स उनको ज्यादातर जो छोटे बच्चे होते हैं उनको घर पर ही रखें,
0: जी
1: घर से
0: जी
1: बाहर बिल्कुल भी न जाने दें।
0: बहुत ही अच्छा मैसेज आपने दिया और छोटे बच्चों का
1: हाँ
0: ख्याल
1: बच्चे
0: रखें।
1: छुट्टियों के दिनों में घर पे रुकते नहीं है और अपना बाहर खेलते रहते हैं धूप में,
0: धूप में
1: तो
0: खेलने
1: लू
0: से
1: लगने
0: बीमार
1: का भी
0: होने
1: डर
0: की
1: है,
0: चांसेस बढ़ जाएंगी।
1: लू लगने का डर है, तो उनको ज्यादातर घर में ही रखें और खास करके बुजुर्गों का भी इसमें ध्यान रखें। जी
0: जी बहुत ही
1: मैम।
0: अच्छी आपने संदेश भी दिया हमारे श्रोताओं को और कॉल
1: अच्छा लग
0: करी।
1: रहा है मैम आपसे बात करके, और आपसे पहली बार मेरी हेलो नजीबाबाद में बात हो रही है।
0: जी
1: जी मैम, कुछ दोस्तों के नाम भी लेना चाहूंगा।
0: जी ले लीजिए।
1: जी मैम, नदीम बाकी, रऊफ अहमद, निजामुद्दीन, आसिफ चौधरी, राशिद अंसारी, मुकेश कश्यप, मोहम्मद फरमान, दिव्यांशु यादव, मांगेलाल चंदेल, मकसूद हुसैन और महबूब दुकानदार और विष्णु अग्रवाल,
0: जी जी वकार जी, और
1: इनके
0: सुन
1: साथ सुनना चाहूंगा।
0: जी सुनवाते हैं आपके।
1: ओके मैम, थैंक यू।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से कार्यक्रम हेलो नजीबाबाद। लेते हैं अगले कॉलर को। हेलो, हेलो नजीबाबाद।
1: हेलो नजीबाबाद
0: जी, स्वागत है आपका बात करने के लिए। कौन बहुत जुड़े हैं हमारे साथ आज कार्यक्रम में?
1: जी, मैं जिला मुरादाबाद से साजिद अली बात कर रहा हूँ मैम।
0: जी साजिद अली जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में।
1: मैम आपका स्वागत है, आपने हमारी कॉल ली, हम तो लगाते लगाते परेशान हुए।
0: जी लगातार कॉल तो आती रहती है, तो जिसकी भी कॉल लग जाए तो। साजिद जी, क्या सुनना चाहते हैं आज आप हमारे इस कार्यक्रम में?

0: संगीत किस फिल्म से?
1: मैम ने मुझे पुरानी अनजाना फिल्म का गाना सुनना है, मेरी मोहब्बत तेरी जवानी 4 दिनों की है जिंदगानी।
0: जी, किसकी आवाज में है ये गीत?
1: ये मोहम्मद रफी जी की आवाज में है।
0: जी ठीक है, सुनवाएंगे
1: मैम
0: आपको
1: एक बात
0: आप।
1: कह रहा हूँ ना, ये गाने जो सुना दिए पूरे गाने साथ साथ मिले गाने सुना देती हैं, लोग इंतजार करते रहते हैं। थोड़ा गाना कम कर दो, गाने तो हम दिन भर सुनते रहते हैं। ये जुड़े का कार्यक्रम है आपसे, हम जुड़ते हैं आप।
0: जी, समझ गए आपकी हम बात, जो आप कहना चाहते हैं। सुनवाते हैं आपकी पसंद का गीत, और साथ ही ध्यान रखते हैं हमारे और श्रोताओं की पसंद का भी। साजिद
1: हाँ
0: जी,
1: बिल्कुल,
0: कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

0: श्रोताओं, हेलो नजीबाबाद में लेते हैं अगली कॉल। हेलो नजीबाबाद।
1: हेलो नजीबाबाद दीदी को राधे राधे। हाँ
0: जी राधे राधे। कौन जुड़े हमारे साथ आज हमारे श्रोता?
1: केसरी सिंह राजपूत बोल रहा हूँ दीदी, बैरसिया जिला भोपाल मध्य प्रदेश से।
0: जी, काफी दूर से हमारे साथ जुड़े आप, भोपाल से। केसरी सिंह राजपूत
1: जी हाँ
0: जी,
1: जी
0: जी
1: जी जी
0: क्या करते हैं आप, कुछ बताइए अपने बारे में।
1: मैं दीदी आर्टिस्ट हूँ, पेंटर।
0: जी, पेंटर हैं आप, तो किस
1: जी
0: तरह की
1: जी
0: पेंटिंग्स बनाते हैं आप? पेंटिंग्स बनाते हैं या?
1: ये चित्रकारी हुई, बाल पेंटिंग, दीवार लेखन जैसे राइटिंग का भी काम रहता है उसमें, सभी प्रकार की करते हैं दीदी।
0: जी, तो ये पेंटिंग का शौक आपको शुरू से ही रहा या एज ए
1: हाँ
0: प्रोफेशन?
1: बचपन से ही था दीदी, स्कूल टाइम से ही।
0: बहुत अच्छी बात है। और साथ ही साथ पेंटिंग करते करते आप हमारे केंद्र के कार्यक्रम भी सुनते रहते हैं।
1: हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत काफी दिनों से सुनते रहते हैं प्रोग्राम आपके, सभी अच्छे
0: तो
1: लगते हैं
0: किस
1: दीदी।
0: माध्यम से जुड़ते हैं आप, जैसे रेडियो से जुड़ते हैं
1: ये
0: या
1: न्यूज
0: मोबाइल के थ्रू,
1: न्यूज
0: न्यूज़ ऑन
1: मोबाइल के
0: एआईआर?
1: थ्रू। हाँ,
0: तो ये कार्यक्रम
1: न्यूज
0: कैसा लगता है आपको और आकाशवाणी केंद्र?
1: कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, और सुनते भी रहते हैं। बस बाकी इसमें प्रॉब्लम यही जाती है कि दो दो नंबर रहते हैं, तो कभी इस पर लगाते हैं तो उस पर रिसीव हो जाता है, उस पर रिंग जाती है तो किसी
0: जी जी
1: दूसरे
0: जी
1: नंबर पर
0: व्यस्त
1: रिसीव हो
0: रहता
1: जाता
0: है, क्योंकि अभी भी कॉल में
1: है।
0: आपसे
1: नहीं
0: बात कर रही
1: कन
0: हूँ तो
1: कन
0: तब भी दूसरे नंबर पे लगातार कॉल आ रही है, तो फिर श्रोताओं की शिकायत भी हो
1: हाँ
0: जाती है।
1: कन्फ्यूजन
0: और
1: जाता है उसमें।
0: जी, वो कहते हैं कि हमारी कॉल नहीं ली गई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, जिसकी भी कनेक्ट होती है हम उसी से बातें करते हैं, किसी भी श्रेता से।
1: नहीं दो दो नंबरों में तो दीदी यही प्रॉब्लम रहती है,
0: जी
1: आती है प्रॉब्लम, पर उसमें ये नए नए श्रोताओं को मौका मिलता रहता है, फिर वो लक और चांस की
0: तो
1: बात रहती
0: पहले
1: है।
0: भी आप इस कार्यक्रम में जुड़े हैं या फर्स्ट टाइम कॉल लगी आपकी?
1: कई कई कई बार जुड़े हैं, हम तो इतना नॉलेज रखते हैं कि
0: इतना
1: शुरू में जो लैंड लाइन नंबर था वो दो तीन कॉल तक तो वो चला ही नहीं, फिर तीन कॉल लग
0: अच्छा,
1: चुकी,
0: शुरू से
1: इसके
0: ही
1: बाद
0: आप
1: वो
0: कोशिश
1: चालू
0: कर रहे हैं,
1: हुआ।
0: लेकिन आपकी जो मेहनत है वो अब आके बिल्कुल समय भी हमारा जैसे नजदीक आ रहा है कार्यक्रम पूरा होने का, तो आपकी कॉल यहाँ आके पूरी हुई और बात भी हुई हमारी
1: जी
0: आपसे।
1: नहीं, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी लगी दीदी, कुछ मित्रों को याद करना चाहूंगा। साजन मूवी का आप कोई सा भी गाना बजा दीजिएगा, वो हमें
0: तो हमने अभी दूसरी फिल्म का गीत निकाल लिया है आपसे बात करते करते, तो आप कहें तो हमने सैनिक फिल्म का गीत हमारे
1: नहीं,
0: कंप्यूटर स्क्रीन पर है, चाहे तो आप वही सुनवा दें।
1: आपको जो उचित लगे वो सुनवा दीजिएगा, वो तो गाना तो दीदी बहाना है, ऐसी कोई
0: जी
1: बात
0: जी
1: नहीं
0: जी
1: है।
0: गाना तो
1: तो
0: बहाना है, लेकिन
1: हमारे
0: इस
1: राम
0: तरह से आकाशवाणी में आपकी कॉल आती है तो हमारे भी प्रोग्राम में चार चांद लग जाते हैं। हमारे श्रोता ही तो हैं इन कार्यक्रमों की
1: बिल्कुल
0: शान,
1: बिल्कुल जी,
0: जब आप सुनते
1: हाँ
0: हैं तभी तो हम
1: बिल्कुल
0: और नई ऊर्जा के साथ अपने प्रोग्राम को तैयार करते हैं।
1: बिल्कुल जी। हमारे मांगीलाल चंदेल जी सुन रहे हैं, राम बाबू शर्मा जी, भगवान सिंह परमार जी, और जितने भी लाइव सुन रहे हैं आपके लिए भी रहेगा, सभी के लिए रहेगा जी।
0: ठीक है, केसरी सिंह राजपूत जी, आप भोपाल से हमारे साथ जुड़े और हमारे कार्यक्रमों को लगातार सुनते हैं, शुरू से आप अपनी कॉल लगा रहे थे और आपकी कॉल भी लगी, तो आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत। जो आपने शुरू में हमें दो पसंद बताई थी, साजन भी कही और सैनिक भी कही, तो हमने सैनिक फिल्म का गीत निकाल लिया था, तो हम
1: हाँ दीदी
0: सुन
1: बिल्कुल
0: जी
1: बिल्कुल
0: कुमार सानू और आशा भोसले की आवाज़ों में सुनवाते हैं आपको ये गीत, साथ ही हमारे और श्रोता भी
1: जी
0: इस गीत का आनंद लीजिए। कॉल करने
1: बिल्कुल
0: के लिए
1: बिल्कुल,
0: आपका बहुत
1: और
0: बहुत शुक्रिया
1: जी रात के हम सफर में मिलते हैं, ठीक है।
0: जी।

अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी गीतों पर आधारित कार्यक्रम हेलो नजीबाबाद। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम रात के हम सफर।

नमस्कार, शुभ रात्रि। मैं हूं आपकी हम सफर शिवा शुक्ला और आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा शो रात के हम सफर। श्रोताओं, रात के 10:30 बज चुके हैं। हवा में एक हल्की सी खनक है और दिल में ढेर बातें। इस खामोश रात को सुरों से सजाने और आपकी यादों को आवाज देने के लिए मैं हाजिर हो चुकी हूँ। श्रोताओं, आज का हमारा ये सफर बेहद खास है क्योंकि आज का हमारा टॉपिक एक ऐसी चीज से जुड़ा है जो हम सबके दिलों के बेहद करीब है। आज का हमारा विषय है पहली बारिश और उससे जुड़ी यादें। जब भी तपती गर्मी के बाद पहली बारिश की बूंदें इस मिट्टी पर गिरती हैं तो एक सौंधी सी खुशबू चारों तरफ फैल जाती है। वो खुशबू सिर्फ मिट्टी की नहीं होती, वो खुशबू होती है हमारी पुरानी यादों की। कभी स्कूल से लौटते वक्त बारिश में भीगना, कभी कागज की कश्ती बनाना, तो कभी किसी खास के साथ एक छतरी में सिमट जाना। बारिश का हर कतरा अपने साथ एक कहानी लेकर आता है। तो मेरे प्यारे हमसफरों, आज रात आपकी बारिश की सबसे खास याद कौन सी है, मुझे अभी इसी वक्त हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके बताइए। अपने नाम के साथ अपनी वो खूबसूरत याद लिखकर भेज दीजिए जिसे आप आज रात हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं। श्रोताओ, हमारा नंबर है 9457078288। आपके मैसेजेस का सिलसिला शुरू हो उससे पहले आइए इस सुहाने मौसम और रात के सन्नाटे को थोड़ा और रोमानी बनाते हैं इस सदाबहार गीत के साथ जो हमने लिया है फिल्म श्री 420 से। आवाजें मन्ना डे और लता मंगेशकर की हैं।

श्रोताओं, गाना तो आपने सुना। चलिए अब रुक करते हैं हमारे व्हाट्सएप इनबॉक्स की तरफ और देखते हैं हमारे कौन से हम सफ़र ने अपनी यादें हमारे साथ साझा की हैं। तो ये पहला मैसेज आया है हमें केसरी सिंह राजपूत, उदयभान सिंह राजपूत, बैरसिया, जिला भोपाल, मध्य प्रदेश से। पहली बार इसकी बूंद में जो मिट्टी की महक और सोनी सोनी खुशबू आती है, उसे कोई कैसे भूल सकता है। ये लिखते हैं कि पहली बारिश में सब कुछ नया नया सा लगता है और पहली बारिश कैसे जैसे एक चलती हुई नाव को किनारा मिल गया हो, जैसे सबको पानी की प्यास होती है, चिड़ियों के साथ पेड़ों की लताओं को भी इसी से संतुष्टि मिलती है। क्या बात है। ये लिखते हैं कि पहली बारिश सभी के लिए एक नई खुशियां लेकर आती है। अगला मैसेज हमें भेजा है गंज डंडवारा उत्तर प्रदेश से, मास्टर खिल्लू परवेज, बेगम इमराना नाज, नवाजी शेख, दानिश शेख, अमन आफरादी, राधा नामदेव ने। और ये लिखते हैं कि पहले पहले प्यार की हर बात निराली हुआ करती है। एक दौर था जब हम कॉलेज में जाते थे, इत्तेफाक से इंटरवल टाइम में कैंटीन पर जब सभी लोग आपस में बातें कर रहे थे, तभी ज़ोरदार बारिश ने मेरा ध्यान खींचा। देखा तो वही सीन नज़ारा जिसका मैं इंतज़ार किया करता था मेरे सामने था। तो इन्होंने भी अपनी याद शेयर करी कि ये अपने कॉलेज के कैंटीन में थे और बारिश जो आई तो इन्हें एहसास हुआ जो नज़ारा वही देखने को मिला जो इनके मन में था, इनके विचारों में था। बहुत बढ़िया। अगला मैसेज हमें भेजा है, ये मैसेज लिखने वाले हैं मायलियान सरधना मेरठ से, अनिल जैन, जैन साहब, संयम जैन, मुस्कान जैन। और इन्होंने रहा लिखा है खुश रहो, सुखी रहो, स्वस्थ रहो। और बारिश से जुड़ी कोई याद इन्होंने अपनी अभी शेयर नहीं की। तो हम कहना चाहते हैं श्रोताओं की जो हमारी आज की बातचीत का विषय है कि पहली बारिश के साथ कौन सी आपकी याद है, हमसे शेयर कीजिए और हमारे साथ साथ और श्रोताओं को भी बताइए जिससे कार्यक्रम में समा बंधा रहे। और ये अगला मैसेज मिला है हमें भेरूलाल वाकतरिया धाकड़ की ओर से, उन्हें जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश से। ये लिख रहे हैं कि बारिश का इंतज़ार किसे नहीं रहता। किसान जब आषाढ़ का पहला बादल देखता है तो उसके मन में असीम उल्लास की लहरें प्रस्फुटित होती हैं। पशु पक्षी वन्य जीव भी बारिश को देखकर मतवाले हो उठते हैं। मोर नाचने लगते हैं, कोयल और पपीहा कलरव सुनाने लगते हैं और बच्चे तो क्या बड़े भी बच्चे बन जाते हैं। वाह क्या बात है। और भी मैसेज हमें मिल रहे हैं जो हम लेंगे हमारे कार्यक्रम में, लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं ये कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में, फिल्म मंजिल से।

0: लता जी की आवाज ने तो समा ही बांध दिया। आप सुन रहे हैं रात के हम सफर शिवा शुक्ला के साथ, बातें हो रही हैं पहली बारिश की। चलिए कुछ और मैसेजेस लेते हैं जो अभी अभी हमारे पास पहुंचे हैं। ये मैसेज आया है रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जेएस नायक, शोभा नायक, समस्त डागला परिवार की ओर से। ये लिखते हैं कि आकाशवाणी परिवार को नमस्कार, मेरे प्यारे राम स्वरूप को छोटे होते थे तो हम बारिश में बहुत नहाते थे और हमारे तो गांव में कच्ची पक्की जगह होती थी, उनमें पानी इकट्ठा हो जाता, कपड़े उतारे और उनमें खूब खेलते थे बारिश के अंदर। ये तो हमारी बचपन की कहानी। और जब छुट्टियां पड़ती थी तो रास्ते में हम स्कूल जाते थे, वापसी लौटते बारिश आ जाती थी, बहुत ही अच्छा लगता था। नहाते हुए भी घर पहुँच जाते थे, फटाफट मिलती कपड़े देती, माँ के लिए लिखा है इन्होंने, इनकी माँ फटाफट से मिलती कपड़े देती और ये खुश हो जाते थे। तो बहुत ही अच्छी इन्होंने अपनी बचपन की याद हमारे साथ शेयर की कि जब ये स्कूल से लौटते थे और लौटते टाइम जब बारिश हो जाती थी तो बहुत एंजॉय करते थे, भीगते भीगते घर आते थे। और अगला मैसेज लिखा है हमें, पहली बारिश हम छोटे से थे, हम बारिश में नहाते थे, सड़कों पर पानी काफ़ी था। ये उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा, हाँ जी, मैसेज करने वाले हैं जावेद अख्तर। तो ये लिख रहे हैं कि जब हम बारिश में नहाते थे, सड़कों पर पानी काफ़ी था, चप्पल निकल कर बह गई, पुरानी अपनी बात बता रहे हैं बचपन की, पता ही नहीं चला, घर पर आए तो हमें काफ़ी बुरा भला कहा गया, फिर हम बचपन में नहीं नहाए, नहाए तो फिर छत पर नहाए जिससे कि चप्पल ना खो जाए और ना गंदे पानी में नहाए हम, घर वालों को यही अच्छा लगता था। तो इन्होंने बताया कि इनकी एक बार चप्पल ही बह गई थी तो इससे काफ़ी डांट पड़ी। तो इन्होंने भी अपनी बचपन की याद हमारे साथ शेयर की जावेद अख्तर जी ने। बहुत अच्छा लगा आपका मैसेज हमारे इस कार्यक्रम में हमें शामिल करके। और अगला मैसेज भेजा है बारिश, ये कह रहे हैं कि बारिश हो रही है, अच्छा इस वक्त बारिश भी हो रही है कई जगहों पर और सभी जगह बारिश हो रही है, बारिश का आनंद ले रहे हैं ये। कोई अपनी बात तो इन्होंने हमारे साथ नहीं शेयर करी लेकिन कह रहे हैं कि बारिश हो रही है तो बहुत अच्छी बात है। बारिश के गीत चलते चलते बारिश का आनंद भी आप ले रहे हैं। और आइए श्रोताओं सुनते हैं अगला गीत इस कार्यक्रम में जो हमने लिया है प्रेम पत्र से, लता मंगेशकर और तलत महमूद की आवाज में।
1: सावन की रातों में ऐसा भी होता है, राही कोई भूला हुआ, तूफानों में खोया हुआ राह पे आ जाता है, ऐसा भी होता है।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से कार्यक्रम रात के हम सफर, और बात हम कर रहे हैं पहली बारिश की। तो पहली बारिश से जुड़ी आपकी क्या यादें हैं, आप भी हमें भेज दीजिए अपनी मैसेज के द्वारा। और हमारा नंबर है श्रोताओं 9457078288। लगातार हमें मैसेजेस मिल रहे हैं। अगला मैसेज आया है मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट जिला बिजनौर से, मोहम्मद वकार फरीदी, इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, सालसा रानी, हिना कौसर की ओर से ये लिखते हैं कि आपको हमारा प्यार भरा सलाम। कैसी हैं आप? आपका स्वागत है। मुझे बारिश बहुत पसंद है, नहाना बहुत पसंद है बारिश में। छत पर कागज़ की नाव चलाते थे, अपनी बता रहे हैं बचपन की बातें, और छत पर पानी का पतनाला बंद कर देते थे। जी, मुझे तो लगता है ये सभी ने अपने बचपन में एक वाला काम किया है कि पतलाने बंद कर देते थे, और जब पानी भर जाता था तो उसमें नाव भी चलाते थे और खुद भी ऐसा महसूस करते थे जैसे हम किसी नदी में आ गए हों, तैर तैर कर खूब एंजॉय करते थे। और ये अगला मैसेज हमें मिला है गांव चमरौआ जिला संभल उत्तर प्रदेश से, ब्रजेश मिस्त्री, किशन भाई, सोम पाल भाई, राजीव भाई, बंटी भाई, अनुज भाई, बबलू भाई, ये लिखते हैं कि सभी लोग कार्यक्रम सुन रहे हैं, मैसेज भी लिख रहे हैं, जरूर पढ़िएगा। जब बरसात की पहली बूंद जमीन पर आती है तो सारे पेड़ पौधे खुशियों से लहलहा उठते हैं, जमीन के अंदर बीज रहते हैं जो कि बारिश का इंतजार करते रहते हैं। जैसे कि बारिश शुरू होती है वैसे ही हमारी खेत खलिहान सारे पेड़ पौधों से हरे भरे हो जाते हैं। क्या बात है, क्या प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया है। कुछ लोग हैं जो पेड़ कम लगाते हैं, सभी लोगों से कहना है कि अगर पर्यावरण बचाना है तो पेड़ हमें ज़रूर लगाना है। बहाने ना बनाएं, क्योंकि बहाने से पेड़ नहीं लगेंगे। आप हौसला करो, दूसरों से भी अनुरोध करो कि हम एक पेड़ ज़रूर लगाएंगे। और ये लिखते हैं कि

0: आने वाले समय में हमारे वातावरण को बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है कि हम अपनी आने वाली पीढ़ी को भी सीख दें। हमारे पिताजी ने पेड़ लगाए, हम भी नहीं लगाएंगे तो हमारे बच्चे क्या सीखेंगे? उनके जीवन में खुशहाली आए, उनके जो दिन है वो गर्मियाँ उनके आने वाले समय में कम पड़े, उसके लिए ज़रूरी है कि एक पेड़ ज़रूर लगाएं। तो बहुत ही अच्छा इन्होंने संदेश दिया है, बहुत ही लंबा मैसेज दिया, और साथ ही लिखते हैं कि परिंदों को अपना घर बसाने का मौका दिया जाए। आप बहुत कुछ कर सकते हैं लेकिन उसके लिए आप समय जरूर निकालें, प्लीज़ प्लीज़ पेड़ जरूर लगाएं। ब्रजेश सिंह जिला संभल से, और इन्होंने बहुत ही लंबा मैसेज दिया और बहुत ही अच्छा संदेश दिया। बारिश की यादें तो इन्होंने साझा की ही, साथ ही हमारे अन्य श्रोताओं को ये भी कहते चले कि हमें पेड़ जरूर लगाने चाहिए, क्योंकि जब बारिश की बूंदें गिरेंगी तो वो एक नए पौधों के लिए जननी साबित होंगी और वही पेड़ हमारे भी जीवनदायक हैं। तो बहुत ही अच्छे संदेश मिला हमें इन्होंने लिखा है। और अगला मैसेज है गांव रजौनी जिला महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से, लिखने वाले हैं उदय भान पाल, जय हिंद पाल, दीक्षा पाल, प्रतीक्षा पाल, विमलेश पाल, और इन्होंने लिखा है कि इन्हें भी बारिश बहुत पसंद है। और कोई इन्होंने अपनी याद अभी हमारे साथ साझा नहीं की, उम्मीद करते हैं कि अगली बार जब इनका मैसेज आए तो ज़रूर कुछ बात भी अपनी यहाँ पर शामिल हो। इनकी नाम तो हमने ले ही लिए हैं। और अगला मैसेज है राशिद हुसैन अंसारी, नसीन अंसारी, नौरीन अंसारी, आसना अंसारी, मोहम्मद कैफ अंसारी की ओर से, और इन्होंने भी अपना अगला मैसेज भेजा है। विलेज और पोस्ट राहू नगली, आचार्य सत्यवीर सिंह, अलका चौहान, अक्षत चौहान, भूमिका चौहान, कनिष्का भव्य, सीमा रानी की ओर से लिखते हैं कि अगस्त 2012 में बरसात के दिनों में हमने काफ़ी सारे पेड़ लगाए थे, वे आज बहुत बड़े हो गए हैं। जिनके द्वारा वे पेड़ लगे थे उनको देखकर वे बहुत खुश होते हैं, जो कि जामुन, नींबू, अमरूद, आम, सागौन के पेड़ थे, हमें गर्मी से बचाते हैं। बारिश लानी है तो अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। बहुत ही अच्छा संदेश और बहुत ही अच्छी इन्होंने बात कही श्रोताओं। और वैसे भी बारिश जो होती है वो सुकून तो हमें देती ही है, हमारे पर्यावरण के लिए तो है ही, साथ ही साथ हमारे मन को भी सुकून होता है। और ऐसे में भी रात की बारिश, रात के हम सफ़र कार्यक्रम आप सुन रहे हैं और इस वक्त कहीं कहीं बारिश भी हो रही है, और रात की जो बारिश है इतना सुकून देती है, ऐसा लगता है श्रोताओं जैसे आसमान की बूंदें हमारे दिल के जज्बातों को सुर दे रही हों। और जब बात जज्बातों की हो तो भला इस बेहद रोमांटिक गाने को कैसे छोड़ा जा सकता है। आइए सुनते हैं नमक हलाल फिल्म का ये गीत किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ में।
1: अरे अरे अरे ना ना ना ना ना ना ना

श्रोताओं, इसी के साथ ये कार्यक्रम पूरा होने की तरफ बढ़ गया है, लेकिन चलते चलते ले लेते हैं एक दो मैसेज और। हमें मैसेज आया है जसपुर रोड दूल्हापुर जिला मुरादाबाद से। महबूब दुकानदार, बेगम साहिबा महबूब, मोहम्मद समीर अंसारी, मोहम्मद वारिस अंसारी, बेटी अशिफा परवीन की ओर से ये लिखते हैं, पहली बारिश में भीगना बहुत ही अच्छा लगता है। बारिश के मौसम में जो तड़का है, साथ में गरम गरम पकौड़े हैं चाय के साथ में, फिर ये बारिश में चार चांद लग जाता है। और ये अगला मैसेज है, ये इन्होंने शेर और शायरी के साथ में लिखा है, हर जिंदर छिंदा जसवीर जैसी सीता गीता की ओर से। और एक मैसेज है कि ये लिखने वाले हैं, अपनी बात लिखते हैं कि 3 साल पहले की बात है, एक बार हम स्कूल से लौट रहे थे, आंधी तूफान बहुत जोर से बारिश हो रही थी। तब तक हम जब घर आए, हम अच्छे से हमारी किताबें भीग गई थी, घर आकर काफ़ी डांट पड़ी, कहा गया कि कहीं रुक जाते, किताब भी आपकी बच जाती। फिर हमने अपनी गलती मानते हुए कुछ देर बाद खाना खाया, फिर हमने कागज़ की नाव बनाकर पानी में छोड़ने लगे, फिर बहुत बारिश में नहाए, खूब मस्ती की। बहुत ही अच्छी बात इन्होंने अपनी साझा की। और श्रोताओं, वक्त आ गया आपसे विदा लेने का। आज रात में जो हमने ये पहली बारिश की यादों का सफ़र तय किया, उसमें आप सब हमारे हम सफ़र बने, इसके लिए दिल से शुक्रिया। उम्मीद है आपके दिल का मौसम भी आज के इन गीतों से सुहावना हो गया। तो अब आप आराम कीजिए, मीठे सपनों की दुनिया में खो जाइए। फिर मिलेंगे आपको अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए अपनी दोस्त शिवा शुक्ला को।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम रात के हमसफर, आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। रात्रि के 11 बजने को हैं, कुछ ही देर में दिल्ली में हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमाओं को सुरक्षित करना और अवैध प्रवासन पर अंकुश लगाना राष्ट्र की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर महत्वपूर्ण G7 और G13 सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार लीक प्रूफ सुरक्षा ग्रिड स्थापित करने के लिए ड्रोन, रडार और आधुनिक बाढ़ सहित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है। उन्होंने नई सुरक्षा ग्रिड के साथ सीमा प्रबंधन में बदलाव की घोषणा की।
2: BHF की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और BHF के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहेगी। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
1: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि नीट पेपर लीक मामले में परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। डीडी न्यूज को दिए साक्षात्कार में श्री प्रधान ने योग्य विद्यार्थियों की सुरक्षा का आश्वासन दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। न्यायालय की पीठ आज इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। दिल्ली में 21 जून को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट के लिए परीक्षार्थी DTC की बसों में निशुल्क यात्रा कर सकेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस सुविधा का लाभ लेने के लिए परीक्षार्थियों को केवल अपना वैध नीट प्रवेश पत्र दिखाना होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से शुरू हो जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में घुसपैठ और इसके कारण जनसांख्यिकी बदलाव की आशंका व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार घुसपैठ के मुद्दे पर कोई कार्रवाई करने में नाकाम रही। यही कारण था कि तृणमूल प्रशासन ने केंद्र से समय से निर्देश मिलने के बावजूद जनगणना कार्य की शुरुआत नहीं की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC ने आज नई दिल्ली परिसर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट एकेडमी की शुरुआत की। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार ने कहा कि इस अकादमी की शुरुआत से संस्थान पारंपरिक मीडिया शिक्षा से आगे बढ़कर भविष्य की मीडिया तकनीकों पर काम कर सकेगा। उन्होंने कहा कि AI की जानकारी केवल बड़े शहरों के न्यूज़रूम तक सीमित नहीं रहनी चाहिए बल्कि पूरे भारत के मीडिया क्षेत्र तक पहुंचनी चाहिए। वाइस एडमिरल अजय कुचर ने आज 48वें नौसेना उप प्रमुख के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। पुणे में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र वाइस एडमिरल अजय कुचर ने जुलाई 1988 में भारतीय नौसेना में कमीशन प्राप्त किया था। न्यू चंडीगढ़ में IPL क्रिकेट के दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी रहा। पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान ने गुजरात को निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 215 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में ताजा समाचार मिले तक गुजरात ने 15 ओवर में 2 विकेट पर 182 रन बनाए हैं। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।